0: जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना। और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें, और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। आइए अब हम बताने जा रहे हैं आपको कपालभाति प्राणायाम के कुछ प्रमुख फायदे, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ। तो सबसे पहले कपालभाति के शारीरिक लाभों की ओर चलते हैं। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वास से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, एलर्जी में ये लाभ देता है। रक्त को शुद्ध करता है और शरीर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ कब्ज, गैस और एसिडिटी को दूर करता है। मोटापा नियंत्रित करता है।

और पेट की चर्बी घटाने में भी यह सहायक सिद्ध होता है। लीवर और किडनी को स्वस्थ रखने में यह बहुत ज्यादा मददगार रहता है। शारीरिक लाभों में बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिसे हम शुद्ध प्राणायाम भी कहते हैं, यानी कि कपालभाति को हम एक और नाम से जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, शक्तिशाली श्वास क्रिया और शुद्धि प्राणायाम, कपालभाति, मोमबत्ती आसन, ऐसे ही कपालभाति के बहुत ही नाम हैं। लेकिन फायदा एक दूसरा लाभ की ओर चलते हैं, जो कि हमारा है मानसिक लाभ। तनाव, चिंता, डिप्रेशन को कम करता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, दिमाग को ठंडक और शांति प्रदान करता है। मानसिक लाभ में यह आसन प्राणायाम अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ही हम आगे की क्रियाओं को कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य और दिनचर्या के लाभ। चेहरे पर प्राकृतिक चमक आता है, बाल और त्वचा स्वस्थ रहते हैं, आँखों की रोशनी में भी सुधार होता है। आध्यात्मिक और ऊर्जा के लाभ। शरीर के नाड़ियों की शुद्धि करता है, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है, जिससे ध्यान और साधना में मदद मिलती है। शरीर और मन में प्राण शक्ति का संतुलन बरकरार रखता है। कपालभाति को सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा माना जाता है। शुरुआत में 2 से 3 मिनट में शुरू करके धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक यह आसन किया जा सकता है। तो आइए हमसे फिर मिलेंगे एक नए आसन के फायदे, एक नए योग क्रिया को लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि बहुत सारी योग की योग सीरीज हमने आपके साथ शेयर की है, योग को किस तरीके से अपनाने के लिए बताया है, योग को करने के लिए बताया है, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी प्रणालियों को भी शेयर किया है जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित भी हुई है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि जब योग से हम जुड़े थे तो मुझे भी इस तरीके की जानकारी पूर्णता नहीं थी, लेकिन जब हम योग से जुड़े तो हमें भी यह मालूम हुआ कि योग हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यूं ही नहीं कहा गया है कि योग से जुड़ने के साथ जीवन भी बदल जाता है। ऐसे ऐसे योगियों को हमने योग करते हुए देखा है, ऐसे ऐसे रोगियों को हमने योग करते देखा है, जो कि एक बहुत गंभीर रूप से जब पीड़ित होते हैं तो भी योग को करने के बाद भी उन्हें राहत मिलती है। योग में सबसे पहला जो कि हम पूर्णता 8 प्राणायामों के बारे में बताते आए हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, अग्निसार, भस्त्रिका, भ्रामरी, अग्निसार। क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं मुख्य 8 प्राणायामों के बारे में तो सभी बात करते हैं, लेकिन उसके फायदे, उससे जुड़ी हुई कई ऐसी बातें होती हैं जो कि हमारे, जिसे कहते हैं ना कि जब कोई कलाकार होता है तो जो आगे रहता है यानी कि जो फ्रंट पेज पे होता है हम उसे ही देखते हैं, लेकिन बैक ऑफ कैमरा यानी कि पर्दे के पीछे जो जिनका हाथ होता है, जिनकी मेहनत होती है, जिनके कारण हम उनको जानते हैं, वो हम कहीं ना कहीं भूल जाया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये 8 मुख्य प्राणायामों के बारे में तो हमने सभी को जाना, किया भी और हमें महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली, पर क्या इसके फायदे को किसी ने जाना? अमूमन हम ये भी कह सकते हैं कि बिना फायदे के तो योग कोई करेगा ही नहीं, यानी कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, अग्निसार, भस्त्रिका, भ्रामरी, यदि हम पहले से ही कर रहे हैं तो हमें उसके फायदे अगर ना मिलते तो कोई समझ ही नहीं पाता, पर ऐसा नहीं है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आज हम आपको देने जा रहे हैं, यह एक पर्दे के पीछे काम करने वाले व्यक्ति जैसी ही है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में, जो कि हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी को पता है कि अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम जब हम करते हैं तो एकाग्रचित होकर के हम एक शांत अवस्था में बैठ जाते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें वातावरण ही केवल
शांत मिले। महत्वपूर्ण ये है कि हमें हमारी अंदर की संतुष्टि, हमारी अंदर का ध्यान और हमारी अंदर की खुशी महत्वपूर्ण साबित होनी चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज अनुलोम विलोम के फायदे आपसे बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार अनुलोम विलोम को हमने किया, इस प्राणायाम के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी, कैसे होता है, कब करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, किस अवस्था से और किस अवस्था तक यह प्राणायाम करना चाहिए। परंतु आज हम अनगिनत फायदे लेकर के आए हैं जो कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से कई तरह के फायदे हमें मिलते हैं, जिसमें से कुछ शारीरिक, मानसिक और हमारे बौद्धिक स्तर को, यानी कि बौद्धिक स्वास्थ्य को फायदेमंद पहुंचाने में निरंतर काम करते हैं। कि अनुलोम विलोम वैकल्पिक श्वास, नासिका श्वास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूर्णता दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से दाहिनी नासिका से सांस लेते हुए हम इसे पूर्णता करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम श्वास का आवागमन यानी कि आदान प्रदान करते हैं, दाईं नासिका से श्वास लेते हुए हम बाईं नासिका से छोड़ते हैं और बाईं नासिका से श्वास लेते हुए हम दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को अनुलोम विलोम कहा जाता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो हमारा पेट बहुत ही ज्यादा पीछे की ओर दबने लगता है। इसका सीधा कारण यही है कि श्वास से निर्मित यह प्राणायाम तो है ही, साथ ही साथ यह प्राणायाम हमारे पाचन तंत्र को भी बहुत मजबूत करता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है तो हमारा शरीर काला पड़ने लगता है। इस स्फूर्ति की जगह पर हमें हमेशा से उदासी महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगना और हमेशा से एकांत में बैठने की इच्छाएं होती हैं, किसी से बात न करने के लिए या फिर हमेशा से चिड़चिड़ापन बना रहता है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना और श्वास से निर्मित जब हमारे पास ऐसे कुछ कारण हो जाते हैं तो हमें पाचन तंत्र की कमी भी महसूस होने लगती है। अनुलोम विलोम के फायदे वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ फायदे आज हम आपके साथ बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो फायदा है अनुलोम विलोम को करने से, इससे तनाव और चिंता कम होती है। आपने कभी ये गौर किया है कि यदि जिस दिन हम सुबह उठ करके योग से जुड़ते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, उस दिन हमारा मूड और हमारा स्वास्थ्य भी साथ ही साथ में बहुत ही बढ़िया रहता है, जिसको आज की लैंग्वेज में जो टीनेजर्स बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो कहते हैं कि आज हमारा मूड बहुत चिल है। इसका मतलब यही हुआ कि आज हमारा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है। और वहीं अगर हम सवेरे उठ करके कभी किसी से चिड़चिड़ हो जाती है या फिर मूड ऑफ हो जाता है तो हमारा मन भी किसी काम में नहीं लगता है। दूसरा है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। आप अनुलोम विलोम को बेहतर जानते हैं, अनुलोम विलोम इतना प्रभावशाली है, यदि जिन लोगों को अनुलोम विलोम करने के लिए नींद की अधिकता भी होती है या उसकी कमी होती है तो हम जान लें कि यह अनुलोम विलोम के प्रभाव के कारण ही होता है। अनुलोम विलोम जब हमारे साथ में सभी लोग मिलके करते हैं तो हमें इतना अच्छा प्रतीत होता है कि मैं आगे क्या ही बता दूं। जिन डॉक्टर्स ने यह गोली देते हैं या फिर जो पेशेंट जिन्हें नींद नहीं आती है, जिन मरीजों को नींद नहीं आती है, जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आती है, वो लोग टैबलेट्स लेते हैं। अगर वो नित्य प्रति अनुलोम विलोम करें तो उन्हें नींद की शिकायत जो है वो भी दूर होती है, इसीलिए यह नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। इससे हृदय स्वस्थ रहता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। ब्लड प्रेशर आजकल बच्चों में यानी कि टीनेजर्स के बाद यानी 18-20 के बाद ही ब्लड प्रेशर की समस्याएं देखी गई हैं। इसीलिए अनुलोम विलोम का नियमित रूप से करना बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। इससे गठिया, माइग्रेन और अवसाद जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। यह श्वसन विकारों जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में भी फायदेमंद होता है। यह शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है। आजकल महंगे महंगे हम
जिम जाते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी जो कि टैबलेट्स लेते हैं, शेक्स पीते हैं, जिससे हमारा वजन जो है वो घट जाए। लेकिन बिना पैसे थोड़ा सा जल्दी उठ करके अगर हम अपना टाइम दे दें अनुलोम विलोम को, तो हम घर बैठे ही अपने वजन को घटाने में मदद कर सकते हैं। कौन नहीं चाहता है कि हमारी जो त्वचा वो सुंदर और चमकदार हो। तो साथ ही साथ ये भी बता दें कि महिलाओं का सबसे लोकप्रिय यानी कि महिलाओं का सबसे प्रिय जो एक योग है वो है अनुलोम विलोम, जिसको लगातार करने से हमारी त्वचा चमकदार और खूबसूरत बनती है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। स्टूडेंट्स लाइफ में यह जरूर करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तो यह अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। इसका फायदा उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को और बूस्ट करने में मदद करता है। यह साइरन्स और खराटे जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। बिल्कुल, अगर घर में कोई भी है, जैसे मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, भाभी हैं या फिर हस्बैंड, तो फिर जब हम उनके साथ में लेटते उठते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे खराटे। एक को खराटे आते हैं और दूसरे को नहीं, तो साथ ही साथ में नींद तो खराब होती ही है, साथ ही साथ चिड़चिड़ा और गुस्सा भी आता है। तो आइए अनुलोम विलोम के फायदे हमने आज जाने, साथ ही साथ आज हमने आपको अनुलोम विलोम के वो फायदे बताए हैं जो कि अमूमन सभी के घरों में यह समस्याएं होती ही आती हैं। तो अनुलोम विलोम से जुड़े इनके फायदों को जानें और उसके बाद योग करें और खुश रहें। इसी के साथ नए एक और योग की फायदे लेकर के आपकी योगिनी समता आएंगी। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं समता, योगा एक्सपर्ट, आपकी योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपना ख्याल खुद से भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा अपनों का और आपका रखते होंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एक प्राणायाम जो कि आज हम आपको उस प्राणायाम के अंतर्गत ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम स्वयं करेंगे और आप भी हमारे साथ उस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए आज हम अपने ईश्वर, अपने ईष्ट, अपने अल्लाह, अपने गॉड को याद करते हुए एवं अपने माता पिता, अपने गुरु को याद करते हुए अपने मन एवं चित्त की सारी व्यक्तियों को एकाग्र करते हुए पूर्ण रूप से उन्हें अपने आप को समर्पित करते हुए ध्यान अपने गुरुवर में लगाते हुए पूरा अपना शरीर अपने वश में रखकर मानो हम पूर्णता इस पृथ्वी को सारी शक्तियों को एकत्रित करके अपने में संचित कर रहे हैं और ध्यान को और विस्तार में अपने आप में विस्तृत कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान एक मुद्रा है जिसे हम जितना भी विस्तृत करें वह कम है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है जिस भी चीज पे हम लगाएंगे वह विस्तृत होती जाती है। जैसे यदि हम किसी वस्तु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय होते होते अंततः निष्क्रिय होती जाती है। उसी प्रकार इसका उल्टा, यदि हम प्रभु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय के साथ साथ और विस्तृत होती जाएगी। हमें उनका पूर्ण रूप से बोध और अपने आप में हमें आत्मा का बोध होने लगेगा और अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने प्रभु में लीन होकर हम अपने आप को पहचान लेंगे और एक दिन हम अपने प्रभु के चरणों में बैठकर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। यह एकमात्र ध्यान से ही संभव है, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज है या हम कहें ऐसी अवस्था है जिसे हम करने से पूर्व कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसे नियमों का ध्यान रखते हैं जिसे करने के लिए हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों आज हम अपना पहला प्राणायाम यानी भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं, जिसको करने के लिए हमें
स्वतः पहले एकाग्रचित हो करके हम कहीं पर भी, जैसे यदि हम जमीन पे बैठे तो हम चद्दर या मैट या हमें योगा मैट होगी, हम उस पर बैठकर आराम से सुखासन, सिंहासन, पद्मासन की स्थिति में कर, यदि हमें इन आसन में बैठने में कोई परेशानी हो रही है तो हम स्वतः जिस भी तरीके से बैठ सकते हैं नॉर्मल पलथी मारकर हम बैठ जाएंगे। उसके बाद हम मुद्रा लेंगे, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी पहली उंगली पहली मुद्रिका अंगूठे के नीचे दबा करके पीठ सीधी और पेट अंदर की तरफ, पीठ बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, अपने मुखमंडल पर एक भीनी सी मुस्कान, जैसे मानो हमें सामने अपने ईश्वर अपने इष्ट देव के दर्शन हो रहे हों, और इस तरीके से अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हुए एकाग्रचित होकर आंखें बंद करके जमीन पर जब हम बैठ चुके, अपना आसन ले चुके, उसके बाद मुंह बंद रखकर एक नासिका से, यानी हमारी नासिका के दो छिद्र हैं दायां और बायां, तो हमें दाएं और बाएं दोनों से आराम से, जैसे आपको कोई परेशानी ना हो, लंबी गहरी सांस ऐसे भरेंगे जैसे मानो वह सांस हमारे फेफड़ों में जाकर समावित हो रही है और उसे भरा जा रहा है। जिस तरीके से हम सांस भरेंगे, तो आइए हम अपना प्राणायाम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण कुछ इस तरह

आती जाती सुख पर लगाते हुए एकाग्रचित होकर के लंबी गहरी सांस भरेंगे पुनः और एक मिनट का होल्ड करके एक मिनट रोक करके सांस को फेफड़ों में भरेंगे। फेफड़ों में भरने के बाद आपका पेट जैसे मानो फूल गया हो इस तरीके से आपको प्रतीत होगा। पुनः करेंगे।

जिस गति से हम श्वास लेंगे उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे भी। प्रारंभिक अवस्था में हम यह ध्यान रखें कि हम श्वास को लेते समय कोई भी जल्दबाजी ना करें और कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि यदि हम असावधानी से करेंगे तो हमें कुछ भी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे हमें श्वास लेने में, अगर हमने अधिकतर लोगों को देखा है कि वह जल्दी जल्दी श्वास लेने लगते हैं और प्राणायाम के बाद में उन्हें कुछ दिक्कतें इस प्रकार की होने लगती हैं, जैसे तेज धूप में निकल के जाते हुए उन्हें श्वास का जो चलन है वह अपने आप में इस तरीके से प्रतीत होगा जैसे जल्दी जल्दी श्वास चल रही है, या श्वास भारी होने लगती है, या यदि हम भोजन करते हैं उसके बाद श्वास का भारीपन हो जाना, फेफड़ों में भारीपन लगना। तो हम पहले से ही यह सावधानियां करेंगे तो हमें यह दिक्कतें नहीं आएंगी। श्वास अपने ही स्वतः जिस तरीके से आपको लगे कि हम यह हमारे लिए सावधानी और हमें आसानी होगी, उस तरीके से हम श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। प्राणायाम को हम लोग पुनः कंटिन्यू करते हैं। इनहेल यानी श्वास लेंगे, रेस्ट, इनहेल, रेस्ट, इनहेल, रेस्ट, यानी हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ते समय हम रेस्ट बोल रहे हैं, यानी हमें आराम की स्थिति में आ जाना है। यह प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम है। इस प्राणायाम में श्वास की गति नियंत्रित रूप से सामान्य स्थिति में होनी चाहिए, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी किया। अगर आपको समय का बोध है, यानी समय बोध का मतलब हुआ हम अपनी घड़ी में 20 मिनट यानी 15 मिनट यानी 10 मिनट यानी 5 मिनट, हम अपनी सुविधा अनुसार 5 मिनट से शुरू करते हुए एक टाइमर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम टाइमर लगा सकते हैं अपनी मोबाइल में, अपनी घड़ी में, ताकि आपको यह प्राणायाम या कोई भी आगे प्राणायाम करने में सावधानी और सुरक्षा एवं आपको आसानी होगी। जैसे हमने अगर टाइमर लगा दिया तो वह टाइमर जो आपने टाइम सेट किया है उसी पर करके वह टाइमर स्टॉप होगा और आपका वह प्राणायाम एक नियमित रूप से, एक नियमित गति से होता रहेगा। बच्चों के लिए दोस्तों, स्टार्टिंग में 2 मिनट से हम करेंगे, जैसे कोई भी प्राणायाम हो, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, ध्यान योग मुद्रा, हमने आज टॉपिक लिया हुआ है, हम आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो ध्यान और भस्त्रिका, यह दोनों प्राणायाम हम बड़ों के लिए 5 मिनट, जैसा कि हम लोगों ने अभी किया, और बच्चों के लिए 2 मिनट। हम फिर से पुनः अपनी उसी स्थिति में आएंगे। जैसे श्वास हम ले रहे हैं और श्वास को छोड़ रहे हैं, तो आइए अब हम जानेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के करने से हमारे क्या क्या लाभ हो सकते हैं।

दोस्तों, किसी न किसी को कोई ना कोई परेशानी शरीर से लेकर के और रोगों को लेकर के होती रहती है, जैसे दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, वह आपकी एकमात्र भस्त्रिका प्राणायाम करने से दूर होती है। और यह प्राणायाम करने से जितनी भी आपको दिक्कतें होंगी श्वास से रिलेटेड, हम श्वास ले रहे हैं, श्वासों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वह आपकी दूर होगी। जैसे फेफड़ों से संबंधित हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है, कभी कभी हमें जल्दी जल्दी कोल्ड हो जाता है, हमें जल्दी जल्दी सर्दी जुखाम हो जाता है, तो ये सब भी प्रॉब्लम्स हमारी भस्त्रिका प्राणायाम को नियमित रूप से करने में करते रहने से दूर होती है। सूक्ष्म व्यायाम करते समय यदि अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम को उस गति में हम समाहित कर रहे हैं तो हमें इसका लाभ पूर्णता दुगना होकर के मिलने लगता है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, जैसे हमने आपको अभी बताया कि श्वासों से नियमित रूप से करने से श्वासों की गति को संचालित करने के लिए यह प्राणायाम है, तो हमने आज भस्त्रिका प्राणायाम को आपके सामने, आपके साथ में हमने आज भस्त्रिका प्राणायाम किया। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आज आपने यह अभ्यास हमारे साथ किया और यह अभ्यास आपको समझ में आया होगा और हम इसको नियमित रूप से इस अभ्यास को करते रहेंगे। और यदि आपको भस्त्रिका प्राणायाम करने में कोई भी परेशानी हो तो आप जैसे प्रश्नोत्तरी में आप हमसे इनबॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने आज बात करी।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सैलून सैलून लगाओ।
1: इनो इनो इनो जल्दी ले लो इनो, इनो इनो इनो जल्दी ले लो इनो, फिर ना होगा पेट का बुखार, खार खार मेरे दिलदार।
0: चुप चुप।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

गुड मॉर्निंग इंडिया एंड गुड मॉर्निंग गोंडा, कैसे हैं आप सभी? एंड सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाइए भाई। आ गई आज आपकी आरजे समता एंड ब्यूटीफुल से सॉन्ग के साथ।

बिल्कुल सलाम करने की आरजू है एंड जल्दी से चैट बॉक्स में आकर के अपनी एंट्री भी दर्ज करानी है क्योंकि मुझे अभी चैट बॉक्स में केवल एक से दो ही नाम दिख रहे हैं। एंड आज आई हैं आरजे समता तो आप सभी को भी आना ही पड़ेगा क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद में आई हूँ, लमसम 2 या 2.5 महीनों के।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता। और जल्दी से आप सभी भी चैट बॉक्स में आ जाएं, क्योंकि थैंक यू सो मच हरिचंद सविता जी, गुड मॉर्निंग। दीपक हथियागढ़, गुड मॉर्निंग। नीना जी, गुड मॉर्निंग। रूहानी, गुड मॉर्निंग। प्रीति जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज का सुविचार आप सभी के लिए हम लेकर के आए हैं, जो है कि दो विचार हैं मेरे पास आज का। जैसे कहता है ना, थॉट ऑफ द डे। तो थॉट ऑफ द डे हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू है, बहुत बड़ा एक सच है जो हम जानते तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस सच को हम इग्नोर करते हैं, काफ़ी बार हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि

अगर हम किसी के लिए इग्नोर करते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार आज नहीं कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को कम करना शुरू कर देते हैं। कड़वा सत्य है लेकिन एग्जैक्टली सही है। वो थॉट ये है कि इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती, इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नज़रें और नियत बदल जाती है, जितनी जल्दी इंसान की नियत और नज़रें बदल जाती हैं। कितना सच्ची वाला थॉट आज मिला है कि जब हम कभी कुछ किसी से अटैच्ड हो जाते हैं, हम एक फैमिली में ही हैं और किसी के लिए बहुत कुछ हम कर रहे हैं, किसी के लिए हम पूर्ण समर्पण हमने कर दिया है, वो रिश्ता कोई भी हो सकता है ना, और जितनी तो दुनिया की चीज़ें नहीं बदलती हैं। अगर आप कोई चीज़ सामान लेकर के आ रहे हैं वो जल्दी नहीं चेंज होती है, मतलब काफ़ी टाइम लगता है उसका रंग रूप बिगड़ने में, बट एक इंसान की नज़रें और नियत इतनी जल्दी बदल जाती हैं जैसे मानो कि अभी कल की ही बात हो, है ना। तो ये कड़वा सत्य है लेकिन कहीं ना कहीं सही भी है। और दूसरा है कि हमारा जीवन सिर्फ हमारे विचारों से ही बनता है, क्योंकि हम जो विचार अपने लिए बनाते हैं वैसा ही हमारा स्वरूप, हमारा व्यक्तित्व, हमारा नेचर, हमारी बोली, हमारा रहन सहन सब वैसा का वैसा ही बनने लगता है। इसीलिए हमारा जीवन सिर्फ हमारे विचारों से ही बनता है। तो अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए, अपने विचारों को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि यार ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। हमें ये कहना है कि यस हो सकता है, मैं कर सकती हूँ इसको, आई विल डू। मतलब ऐसा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं बनी है जो हम एक इंसान नहीं कर सकता है उसको। आप सोचो कि अगर जो विचार हमने बना लिया कि नहीं आज हम बहुत ज़्यादा आज मुझे बहुत ज़्यादा लेजीनेस लग रहा है यार, आज तबीयत नहीं ठीक लग रही है, तो पता है मॉर्निंग में जो थॉट क्रिएट हो गया ना वो पूरा दिन चलता है, पूरा दिन चलता है वो। तो इसीलिए जो भी विचार हैं, जो भी थॉट हैं, अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठ करके कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, तो सिर्फ इतना सोचना है कि हम अपने लिए एक अच्छी वाली फीलिंग सोचें, यस आई एम अ गुड, आई एम अ ओके एंड ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा और उसके बाद में सब कुछ ठीक होगा। तो ये अगर हमने अपने थॉट में रोज कहना शुरू कर दिया, रोज सोचना शुरू कर दिया, तो कोई भी इंसान हो भाई, कोई भी हो, आपको कोई भी ठेस पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे थॉट में आ गया, हमारे थॉट में आ गया ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक होगा, चलो ठीक है उसने जो किया मेरे साथ किया, हमें उसके बदले में उसको वो बुरी चीज नहीं देनी है जो उसके विचारों में है ना। तो प्रीति जी लिख रही है हकीकत बना बयां करता हुआ, ऑसम थॉट। हाँ जी प्रीति जी बिल्कुल, और इस संसार में इंसान के अलावा हर वो चीज वैसी ही है जैसी हमें दिखती है। तो मतलब ये थॉट पता है हम लोग ना, जैसे मतलब मैं स्पेशली, मुझे लगता है कि आंख बंद करके जिस थॉट पे हाथ रख देती हूँ वो लगता है कि मेरे लिए आज का वो थॉट हो गया, और आज का थॉट यही इतना खूबसूरत निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। तो ये थॉट आप सभी के लिए एक बार फिर से कि कोई दुनिया की चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती है जितना इंसान की नज़रें और नियत, और हर इंसान को अपने लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि विचारों से ही हमारा जीवन चलता है। हमने अगर विचार बना लिया कि आज हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप आजमा के देखना, और या फिर जो महिलाएं जो हम लोग कभी बाहर जाते हैं पार्टी शार्टी में, हम लोग जब तैयार होते हैं तो हम लोग शीशे में देखते हैं ना कि यार कितने सुंदर लग रहे हैं, तो क्या वाकई में हम सुंदर लग रहे होते हैं भाई? हर किसी की नज़र होती है ना, कोई कहता है कि नहीं तुमने बिंदी ऐसी लगाई है, कोई कहता है तुमने साड़ी ऐसी पहनी हुई है, और हम अपने आप को कितना परफेक्ट मानते हैं ना, तो एग्जैक्टली हम परफेक्ट लगते हैं उस दिन, क्योंकि हमने वो थॉट क्रिएट कर लिया अपने लिए कि यस आज हम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, है ना। तो ये विचारों से ही हमारी एक दिन की पूरी शुरुआत होती है और एक दिन का अंत होता है। तो विचारों को शुद्ध बनाना है और अपने जीवन को और सुखमय और खुशहाल बनाना है। तो चलिए ये

सा थॉट आपके लिए। आइए चलते हैं एक ब्रेक की ओर, और ब्रेक में मुझे पता है कि मुझे आपको कौन सा गाना सुनाना है, तो चलिए सुना देती हूँ। बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि आप सभी को भी बहुत पसंद है। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को। बस मैं यूं गई यूं आई।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
5: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
6: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288300।

बातें होने वाली हैं जो कि मुझे उन सभी का आंसर चाहिए। अच्छा, कितने लोग हैं जो कि एक बहुत ही बढ़िया सा चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं पहले हेल्थ इज़ वेल्थ के बारे में बाद में बताऊंगी, पहले मुझे ये बताइए कि कुछ लोग तो इतनी जल्दी सुबह उठ जाते हैं कि सूरज भी पूछता है, भाई अलार्म किस कंपनी का है? कितने लोग ऐसे हैं मुझे आप बताएं पहले, मतलब आप मुझे ये चैट बॉक्स में आके मैसेज बताएं कि कितने लोग हैं जो विदाउट अलार्म जगते हैं। भाई मैं तो मुझे कब जब कहीं जाना होता है ना, खास करके जब गुड मॉर्निंग गुंडा के लिए आना होता है, तो मैं अलार्म तो लगाती हूँ, जो बात सच्चाई है, मैं अलार्म लगाती हूँ, लेकिन ना क्या होता है कि उस अलार्म से आधा घंटा पहले ही मेरी नींद खुल जाती है। मुझे लगता है कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो ये कारण है मेरा। और ऐसे ही आप सभी लोग बताएं कि क्या सूरज जी पूछते हैं, सूरज भगवान जी पूछते हैं कि भाई अलार्म आपकी कौन सी कंपनी का है, कौन सी कंपनी का है, मतलब मुझे तो नहीं पता है कौन सी कंपनी का है। तो कितने लोगों की विदाउट अलार्म नींद खुल जाती है सुबह, मुझे बताएं, तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बात बताने वाली हूँ। तो चैट बॉक्स में आएं, जल्दी बताएं कि कितने हमारे लिसनर्स हैं जिसकी नींद अलार्म बजने से पहले ही खुल जाती है। काफी लोग होंगे, जिसमें मैं भी हूँ, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो अलार्म लगाते हैं पट से दूसरे हाथ से उसको बंद कर देते हैं और फिर से वो सो जाते हैं। तो क्या ऐसा है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं, क्योंकि एक थॉट जो मैं आपको बताऊं, वो पॉजिटिव थॉट है, जो वो ये है कि हर सुबह ईश्वर आपको दो रास्ते देता है, हर सुबह ईश्वर आपको दो रास्ते देता है, एक सो जाओ और सपने देखो, सो जाओ और सपने देखो, और दूसरा रास्ता उठो और उन सपनों को पूरा करो। तो मुझे ये जानना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो उठ करके उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं और विदाउट अलार्म उनकी नींद खुल जाती है। प्लीज आंसर करें, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, देखने वाले हैं कि कितने लोग विदाउट अलार्म। अच्छा, आशु जी लिख रही हैं कि मैं, चलो फर्स्ट आंसर मुझे मिल गया, तो आशु जी आपको बोनस देने वाली हूँ मैं, मतलब मैंने ये अभी नहीं इसको डिस्क्लोज किया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि सबसे पहला जिसका आंसर आ जाएगा ना, मैं उनको दूंगी अभी उनकी पसंदीदा एक सॉन्ग सुनने का मौका। तो आशु जी आप जीत चुकी हैं और फटाफट आपने अपने एक गाने को लिख भेजना है। एंड अनूप जी लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग समता जी। अनूप जी कैसे हैं आप, काफी टाइम के बाद आज हम चैट बॉक्स में आए हैं और आपको देखा, मैंने आपके नाम को देखा। अलार्म तो आज नहीं लगाया, जब भी कहीं जाना होता है, ये कोई या फिर कोई काम होता है, रात भर उसकी टेंशन में नींद अपने आप टाइमली खुल जाती है। हाँ, ये तो परफेक्टली आपने कहा, मेरी नींद बिना अलार्म के सुबह 4 बजे जाग जाता हूँ। ओके दीपक जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो ऐसा है ना, जैसे अभी अनूप जी ने लिखा कि हमें जब कभी सुबह जल्दी उठना होता है ना, तो वो बिना वो अलार्म भी लगाते हैं, लेकिन अलार्म के पहले ही नींद खुल जाती है, जैसा कि कल रात मैंने किया। अलार्म तो लगा हुआ था बट मेरी नींद 3 बार खुली कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कुछ हेल्थ टिप्स ऐसे जो कि आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं, बट मेरा एक मोटिव होता है कि पहले मैं उन चीजों को इस्तेमाल करती हूँ और फिर आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, सभी के पास मोबाइलें हैं, सभी लोग फ्री टाइम पर रील्स देखते हैं, उसमें बहुत सारे हेल्थ के टिप्स आते हैं, बहुत सारे प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए आता है, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं। बट मुझे लगता है कि अगर हम उन चीजों को, अगर आपको कोई भी सलाह दे रहा है, आपको कोई एडवाइस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उन चीजों को अपनाना चाहिए, यूज करके देखना चाहिए, एंड देन हमें अगले को बताना चाहिए। तो मैं जो आज आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि सुबह उठ करके अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो वो आपके पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर को एक्टिव रखता है। तो आशु जी, प्ले द सॉन्ग जागो उठो उठकर देखो, जागो उठकर देखो, ये कौन सा गाना है आशु जी? सत्यम शिवम सुंदरम, आई थिंक वही है ना? तो वैसे भी भोर में उठना बहुत ही स्वास्थ्यप्रद होता है और

0: मैं भी उठती हूँ। वेरी गुड प्रीति जी। तो सुबह उठ करके गुनगुना पानी कौन कौन पीता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आज की भागम भागी जिंदगी में हर एक घर में किसी न किसी को, या मैं ये कह दूं कि सभी को, स्ट्रेस बहुत होता है, बहुत ज्यादा तनाव होता है। छोटी सी बात को लेकर के हम तनाव में आ जाते हैं, छोटी सी बात को लेकर के हम सोचने बैठ जाते हैं कि ये कैसे होगा, क्या भविष्य की चिंता पहले ही, भविष्य की चिंता वर्तमान में है ना, और भूतकाल की चिंता भविष्य में। तो भविष्य विचारा बिगड़ रहा है, और भविष्य बिगड़ने के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। तो आज उसी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले सुबह उठ करके आपको उठना है, आप जब भी उठ रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, जब भी उठ रहे हैं, आपने क्या करना है, गुनगुना पानी एक गिलास। आप एक गिलास नहीं पी पाते हैं, आधे गिलास से शुरू करिए। आधा गिलास आपने बैठ करके पीना है। आप सोफे पे बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए, पलंग पे बैठ जाइए, धरती पे नहीं बैठना है आपको। सुबह सुबह उठ करके आपको धरती पे नहीं बैठना है, फ्लोर पे, खाली फ्लोर पे नहीं बैठना है। खाली फ्लोर पे इसलिए नहीं बैठना है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण से आप अगर पानी पिएंगे वहां खाली जमीन पर बैठ करके, तो आप जैसे ही पानी पी करके आप अपना काम करना शुरू करेंगे, आपको वीकनेस होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, योग करते हैं, तो आप मैट, कोई भी मैट को बिछा करके ही आप बैठे। कहते हैं ना, कभी भी खाली जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज कि अगर आपको बहुत ज्यादा, जैसे उम्र बढ़ रही है या फिर बच्चों को जैसे लगता है कि हाँ वीकनेस हो रही है, तो ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये मैं खुद करती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्या करना है, मिट्टी का कोई भी एक पॉट लेना है, कोई भी, आप बच्चों के खिलौने बहुत सारे आते हैं मिट्टी के, या फिर कोई भी छोटी सी एक मिट्टी की कढ़ाई ले लें, बाउल ले लें, कुछ भी, बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में। उसमें आपने क्या करना है, फ्रेश उसको धुल लीजिए, पहले मार्केट से ले आएंगे उसको धुल लीजिएगा, और फिर उसमें क्या करना है आपको कि रात में 20 दाने, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, मतलब जितना आप खा सकते हैं, और आपके अगर फैमिली मेंबर्स और सबको देना है तो 5-5 करके आपने उसमें किशमिश के दाने डालने हैं। 2 अंजीर, ये 1 अंजीर, मैं ये एक इंसान के लिए बता रही हूँ, ठीक है, 10 दाने किशमिश के, 1 अंजीर, 2 काजू और 2 बादाम, और थोड़े से काले वाले चने, जो चने होते हैं ना, वो वाले चने, ठीक है। ये क्या करना है आपको, रात में भिगो देना है और ढक्कन लगा देना है ऊपर से, रात भर इसको भिगो कर रख दीजिए। सुबह उठ करके आपको, जब आप अपनी नित्य क्रिया कर लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद में क्या करना है आपको, इसको बैठ करके चबा चबा करके खाना है, 5 से 10 मिनट लगेगा, इसको चबा करके खाइए, और उसके बाद एक सिप सिप करके थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा, ताकि, मतलब 2 सिप पी लीजिएगा ताकि वो अच्छे से खाया जा सके, ठीक है। ये रूटीन अगर आपने कंटिन्यूअसली 1 महीने तक कर लिया, जितनी कैल्शियम की टैबलेट्स हैं, जितने विटामिन्स की टैबलेट्स जो खाते हैं, जितनी नींद की टैबलेट्स जो लोग खाते हैं, जो लोग कहते हैं कि मुझे वीकनेस है, मुझे ये है, मुझे वो है, उन सब के लिए ये रामबाण का काम करता है। और क्या है, क्या करना है, केवल आपको रात में ही उसको भिगो के रख देना है और सुबह उसको चबा करके खा लेना है। ये जान लीजिए कि पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए, ये जो आज मैंने आपको टिप्स बताए हैं, ये मैं खुद करती हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊँ। ये इतना फायदेमंद है कि वैसे भी 30 प्लस के बाद में, 40 प्लस के बाद में ये चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आगे चल करके कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो आपको। तो ये जो आपको मैंने बताया है, ये मैंने कहीं पे भी, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी गूगल वूगल करके आपको बताया है, मैं इस्तेमाल मैंने किया है, मैंने आपको बताया। सबसे पहले हाथ देकर कराग्रह वस्ते लक्ष्मी, और फिर उसके बाद गुनगुना पानी पीती हूँ। वेरी नाइस प्रीति जी, आप सेम टू सेम मेरी तरह करती हैं। तो आप सभी भी इस चीज़ को अपनाइए और ज़रूर से इस चीज़ को आप करना शुरू कर दीजिएगा। जिन्होंने भी नहीं समझ में आया है, वो एक बार फिर से हमसे अभी चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम चलाने जा रहे हैं आशु जी का सॉन्ग। आशु जी को मैंने बोला भी कि आशु जी बताइए कौन सा गाना है, आई थिंक सत्यम स्वम शिवम सुंदरम है, और उन्होंने नहीं मुझे भेजा, बट यही गाना था सत्यम शिवम सुंदरम।
1: डाउनलोड करिए तो आइए सुनते हैं उनके सॉन्ग को saregama.com से।
0: और उसके बाद में आते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक और थॉट है जो कि आप सभी की जिंदगी को बदल कर रख सकता है। तो बस हम यूं गए यूं आए।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और शो चल रहा है गुड मॉर्निंग गोंडा। क्या हाल है प्रमुख जी? मैंने सुना आपका एक्सीडेंट हो गया है, क्या बात है, कैसे, कहाँ थे अभी तक, सब ठीक ठाक है ना? एंड हेलो दरक्षा जी, कैसी हैं आप? तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। कुछ गर्मी के लिए बताना है मुझे, मैंने कहा था ना कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट ये है कि गर्मी ने कल से बहुत ज़्यादा वाला प्रकोप दिखा दिया है, तो कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे ये जान लेना कि गर्मी अगर है और अगर गर्मी से हो रहा है कुछ ऐसा, तो आप भी अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, सभी का ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहली समस्या क्या हो रही है कि गर्मी में पानी की कमी हो रही है, एंड पानी की कमी से ज़्यादा पसीना, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आने से पानी की कमी हो जा रही है, तो चक्कर आना, कमज़ोरी और सिर दर्द हो सकता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो दिन भर में पर्याप्त पानी पिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पसीना भी निकल रहा है। सेकेंड पॉइंट इज कि आप नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं और ORS का सेवन भी कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ज़्यादा देर खाली पेट ना रहें। क्या हो जा रहा है कि हम लोगों को भूख नहीं लग रही है ना, सभी लोगों के साथ में यही प्रॉब्लम है कि भूख नहीं लग रही है। हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग पानी पी रहे हैं तो चलो पेट भर जा रहा है क्योंकि गर्मी है। एग्जैक्टली, दिन में एक बार खाना ठीक से हम लोग खा ले रहे हैं, उसके बाद शाम को, रात में बिल्कुल भी खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। बट ये चीज़ें बिल्कुल हमारी सेहत के लिए भी नहीं अच्छी हैं, क्योंकि जब ज़्यादा खाली पेट हम रह रहे हैं तो उससे एसिडिटी बन रही है और यही एसिडिटी का कारण हो जा रही है कि हमें ज़्यादा गर्मी लगने का कारण बन सकता है। तो जहाँ हम दो रोटी तीन रोटी खाते थे, दो रोटी उसको कर दें, या फिर आप एक रोटी जो लोग दो खाते थे उसको एक कर दें, थोड़े से चावल ले लें, इस तरीके से जो क्वांटिटी है उसको कम कर दें, लेकिन बिल्कुल भी खाना बंद ना करें। सेकेंड पॉइंट इज लू लगना, हीट स्ट्रोक। तो तेज़ धूप में ज़्यादा देर रहने से लू लग सकती है, जिसमें तेज़ बुखार, उल्टी और चक्कर, बेचैनी, ऐसा हो सकता है। तो दोपहर 12 से 4 बजे तक धूप से बचें, सिर को कपड़े या टोपी से ढककर ही निकलें। तुरंत ठंडी जगह पर आराम करें और पानी पिए, मतलब जैसे आप धूप से आ रहे हैं ना, तो तुरंत आपको क्या करना है कि तुरंत एसी में नहीं चले जाना है, तुरंत कूलर में नहीं बैठ जाना है, ऐसा नहीं करना है। थोड़ी देर आप नॉर्मल रहें और उसके बाद में आप पानी पिए और ठंडी जगह पर जाएं। ज़्यादा पसीना और थकान, ये सबसे ज़्यादा आजकल सभी को हो रहा है, तो गर्मी से शरीर जल्दी थक जाता है, इसीलिए हल्के और सूती कपड़े ही पहने। ज़्यादा तला भुना जो खाना खाते हैं वो कम करें, मतलब ज़्यादा ऑयली खाना, जो पापड़, ये वो, चिप्स और बहुत ज़्यादा तेल वाली सब्जियाँ, उसको कम करें और पर्याप्त मात्रा में नींद लें। शरीर को ठंडा रखने वाले जो फल आते हैं आप उसको ले सकते हैं, तरबूज, खीरा, ककड़ी, आम पन्ना, छाछ और दही, ये सारी चीज़ें आपको शरीर में ठंडक पहुँचाने और ऊर्जा देने में मदद करते हैं। शरीर में गर्मी में जल्दी पेट खराब होने की समस्या हो जाती है ना, तो आप ऐसा ही खाएं जिससे आपका पेट खराब ना हो। एंड गर्मी में जल्दी खराब होने वाला खाना, जैसे कि बासी या खुला खाना अगर रखा हुआ है तो उसको बिल्कुल ना खाएं। ताज़ा भोजन करें, बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है कि आटा गूंद लिया सुबह को तो वो दिन भर चलाती हैं, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, तुरंत आटा गूंदना है और तुरंत ही रोटियां बनानी है। बाहर की खुली चीज़ें खाने से बचें, खाने को हमेशा ढक कर ही रखें, चाहे आपको जितनी भी जल्दी हो, चाहे आपका किचन कितना भी सेफ हो, लेकिन खाने को हमेशा ढक कर ही रखें। और अब आती है आँखों की सुरक्षा। तेज धूप से आंखों और त्वचा पर असर पड़ सकता है, इसीलिए धूप का चश्मा इस्तेमाल करें। बाहर निकलते समय छाते का इस्तेमाल जरूर रखें और चेहरे को साफ पानी से धोते रहें। साथ ही साथ कुछ घरेलू उपाय भी हैं कि प्याज जो कि खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब दोपहर के खाने में आप तो प्याज तो आपको लेना ही लेना है, जिससे आपको लू लगने में बहुत ज़्यादा सहायक हो सकता है, मतलब लू नहीं लगेगी फिर। एंड बेल का शरबत, सत्तू शरबत शरीर को ठंडक देता है। पुदीना और नींबू गर्मी में राहत देते हैं। तो भाई अगर आप सभी को ये उपचार, ये जो बताया गया, ये चीज़ आपको अच्छा लगा हो तो गर्मी में थोड़ी सावधानी और सही खान पान आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। तो प्लीज़ सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि अब तो गर्मियां शुरू हुई हैं। मतलब पिछले 3 दिनों से जो गर्मी का प्रकोप है, 45 डिग्री से ऊपर जो टेम्परेचर है वो जा रहा है। तो गर्मी अभी तो जून भी बाकी है, यानी कि मई तो 9 एंड जून 10, मतलब ऐसा होता है ना कि एक से बढ़कर एक, तो जून अभी बाकी है। इसीलिए थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें, शरीर को जितना हो सके आप ठंडक पहुंचाएं। 12 से 4 बजे के बीच में अगर बहुत ज़रूरी है तो ही निकलें, अदरवाइज ना निकलें। तो ये थी कुछ गर्मी को लेकर के इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो आइए अब हम आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना, जो कि है मेरी पुरानी ही गानों की लिस्ट में से। आइए सुनते हैं, उसके बाद आएंगे हम सीधे राशिफल और गेम की ओर, ठीक है? तो चलिए हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

सॉरी मैंने बरेली लिख दिया था, तो नेक्स्ट वर्ड इज है मतवाली, नेक्स्ट वर्ड इज मतवाली, तो जल्दी से मतवाली वर्ड से गाना लिख करके भेजिए, फर्स्ट वर्ड इज मतवाली।

चलिए भाई शुरू करते हैं आप ही गेम को। और सबसे पहला सॉन्ग भेजा है प्रमुख जी ने, एंड सभी लोग चैट बॉक्स में बने रहे। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, आपको देते हैं चैट बॉक्स में बने रहे।

सदा। ओके, तो मुझे एक गाना और मिल गया है, लेकिन नेक्स्ट वर्ड इज खुशी। तो फटाफट भेजें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट और अभी हम लोग लेंगे, यानी कि अभी हम लोग 5 मिनट 10 मिनट केवल गेम और होगा, एंड देन इसके बाद में राशिफल की ओर चलेंगे। केवल 10 मिनट और है, तो 10 मिनट के अंदर फटाफट आप सभी लोग अपने अपने सॉन्ग्स को भेजें जिसके सॉन्ग्स नहीं हुए।

प्रीति जी का भी है, आशु जी का भी है, और प्रमुख जी हम अभी नेक्स्ट सॉन्ग आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन ये दो सॉन्ग एक सेम हो गए थे इसीलिए मैंने ये गाना चलाया। तो अभी एक सॉन्ग और हो सकता है, इसीलिए लास्ट वर्ड मैं आपको देने जा रही हूँ।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और की प्रीति जी का सॉन्ग बचा हुआ है। तो प्रीति जी आप हमें दे थोड़ा वक्त, क्योंकि वक्त हो चला है अभी राशिफल का। तो राशिफल अभी हम बताएंगे आपको, और उसके बाद में मैं प्रीति जी के सॉन्ग को ज़रूर प्ले करूंगी, क्योंकि उनका लास्ट सॉन्ग था अभी। तो मैंने सोच लिया था उस समय कि मैं प्रीति जी के सॉन्ग को ज़रूर सुनाऊंगी, लेकिन अभी जो है हो गया है वक्त राशिफल का। ठीक है, तो चलिए भाई, राशिफल मेष राशि जो है चंद्र राशि के अनुसार बुधवार 20 मई। तो पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव है ये कि अगर आप प्रॉपर्टी अथवा वाहन की खरीद फरोख्त कर संबंधी कोई योजना बना रहे हैं तो आज उससे संबंधित कार्य हो सकता है। मेहनत करते रहें, क्योंकि उचित परिणाम हासिल करने के लिए कर्म प्रधान होना पड़ता है। तो बच्चों को अपने किसी विषय को लेकर चल रही समस्या का समाधान भी आज आपको मिल जाएगा। एंड नेगेटिव क्या है कि दूसरों की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेना आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करें। ठीक है, लव लाइफ बता रहा है कि जीवन साथी और परिवार के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा आज। आपसी रिश्तों में और अधिक मधुरता आएगी, प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। स्वास्थ्य बता रहा है कि अत्यधिक थकान लेने से अत्यधिक तनाव लेने से शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस करेंगे। कुछ समय प्रकृति के साथ बैठें, समय व्यतीत करें और योगा मेडिटेशन भी जरूर करें। योगा से याद आया कि सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक हम लेकर के आते हैं, यानी आपकी योगिनी समता लेकर के आती है बहुत सारे योग आसन। तो आप सुने, उसे करें और उसका लाभ भी उठाएं। भाग्यशाली रंग है बादामी, भाग्यशाली अंक है 9। मेष राशि वालों, वृष राशि वालों के लिए है चंद्र राशि के अनुसार 20 मई। पॉजिटिव क्या है आइए जान लेते हैं। घर में बदलाव संबंधी को योजनाएं बनेंगी और किसी नतीजे पर भी पहुंचेंगे। अरे वाह, धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुझान बढ़ेगा। आज आपका कोई रुका हुआ काम भी सफलतापूर्वक हो सकता है। सुकून पाने के लिए किसी धार्मिक स्थल पर आप जरूर जाएं। नेगेटिव क्या है भाई आज के लिए कि प्रैक्टिकल बने और अपने निर्णय सर्वोपरि रखें। अपनी भावनाओं को उदारता जैसे स्वभाव पर काबू रखें। कुछ लोग आपकी इन बातों का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। आपकी कोई खास अथवा मूल्यवान वस्तु न मिलने पर टेंशन भी हो सकती है। लव लाइफ बता रहा है कि घर में शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल रहने वाला है, प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। स्वास्थ्य बता रहा है कि वर्तमान मौसम का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, जरा सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। भाग्यशाली रंग है आसमानी, भाग्यशाली अंक है 1। वृष राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लोग देखते हैं आज क्या निकला है उनके लिए पॉजिटिव। व्यवस्थित दिनचर्या होगी, पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या से राहत मिलेगी और आप अपने कार्यों पर फोकस कर पाएंगे। साथ ही आपकी किसी गतिविधि और काबिलियत की सराहना होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा। निगेटिव क्या है कि बच्चों को किसी समस्या का हल मिलने से आज समस्या को हल करने में अपना सहयोग देना जरूरी है। अचानक ही किसी संबंधी के घर आने से आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है, मिथुन राशि वालों के लिए है ये। एंड इस समय की गई यात्रा कोई बड़ा लाभ भी नहीं आपको मिल सकता है, इसलिए यात्रा ना करें। लव लाइफ बता रहा है कि वैवाहिक जीवन व्यवस्थित होगा। प्रेमी प्रेमिका के बीच चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। आपसी संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। स्वास्थ्य बता रहा है कि आपकी लापरवाही की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कुछ समय योगा और व्यायाम के लिए जरूर निकालें। भाग्यशाली रंग है गुलाबी, एंड भाग्यशाली अंक है 6। मिथुन राशि, कर्क राशि वालों के लिए है आइए जानते हैं कैसा दिन है। कर्क राशि वालों के लिए पॉजिटिव है कि घर के किसी मुद्दे को लेकर परिवार में विचार विमर्श होगा और इसके बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। किसी नजदीकी संबंधी से मुलाकात होने से थकान और व्यवस्था भरी जिंदगी से राहत मिलेगी। संतान के विवाह के लिए कोई अच्छा रिश्ता आना संभव हो सकता है। निगेटिव है कि अचानक ही कोई ऐसा खर्च सामने आ जाएगा जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, तो छोटी मोटी बातों पर नाराज होने के बजाय उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करें। लव लाइफ बता रहा है कि घर में सुख शांति और अनुशासन पूर्ण माहौल रहने वाला है, गलत प्रेम संबंध में ना पड़े। स्वास्थ्य बता रहा है कि कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या दोबारा उभर सकती है, लापरवाही ना करें, अपनी जांच करवाएं और उचित इलाज लें। भाग्यशाली रंग है पीला एंड भाग्यशाली अंक है 5 कर्क राशि वालों। तो नेक्स्ट राशि हमारी आती है सिंह। लेकिन प्रीति जी ने गाना लिखा था मेरा गीत अमर कर दो, तो मुझे लग रहा है कि मैं इनके गीत को अमर कर दूं, वरना ये सुन सहेली में नहीं आएंगी, मुझे पता है, और ये क्या ही बता दूं। चलिए तो इनके गीत को कर देते हैं अमर, क्योंकि होठों से छू लो तुम और मेरा गीत अमर कर दो। ये प्यारा सा गाना जो है हम इनको सुना देते हैं और उसके बाद आते हैं बाकी बची राशियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ राशिफल में।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आदि समता। तो अभी मैं एक बर्थडे सॉन्ग चलाऊंगी, लेकिन कुछ राशियों के बाद। एंड मीनू जी एंड अनुष्का जी, आपके दोनों बच्चों को, यानी मीनू जी आपके बेटे को एंड अनुष्का जी आपकी गुड़िया को हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। दोनों बच्चे जिए हजारों साल, साल के दिन हो लाख करोड़ों साल, मतलब खुश रहें, आबाद रहें और एक सक्सेसफुल इंसान बने, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। ये मेरी तरफ से विशेज हैं। तो चलिए मैं आपके लिए एक सॉन्ग ज़रूर प्ले करूँगी, लेकिन अभी टाइम जो है वो भागा जा रहा है, तो हम पहले कुछ राशियों के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट राशि आती है सिंह राशि वालों के लिए है। आज का दिन देखते हैं क्या है। तो पॉजिटिव है कि अगर कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो आज किसी सरकारी सेवारत व्यक्ति की मदद से आज वो पूरा होगा। दोस्तों के साथ किसी खास योजना पर चर्चा होगी। आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से आपको शांति और सुकून मिलेगा। नेगेटिव है कि कुछ समस्याएं रहेंगी और संतान के करियर संबंधी कोई रुकावट आने से आपका मन उदास रहने वाला है। इस समय बच्चे का मनोबल बढ़ाएं रखना जरूरी है। ध्यान रखें कि आप अपनी किसी जिद की वजह से अपना नुकसान कर सकते हैं। लव लाइफ बता रहा है कि परिवार में सुख शांति रहेगी और घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा खुशनुमा माहौल रहने वाला है। स्वास्थ्य बता रहा है कि वर्तमान मौसम की वजह से कुछ सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है। बढ़ती गर्मी में अपना बचाव रखें। भाग्यशाली रंग है नीला, भाग्यशाली अंक है 4। सिंह राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन है। देखते हैं क्या कि आज आपकी किसी प्रयास को सफलता मिलने वाली और मन चाहे तरीके से काम भी होगा। राजनीतिक और सामाजिक दायरा बढ़ेगा। ये संपर्क सूत्र आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। और निगेटिव है कि इस समय यात्रा करना नुकसानदायक हो सकता है। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दे, वरना आपके हाथ से काम निकल सकता है। लव लाइफ बता रहा है कि पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य घर में खुशनुमा माहौल बनाकर रखेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में उलझने की बजाय कार्य पर ध्यान दें। मौसमी बदलाव की वजह से खांसी जुखाम हो सकता है। व्यर्थ के परेशानी हो सकती है। अपना उचित इलाज लें और आराम भी अति आवश्यक है। भाग्यशाली रंग है पीला, इन भाग्यशाली अंक है 7। कन्या राशि वालों, सिंह राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए है, सॉरी तुला राशि वालों के लिए अभी है कि अनुकूल ग्रह स्थिति है, लेकिन सफलता हासिल करनी है तो खुद की क्षमताओं पर भरोसा रखना होगा। किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए लाभदायक साबित होगी। घर के रख रखाव संबंधी कार्यों में सुखद समय व्यतीत होगा। नेगेटिव है कि युवाओं को अपने भविष्य को लेकर कोई चिंता रह सकती है, लेकिन अपने ऊपर नकारात्मकता हावी न होने दें। किसी अनुभवी की मदद से समाधान मिलने का प्रयास हो सकता है। लव लाइफ बता रहा है कि परिवार के प्रति अपने दायित्व को समझें और पारिवारिक गतिविधियों में अपना योगदान दें। गलत प्रेम प्रसंग से दूर रहें। स्वास्थ्य बता रहा है कि स्वास्थ्य आपका उत्तम रहने वाला है। किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यवस्थित दिनचर्या बनाए रखें। भाग्यशाली रंग है केसरिया, इन भाग्यशाली अंक है 3। तुला राशि वालों, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए अच्छी ग्रह स्थिति बनी हुई है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, वार्तालाप हो सकती है। अपने योजनाएं क्रियान्वित ढंग से आप करेंगे। निगेटिव है कि किसी भी परिस्थिति में मनोबल बनाए रखने से आप निश्चिंत ही समाधान ढूंढ लेंगे। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से मन में कुछ अनहोनी होने की आशंका का भय भी होने वाला है। लव लाइफ बता रहा है कि पति पत्नी के संबंध मधुर होंगे। घर के सदस्यों के बीच आपकी आपसी तालमेल उचित बना रहेगा। प्रेमी युगल के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। स्वास्थ्य बता रहा है कि स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। गैस और एसिडिटी की समस्या से बचने के लिए पेट को संतुलित रखना जरूरी है। भाग्यशाली रंग है आसमानी, एंड भाग्यशाली अंक है 5। वृश्चिक राशि वालों, तो आइए अभी जिनका है बर्थडे, यानी दो बच्चों का है बर्थडे, तो उनको विश करते हुए एक सॉन्ग सुना देते हैं और उसके बाद में बाकी बची राशियों के बारे में हम जानेंगे। तो एक छोटू सा म्यूजिकल ब्रेक है, ज़्यादा बड़ा म्यूजिकल ब्रेक नहीं लेंगे। आइए सुनते हैं इस प्यारा सा बर्थडे हम जो कि दो बच्चों के लिए।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज क्षमता। तो आइए बाकी बची चार राशियों के बारे में जान लेते हैं। एंड चैट बॉक्स में तो धूमधाम से थैंक यू सो मच मीनू जी एंड अनुष्का जी, आपने हमें बताया कि आपके बच्चों का बर्थडे है। तो चलिए शुरू करते हैं। धनु मीन को धनु धनु धनु धनु धनु मकर कुंभ और मीन। तो सबसे पहले धनु शुरू करते हैं। पॉजिटिव क्या है कि धनु राशि के ग्रह स्थिति बहुत ही अच्छी सी अनुकूल है एंड आप अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित सोच के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। एंड आप अपने आपकी भावुकता की बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण तरक्की में सहायक रहने वाला है। ससुराल पक्ष के साथ संबंध अच्छे और जो गिले शिकवे थे वो दूर होंगे। युवा निगेटिव बता रहा है कि युवा अपने करियर पर फोकस रखें, कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहेंगी लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। सकारात्मक बने रहें। लव लाइफ बता रहा है कि पति पत्नी के बीच मधुर संबंध रहने वाले हैं और पारिवारिक वातावरण भी आपका खुशनुमा रहने वाला है। ठीक है, और सकारात्मकता बनाए रखें। स्वास्थ्य बता रहा है कि स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है, सिर्फ वर्तमान मौसम की वजह से कुछ आलस जैसी परिस्थिति बन रही है। भाग्यशाली रंग है हरा एंड भाग्यशाली अंक है 2। धनुराशि वालों, मकर राशि वालों के लिए है कि दिन भर सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहेगी। आपका प्रबंधन सराहनीय होगा, सिर्फ भावुकता की बजाय अपने बुद्धि बल और कार्यक्षमता का ज्यादा उपयोग करें। अनुभवी लोगों के साथ समय व्यतीत करने से आप अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करेंगे। निगेटिव क्या है, हालांकि कामकाज का तनाव बढ़ सकता है, घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन सलाह को नजरअंदाज न करें। लव लाइफ बता रहा है कि पति पत्नी आपसी तालमेल से घर की व्यवस्थाओं को उचित बनाकर रखने में सफल रहेंगे। मनोरंजन प्रयोग प्रोग्राम भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य बता रहा है कि गैस बढ़ाने वाली चीजों का सेवन से परहेज करें और खास तौर पर महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। भाग्यशाली रंग है बादामी, भाग्यशाली अंक है 4। मकर राशि वालों, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन है कि कुंभ राशि के लिए ग्रह स्थिति सकारात्मक है। अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर वर्तमान को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करें। पारिवारिक लोगों की छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखें, घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। निगेटिव है कि तनाव की स्थिति में धैर्य रखना जरूरी है, पड़ोसियों के साथ किसी व्यक्तिगत मामले को लेकर कहासुनी हो सकती है। संबंधों में खटास न आने दें, अगर स्थान परिवर्तन संबंधी कोई योजना है तो अभी उस पर अधिक गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। लव लाइफ बता रहा है कि पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य बना रहेगा, पुराने मित्रों से मुलाकात, खुशनुमा यादें बना ताजा रहेंगी। स्वास्थ्य बता रहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, खांसी जुखाम बदन दर्द जैसी हो सकता है। भाग्यशाली रंग है पीला एंड भाग्यशाली अंक है 1। कुंभ राशि वालों, लास्ट बट नॉट लीस्ट मीन राशि वालों के लिए आइए जानते हैं क्या है। ज्यादा भावुकता की वजह से अपना नुकसान कर बैठेंगे, इसीलिए कोई भी निर्णय दिल की अपेक्षा दिमाग से लें तो अच्छा होगा। हालांकि आपकी कार्यक्षमता के दम पर महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होने वाले हैं। निगेटिव बता रहा है कि दूसरों की गलतफहमियों पर ज्यादा ध्यान न दें, गतिविधियों को अनुसरण करने की बजाय खुद की क्षमता पर भरोसा रखें एंड अपनी इन कमियों में सुधार करें। लव लाइफ बता रहा है कि पारिवारिक मामलों को शांति से निपटाएं क्योंकि वाद विवाद से माहौल और बिगड़ेगा। प्रेम संबंध, गलत प्रेम संबंध में समय नष्ट ना करें। स्वास्थ्य बता रहा है कि स्वास्थ्य के मामले में ज्यादा लापरवाही ना करें, छोटी सी भी समस्या होने पर तुरंत इलाज लें। भाग्यशाली रंग है लाल एंड भाग्यशाली अंक है 4। तो भाई ये थी आज की राशिफल और अब हम सुनाएंगे आपको कुछ सॉन्ग। हमारा सॉन्ग नहीं हुआ तो नागेश्वर जी आपने सॉन्ग लिखा कहाँ? आपने सॉन्ग लिखा ही नहीं। ठीक है, अगर आप सॉन्ग लिखते तो मैं आपको सॉन्ग सुनाती। तो चलिए आप सुनाते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग और सॉन्ग के उस पार आएंगे हम आपसे टाटा बाय बाय करने के लिए। तब तक इस पहले से सॉन्ग को सुने।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या

0: मतलब हम जो पसीना बहा रहे हैं वो भी किसी मीठे फल के लिए ही है, तो फिर हमें भी आम का हिस्सा मिलना ही चाहिए।
1: बिल्कुल मिलेगा, और सिर्फ आम ही क्यों, ये गर्मी अपने साथ कितनी खुशियाँ लेकर आती है। जरा सोचो, गांव की गलियों में लगे मेले, शादी विवाह की रौनक, ढोलक की थाप और वो छत पर मटकियों का ठंडा ठंडा पानी।
2: अरे हाँ, और याद है ना वो बचपन के दिन, दोपहर की गर्मी में जब सब सो जाते थे तो हम चुपके से आम के पेड़ के नीचे जाकर कच्चे आमों को तोड़ लाते थे और फिर नमक मिर्च लगाकर खाते थे। वाह, क्या स्वाद होता था।
3: हाँ, और फिर घर पे आकर के डांट भी पड़ती थी, लेकिन वो मजा ही कुछ और था। और गर्मी की रातों में छत पर चारपाई बिछाकर खुले आसमान के नीचे सोना, ठंडी हवाओं का झोंका और तारों की छाओं को देखना।
0: सही कहा आपने, और वो पंखे की धीमी धीमी आवाज और दूर कहीं से आती कोयल की कुकू
4: कू कू,
0: लगता था जैसे कोई लोरी सुना रहा हो।
1: और गर्मी में जो वो लोकगीत गाए जाते हैं उनकी तो बात ही अलग है, उसमें इस मौसम की पूरी कहानी छुपी होती है। कहीं विरह, कहीं मिलन, कहीं आम के बाग, तो कहीं पनघट की बातें।
2: बिल्कुल, यही तो है हमारे गांव की असली पहचान, हर मौसम के साथ जुड़े हुए अपने गीत, अपनी परंपराएं और अपनी खुशियां।
3: तो श्रोताओं, आज हम आपको ले चलेंगे इसी ग्रीष्म ऋतु की सैर पर, जहां होगी धूप की तपिश, आम की मिठास और लोक गीतों की सुरीली छाओं,
0: और साथ ही बताएंगे कुछ ऐसे नुस्खे और किस्से जो इस गर्मी को थोड़ा सा आसान और भी प्यारा बना देंगे।
2: पुराने लोग एक बात बड़े प्यार से कहते थे, जो जेठ में न तपे वो कैसा किसान। इसलिए एक कहावत में पूरे जीवन की सीख छुपी हुई होती है, मेहनत, धैर्य और प्रकृति के साथ तालमेल, यही तो है असली जीवन।
0: हाँ, सच में दीदी, पहले के लोग कितनी गहरी बातें इतनी सादगी से कह जाते थे, हम तो जरा सी धूप में निकले और तुरंत छांव ढूंढने लगते हैं।
3: अरे किरण दी, ये जेठ की धूप ही तो है जो खेतों को तैयार करती है। किसान इसी समय अपनी अगली फसल के सपने बोता है, मिट्टी को पलटता है, उसे तपने देता है ताकि जो बीज पड़े वो और मजबूत हो।
1: और यही वजह है कि हमारे लोक गीतों में भी सूरज की इतनी महिमा गाई गई है। सूरज सिर्फ गर्मी नहीं देता, वो जीवन देता है, ऊर्जा देता है और उम्मीद भी।
2: बिल्कुल सही बात, हमारे पूर्वज सूर्य देवता को प्रणाम करके ही दिन की शुरुआत करते थे, उनके लिए ये गर्मी एक आशीर्वाद था, कोई परेशानी नहीं।
0: तो फिर दीदी, क्यों ना आज हम भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाएं?
2: तो बिल्कुल चलिए, ग्रीष्म ऋतु का स्वागत करते हैं एक ऐसी ही पारंपरिक लोकगीत से, जो सिर्फ सूरज देवता की स्तुति करता है बल्कि खेतों की शुरुआत, उम्मीद और नए जीवन का भी संदेश देता है।
3: ये गीत आपको ले जाएगा उस दौर में जब सुबह की पहली किरण के साथ किसान अपने खेतों की ओर निकल पड़ता है,
1: और जब पूरे गांव में एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग भर जाती थी।
2: तो श्रोताओं तैयार हो जाइए, पेश है हमारा पहला संगीत विराम।

0: ये गाना सुनकर तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पर इस तेज धूप में बाहर निकलने का मन ही नहीं करता।
1: अब तो आदतें भी बदल गई हैं। आजकल गांव में भी तो देखो हर घर में कूलर चल रहा होता है, और जिनके पास पैसे इत्यादि की सुविधाएं हैं वो एसी भी लगा रहे हैं।
2: बिल्कुल दीदी, पहले जहां लोग पेड़ की छांव और मिट्टी के घरों की ठंडक में राहत पाते थे, अब पक्के मकान कूलर और एसी आम होते जा रहे हैं।
3: ये बदलाव भी जरूरी है, खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। लेकिन इसके साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमने प्रकृति से थोड़ी दूरी बना ली है।
0: मतलब अब हम ठंडी हवा मशीन से ले रहे हैं, पेड़ों से नहीं।
3: बिल्कुल। अरे किरण दी, याद है आपको वो दिन जब हम दोपहर की धूप में भी नंगे पैर आम के बगीचे में दौड़ते थे?
0: सच में इतनी गर्म जमीन पर?
3: अरे हाँ, हमें तो गर्मी का एहसास भी नहीं होता था, बस एक ही धुन लगी रहती थी कि कौन सबसे ज्यादा टिकोरे तोड़ेगा।
2: और फिर उन कच्ची अमियों को नमक लगाकर, मिर्च लगाकर खाना, उफ मुंह में तो पानी आ गया अभी भी।
1: और वो चोरी छुपे आम तोड़ना, फिर पेड़ के नीचे बैठकर सब दोस्तों के साथ बांटकर खाना, अरे वाह वो स्वाद, वो मस्ती आज के एसी कमरों में कहाँ।
0: सही कह रही हैं आप लोग, अब तो सब कुछ फ्रिज में ही मिलता है, लेकिन वो मजा, वो बात तो कहीं खो ही गई है।
3: और सिर्फ आम ही क्यों, गर्मी में मिलने वाला हर स्वाद खास होता था, जैसे गन्ने का रस
2: और सत्तू का शरबत। अरे वो तो शरीर को ताकत देता था और गर्मी को दूर भगाता था।
1: और हाँ, शाम को जब छतों पर पानी का छिड़काव होता था तो जो सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू उठती थी वो दिल को कितना सुकून देती थी।
0: और फिर सब लोग छत पर इकट्ठा होकर बातें करते थे, हंसी मजाक, किस्से, कहानियाँ, क्या थे वो दिन।
3: और दूर कहीं से आती हुई कोयल की आवाज जैसे गर्मी की पहचान ही बन गई हो।
2: और ये सब छोटी छोटी बातें ही तो हमारे बचपन को इतना खूबसूरत बनाती हैं।
1: बिल्कुल, और यही यादें हमारे लोकगीतों में भी बसती हैं। आम के पेड़, कोयल की कूक और दिल की भावनाएं, सब कुछ गीतों में उतर आता है।
0: तो फिर दीदी, क्यों ना हम इन सभी यादों को एक गीत के साथ फिर से जी लें?
1: बहुत बढ़िया सुझाव। तो श्रोताओं, अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए आम के बागों की ठंडी ठंडी छांव, कोयल की मीठी आवाज
3: और बचपन की वही शरारतें, वही मुस्कान।
2: तो अब पेश है अगला सुरीला लोकगीत।

0: इसीलिए जरूरी है कि हम दोनों का संतुलन बनाए रखें, सुविधाओं का भी और प्रकृति से जुड़ाव का भी।
1: और इसी बात पर क्यों ना हम अपने श्रोताओं के लिए एक छोटा सा संदेश भी दे दें। कूलर एसी की ठंडी छाया, पर प्रकृति से न टूटे माया, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, धरती माँ का मान बढ़ाएं।
2: कितना प्यारा संदेश है, सीधा दिल को छू गया।
3: अच्छा, अब तो पक्का है, थोड़ा कूलर भी और थोड़ा पेड़ की छांव भी।
0: बिल्कुल, यही संतुलन ही हमें सच्चा सुख देगा, सुविधाओं के साथ प्रकृति का साथ।
1: मई का महीना यानी शादियों का सीजन, चाहे धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन इस मौसम की असली रौनक तो शादी ब्याह से ही आती है, और खासकर हमारे गांव की शादियां। अरे बधाई, वो हंसी मजाक भरी गालियां, इनके

0: वो ढोलक की थाप ठक ठक ठक जैसे ही ढोलक बजती है कोई भी बैठा नहीं रह सकता। छोटी बच्ची हो या दादी, सब थिरकने लगते हैं। क्यों जया?
1: और वो रात भर चलने वाला प्रोग्राम, गर्मी की रातें वैसे भी लंबी लगती हैं और जब शादी हो तो फिर तो रात कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता।
2: अरे हाँ, और सुबह होते होते भी कोई सोना नहीं चाहता था, बस यही डायलॉग, अभी तो मजा आ रहा है, थोड़ी देर और सही।
3: और गर्मी की शादी में कुछ खास रस्में भी होती हैं, जैसे हल्दी की रस्म, जहाँ दुल्हन को हल्दी लगाते लगाते पूरा घर पीला हो जाता है।
0: हाँ सही कह रही हो, और कई बार तो दुल्हन से ज्यादा लोग खुद पर ही हल्दी लगा लेते हैं।
1: हाँ, और कुछ लोग तो ऐसे लगाते हैं जैसे हल्दी नहीं फेस पैक हो, आज तो स्किन पूरी ग्लो करेगी।
2: और मेहंदी की रात, अरे वो सब तो बहुत खास होता है, हाथों में सुंदर डिजाइन और साथ में गाने।
3: और एक और मजेदार रस्म, जूता छुपाई। जब दूल्हा मंडप में बैठा होता है तब दुल्हन की सहेलियां चुपके से उसका जूता गायब कर देती हैं।
0: हाँ हाँ, और फिर शुरू होता है असली सौदा।
1: अरे हाँ किरण दी, और अगर दूल्हा ज्यादा मोल भाव करे तो जूता और भी महंगा हो जाता है।
2: और खाना, अरे गर्मी की शादी का खाना तो अपने आप में त्योहार होता है। ठंडी ठंडी लस्सी, खीरा, रायता, पुदीना चटनी।
0: और सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है आइसक्रीम काउंटर, जहां बच्चे लाइन में ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे जैसे क्या राशन बट रहा हो।
3: और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, एक हाथ में कुल्फी, दूसरे में आइसक्रीम और तीसरी बार लाइन में फिर से खड़े।
1: और कहते हैं कि गर्मी बहुत है इसलिए खा रहे हैं।
2: और जब रात गहराती है तो छत पर या आंगन में चारपाई लग जाती है। शादी वाले घर में तो हर एक कोना भरा सा होता है, कोई इधर सो रहा है तो कोई उधर।
0: और हाँ, अगर जगह ना मिले तो कोई भी कह देता है, अरे भैया थोड़ा सा सरक जाओ, हम भी रिश्तेदार ही हैं। और दूसरा कहता है, भाई अब और सरकेंगे तो नीचे ही गिर जाएंगे।
2: तो दोस्तों, इतनी हंसी मजाक और रौनक के बीच,
0: और क्यों ना अब हम एक ऐसा गीत सुने जिसमें शादी की वही मस्ती और गर्मी की वही तपिश दोनों हो,
1: और जिसमें ढोलक की थाप भी हो और हंसी की झंकार भी हो।
3: तो श्रोताओं तैयार हो जाइए एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने गर्मी की मस्ती, आम के बाग और शादियों की रौनक की बातें की, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जिसे हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये मौसम जितना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा हमारे पशु पक्षियों और प्रकृति के लिए कठिन होता है।
1: सही कहा दीदी, हम तो घर में पंखा, कूलर या एसी चला लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, लेकिन ये बेचारे पक्षी, गाय, भैंस, कुत्ते, ये कहाँ जाएं?
2: अरे आपको पता है, जब सुबह सुबह मैं छत पर जाती हूँ तो देखती हूँ कि चिड़िया इधर उधर पानी की तलाश में भटकती रहती है। कई बार तो उनका हाल देख करके मेरा मन भर आता है।
3: बिल्कुल दीदी, पहले के समय में लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। गांव में कुओं की पूजा होती थी, लोग प्याऊ लगवाते थे जहां राह चलते लोग और जानवर भी पानी पी सकें।
0: और हाँ, वो सिर्फ परंपरा ही नहीं थी, वो एक जिम्मेदारी थी, एक संस्कार था, प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति।
1: हाँ दीदी, पर ये प्याऊ क्या होता है? मैंने तो नाम सुना है पर ठीक से पता भी नहीं है।
3: देखो, प्याऊ का मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ मुफ्त में ठंडा पानी रखा जाता था। मिट्टी के घड़े, मटके होते थे, ऊपर छांव रहती थी और कोई भी, चाहे इंसान हो या जानवर, वहाँ आकर पानी पी सकता था।
2: और खास बात ये थी कि लोग इसे सेवा मानते थे, कोई दिखावा नहीं। गर्मी शुरू होते ही हर गली, हर चौराहे पर ऐसे प्याऊ दिखाई देते थे।
0: और आज हम कितनी बार सोचते हैं कि हमारे घर के बाहर भी कोई प्यासा हो सकता है,
1: और सच कहूँ तो बहुत कम। हम तो अपने में ही व्यस्त हो गए हैं।
3: लेकिन मौसम हमें एक बहुत बड़ी सी सीख देता है, पानी की एक एक बूंद की क्या कीमत होती है।
2: सोचिए, अगर एक दिन भी पानी न मिले तो क्या हालत हो जाएगी। प्यास सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी बेचैन कर देती है।
0: और इसीलिए हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना होगा, खासकर उन बेजुबान जीवों के लिए जो बोल नहीं सकते।
1: पर दीदी, अगर हम कुछ ना करना चाहें, या दीदी अगर हम कुछ करना ही चाहें, तो छोटे छोटे स्तर पर क्या कर सकते हैं, आप मुझे समझाओ।
3: बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे अपने घर की छत या बालकनी में एक छोटा सा पानी का बर्तन रखें, उसमें रोज ताज़ा पानी भरें ताकि चिड़िया और पक्षी आकर पानी पी सकें।
2: और सिर्फ पानी ही नहीं, थोड़ा सा दाना और अनाज भी रख सकते हैं, फिर देखिए चिड़िया धीरे धीरे कैसे आपकी दोस्त बन जाएगी।
0: और अगर आपके घर के बाहर जगह है तो एक मटका या घड़ा रख दीजिए, जो राह चलते किसी व्यक्ति या मजदूर के लिए वो पानी किसी वरदान से कम नहीं होगा।
1: अरे वाह, ये तो बहुत आसान है, हम सब मिलकर कर सकते हैं ये।
3: और एक जरूरी बात, पानी की बर्बादी को रोकना,
2: क्योंकि जो पानी आज हम बर्बाद करेंगे वही कल हमारे लिए कमी भी बन सकता है।
0: तो याद रखिए दोस्तों, जब एक प्यासा पंछी आपके रखे हुए पानी से अपनी प्यास बुझाता है तो वो सिर्फ उसका शरीर ही नहीं, आपका मन भी तृप्त हो जाता है।
1: और शायद वही असली खुशी है जो किसी ठंडी आइसक्रीम से भी ज्यादा सुकून देती है।
3: बिल्कुल, यही तो हमारे गांव की संस्कृति है, साझा करना, सेवा करना और प्रकृति के साथ जीना।
2: और यही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
0: तो दोस्तों, इस गर्मी में हम अपने ही नहीं बल्कि अपने आसपास के हर जीवों का ख्याल रखें। यही है असली इंसानियत और यही है हमारी पुरानी परंपरा।
1: और इसी भावना को दिल में बसाते हुए
3: क्यों ना सुने एक ऐसा गीत जो प्रकृति, पानी, जीवन के इस सुंदर रिश्ते को दर्शाता है।
0: तो श्रोताओं, पेश है अगला संगीत विराम।

0: हाँ सही कहा दीदी, जैसे शाम सुहानी होती है वैसे गर्मी की सुबह भी कितनी प्यारी होती है ना। सुबह सुबह जब सूरज हल्का हल्का निकलता है और चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट, कितना अच्छा लगता है।
1: हाँ वो चू चू चिर चिर की आवाज, ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव एक साथ जाग रहा हो। कोयल की कू कू और तोतों की उड़ान, कितनी जीवंत होती है वो सुबह।
2: और सुबह की ठंडी हवा, पेड़ों के पत्तियों का हिलना, उस समय अगर कोई थोड़ा सा भी ध्यान लगाकर बैठे ना तो मन अपने आप शांत हो जाता है।
1: हाँ और गर्मी में एक और बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। और आपको पता है इस मौसम में सांप और अन्य जीव जंतु भी अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं क्योंकि जमीन में गर्मी बहुत हो जाती है ना।
2: बिल्कुल, गांव में खासकर ये खतरा ज्यादा होता है। कई बार लोग अंधेरे में बिना देखे बाहर निकल जाते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं।
3: इसीलिए सभी श्रोताओं से निवेदन है कि रात में कभी भी बिना रोशनी टॉर्च या लैंप के बगैर बाहर ना निकलें। खेतों, झाड़ियों और अंधेरी जगह में सावधानी से चलें। बच्चों को भी इस बारे में जरूर बताएं।
0: गीता दी, अगर कभी किसी को सांप काट ले तो क्या करना चाहिए?
3: बहुत जरूरी सवाल है, कृपया ध्यान से सुनिए। घबराएं नहीं, मरीज को शांत रखिए। काटे हुए स्थान को ज्यादा हिलने ना दें। तुरंत किसी नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। कोई घरेलू झाड़ फूक में समय बर्बाद बिल्कुल ना करें।
2: और याद रखें, समय पर इलाज ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। लू, हीट स्ट्रोक से बचाओ।
0: हाँ हाँ, कई बार लोग धूप में निकलते हैं और उन्हें चक्कर आने लगते हैं।
3: इसलिए कुछ जरूरी सावधानियाँ। दोपहर 12 से 4 बजे तक धूप में ना निकले। सिर को ढक कर रखें गमछा या दुपट्टे से। हल्के और ढीले वस्त्र पहने। बार बार पानी पीते रहिए।
2: और हमारे देसी नुस्खे तो हैं ही, आम का पन्ना लू बचाने में बहुत फायदेमंद, सत्तू का शरबत ठंडक और ताकत दोनों देता है, छाछ और नींबू पानी शरीर को ठंडा रखते हैं।
0: मतलब इलाज भी स्वादिष्ट।
1: हाँ, गर्मी में आम खाना भी और पना पीना भी दोनों जरूरी।
0: हाँ और अब देखिए ना, दिन भर की इतनी गर्मी के बाद ये शाम कितनी राहत देती है।
3: हाँ, जैसे प्रकृति खुद हमसे कह रही हो अब आराम करो।
2: और छत पर पानी डाला जाता है, वहाँ से जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, दिल को छू जाती है।
1: और फिर चारपाई, तारे, ठंडी हवा, यही तो है असली सुख।
0: और अब देखिए ना दीदी, धूप भी ढल चुकी है और ये जो हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है ना, कितना सुकून देती है। दिन भर की तपिश जैसे धीरे धीरे कहीं खो सी जाती है।
3: बिल्कुल किरण, यही तो गर्मी की खास बात है। दिन भले ही कितना गर्म हो और थकाने वाला क्यों ना हो, लेकिन शाम अपने साथ एक अजीब सी शांति, एक ठहराव लेकर आती है।
1: और वो गांव की शाम, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। जब सूरज ढलता है और आसमान हल्का नारंगी और गुलाबी रंग में रंग जाता है, लगता है जैसे प्रकृति खुद से कोई चित्रकारी बना रही हो।
2: और जैसे ही सूरज छिपता है, गांव की जिंदगी फिर से जाग उठती है। कहीं बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं और औरतें आंगन में बैठकर बातें करती हैं, और कहीं बुजुर्ग अपनी चारपाई पर बैठकर दिन भर के किस्से सुनाते हैं।
0: हाँ, और वो छत पर पानी का छिड़काव, जैसे ही पानी गिरता है मिट्टी की जो सौंधी खुशबू उठती है ना, उफ, मन करता है बस वहीं बैठ जाऊं और उस खुशबू को महसूस करती रहूं।
3: और फिर आंगन में या छत पे चारपाइयां बिछ जाती हैं। फिर जैसे ही थकान के बाद उन चारपाइयों पे लेटो और ऊपर नजर उठाकर आसमान को देखो तो खूब सारे तारे देखते ही और नजारे देखते ही अपना बचपन याद आ जाता है। कोई भी पुरानी कहानी और कभी भी बस एक सुकून भरी खामोशी।
4: और उस खामोशी में भी इतनी आवाजें होती हैं, झिंगरों की झनकार दूर कहीं से आती है, किसी लोकगीत की धुन और बीच बीच में ठंडी हवा का झोंका।
0: हाँ सही कहा, और कभी कभी तो मच्छरों की आवाज भी।
3: और यही तो है हमारे गांव की असली खूबसूरती, सादगी, शांति और अपनेपन का एहसास।
1: सच कहा दीदी, अगर हम ध्यान से देखें तो हर मौसम कुछ न कुछ सिखाता है, और गर्मी हमें धैर्य, सहनशीलता और जीवन में मीठे पलों की कद्र करना सिखाती है।
2: और यही वजह है कि हमारे लोकगीतों में भी गर्मी को सिर्फ कठिनाई नहीं बल्कि एक उत्साह के रूप में देखा गया है।
3: तो चलिए दोस्तों, आज के इस सुहाने सफर को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। आज हमने जाना और महसूस किया और जिया कि गर्मी सिर्फ पसीना और थकान ही नहीं है, ये है आम की मिठास, टिकोरों की खटास, शादियों की रौनक और अपनों के साथ बिताए गए अनमोल पल।
0: और आज से मैं ये तय कर चुकी हूँ कि अब मैं गर्मी की शिकायत कम करूँगी और आम बहुत ज्यादा खाऊंगी।
1: बस ध्यान रखिएगा कि ज्यादा आम खाकर पेट न खराब हो जाए।
2: और पानी पीना मत भूलना, क्योंकि इस मौसम में सबसे ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य और संतुलन।
3: बिल्कुल, तो आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है, खूब पानी पिए, धूप से बचें और अपने आसपास के पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें।
0: और अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताइए, क्योंकि यही पल बाद में यादें बन जाती हैं।
1: और हम फिर लौटेंगे कुछ और कहानियों, कुछ और गीतों और ढेर सारी यादों के साथ।
2: तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें और सुनते रहें 89.6 FM पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम गांव की गूंज।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई वक्त हो चुका है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा, यानी आप बज चुके हैं 12 और वक्त हो गया है आपके अपने और हमारे शो स्वास्थ्य संगिनी का। जी हाँ, स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि आज है दिन बुधवार और बुधवार के दिन आते हैं हम लेकर के आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी, जिसमें होती है बात आपके स्वास्थ्य की। ठीक उसी तरीके से आज भी मैं लेकर आई हूँ कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें, लेकिन उनकी जो बोल नहीं पाते, पेट्स। भाई, छोटे नवजात शिशु और साथ ही साथ उनके सेहत की बातें जो होती है उन नवजात शिशु की माएँ। देखिए, जो माँ होती है वो उसकी कद्र कब तक होती है? देखिए, जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता तब तक सब लोग बहुत कहते हैं कि अरे कुछ खाओ पियो, अपना ध्यान रखो। लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो माँ का जो अटेंशन होता है ना, वो शिफ्ट होके बच्चे तक चला जाता है और सभी के सब जो है वो बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं कि इसको खिलाओ, इसको पिलाओ, मोटा बनाओ, तंदुरुस्त बनाओ। लेकिन भाई, सेहत का क्या? दोनों की सेहत का आखिर क्या होगा? अब देखिए, जहाँ हमारे भारत में मोटापा को हेल्दी रहने का एक साइन बताया जाता है, वहीं मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में लगभग 75% से भी ज़्यादा बीमारी मोटापे की वजह से होती है। लेकिन आज भी हमारे भारत में स्वस्थ रहने का एक सिंबल मोटापा है, यानी कि अगर आप मोटे हैं तो इट मीन्स कि आप हेल्दी है। लेकिन भाई, आज हम बात मोटापे पे नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं नवजात शिशु की देखभाल, जो कि गर्मी के लिए है, और साथ ही साथ जो नई नवेली माँ है उनके स्वास्थ्य की बात। तो चलिए आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। लेकिन आपसे भी मैं बताना चाहती हूँ कि भाई, जल्दी से आइए हमारे चैट बॉक्स में और ये बताइए कि गर्मी से निपटने के लिए आप ऐसा क्या करते हैं जो देसी हो, यानी कि हमारी दादी नानी ने हमें दिया हो और साथ ही साथ वो इफ़ेक्टिव भी हो। चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस प्रोग्राम को। देखिए, जब घर में कोई नन्ही सी जान आती है तो पूरा घर खुशियों से भर जाता है, लेकिन साथ ही आती है जिम्मेदारियाँ, और जब गर्मी का मौसम हो तो ये जिम्मेदारियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हम बड़े तो गर्मी को सह लेते हैं, पानी पी लेते हैं, एसी में बैठ जाते हैं, लेकिन नवजात बच्चा खुद कुछ नहीं कर पाता, वो पूरी तरीके से हम पर निर्भर करता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही जानकारी रखें, सही से देखभाल करें। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि गर्मियों में नवजात की देखभाल आखिर करनी कैसे है और इससे जुड़े सभी ज़रूरी पहलू। देखिए, पहला पहलू तो ये है कि कमरे का तापमान और माहौल कैसा होना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात करते हैं कि बच्चों के कमरे, यानी कि उन नन्हे मुन्हे बच्चों के। अब देखिए, जब हमारे घर में बच्चा आता है तो हम काफ़ी सारे सपने सजाते हैं कि अगर लड़का हुआ तो ब्लू करेंगे, क्योंकि लड़कों का नाम तो बबलू होता है, बिल्लू होता है, और लड़की हुई तो पिंक रखेंगे क्योंकि लड़कियों का नाम तो पिंकी होता है। लेकिन भाई, ये ब्लू और पिंक को छोड़िए, मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई बच्चा हमारे घर में जन्म लेता है तो उसका कमरा भी स्पेशल होना चाहिए, यानी कि उसका जो पेंट होता है इंटीरियर, वो भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप पेंट आ रहे हैं तो मेरी सलाह और डॉक्टर की सलाह यही है कि हल्के रंग का प्रयोग करें। नवजात शिशु का जो शरीर होता है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, उसका तापमान नियंत्रण, यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर है उसको नियंत्रण में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, नवजात शिशु का शरीर बहुत ही नाजुक होता है, उसका तापमान नियंत्रण तंत्र यानी कि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की जो क्षमता होती है वो अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई होती है। इसका मतलब ये है कि गर्मी में बच्चे के शरीर जल्दी गर्म हो जाता है और वो खुद ठंडा नहीं हो पाता है, इसीलिए बच्चे के कमरे का तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होना चाहिए। अगर आपके घर एसी है तो उसका इस्तेमाल करें, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि एसी और पंखे की सीधी हवा बच्चे पे नहीं पड़नी चाहिए। हवा कमरे में सर्कुलेट होनी चाहिए, बच्चे के चेहरे या शरीर पर सीधे हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर एसी नहीं है तो कमरे का पंखा चलाएं, खिड़कियां खोलें ताकि हवा आती जाती रहे, कमरे में पर्दे लगवाएं ताकि सीधी धूप अंदर ना आए। आप चाहें तो कमरे में एक छोटा सा कूलर भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कमरा बहुत ज्यादा ठंडा भी ना हो। बच्चे को हमेशा हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहनाएं। गर्मियों में ज्यादा कपड़े पहनाने से बच्चे की स्किन खराब हो जाती है, रैशेज होने लग जाते हैं और खुजली होने लग जाती है। बहुत से माँ बाप यही गलती करते हैं कि बच्चे को जरूरत से ज्यादा कपड़े पहना देते हैं। अगर कम कपड़े पहनाए हैं तो चुभारे वाले जो कपड़े होते हैं वो पहना देते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हमारे घर में बच्चा आता है तो हम सभी का शौक होता है कि उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं, लेकिन भाई कपड़े पहनाने से ज्यादा जरूरी है कि कपड़ा उसे कम्फर्टेबल पहनाए। तो कुछ भी पहनाए तो ट्राई करें कि उसमें ज़्यादा वर्क ना हो, वो बच्चे को चुभे ना, नहीं तो उस बच्चे की स्किन जो कि सेंसिटिव होती है उस पर भी रैशेस आ सकते हैं। उसके बाद हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम बच्चे का जो शरीर का तापमान होता है उसको समय समय पर जांच करते रहें। उसकी गर्दन के पीछे या पेट को छूकर हमेशा देखें कि उसकी बॉडी टेम्परेचर ठीक है या नहीं, ना कि हाथ पैर को। काफ़ी लोग होता है कि बच्चे के हाथ को छू लेंगे और बता देंगे कि टेम्परेचर ठीक है या नहीं, लेकिन गर्दन के पीछे और पेट को अगर छू के आप पता करेंगे तो वो आपको सही बॉडी टेम्परेचर बताएगा। अगर गर्दन के पीछे पसीना आ रहा है, त्वचा बहुत गर्म लगे, तो समझ जाइए कि बच्चा ज़्यादा गर्म हो रहा है। उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है दूध पिलाना और हाइड्रेशन का ध्यान रखना। देखिए गर्मियों में बच्चे के हाइड्रेशन का खास ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ये है दोस्तों कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है और आप उसे सिर्फ माँ का दूध पिला रही हैं तो उसे अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माँ का दूध 80-90% पानी से बना होता है और ये बच्चे की प्यास भी बुझा देता है और पोषण भी देता है। गर्मी में बस ये करें कि बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर पे दूध पिलाती रहें, यानी कि फीडिंग की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा दें। अगर बच्चा फॉर्मूला वाले दूध पे डिपेंड करता है तो 6 महीने से पहले आपको पानी नहीं देना है। फॉर्मूला दूध भी पर्याप्त हाइड्रेशन देता है। हाँ, अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप उसे ठोस आहार देना शुरू कर दें। आप थोड़ा थोड़ा उबला हुआ और ठंडा पानी उसे दे सकते हैं। एक बात और, माँ को खुद भी खूब सारा पानी पीना चाहिए। अब देखिए भाई, अगर हम बात बच्चे और माँ की कर रहे हैं तो उन्हें तो ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती ही होती है, लेकिन वैसे भी दोस्तों चल रही है गर्मियाँ और गर्मियों में हाइड्रेशन की ज़रूरत हम सभी को है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर अपने काम पे गए हैं या आप घर से बाहर हैं, आपको आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन पसीना नहीं आ रहा है, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। इस माहौल में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप कोशिश करें कि आप छांव वाले इलाके में जाएं, धूप में आप बिल्कुल ना रहें और तुरंत आपको पानी नहीं पीना है। आपकी बॉडी का इलेक्ट्रॉल लेवल हो सकता है कि वो कम हो गया हो, तो अपने पास और अपने अपनों के पास जो भी आपके घर के बच्चे हैं उन्हें एक पाउच इलेक्ट्रॉल तो ज़रूर दें, जिससे कि अगर कभी इमरजेंसी पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉल लेवल को बैलेंस कर सकें। हो सकता है कि आपकी बॉडी का जो बीपी है वो लो हो गया हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, लेकिन अगर पसीना नहीं आ रहा है तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, और ये अगर काबू में भी नहीं आ रहा है तो आपको नज़दीकी अस्पताल में जाने की ज़रूरत है। इस साइन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आपकी ये कंडीशन आपको हार्ट अटैक तक या फिर ब्रेन स्ट्रोक तक ले जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कि है त्वचा की देखभाल और धूप से बचाव। देखिए गर्मियों में बच्चे की त्वचा संवेदनशील हो जाती है, बच्चे की त्वचा पतली होती है और धूप में बहुत जल्दी वो खराब होने लगती है। सबसे पहली बात कि 6 महीने से छोटे बच्चों को सीधी धूप में बिल्कुल ना लेके जाए, खासकर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में। इस समय धूप सबसे तेज होती है और सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। छह महीने से छोटे बच्चों को सनस्क्रीन भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उनकी त्वचा इन केमिकल को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है और नुकसान हो सकता है। उनकी सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उन्हें छांव में ही रखा जाए और हल्के ढीले कपड़े पहनाया जाए, धूप से उन्हें दूर रखा जाए। अगर बच्चा छह महीने से बड़ा है और बाहर ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है तो बॉडी पे बेबी सेफ सनस्क्रीन जरूर लगाएं जो कि SPF 30 या उससे ज्यादा का हो। टोपी पहनाएं, हल्के कपड़े पहनाएं और जितना हो सके छांव में ही उसे रखें। अब बात करते हैं घमौरियों की। देखिए, गर्मियां आए और घमौरियां ना लाएं, ऐसा कहां से हो सकता है। गर्मियों में बच्चों को बहुत ज्यादा घमौरियां हो जाती हैं और ये हमारे भारत में बहुत ज्यादा आम भी है। ये छोटे छोटे लाल दाने होते हैं जो कि पसीने की वजह से होते हैं। अक्सर ये गर्दन, पीठ, छाती या फिर आपके पेट में हो सकते हैं। घमौरियों से बचने के लिए बच्चे को ठंडी और हवादार जगह पे रखें, ढीले कपड़े पहनाएं और त्वचा को सूखा रखें। घमौरी पर कोई भी क्रीम या पाउडर डॉक्टर के सलाह के बिना बिल्कुल ना लगाएं। उसके बाद बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की, यानी कि नहलाना। अब देखिए, गर्मियों में हम सब तो 2 से 3 बार नहा लेते हैं, लेकिन शिशु का क्या, यानी कि उस नवजात बच्चे का क्या। देखिए, गर्मियों में बच्चे को नहलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इससे बच्चे का शरीर ठंडा रहता है, त्वचा साफ रहती है और बच्चा फ्रेश महसूस करता है। आप बच्चे को दिन में 1 या 2 बार नहला सकती हैं। नहलाने के लिए हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। ठंडे पानी से नहलाने से बच्चे को झटका लग सकता है और गर्म पानी से नहलाने से उसकी त्वचा जल सकती है, इसीलिए हमेशा गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। नहलाते वक्त बच्चे की त्वचा को धीरे धीरे साफ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा और बहुत ही रफ्तार से आप उसको ना रगड़े, नहीं तो स्किन बैरियर डैमेज हो सकते हैं। नाभि, गर्दन और जांघों के बीच की जगह को खास तौर से हमें साफ रखना चाहिए क्योंकि ये जगह पे पसीना सबसे ज़्यादा जमा होता है। नहलाने के बाद बच्चे को मुलायम तौलिया से धीरे धीरे पोछें और साफ करें, सूखा कपड़ा पहनाएं और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी क्रीम या पाउडर बच्चे को ना लगाएं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, सोने का माहौल। अब देखिए, रात को या दिन में जब भी बच्चा सोए तो उसके सोने की जगह का माहौल हमेशा सही होना चाहिए। बच्चे के गद्दे पर मोटा या भारी कंबल ना बिछाएं, कोशिश करें कि आप उस पे हल्की कॉटन की चद्दर, जिसे हम सूती कपड़ा कहते हैं, वो बिछाएं, ताकि आप बिल्कुल भी ना दें, ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बच्चे को हमेशा पीठ के बल सुलाएं, सोने की जगह हवादार होनी चाहिए। बच्चे के पास कोई भी मुलायम खिलौना, तकिया, चादर अतिरिक्त हिस्सा नहीं होना चाहिए जो उसके मुंह पे लग सके, यानी कि उसके स्किन या उस बच्चे के आसपास से जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको हटा देनी चाहिए। अगर रात में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी में हल्का पंखा आप चला सकते हैं, एसी भी चला सकते हैं, लेकिन याद रहे कि डायरेक्ट जो हवा होती है वो बच्चे पे ना लगे। तो ये थी दोस्तों नवजात बच्चे की समर केयर। लेकिन डाइट का क्या? भाई, डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और गर्मियों में बच्चे की डाइट, अगर 6 महीने से बड़ा है आपका बच्चा तो क्या क्या चीज़ें खिलानी चाहिए, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भाई जो बच्चा होता है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और उसको हल्के भोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना या बहुत ज़्यादा भारी खाना आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते, नहीं तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब हो सकता है और अगर बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो गया तो वो ओवरऑल बॉडी हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालता है। ये थी एक नवजात बच्चे की केयर की बातें। डाइट पे भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है हमारे साथ आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी में।

0: नमस्कार श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच में हमारी यानी आपकी और हमारी सभी की प्यारी वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हमारे हर एक रोग का इलाज करती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारी डॉक्टर साहिबा। पहले इनका हम स्वागत करेंगे और इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
1: धन्यवाद आकांक्षा जी आपको यहाँ बुलाने के लिए। आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग पे और मेरा नाम है आभा सिंह, कुष्ठ रोग स्पेशलिस्ट।
0: बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने के लिए। सबसे पहले मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये कुष्ठ रोग है क्या और इसकी पहचान कैसे करें।
1: कुष्ठ रोग को नॉर्मल भाषा में कहा गया है लाल चकत्ता सुन निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान।
0: इसको प्लीज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बता दें।
1: इसका मतलब है शरीर में लाल चकत्ते पड़ना
0: जी।
1: और जब लाल चकत्ते पड़ते हैं, अगर वो कुष्ठ रोग है तो वहाँ पे आप कुछ भी करेंगी, कोई भी एक्टिविटी वहाँ करेंगे तो वो सुन्न होगा एरिया, वहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा।
0: ओके, तो मैम अभी मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार आज भी उन राज्यों में है जहाँ कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं। आपके जिले की स्थिति क्या है और किन इलाकों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
1: देखिए आकांक्षा जी, ये सच है
0: जी
1: कि कुष्ठ रोग अब पहले से बहुत कम है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाके, घनी आबादी वाले क्षेत्र और वह जगह जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुँच कम है, वहाँ जोखिम ज्यादा रहता है। हमारा मुख्य फोकस है जल्दी पहचान और समय पर इलाज, ताकि फैलाव रोका जा सके।
0: अब मैम ये बताइए कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार 2027 तक कुष्ठ रोग खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में ये कितना व्यवहारिक है?
1: लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है आकांक्षा जी, लेकिन पूरी तरह संभव है। क्योंकि कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरह मुफ्त है और उपलब्ध दवा से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है
0: जी।
1: इलाज शुरू होते ही बीमारी फैलना बंद हो जाती है। सबसे जरूरी है डर भेदभाव खत्म करना।
0: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज भी कई गांव में लोग कुष्ठ रोग को लेकर दवा की बजाय झाड़ फूंक या घरेलू उपाय से ठीक करने लगने, मतलब ठीक करने की उसकी कोशिश करते हैं, ये कितना खतरनाक है?
1: आकांक्षा जी, यह बहुत गंभीर खतरा है
0: जी।
1: कुष्ठ रोग में देरी से इलाज करने पर हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं
0: जी,
1: घाव बन सकते हैं और अस्थाई विकलांगता हो सकती है। झाड़ फूंक से बीमारी नहीं जाती, लेकिन समय जरूर चला जाता है, जो सबसे बड़ा नुकसान है।
0: कहीं ना कहीं वो जो एक छोटा सा लाल धब्बा वो एक सड़न का रूप ले लेता है, उसके बाद में जब हम बहुत हानिकारक स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो हमें वो दृश्य देखने को मिलेगा जो कोई भी सोच भी नहीं सकता
1: जी। जरूर
0: जी। अभी एक और सवाल है हमारे बीच में कि कई लोग डर और बदनामी के कारण जांच नहीं कराते, खासकर छोटे गांव में। स्वास्थ्य विभाग इस भरोसे को कैसे मजबूत करता है?
1: आकांक्षा जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया
0: जी।
1: हम पूरी गोपनीयता रखते हैं। आशा और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर समझाते हैं, मुफ्त जांच करवाते हैं
0: जी,
1: सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हैं
0: जी।
1: हम साफ कहते हैं कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता
0: जी,
1: और इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।
0: अब ये बताइए कि यूपी और बिहार में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करती हैं, कुष्ठ रोग की पहचान और इलाज में उनकी भूमिका कितनी अहम है?
1: आकांक्षा जी, उनकी भूमिका सबसे अहम है
0: जी।
1: यही बहनें त्वचा पर सुन दाग पहचानती हैं, मरीज को जांच तक लाती हैं और दवा पूरा करवाने में साथ देती हैं
0: जी।
1: कह सकते हैं कि कुष्ठ उन्मूलन की असली ताकत जमीनी स्तर पर आशा दीदी ही है।
0: मैम अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज कई बीमारियां पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं, इलाज मुफ्त भी हैं, फिर भी लोग झोला छाप या ओझा तांत्रिक के पास क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है?
1: देखिए आकांक्षा जी
0: जी,
1: इसकी सबसे बड़ी वजह है डर, अज्ञानता, आदत। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्च होगा
0: जी,
1: बदनामी होगी या बीमारी फैल जाएगी। इस व्यवहार को बदलने के लिए हम गांव-गांव अपनी आशा को भेजते हैं
0: जी,
1: वो जागरूक करती हैं, सफल इलाज के लिए प्रेरित करती हैं, स्थानीय भाषा में समझाती हैं और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं और अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच भी रहे हैं।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई अपना आदमी हम सभी को कुछ समझाता है तो बात दिल तक आसानी से पहुंच जाती है। अब मैम एक और सवाल आपसे मैं करूंगी कि सामाजिक बहिष्कार, काम से निकाल देना, बच्चों को स्कूल ना भेजना, ये सब आज भी यूपी और बिहार में दिखता है। इससे आखिर में हमारी समाज पे क्या फर्क पड़ता है?
1: आकांक्षा जी, बहुत सही सवाल है आपका
0: जी।
1: व्यक्ति टूट जाता है, आत्मविश्वास खो देता है और समाज में डर फैलता है।
0: बिल्कुल।
1: और समाज का नुकसान ये कि लोग बीमारी छुपाने लगते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल।
1: याद रखिए, बीमारी से नहीं गलत सोच से समाज बीमार होता है।
0: बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात आपने कह दी। उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे होंगे उनको आज एक बहुत ही गहरी बात समझ में आ रही होगी।
1: जी आकांक्षा जी।
0: जी मैम, आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज सरकार इतनी सारी दवाइयां दे रही है, लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि सिर्फ मरीज नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है?
1: जी आकांक्षा जी, कुछ लोग नहीं समझते हैं क्योंकि बीमारी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती। अगर समय पर दवा ली जाए, सावधानी बरती जाए तो पूरा परिवार सुरक्षित रहता है।
0: जी,
1: दवाइयां डर खत्म करती हैं, लेकिन तभी जब लोग समय पर आगे आए। इलाज छुपाने से नहीं, इलाज अपनाने से सुरक्षा मिलती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। इलाज के बाद भी समाज उसी नजर से देखता है, क्या वाकई मरीज से कोई खतरा रहता है इलाज के उपरांत भी?
1: नहीं आकांक्षा जी, ये सिर्फ सामाजिक डर है, गलतफहमी है। जो व्यक्ति इलाज पूरा कर चुका है वो पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है। काम, परिवार, समाज, सब खतरा बीमारी से नहीं भेदभाव से है।
0: जी, अब चलते चलते मैं मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि यूपी और बिहार के गांवों के लिए आपका सीधा संदेश क्या होगा?
1: देखिए आकांक्षा जी,
0: जी
1: मेरा संदेश बहुत साफ है
0: जी।
1: बीमारी छुपाइए मत, डरिए मत, जांच कराइए, ओझा तांत्रिक पर भरोसा मत करिए, डॉक्टर पर भरोसा करिए
0: जी।
1: और सबसे जरूरी, इंसान को इंसान की तरह देखिए। जब सोच बदलेगी तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला।
1: जी धन्यवाद मैम आप।
0: तो दोस्तों याद रखिए, इलाज से बीमारी ठीक होती है और समझदारी से समाज। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
7: वेलकम बैक दोस्तों, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी, क्योंकि आज है दिन बुधवार और बुधवार को हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आज हम बात कर रहे हैं नवजात बच्चे और नई नवेली माँ के स्वास्थ्य की। अभी हमने बात की समर स्पेशल केयर फॉर न्यू बॉर्न की, लेकिन अब हम बात करते हैं खाने की, यानी कि डाइट की। अब देखिए, गर्मियों में बच्चों की जो डाइट होती है वो थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उस पर हम बात करते हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा 6 महीने से ज़्यादा है तो ही आप उसे कुछ खिला सकते हैं, अगर 6 महीने से कम है तो बच्चा दूध पे ही रहे, ऐसा डॉक्टर की सलाह होती है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का है तो उसे क्या क्या चीज़ें आप दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फल की। देखिए, फल में आप केला, पपीता, चीकू, सेब, नाशपत्ती, तरबूज, खरबूजा आप उन्हें दे सकते हैं, लेकिन जो बीजदार फल हैं उनकी बीज हटा के और फलों को आप मैश कर दीजिए या फिर उसका लिक्विड फॉर्म बना के, यानी कि आप जूस बना ले या फिर उसकी प्योरी बना के आप बच्चे को दें। आपको कोई भी फल डायरेक्टली आपने बच्चे को नहीं खिलाना है। स्पेशली पपाया, वाटरमेलन और खरबूजा जो होता है, ये आपको ज़रूर से गर्मियों में बच्चों को देना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे के बॉडी में हाइड्रेशन अच्छे से बनी रहे। उसके बाद बात करते हैं हल्का घर का खाना। देखिए, घर का खाना

कंद भी आप उन्हें खिला सकते हैं। साथ ही साथ उनकी डाइट में गर्मियों में आपको दही और ठंडी तासीर वाली चीज़ों को भी इंक्लूड करना चाहिए, जैसे घर में बना हुआ ताज़ा दही। याद रहे कि मैं बार बार यही कहती हूँ कि कोई नवजात शिशु है तो आप घर में ही जमा हुआ दही उसे खिलाएं, पैकेट वाला दही बच्चे को नुकसान कर सकता है। साथ ही साथ आप बच्चे को दही और चावल खिला सकती हैं जो आपके बच्चे के पेट को ठंडा रखेगा और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आपके घर में छाछ है तो आप उसको भी थोड़ी मात्रा में, अगर आपके बच्चे को सूट करता है तो आप थोड़ी मात्रा में अपने बच्चे को ज़रूर दें। उसके बाद हम बात करते हैं पानी की। देखिए, बच्चे को हमेशा जो भी आप पानी पिलाएं तो 6 महीने के बाद भी कोशिश करें कि उसे उबाल कर और गुनगुना पानी, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म पानी अपने बच्चे को दें और बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें। साथ ही आपको कुछ चीज़ें डाइट से बिल्कुल अवॉइड करनी है, जैसे कि ज़्यादा चीनी और नमक, पैक्ड जूस, कोल्ड ड्रिंक, बहुत ही मसालेदार खाना, शहद। ये शहद तो आपको 1 साल से पहले अवॉइड ही करना चाहिए। साथ ही साथ ड्राई फ्रूट, क्योंकि अगर आप ड्राई फ्रूट खिलाएंगे अपने बच्चे को तो वो बच्चे में चोकिंग रिस्क बढ़ा देता है। गर्मियों में ध्यान रखने वाली बात तो ये है दोस्तों कि बच्चा डिहाइड्रेट ना हो, इसीलिए उसे बार बार आप फीड करें, खाना फ्रेश बना कर दें, लंबे समय तक बाहर रखा हुआ खाना आप शिशु को बिल्कुल ना दें, एक समय में एक नई चीज़ बच्चे को इंट्रोड्यूस करें ताकि अगर कोई एलर्जी होती है तो वो आसानी से पता लग पाए। तो ये थी दोस्तों बच्चे की डाइट की बातें, यानी कि वो बच्चा जो भी बहुत छोटा है, 6 महीने से बड़ा है, लेकिन डाइट और समर केयर उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस गर्मी में उनका खास ख्याल रखें और उन्हें गर्म जगहों से तो बिल्कुल बचा के रखें। कोशिश करें कि नवजात उसी कमरे में रहे जहाँ पे थोड़ा ठंडा माहौल है। अगर कमरे में बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उस माहौल में आप ना तो नई नवेली माँ और दूसरी बात नवजात बच्चे को वहाँ पे बिल्कुल ना रखें। अब बात करते हैं हम भाई माँ की, क्योंकि भाई शिशु पे तो सभी लोग ध्यान दे देते हैं, लेकिन नई नवेली माँ का क्या। भाई देखिए, माँ से ध्यान शिफ्ट हो जाता है बच्चे पे, लेकिन माँ की केयर करनी भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर वो नई नई माँ बनी है। दोस्तों, हमारे समाज में एक बड़ी कमी ये है कि बच्चे के जन्म के बाद सारा ध्यान बच्चे पे चला जाता है और माँ की ज़रूरतें पीछे रह जाती हैं। लेकिन ये सोचिए कि अगर माँ ही ठीक नहीं रहेगी तो बच्चे की देखभाल कैसे होगी। माँ का स्वस्थ रहना उतना ही ज़रूरी है जितना बच्चे का, और जब ऊपर से गर्मी का मौसम हो तो नई माँ के लिए ये और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही डिटेल से कि गर्मियों में नई माँ अपना ध्यान कैसे रखे, या अगर आप उनका ध्यान रख रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें पानी और हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, नई माँ के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है पानी पीना। बच्चे को जन्म देने के बाद माँ का शरीर पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऊपर से अगर वो बच्चे के स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उसके शरीर में रोज़ाना काफ़ी मात्रा में पानी और पोषक तत्व निकलते हैं। गर्मी में पसीने की वजह से ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए नई माँ को दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि आप उन्हें और भी लिक्विड चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी, ताज़े फलों का रस, और ये सब बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं आपकी बॉडी के लिए और साथ ही साथ आप में हाइड्रेशन के लिए। एक आसान तरीका ये भी है कि जब भी बच्चे को दूध पिलाने बैठे तो साथ में 1 ग्लास पानी या कोई ठंडा लिक्विड जो है वो अपने पास ज़रूर रखें। इससे आप हाइड्रेट रहेंगे और दूध भी अच्छा बनेगा। अगर माँ के शरीर में पानी की कमी होगी तो दूध कम बनेगा और सीधा असर उसका बच्चे की सेहत पे पड़ेगा। इसीलिए पानी पीना सिर्फ माँ की ज़रूरत ही नहीं बल्कि बच्चे की भी ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा खान पान और पोषण। देखिए, गर्मियों में नई माँ का खान पान पर ध्यान देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमारे घरों में अक्सर ये बात होती है कि नई माँ को तरह तरह के घरेलू नुस्खे दिए जाते हैं। गर्म तासीर का खाना, मेथी का लड्डू, सोठ वाले पकवान, ये सब परंपरागत रूप से माँ की ताकत
आपके लिए दिए जाते हैं और इनमें से कुछ वाकई फायदेमंद भी होते हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म तासीर का खाना भी नुकसानदायक

0: हो सकता है। गर्मियों में माँ को हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला खाना ही खिलाना चाहिए, जैसे दाल, चावल, दही, हरी सब्जी, फल। ये सब बहुत ही अच्छे हैं हमारी नई नवेली माँ की हेल्थ के लिए। दही और छाछ पेट को ठंडा रखते हैं और पाचन भी अच्छा करते हैं, इसीलिए आपको ये भी नई नवेली माँ की डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। साथ ही खीरा, तरबूज, खरबूज, संतरा, ये गर्मी के फल शरीर को ठंडा रखते हैं और पानी की कमी को भी पूरा करते हैं। तले हुए मसालेदार और भारी खाने से परहेज करें, खासकर तब जब आप ब्रेस्ट फीड करा रही हों, क्योंकि इनका असर बच्चे की पेट पर भी पड़ता है। कैफीन यानी कि चाय और कॉफ़ी बहुत ही कम मात्रा में लें। ज़्यादा कैफीन शरीर को डिहाइड्रेट करता है और बच्चे पर भी असर डालता है। उसके बाद दोस्तों थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आराम और नींद। दोस्तों शायद ये सबसे मुश्किल पहलू है, क्योंकि नई माँ को आराम मिलना ये बहुत ही मुश्किल से होता है। देखिए दोस्तों, नवजात बच्चा 2 से 3 घंटे में दूध मांगता है, चाहे दिन हो या फिर रात। इसका मतलब ये है कि माँ की नींद बार बार टूटती है, ऊपर से गर्मी, रात को भी चैन से सोना मुश्किल हो जाता है। लेकिन नींद और आराम में माँ के लिए बेहद ज़रूरी है नींद की कमी से माँ चिड़चिड़ी हो जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है और पोस्टपार्टम डिप्रेशन का भी खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि बच्चा जब सोए तो माँ को भी सो जाना चाहिए। घर के काम बाद में हो सकते हैं, लेकिन आराम पहले करना चाहिए। परिवार के बाकी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वो माँ को आराम करने दें। पति, सास, माँ सब मिलकर माँ की मदद करें ताकि वो थोड़ा सा आराम कर सके, और उन पे प्रेशर भी कम बनाना चाहिए। प्रेशर कोई भी घर की समस्या हो सकती है, कोई जिम्मेदारी हो सकती है या रोज़मर्रा के काम भी हो सकते हैं। सोने की जगह ठंडी और हवादार होनी चाहिए, एसी या पंखे का इस्तेमाल करें, हल्की सूती कपड़ा पहनें, रात को भारी भोजन बिल्कुल ना लें जिससे कि नींद अच्छी आए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है शरीर की सफाई और त्वचा का देखभाल। देखिए डिलीवरी के बाद माँ के शरीर में कई बदलाव आते हैं। गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है जिससे त्वचा संबंधी परेशानियाँ हो सकती हैं। दिन में 1 बार या 2 बार गुनगुने पानी से ज़रूर नहाना चाहिए, इससे शरीर तरोताज़ा रहेगा और थकान भी कम होगी। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो नहाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर सी सेक्शन हुआ है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही नहाएं और टाकों का खास ख्याल रखें। स्तनपान कराने वाली माओं को अपने स्तनों की सफाई पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गर्मियों में पसीने की वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, और दूध पिलाने से पहले 1 बार अपने स्तन को सही से साफ ज़रूर करें। आपको हमेशा हल्के और सूती कपड़े पहनने चाहिए जो कि पसीना सोख सके। उसके बाद पांचवा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि मानसिक स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखना है। दोस्तों ये पहलू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद माँ के शरीर में हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है। इससे कई माएँ उदास, चिंतित और ओवरवेल्ड महसूस करती हैं। इसे पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आम है। नींद की गर्मी, नींद की कमी और थकान, ये सब मिलकर मानसिक तनाव को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर आप नई माँ हैं और आप बहुत ज़्यादा उदास महसूस कर रही हैं, रोने का मन कर रहा है, बच्चे से लगाव नहीं लग रहा है, तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। इसे अकेले आप बिल्कुल ना झेलें, अपने परिवार को बताएं, डॉक्टर से बताएं, घर में सदस्यों को भी ये समझना चाहिए कि पोस्टपार्टम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और इसमें डिप्रेशन होना ये बहुत ही आम समस्या बन गई है। नई माँ को सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक सहारे की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसकी बात सुनें, उसे अकेला ना छोड़ें और उसके इस बहुत ही खूबसूरत लेकिन सेंसिटिव जर्नी में उनका साथ दें। तो ये बात थी दोस्तों नई माँ की समर केयर की। अब बात करते हैं हम नई माँ के डाइट की, क्योंकि भाई देखिए गर्मियाँ चल रही हैं और जो नई माँ होती है वो ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्टेज पे होती है, तो उनके लिए डाइट भी उनके अकॉर्डिंग होती है। वो क्या होती है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है हमारे साथ आपके अपने प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी में। और ब्रेक के बाद जब आप आएंगे तो अपने साथ लेकर आइएगा एक पेन एक डायरी, क्योंकि आपको करना है नोट वो सारी चीजें जो कि एक नई माँ को खानी चाहिए।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, HIV/AIDS और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमर निधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूँ जिससे वो लाभ उठा सकें।
2: हमारा पहला सवाल है कि अनीमिया की समस्या काफी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?
3: ये बहुत ही अहम सवाल है। अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना या कुछ पुरानी बीमारियां भी अनीमिया का कारण हो सकती हैं।
2: क्या अनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि अनीमिया है?
3: अनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को अनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें, इसीलिए अनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है।
2: जी, तो क्या अनीमिया को रोकने या अनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को?
3: जी हाँ बिल्कुल, अनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की अनीमिया में डॉक्टर ज्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं।
2: तो मैम, अनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए को ही होता है या फिर पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है?
3: ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं, इसलिए समय समय पर सभी को अनीमिया की जांच करवानी चाहिए।
2: तो मैम, मतलब अनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं?
3: ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों में किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं, उनकी जांच, कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग भी की जाती है। स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम विफ्स के नाम से भी जानते हैं, ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है।
4: मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र से परिवार किस तरह आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, कृमिनाशक दवाएं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी जैसी सेवाएं ले सकता है।
3: ये आसान है। परिवार जो है वो नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर या PHC में मुफ्त अनीमिया की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर IFA की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां और कृमिनाशक गोलियां देती हैं और घर पर ही बच्चों का वजन और ऊंचाई भी नापती हैं।
2: तो क्या इसका इलाज घर पर ही हो सकता है? मतलब हमारा अगला सवाल यही था कि एनीमिया, मतलब इसके जो इलाज है, उपचार है, वो कैसे कराया जा सकता है? निशुल्क जांच कहाँ होती है, तो इसके बारे में।
3: इसको मैं दो भागों में कवर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये है कि अनीमिया का उपचार किसी भी सरकारी केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। एक बार जब सब सेंटर या PHC या आंगनबाड़ी केंद्र से दवा मिलने लगती है तो उसको बार बार आशा जो आंगनबाड़ी आशा और आंगनबाड़ी इसका वितरण कर सकते हैं। घर जाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर किसी को अनीमिया की शंका है वो सबसे नज़दीकी सब सेंटर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जाएं तो वहाँ हीमोग्लोबिन की जांच और मुफ्त इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध है। जो गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित मरीज होते हैं उनको आगे रेफर कर दिया जाता है।
2: जी, तो मैम जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज्यादा अनीमिया पाया जाता है, तो क्या इनके बचाव के लिए, इनके इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता हमें सरकार से मिलती है? कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनके लिए होता है?
3: जी हाँ, बिल्कुल होता है। ICDS और जो सरकारी मुहिम है पोषण अभियान के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, जिसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी कहते हैं, उसके साथ साथ मुफ्त आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, स्वास्थ्य की जांच और सलाह दी जाती है।
4: मैम, एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जो लोग अधिक मोटापे की समस्या से जूझते हैं, उन्हें भी अनीमिया हो सकता है या उन्हें अनीमिया होने के अधिक चांसेस हैं?
3: थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है कि, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जो मोटापा है वो अनीमिया से बचाव नहीं करता, बल्कि सूजन की वजह से शरीर में आयरन का उपयोग कम हो जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोटे लोगों को भी अनीमिया हो सकता है।
2: तो आजकल की जो बहुत आदतें हैं जंक फूड खाने की लोगों में, तो क्या आज की युवाओं में जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनको अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं उनमें?
3: आजकल की पीढ़ी के लिए, खास करके युवा की पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है जो आपने पते की बात पूछी है। जंक फूड में कैलोरी तो बहुत होती है लेकिन ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं होते। इसलिए आयरन युक्त और पौष्टिक भोजन की जगह अगर जंक फूड लिया जाए तो खून की कमी का खतरा यानी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जंक फूड होता है, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स, मोमोज, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें अक्सर मीठा या नमक अधिक मात्रा में होता है जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है और वो हमारे स्वास्थ्य को और आगे खराब करता है अनीमिया के साथ साथ। तो इसलिए जंक फूड को, ये तो मेरा कहना उचित नहीं होगा कि बिल्कुल ना लें, लेकिन घर पे बने खाने का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें। इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा।
2: एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए, या मतलब अगर हमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम खुद से भी ले सकते हैं? और कितनी गोलियां लेनी चाहिए अगर हम लेते हैं तो दिन में?
3: आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन समुदाय स्तर पर ANM द्वारा वितरित किया जाता है इनको, और जो कि हीमोग्लोबिन की जांच के बाद ही किया जाता है। जो हमारा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है उसमें गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 6 महीने गर्भावस्था के दौरान और पहले 6 महीने बच्चे के जन्म के बाद जब वो स्तनपान कराती हैं, 180 और 180 दोनों को मिला के 360 गोलियों का सेवन आयरन फॉलिक एसिड का कराया जाता है। इसके अलावा किशोरियों को और जो और ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चा या प्रजनन वर्ग में जो आती हैं, जो जो भी माँ बनने की आशंका हो सकती है, उनको सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। लेकिन ये एक जरूरी बात है कि स्वयं से इसको लेकर इसका सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती। इसको किसी ना किसी जांच के बाद ही, और जो भी हमारे जो चाहे वो डॉक्टर हो या चाहे वो हमारे ANM हो, वो एक बार जब उनका पर्ची पर उसको लिख दें, उसके बाद ही आशा और आंगनबाड़ी भी उनको आगे उनका वितरण करती है। तो स्वयं से इसको लेना उचित नहीं है।
2: थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे श्रोताओं को काफी बातें बताई और आशा है कि वो सुनेंगे अच्छे से, उसको अमल भी करेंगे। धन्यवाद मैम।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
5: अरे सुना
6: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
7: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब?
8: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
9: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1-800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: वेलकम बैक एवरीवन, आ चुकी हूँ वापस। मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज नई माँ की और न्यू बॉर्न की। अभी तक हमने बात की नए बच्चे यानी नए नवजात शिशु की, उनको उनकी कैसे केयर करनी चाहिए गर्मियों में और उनकी डाइट क्या होती है या क्या करें हम लोग जो कि गर्मी में उनको फ़ायदा करे। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या डाइट होनी चाहिए एक नई नवेली माँ की, यानी एक ऐसी महिला जिसने अभी बहुत जल्दी ही एक नवजात शिशु को जन्म दिया है। देखिए गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में जो है डाइट है वो भी थोड़ी सी अलग होती है नई माँ के लिए। ये डिलीवरी के बाद गर्मियों में नई माँ को एक ऐसा खाना खाना चाहिए जो शरीर को ताकत भी दे, जल्दी रिकवरी भी करे और शरीर को ठंडक भी मिले। सबसे ज़रूरी चीज़ है हल्का, पौष्टिक और हाइड्रेटिंग खाना। सुबह उठकर गुनगुना पानी पिए, उसमें थोड़ा सा अजवाइन और सौंफ डाल लें, फिर 2-3 भीगे बादाम और 1 अखरोट को खाना चाहिए। गर्मियों में नारियल पानी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि ये बॉडी को हाइड्रेट रखता है और आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस करता है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट में बहुत भारी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। आपको खाना चाहिए बिल्कुल हल्की चीज़ें, जैसे मूंग दाल का चीला दही के साथ, दलिया खा सकती हैं, ओट्स खा सकती हैं, पोहा खा सकती है, इडली खा सकती है, रागी की दलिया खा सकती है। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपके डाइट में एक उबला अंडा भी बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद बीच में भूख लगेगी तो फल खाइए, जैसे कि तरबूज, खरबूज, पपीता, सेब, अनार। उसके बाद लंच भी आपका घर का होना चाहिए और सिंपल खाना होना चाहिए, जैसे कि दाल, रोटी, चावल, हरी सब्जियां, जिसमें लौकी, तरोई, कद्दू, भिंडी, ये सब आप खा सकती हैं। उसके बाद दही और छाछ। दही और छाछ आपके पेट को ठंडा रखता है और आपकी डाइट को भी बैलेंस करता है। ये सब पेट में भारी नहीं करता बल्कि रिकवरी में भी और आपकी मदद करता है। शाम को जब आप चाय के साथ कोई बाहर की चीज़ें ना खाएं, आप थोड़ा उसके साथ भुना हुआ मखाना ले सकती हैं, भुना हुआ चना ले सकती हैं, लस्सी पी सकती हैं और कोई फ्रूट स्मूदी भी आप पी सकती हैं। डिनर भी आपका हल्का होना चाहिए, जिसमें आप खिचड़ी ले सकती हैं, दाल ले सकती हैं, सूप ले सकती हैं और हल्की रोटी सब्जी खा सकती है। और सोने से पहले हल्दी वाला दूध तो आप बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हल्दी दूध जो होता है वो बॉडी को इंटरनली रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिन भर में अच्छे से पानी पीना, नारियल पानी पीना, छाछ पीना, नींबू पानी पीना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं। साथ ही साथ कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल कम खानी चाहिए, जैसे कि तला भुरा हुआ खाना, बहुत मसालेदार खाना, कोल्ड ड्रिंक, ज़्यादा चाय कॉफ़ी, बहुत ठंडी फ्रिज की चीज़ें। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है दोस्तों कि नई माँ को खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर थोड़ा आराम, थोड़ी नींद और टाइम पर खाना मिल जाए तो इनकी जो केयर है या जो इनकी रिकवरी है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। देखिए दोस्तों, जब हमारे घर नया बच्चा आता है तो हमारे पास दूर दूर से काफ़ी सारे मेहमान भी आते हैं जो बच्चे को और माँ को देखने आते हैं। तो अगर आपके भी घर में नया बच्चा है या फिर आपके घर मेहमान ज़्यादा आ रहे हैं उस बच्चे को देखने, तो जाहिर सी बात है कि हमारे भारत में मेहमानों को चाय, नाश्ता, ये सब पूछा जाता है। लेकिन ये सब जो होता है ये आप सिर्फ़ और सिर्फ मेहमानों तक रखें। कई मेहमान ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि आप भी खाओ, या माँ को कहते हैं आप खाओ। तो देखिए, ये सारा खाना माँ के लिए अभी नहीं है। आप इसको, आपको डिलीवरी के 6 महीने तक हमेशा हल्का और बैलेंस्ड डाइट ही लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा मदद करता है, आपके डाइजेशन के लिए हल्का होता है और आपके पेट को भी आराम देता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें आपको नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, और एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना भी या बहुत ज़्यादा हैवी खाना भी आपको नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ जो गेस्ट आते हैं आपके घर में, उनको गंदे हाथों से या फिर मैं कहूँ कि बिना धुले हाथों से बच्चे और माँ को नहीं टच करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा होता है वो माँ के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। तो किसी भी टाइप की गंदगी, बैक्टीरिया, वायरस अगर माँ को लगती तो वो बच्चे तक भी पहुँच जाती है। साथ ही साथ बच्चे को अगर आप बिना साफ हाथ के या बिना धुले हाथ के आप छूते हैं तो बच्चे की स्किन बैरियर डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है और उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि स्किन रिलेटेड हैं वो हो सकती हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने घर के नवजात की और नई माँ की खूब सारी केयर करिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शो स्वास्थ्य संगिनी का। आई होप आपने सीखा होगा, समझा होगा और इंजॉय भी किया होगा। अब देखिए, सिर्फ सुनने और समझने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी में लागू करना भी हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। लेती हूँ आपसे विदा, वक्त हो चुका है हमारे जानने का। फिर मिलेंगे आपसे आपके अपने शो ज्ञानस्त्री लाइव में और स्वास्थ्य संगिनी, जो कि आएगा शनिवार को, एक और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए अपना ध्यान रहे और सुरक्षित रहें।
6: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर मंदिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
10: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
11: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
12: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94 50 944 999।
13: नमस्कार, स्वास्थ्य और जागरूकता के हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम फाइलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी पर चर्चा करेंगे, जिसे हम हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। ये एक मच्छर से फैलने वाली लाइलाज बीमारी है। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के अपर निदेशक मलेरिया और VBD डॉक्टर AK चौधरी जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आखिर ये फाइलेरिया बीमारी है क्या और ये शरीर में किस तरह प्रवेश करती है।
14: फाइलेरिया जो होता है, एक तरीके के कृमि होते हैं हमारे शरीर में, पैरासाइट होते हैं, जिनको हम नेमेटोड्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। इसका नाम अगर जानना चाहते हैं तो बुचरेरिया ब्रोंकेप्टाई नाम के एक पैरासाइट के कारण होता है। और ये खासतौर से मच्छर के काटने से एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है।
13: डॉक्टर साहब, इसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि भारत में फाइलेरिया की स्थिति चिंताजनक है। देश के 345 जिले इससे प्रभावित हैं और लगभग 74 करोड़ लोग इसके जोखिम में हैं। ये रोग मुख्यतः हाथ, पैर, पुरुषों के अंडकोश और महिलाओं के स्तनों में देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, शरीर में इसके फैलने की प्रक्रिया क्या है?
14: तो जो हमारा क्यूलेक्स मच्छर होता है, उसकी फीमेल जब हमें काटती है तब ये एक दूसरे से ट्रांसमिट करती है। स्टेजेस इसकी बात करें तो हमारे शरीर में जो भी निमेटोड्स, इसके बुचरेरिया ब्रोंकाइटिस के जो एडल्ट वर्म्स होते हैं, वो दिन में प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 50,000 अंडे देते हैं। और वे अंडे जो हैं हमारे शरीर के अंदर लार्वा के रूप में डेवलप होते हैं। इसकी स्टेजेस होती हैं, लार्वा 1, 2, 3, ठीक है, जो हमारे शरीर में रहती हैं। लार्वा की स्टेज 3 ही मच्छर के लिए इन्फेक्टिव होती है। जब मच्छर काटता है हमको, तो अगर हमारे शरीर में लार्वा की थर्ड स्टेज अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो हमारे खून में दौड़ती रहती है, वही मच्छर जब कोई भी ब्लड मील लेता है तो उसके शरीर में जाता है और वहाँ डेवलप होता है। उसके बाद जब वो डेवलप होता है, वहाँ भी उसका जो लार्वा है स्टेज मेटामॉर्फोसिस होती है, फिर वो नए आदमी के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए इन्फेक्टिव होता है। और जब वो मच्छर, इन्फेक्टिव मच्छर जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तब वो उसके अंदर लार्वा वो ट्रांसमिट करता है, फिर वही साइकिल शुरू होती है। वो लार्वा फिर डेवलप होगा एडल्ट वर्म में, और वो इसमें टोटल समय जो है, मैं बताया मैंने, काटने के बाद 5 से 15 साल का समय लगता है, जब हमारे शरीर में फाइलेरिया के लक्षण, जिनको हम एलिफेंटेसिस या हाइड्रोसील या किसी भी अंग का अचानक सूज जाना, मोटा हो जाना, ये

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: नमस्कार श्रोताओं, सेहत सही लाभ कई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है। आज हम उस डर के बीच दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधी बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड बिगड़ते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवालों ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या डर सच है या ये वही बात है जो बार बार दोहराई गई इसलिए सच जैसी लगने लगी। हमारे साथ है टीकन भाभी जी और पिछली बार की हमारी श्रोता यानी कि सुनीता भी लौट आई हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया। सुनीता जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं कि आपसे जब हमने बात की उसके बाद आपने क्या किया।
2: धन्यवाद मुझे अपने कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस भी करता है। अब आपके सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूंगी कि मैंने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो टीकन भाभी कह रही थी, पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अब भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है, शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हुए हैं, ऐसे समय पर कोई भी दखल डराती है।
3: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। आप उन सब माओं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनकी बच्चियाँ आपकी बेटी की उम्र की हैं, और आप ही इस बात को सही तरीके से समझा पाएंगी कि हमारी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, कुछ भी हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
1: चलिए सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक धर्म चक्र को बिगाड़ देता है?
3: सीधा जवाब, नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है, यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
2: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा फिर 2 महीने बाद गड़बड़ रही, तब क्या करेंगे?
3: देखो, हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है, खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती है, पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कहती है पीरियड्स पर असर नहीं।
1: ये फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं है। और भाभी, अब दूसरा सवाल, बांझपन शायद ये सबसे खतरनाक अफवाह है।
2: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इन सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
3: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है, पर उपलब्ध मिथक तय सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली और आज वे माँ हैं। एक गवाही तो साफ कहती है, 2010 में वैक्सीन ली, आज गर्व से माँ है। ये अफवाह को सीधे चुनौती देती है।
2: यह सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत न बन जाए।
3: समझ में आता है, लेकिन सोचो, अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें, तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का, जिसे हम बचाना चाहते हैं।
2: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी भी क्यों?
3: क्योंकि सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। पहले अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजार घरों तक पहुंच जाता है। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिस पर लोग खुलकर बात नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है, वहीं अफवाह और तेज लगती है।
2: हाँ, घर में भी यही होता है, पीरियड्स पर खुलकर कौन बात करता है, लड़की भी झिझकती है, पर माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डराने वाली बात आ जाए तो वह मन में बैठ जाती है।
3: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई गंदी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं, तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
4: ये बात सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशियाई समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का लाज बहुत गहरा होता है। इसलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
2: एक और डर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों, बाद में लगवा लेंगे।
3: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा सबसे बेहतर होती है, ये बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले। रोकथाम देर से नहीं, पहले की जाती है।
2: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत, तो क्या करेंगे?
3: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है, कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं।
4: अब एक सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन भाभी,
3: हाँ मैं बताती हूँ। इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है। गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं, हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी। हल्की अस्थायी प्रक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
2: अब मुझे लग रहा है कि हमने कितनी सारी बातों को बस किसी ने कहा के आधार पर सच मान लिया है।
3: यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है। कोई भी बात सीधे उसी पर असर डालती है। पर हमें यह पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं, तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
4: तो भाभी, चलिए अब एक छोटा सा मिथक बनाम तथ्य खंड करते हैं। सबसे पहला सवाल, और ये सवाल से ज्यादा मिथक है, HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं?
3: नहीं, उपलब्ध आधिकारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता। पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है।
4: अब एक और मिथक, HPV वैक्सीन से बाँझपन होता है?
3: आधिकारिक जागरूकता सामग्री इसे भी अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज माँ हैं।
4: अब भाभी, एक और मिथक है मेरे पास, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे, ये तो बहुत ज्यादा फैली हुई मिथक है।
3: जी बिल्कुल, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है।
4: अब एक और मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक है या नहीं?
3: बिल्कुल, मुफ्त होना इसका कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सबके लिए उपलब्ध होना है।
2: जब आप एक एक करके बताते हैं ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब गड़बड़ हो जाता है।
3: इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुद्दे को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
2: अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा आप टीका मुझे क्यों लगवाने ले जा रही हैं, तो मैं उसे क्या कहूँ?
3: कहना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है, यह टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वह पूछे क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं, डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वह पूछे क्या इससे मैं आगे चलकर माँ नहीं बन पाऊंगी, तो कहो यह झूठी अफवाह है।
4: ये भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं हो, भरोसा देने वाली होनी चाहिए। उन्हें ये महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपा कर नहीं, बल्कि उनसे बताकर और समझा कर लिया जा रहा है।
2: हमारे यहाँ तो कई बार बच्ची से पूछा भी नहीं जाता, बस बड़े लोग आपस में ही तय कर लेते हैं।
3: जी, और फिर बच्ची डर जाती है, इसलिए संवाद जरूरी है। बच्ची को समझाओ कि यह सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि यह किस लिए है, यह भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
4: बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आज का, स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह ना हो तो भरोसा नहीं बनता।
2: टीकन भाभी, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की, पहले तो वह हंस रही थी, कहती है अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उससे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यह भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वह बोली ठीक है अम्मा, हम आपके साथ चलेंगे।
3: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता है।
2: मैं तो यह भी सोच रही हूँ कि मेरी नंद की बेटी भी है, मैं उसे भी बताऊंगी, वह तो पीरियड्स का नाम सुनते ही तुरंत परेशान हो जाती है।
3: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बात जितनी खुलकर होगी अफवाह उतनी कम चलेगी।
4: और हाँ श्रोताओं, अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधिकारिक जनसंदेशों में ये भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग, समय पर पहचान और सुरक्षा की दिशा में होने वाले सारी जांचें महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफ किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफ वयस्क महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
2: ये बात मेरे मन में बैठ गई है, हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
3: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है उसी पर सच सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं स्वास्थ्य की बातें हैं।
2: और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है उसी पर सच सबसे ज्यादा बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, ये सब शर्म की नहीं स्वास्थ्य की बात है।
4: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता, सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत की, यानी सिर्फ टीका नहीं पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओं, यहाँ एक सामाजिक परत और समझने की जरूरत है। कई बार लड़की के स्वास्थ्य से जुड़े फैसले में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उसे कहा जाता है ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पे में सही स्वास्थ्य शिक्षा पनप ही नहीं पाती।
3: बिल्कुल, और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदारी, मोबाइल वीडियो, यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होनी चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
2: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है ना पूछना ही बड़ी गलती है।
3: और खासकर बेटियों के मामले में हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। यह दोहरा व्यवहार क्यों है? अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों, तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
4: ये बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद सम्मानपूर्ण हो।
2: एक बात और मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई छुपाने वाली बात हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजर फेर लेते हैं।
3: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं। इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि यह रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
4: और ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है उसका असर पूरे घर पर पड़ता है, कमाई, बच्चों की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सब पर। इसलिए रोकथाम को महिला का निजी मुद्दा समझना गलत है।
2: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की ओर सचेत नहीं रहते हैं, उनकी सेहत को लेकर लापरवाह हो जाते हैं।
3: इसलिए मैं कहती हूँ, बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ तीनों साथ चलें, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही लाभ कई सच में घर तक पहुँचेगा।
4: अब एक छोटा सा अभ्यास, मान लीजिए कोई आपसे कहे, मैंने सुना है HPV टीका लगने के बाद लड़की माँ नहीं बन सकती, आपका जवाब क्या होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधिकारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। और आपका तीसरा जवाब होगा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले टीका लिया और आज माँ हैं। और चौथा जवाब आपके पास में होगा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। ये चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकते हैं। आज की मुख्य बातें, HPV वैक्सीन से पीरियड्स प्रभावित नहीं होते, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है, ये बांझपन का कारण नहीं बनता, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। डर को दबाइए मत, पर उसके जवाब फॉरवर्ड से मत पूछिए, मत ढूंढिए। सबसे पहले अपने भीतर यानी अपनी जागरूकता को आगे लाइए, फिर डॉक्टर, आशा, ANM बहन जी या फिर किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से उसका पता लगाइए। बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
2: अब लग रहा है कि मैं ठीक से जवाब दे पाऊंगी, पहले बस घबरा जाती थी।
3: यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़ने पर दूसरों को समझा पाना भी है।
0: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे
5: साफ
0: सफाई और स्वच्छता का
5: साफ सफाई और स्वच्छता का
0: पालन करेंगे
5: ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
5: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
0: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।

भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपत्तियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
3: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
2: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
3: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
2: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
3: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, तहे दिल से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा वाले शो सुन सहेली में, जिसमें कि आपकी सहेलियां होती हैं, बहुत सारी बातें करती हैं। कुछ हम करेंगे गॉसिप, कुछ बताएंगे काम की बातें, और कुछ करेंगे बहुत सारी मस्ती और बहुत सारी आपके साथ शरारतों वाली बातें, मस्ती वाली बातें। क्योंकि आज का जो दिन है हमारा, वो भी है बहुत खास, क्योंकि आज है वेनसडे। और वेनसडे को आप सभी जानते हैं कि हमारा होता है वुमेन्स स्पेशल। तो आज क्या है ये बताते हैं, लेकिन उससे पहले भाई हमारी सुन सहेली में जो प्रथा है कि हम हमेशा सहेलियों के साथ आते हैं, कभी अकेले नहीं आते। तो आज हमारी सहेली हमारे साथ कौन है ये हम आपको गेस, एक काम करते हैं, कुछ आपको मैं हिंट देती हूँ, आप गेस करिए, ठीक है। ये वो हैं जिनकी हंसी से हमारा स्टूडियो गूंजता है, बहुत प्यारी हैं, बहुत क्यूट हैं, और बहुत क्यूट क्यूट नहीं, क्यूट क्यूट होने के साथ गहरी गहरी बातें भी करती हैं और बहुत सारा हमें हंसाती भी है। अब मुझे लगता है कि इतनी सारी जो मैंने आपको दे दी है हिंट, तो आप गेस कर लेंगे।
1: वो जब तक गेस करेंगे तब तक हम खुद ही बता देते कि भाई हमारा नाम है आरजे कांक्षा और आप सभी के साथ में हम मौजूद हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम यानी कि सुन सहेली के साथ में। लेकिन जो आपने बताया हंसी से गूंजता, भाई उसके साथ में कल ही एक इत्तफाक हुआ है, यकीन नहीं मानेंगी आप। हम गए थे अपनी एक प्यारी सी सखी से मिलने, एक नहीं दो सखियाँ थी हमारी, ठीक है, हम उनसे मिलने गए थे, मुलाकात करने उनके घर गए हुए थे। काफ़ी दिनों से मुलाकात पेंडिंग थी और जब हम गए तो उनके यहाँ उनका छोटा नन्हा मुन्ना बेबी मे बी 6 से 7 साल का रहा होगा, और मेरी हंसी सुन के जो चौक के उठाए कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मेरा भतीजा भी डरता है, वो तो मुझे समझ आता है, सोता हुआ बच्चा कैसे चौक के उठ सकता है।
0: सॉरी।
1: और वहीं पे ये कारनामा नहीं खत्म हुआ, ये कारनामा कुछ आगे बढ़ा यूं कि जब उनके मतलब हस्बैंड श्री आए तो उनको ऐसा लगा कि नॉर्मल हंसी है, मतलब घर के लोग क्या बात है, एक क्यूरियोसिटी नहीं होती कि आज इतना हंसी ठाके क्यों लग रहा है। और जब उनको ये पता चला कि हम हैं, वो भाग गए कहीं और ही, दूसरे ही कमरे में। हाँ, वो भाग गए। ये आलम था, मतलब कल क्या था मुझे खुद नहीं पता था। और मैं लगातार उनके घर जितनी देर बैठी थी, मे बी 1.5 घंटे, बस खाली हंस रही थी और मेरे कारण सभी हंस रहे थे। और वहाँ का जो माहौल था एकदम
0: पॉजिटिव
1: बहुत मस्त था।
0: ये उनकी जो सास थी, बात है।
1: उनकी जो सास थी उनको हमने कहा कि मतलब आप अपने जमान में पक्का दरोगा रही होंगी। भाई मेरे को डर लग रहा था उनसे, आती बैठती बोली,
0: आपको डर लग रहा था?
1: हाँ, मतलब वो इसलिए क्योंकि आई एकदम बैठी, जैसे होता नहीं वो ठाकुर साहब लोगों पुराने जमाने की मूवीज में होते थे 60s और 70s की, वो एकदम बैठी कह रही है कुछ सुनाओ, उनके हालचाल सुनाए दादी या कुछ और सुनाए। तो ऐसा वाला थोड़ा, मतलब बड़ा ही मजा आया था कल।
0: वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा है, और ये तो अच्छी बात है कि आपको मजा आया। तो लिसनर्स, आपको तो पता चल गया है, और मैंने जो हिंट्स दी थी उनसे भी, और साफ आपने सुन लिया हमारी सहेली से उससे भी। तो चलिए, आज हमारे साथ हैं आरजे आकांक्षा और देखते हैं कि आगे क्या होता है, और आगे होगा वही जो जो, जो क्या होगा,
1: जो जो जो होगा वो होगा और क्या।
0: तो चलिए, अब आते हैं हमारे आज के स्टार्टिंग वाले सेगमेंट पे, जो कि होती है बहुत ही प्यारी सी पोइट्री। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारी फीमेल लिसनर्स यानी कि फीमेल्स का दिन है भाई, वेनसडे है हमारा, तो इसलिए आज हम शुरू भी कुछ महिलाओं पर ही एक प्यारी सी कविता से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विधाता की सुंदर रचना है नारी, विधाता की सुंदर रचना है नारी, सृष्टि की ये शुरुआत और सबसे प्यारी, ममता की मूरत है और धैर्य की है ये खान, हर मुश्किल में जो मुस्कुराए उसकी अलग ही है शान, हर मुश्किल में जो मुस्कुराए उसकी अलग ही है शान, कभी बेटी कभी बहन कभी माँ बनकर वो जिंदगी सजाती है, हर रिश्ता निभाकर थकान मिटा देती है सबकी, खुद सब कुछ सहकर आगे बढ़ाती है वो हर बंधन खुद को तोड़कर।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, जब हम औरतें बंधन निभाने पे आते हैं तो कहीं ना कहीं खुद टूट भी जाते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा परिवार, हमारे दोस्त यार या फिर हमारे जो अपने हैं वो बंध के रहने चाहिए, ऐसा मानना है हमारा। फिलहाल आगे की लाइन मैं कंप्लीट करना चाहूंगी। उसके दम से है घर आंगन की रौनक, उसके ही चरणों में है जन्नत की ठंडक। भाई ठंडक की बात गर्मियों में, आहा क्या ही कहे। चलिए आगे बढ़ते हैं
0: जी।
1: मत समझना उसको कभी कमजोर या बेचारी, हर शक्ति का स्वरूप है
0: नारी।
1: सिर्फ नारी। और नारी के सम्मान बिना अधूरा है ये संसार, सदियों से देती आई है वो सिर्फ प्यार। नमन है उसकी हर एक उड़ान को जो रोशन करती है इस पूरे जमीन और आसमान को।
0: वाह, मतलब बहुत ही प्यारी सी लाइंस। और आज इन लाइंस का जो हम आपको एक मीनिंग समझाना चाहते हैं लिसनर्स, वो यही है कि जैसे आपने सुना ना कि विधाता की सबसे सुंदर रचना है नारी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आज हम आपको जो कहना चाहेंगे इस पोइट्री के थ्रू, कि थोड़ा सा उसे समझना चाहिए, थोड़ा सा उसे उसका टाइम देना चाहिए, और हर बार हर रिश्ते की कसौटी उसका टाइम देना चाहिए, और हर बार हर रिश्ते की कसौटी पर उसे ही नहीं परखना चाहिए।
1: और परखना, तो हम कहते हैं कि परखना मत, परखने में इंसान नहीं सब कुछ खत्म हो जाता है।
0: वाओ,
1: कभी परखना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं परखना चाहिए। गो विथ फ्लो, दैट्स अ रियल फैक्ट ऑफ लाइफ। अगर आप जैसा चल रहा है उसके साथ में नहीं जा रहे हो, तो आप फिर कहीं ना कहीं पिछली चीज़ों में उलझे हुए, या फिर आप भविष्य की चिंता कर रहे हो। और अगर आपने जब वर्तमान का रसन पान नहीं किया, मतलब आनंद नहीं उठाया, तो आपने लाइफ जी ही नहीं।
0: बिल्कुल सही। और आपको लिसनर्स पता चल गया है आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, जो कि है कि गो विथ फ्लो, यानी कि हमें समय की, कहते हैं ना कि जब आपके वश में कुछ भी ना हो तो समय की गति के साथ बहना सबसे अच्छा होता है। और कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि देखिए हमारे पास हमारा आज है, पास्ट में जो बीत गया हम उसे बदल नहीं सकते, फ्यूचर में जो होने वाला है वो तो हमें मालूम ही नहीं है ना कि हमारे साथ क्या होने वाला है।
1: लेकिन हमको लगता है ना कि हम बहुत बड़े होशियार हैं, हमको सब पता है।
0: लेकिन सब पता होता नहीं
1: है। बेशक जो चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि गो विथ फ्लो, ऐसा हो रहा है बस उसी के साथ चलते जाओ। क्योंकि जब हम उम्मीद लगाते हैं और परखने पे आते हैं, रिश्तों में तो कतई परखना नहीं, और सफाई तो कभी देने का ही नहीं। अगर सामने वाला आपको नहीं समझ रहा है तो फिर आगे बढ़ जाओ।
0: आगे बढ़ना क्या इतना आसान होता है?
1: आगे बढ़ना आसान होता नहीं, लेकिन समय के साथ साथ आपको वो सिखा देता है कि आगे बढ़ना कितना आसान होता है, और उससे आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाती है।
0: भाई मुझे तो सिर्फ ये पता था कि ये बहुत सारी अच्छी अच्छी हमारी जो सहेली हैं वो बातें करती हैं, लेकिन ये तो बहुत डेप्थ में, मतलब कहते हैं ना गहरी गहरी बातें, तो गहरी गहरी बातें भी करती हैं, और मुझे तो मतलब इनकी गहरी गहरी बातें सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप लिसनर्स कि आपको भी अच्छा लग रहा है, हमारी बातें आप भी इंजॉय कर रहे हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए रिश्तों में, अभी हमने जैसे पोइट्री में भी आपको बताया ना कि वो हर घर की रौनक होती है, सब कुछ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार हम अपने ही, कहते हैं ना कि शुरुआत जब भी कीजिए किसी भी अच्छे काम की या किसी भी चीज़ की, तो सबसे पहले अपने घर से करना चाहिए। एक लाइन कहते हैं ना कि अपना सुधार जग का सुधार। तो कहीं ना कहीं जब भी आप, वैसे हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि फीमेल्स को फ्रीडम देनी चाहिए, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ही घर की महिलाएँ होती हैं जिन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है। क्योंकि किसी भी रिश्ते की बात आती है तो सबसे पहले एक फीमेल को ही कहा जाता है कि नहीं तुम्हें निभाना है, और जो है हर उस पर निभाना है, फिर चाहे जो भी हो। इसलिए हमने एक लाइन भी इसमें जोड़ी थी कि हर आप खुद को तोड़कर भी वो हर बंधन निभाती है। तो कहीं ना कहीं कोशिश करें कि आपके ही घर में जो फीमेल्स हैं वो खुश रह सकें, और कहीं ना कहीं हर रिश्ते के लिए उन्हें अपने आप को या अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को या खुद को सैक्रिफाइस कहीं ना कहीं ना करना पड़े।
1: और अब तो मतलब ये तो कहने की बात हो गई है, जो जहाँ तक मैं दौर को आज के देख रही हूँ, आजकल मेल्स में भी सेम चीज़ पाई जाती है, वो भी टूटते हैं रिश्तों को लेकर के।
0: कहीं ना कहीं
1: आपको क्या लगता है?
0: होता है, बिल्कुल होता है। देखिए एक लाइन स्पेशली मेल्स के लिए कही जाती है कि जो है मर्द को दर्द नहीं होता, यू नो एक लाइन कही जाती है, बट कहीं ना कहीं वो लाइन आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं उस फीकी पड़ी है। पहले के टाइम में बहुत ज्यादा माना जाता था, बट अब ऐसा नहीं होता है।
1: नहीं नहीं, मर्द को दर्द तब भी होता था, अब भी होता और हमेशा होता रहेगा। दर्द ऐसी चीज है, वो इमोशन में आता है, और हमारे 14 मतलब साइकोलॉजी में पाए जाते हैं 14 तरह के हमारे इमोशंस, तो उनमें से एक ये भी है। और दर्द हम सभी को होता है, क्योंकि हम सभी प्राणी जगत के प्राणी हैं, हमारी अंदर फीलिंग्स हैं, और फीलिंग्स में एक दर्द भी आता है। बस ये होता है कि मर्द थोड़ा दिखाना कम करते हैं, थोड़ा कूलनेस में रहते हैं, और जो हम औरतें होती हैं वो ओवरथिंकर्स होती हैं और ज्यादातर जज्बाती ही होती हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी होता है कि एक जो मेल होता है उसको बचपन से सिखा दिया जाता है कि तुम्हें कितनी भी तकलीफ हो लेकिन तुम्हें सबके सामने दिखाना नहीं है कि तुम्हें तकलीफ है। जैसे कहते हैं ना कि आंसू, जब लोग कहते हैं ना कि मेल्स

0: होते हैं वो रोते नहीं है, रोना कमजोरी की निशानी होती है। तुम मेल हो घर के, तुम्हें सब कुछ देखना है तो तुम रो नहीं सकते हो। लेकिन इस थॉट को मैं नहीं मानती हूँ, बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आंसू कभी भी आपको कमजोर नहीं करते, वो आपको आगे के लिए दुगना मजबूत कर देते हैं। मैं अपनी बात बताना चाहूँगी कि जब मैं बहुत बीमार थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मेरी मम्मी से ज़्यादा मेरे पापा मेरे लिए परेशान रहते थे, रोते भी बहुत थे, बहुत परेशान रहते थे। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत बस ये है कि हम जो बहुत समय से चली आ रही है ना चीज़ें, कहते हैं ना कि एक पुरानी चीज़ों को, पुरानी प्रथाओं को, पुरानी बातों को कहीं ना कहीं हम चेंज करें और एक नई शुरुआत की तरफ जाएं और देखें कि चीज़ें नई तरीके से भी हो सकती हैं।
1: पुरानी चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जाता, पुरानी चीज़ों से सीख ली जाती है, इसीलिए शायद आज तक हम इतिहास पढ़ते आ रहे हैं। इतिहास में दर्ज जो भी कुछ गलतियां हैं, कुछ भी हुई हैं, तो उसे हमें सीख लेना होता है और उसके साथ आगे बढ़ना होता है। आगे की चीज़ें से आप करिए, क्रांति करिए, रिवोल्यूशन लाइए लाइफ में, बट पिछले की चीज़ों को देख के, उसको नज़र मद्दे रखते हुए और उसके बाद में उसे सीख लेके।
0: बट ऐसी भी तो होती है ना कि पास्ट में मतलब कुछ चीजें गलत भी हो सकती हैं, तो गलत चीजों से तो आई थिंक हम नहीं,
1: तो गलतियों से ही तो सीखता है इंसान।
0: ओके
1: खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे और चलेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर, और शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक से आएंगे फिर से आपके अपने, जी हाँ, वेंसडे स्पेशल सुन सहेली में, यानी कि विमेन सेंट्रिक डे के साथ।
0: लेकिन उसके लिए एक काम आपको करना पड़ेगा लिसनर्स, फिर हम आएंगे।
1: अरे
0: और वो ये है कि आप फटाफट से जो भी हमें सुन रहे हैं ऐप से, रेडियो गार्डन से, फ्रीक्वेंसी से, वो फटाफट से मैसेज करें और बताएं कि आपको हमारी बातें कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही है या नहीं। आपको एक प्यारा सा फीडबैक फटाफट से दीजिए और बस इस सॉन्ग के उस पार आते हैं, यू गए और यू आए।
1: मुझे तो लग रहा है कि सबको गर्मी ज्यादा लग रही है, सब पानी पीने चले गए।
0: हम भी पी लेते हैं।
1: हाँ चलिए चलते हैं,
0: चलिए।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली। वापस आ गई हैं आपकी सहेलियां आपको बातें बताने के लिए, बहुत कुछ आपसे डिस्कस करने के लिए। और आज जैसा कि दिन होता है हमारी फीमेल लिसनर्स का, लेकिन आज हम जो बताने वाले हैं, मतलब जो टॉपिक हमने लिया है, वो मेल फीमेल दोनों के लिए है, क्योंकि ये कुछ ऐसी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्पेशली गर्मी में सभी को होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हम बताते हैं, जो गर्मी के मौसम में कमज़ोरी, थकान, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों होती है, सबसे पहले तो ये बताते हैं आपको। तो गर्मी में क्या होता है ना कि हमारी बॉडी होती है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी मांसपेशियों को ना, आपकी बॉडी को ठंडा रखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कि हमें वीकनेस भी फील होती है और साथ ही साथ में हमारी बॉडी जो है, वो कभी कभी आपको फील होता है ना कि बिल्कुल स्थिर पड़ जाती है, तो वो भी इसी लिए होता है। और दूसरी जो रीज़न है वो होता है हमारी बॉडी में पानी की कमी। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो इससे भी आपकी बॉडी में वीकनेस होने लगती है, क्योंकि देखिए जब हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी से सोडियम और पोटेशियम जैसे जो मिनरल्स होते हैं ना, ज़रूरी मिनरल्स होते हैं, वो निकल जाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो होती है वो वीक पड़ती है। गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा पसीना होता है, इससे भी हमारी बॉडी वीक पड़ जाती है। लेकिन जब पानी की मात्रा प्रॉपर नहीं होती है, जैसे हमारी बॉडी में जितना हमें पानी की ज़रूरत होती है, अगर उतना नहीं होता है और ठीक से हमें स्वेटिंग नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में वीकनेस होने लगती है। दूसरा एक कारण होता है गर्मियों में शरीर को वीकनेस लगने का, वो ये होता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी भी हो। गर्मी में जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो खून की कमी होना ये बहुत ही, मतलब बहुत नॉर्मल है। ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ठीक से पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमें थकान भी लगती है और हमारी बॉडी में कई बार खून की कमी भी हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को हमेशा, सबसे पहले तो गर्मियों में पानी पिएं, ORS पिएं, और जहाँ तक हो सके नींबू चीनी पानी का घोल ज़रूर पीना चाहिए, और अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना ठंडा रखने की कोशिश करें। ठंडा रखने का मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी डाइट में कि जिन्हें हम खाएं तो जिनकी तासीर ठंडी होती है, और उनसे हमारी बॉडी भी ठंडी रहती है। जैसे दही ज़रूर खाना चाहिए, नींबू, खीरा ज़रूर खाना चाहिए, और मौसमी फल जो भी आ रहे हैं, जैसे कि मौसमी फल में हम बात करें केला, तरबूज, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर खाइए। इनसे आपकी बॉडी जो है वो ठंडी रहती है, और गर्मी जैसे कभी कभी हमें फील होता है ना कि शरीर बहुत गर्म है, तो वो गर्मी आपको कम लगेगी इनसे। दूसरी चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा तला हुआ मसालेदार और स्पेशली लाल मिर्च, लाल मिर्च गर्मियों में हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। किसी किसी को आपने कहते हुए सुना होगा कई बार कि मुझे वॉमिटिंग बहुत हो रही है या तबीयत ख़राब है, तो वो कहीं ना कहीं तभी होता है जब आप ज़्यादा मसालेदार खाना खा लेते हैं, इसलिए उससे परहेज करना चाहिए।
1: परहेज।
0: वैसे RJ आकांक्षा, ऐसे मिर्ची जैसे कुछ लोग भी होते हैं, नहीं होते हैं?
1: होते हैं
0: ना, उनसे भी परहेज करना चाहिए
1: बेशक। लाइफ में मतलब हरी मिर्ची तो ठीक है, लाल मिर्ची से
0: लाल मिर्ची नहीं ठीक है। जैसे देखिए, एक पता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए खाने में लाल मिर्च का परहेज करना चाहिए, वैसे लाइफ को अच्छा रखने के लिए जब आपकी लाइफ में लाल मिर्च जैसे लोग हो उनसे परहेज रखना।
1: और हरी मिर्च रखनी चाहिए, ऐसा मैंने क्यों बोला?
0: क्यों बोला?
1: अगर आप थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर सकती हैं तो करें, अदरवाइज मैं करती।
0: मुझे जहाँ तक पता है नहीं पता है, आप बताएं।
1: चलिए, हरी मिर्च चूंकि तोते को बड़ा पसंद होता है और तोते की भाषा सभी को बहुत पसंद आती है, एक तो ये कारण हुआ, ठीक है। और उससे बुध ग्रह मजबूत होता है, मतलब आपकी बुद्धि तेज होती है, हाँ, ज्योतिष के हिसाब से। और तीसरी बात अगर मैं कहूँ तो हरी मिर्च खाने से गर्मियों में अगर एक दाना भी हरी मिर्च का आपके पेट में पड़ा हुआ है तो आपका मतलब लू से आप बच सकते हैं, जैसे कि प्याज खा के आप लू से बच सकते हैं, सेम एक दाना हरी मिर्च, ज्यादा नहीं। और इसके अलावा जैसे कुछ लोग होते हैं, लोगों की बात की हरी मिर्च में, तो वो लोग आपको ये सिखाते हैं, आपका मतलब हाइपर कर देते हैं आपका माइंड, ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो आपके अंदर भरी पड़ी होती है वो बाहर निकलवा देते हैं। तो थोड़े से रिलैक्सेशन के लिए हरी मिर्च को थोड़ा सा रखना चाहिए लाइफ में, हमें लगता है।
0: लाल वाली नहीं रखे
1: क्योंकि उससे जलन होती है काफी लंबे समय तक होती है, तो जो लाल मिर्च वाले लोग होते हैं वो आपको काफी लंबे समय तक ज्वलित करेंगे आपके अंदर के तासीर को। तो हरी वाली सही है कि आपने निकाल के फेंक के खत्म किया जो भी आपके अंदर था।
0: तो हरी मिर्च अब से हम अपनी डाइट में और लाइफ में रखेंगे, और लाल वाली को ना डाइट में रखना है ना लाइफ में रखना है।
1: बेशक
0: निष्कर्ष ये निकल कर आता है हमारी बातों का।
1: हाँ, अब हमें लगता है कि हमने जो बोला है सही बोला हमारी समझ से, बाकी
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लिसनर्स, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए जो हम खाते हैं, स्पेशली मुझे लगता है कि ज़्यादातर गर्मियों में जो लोग शिकायत करते हैं ना कि आपने किसी किसी को कहते सुना होगा कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, लूज मोशन होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो आपने लाल मिर्ची, पता है लाल मिर्ची नहीं, तला हुआ भी नहीं खाना चाहिए। तले हुए का सेंस है जैसे पकौड़ी और समोसे, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। गर्मियों में गर्म खाना कभी नहीं खाना चाहिए,
1: और गर्मियों में हम पानी बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो उससे भी मतलब पेट हमारा साफ होता है, कई दफ़ा हमें जाना पड़ता है।
0: हाँ,
1: ये भी होता है क्योंकि हम पानी का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं तो इस वजह से हमारे पेट में जब पानी पानी है तो बाहर निकालने जाना ही पड़ेगा। तो ये भी होता है। तो आप अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है कि लूज मोशन आपको लग रही है तो आप ज़्यादा मतलब उसके लिए सीरियस मत होइए, हो सकता है आप खाने की जगह पानी ज़्यादा सेवन कर रहे हो, तो इसलिए तो इतना नॉर्मल है। मतलब थोड़ा सा लोग लड़कियाँ जो खास करके डाइट करती हैं पतले होने के लिए, अगर आप थोड़ा सा हो भी जा रहे हैं तो समझ लीजिए बस मौसम का तकाजा है, 2-4 दिन मतलब जब तक गर्मी है 10-15 दिन या 20 दिन या 1 महीना, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाना है। तो आप खुश हो जाइए कि आपको बिना डाइट के डाइट हो रहा है आपका।
0: बिल्कुल। एक बात और बता दूं कि वीकनेस लगने का एक कारण ये भी हो सकता है कि ब्लड प्रेशर लो हो, इसलिए ब्लड प्रेशर आप चेक करते रहिए, और अगर आपका लो है तो आप उसकी मेडिसिन ज़रूर लें। क्योंकि देखिए लो बीपी में क्या होता है ना कि कई बार हम नहीं ध्यान देते हैं कि अरे चलो रहने तो छोड़ो हटाओ ठीक है वीकनेस ठीक हो जाएगी, लेकिन वो जब बहुत पीक पे पहुंच जाती है तो फिर चक्कर और बाकी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ की केयर करना बहुत ज़रूरी है।
1: लेकिन प्यारी बहन अंशिका, जब इतनी तेज़ धूप में कोई निकल रहा है और उसको धूप से चक्कर आ रहा है तो उस जगह पे उसको क्या करना चाहिए? बीपी का टेस्ट करना चाहिए या कुछ और है आपके पास में?
0: अगर धूप में हो रहा है, जैसे कि अभी आपने बोला ना धूप के कारण से चक्कर हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप जब भी बाहर निकल रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने वर्क प्लेस पे आप ऑफिस भी जा रहे हैं, तो एक पानी का बॉटल, और अगर हो सके तो उस पानी के बॉटल में चीनी पानी और नींबू का आप घोल रखिए, और
1: हल्का सा नमक भी। और इसके अलावा आप सौंफ का पानी भी रख सकते हैं।
0: हाँ।
1: इसके अलावा आप मतलब जो आप फ्लेवर पसंद,
0: बिस्किट का पैकेट जरूर रखें।
1: हाँ, और सादा पानी, क्योंकि आज इस टाइम क्या है गर्मियों में हम देख रहे हैं खाने की जगह हम पानी ज्यादा सेवन कर रहे हैं।
0: हाँ।
1: वो हम थाली में खाना लेके बैठे लेकिन हम खा नहीं पा रहे, तो चूंकि हम पानी भी बार बार बहुत ज्यादा पी रहे हैं तो केवल पानी मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। उसमें आप अपने फ्लेवर के हिसाब से जो आपको हेल्दी लगते हैं मिनरल्स उसको ऐड कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, पानी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कुछ लोगों का, जैसे मैंने कुछ लोगों को ये बात कहते हुए सुना है कि अरे थोड़ी तो दूर जा रहे हैं क्या करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। और रास्ते में जैसे एक एक सिप लेते हुए, अगर आप ऑटो से जा रहे हैं पैदल जा रहे हैं कैसे भी,
1: ऐसा तो आप बता रही कि मुझे लग रहा है कि मैं ऑटो से जा रही हूँ, बेल का शरबत दिखता है रुक नहीं पाती, गन्ने का रस दिखता है रुक नहीं पाती, नींबू पानी और पुदीना दिखता है रुक नहीं पाती, तो मैं एक एक सिप सबसे लेके चलूंगी।
0: अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब तो बॉटल का पानी जो आपके पास है उसका आप एक एक सिप लेते हुए चले।
1: थैंक गॉड मुझे याद आ गया, मैं वापस आ गई।
0: क्या अभी नहीं, ये जरूरी होता है पता है, क्योंकि देखिए अगर स्पेशली जो पैदल जाते हैं उनके लिए जरूरी होता है, क्योंकि देखिए थोड़ी देर हम धूप में चलते हैं तो जैसे एक लगने लगता है ना कि बहुत ज्यादा वीकनेस कभी कभी फील होने लगती है, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी चलते चलते पीते रहेंगे तो इससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी, स्पेशली गर्मियों में।
1: बिल्कुल सही बात है। और
0: वैसे बॉटल हो तो शरबत भी भरवाया जा सकता है, ये अच्छा आइडिया है, गुड
1: है ना।
0: हाँ, पानी खाली करके और गन्ने का शरबत,
1: यार मैं तुमसे
0: बेल का शरबत, और क्या और
1: नहीं,
0: क्या बताया
1: था, मैं दस रही ना, मेरी बात तो सुनो, मैं गलत तो सुन, तू तो सुनते ही नहीं हो ना।
0: अच्छा,
1: प्रॉब्लम
0: सुन
1: ये है। हाँ,
0: सुन रहे,
1: सुनो, तो हम पियेंगे, जो पियेंगे वो होगा हमारा नारियल पानी।
0: अच्छा,
1: दही होगा, लस्सी
0: अच्छा
1: होगा, छाछ होगी, छाछ में हल्का सा भुना हुआ जीरा होगा, काला नमक होगा, इसके साथ में सत्तू का शरबत हो गया, बेल का शरबत हो गया, पुदीने वाला पानी हो गया, गुलकंद का दूध हो गया, ORS का मतलब भी पी सकते हैं डॉक्टर के हिसाब से, नींबू पानी भी है, और बहुत कुछ है भैया, इतना कुछ है हमारे पास में। और हाँ, सौंफ वाला पानी तो मैं भूल ही गई, सौंफ वाला याद है ना आप लोगों को, जो हम बचपन में हमारी दादी नानी बैठती थी सिलबट्टे पे पीसती थी, उसमें चीनी हो गया, पुदीना हो गया, और फिर उसको घोला जाता।
0: आम पन्ना भी पी सकते हैं,
1: आम पन्ना, ए भैया इतना सब कुछ है, खाते खाली पानी ना पियो हो।
0: मतलब ये वैरायटीज हमने आपको बता दी बहुत सारी। नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना सादा पानी नहीं पीना, मतलब नहीं पसंद होता है।
1: हाँ।
0: तो उसमें हमने आपको वैरायटी बता दी, नारियल पानी हो गया, और क्या था, बेल का शरबत हो गया।
1: से हम पूरा ग्रंथ खोले, कहाँ से निकाल के लाए थे बताओ, पूरा रास्ता तुमने मुझे याद दिला दिया, रिक्शा वाला तो मैंने बता दिया था।
0: ओके ओके
1: हाँ, तो इतनी सारी चीजें होती है दोस्तों, इसलिए सादा सादा पानी से बेटर है आपकी मतलब शरीर को ये थोड़ा सा तरावट देंगी। और भोजन हाँ। से मैं ये कहूंगी कि आजकल फल में तरबूज है, खरबूज है, और अंगूर भी है, संतरा भी है, लीची भी है, अब तो साथ ही साथ में बहुत सारे और भी फल्स हैं जो आ गए हैं, फल्स हैं मतलब हाँ, जो आ गए मार्केट में, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। और आपको पता है बच्चे जितने प्यार से खाते हैं ना, दांत वाले बिना दांत वाले सभी खा सकते हैं तरबूज।
0: हाँ ये तो सही कह रही है।
1: चलिए तो खाने जाना है, अभी और कुछ कहना है आपको?
0: मैं खाने
1: भाई खाने की बात आती तो मैं बस खाने पे ही रहती हूँ।
0: नहीं नहीं खाने तो नहीं जाना है, क्योंकि खाने फिलहाल हम नहीं जा सकते। हाँ। लेकिन आज रास्ते में जब मैं जाऊंगी हाँ। तो मैं देखूंगी कहाँ गन्ना बेल शरबत और जो भी इन्होंने नारियल पानी और क्या था और भी कुछ
1: सत्तू का था,
0: सत्तू का था,
1: नींबू पानी था, पुदीना पानी था, गुलकंद का दूध था।
0: अच्छा अच्छा तो इसमें मैं देखूंगी कि कौन कौन सी वेरायटी मेरे हिसाब से अवेलेबल होगी। Okay. तो मैं देखती हूँ कि मैं उनके साथ क्या कर सकती हूँ।
1: और एक बात, और एकदम से धूप से जाके तुरंत टूट नहीं पड़ना है। हाँ। और बहुत चिल्ड तो कतई नहीं पीना है, नॉर्मल हल्का फुल्का ठंडा सही रहेगा, वरना आपको जुकाम हो जाएगा फिर। आप एक तो गर्मी से जूझ ही रहे, ऊपर से जुकाम, भाई क्या ही बोले।
0: बिल्कुल, तो चलिए लिसनर्स, आई थिंक कि हमने आपको बहुत सारी वो क्या कहते हैं वैरायटी दे दी है, और आई होप कि आप इसमें से कुछ ट्राई करना चाहेंगे। फिलहाल हम चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, बस यूं गए और यूं वापस आए स्टूडियो।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर वापस से आपके अपने पसंदीदा वाले शो सुन सहेली में। और वापस आ गए हैं हम फिर से किसी एक टॉपिक पर बात करने के लिए। वो टॉपिक क्या है ये चलिए आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं सीधा चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर्स हैं जिन्होंने अपनी अटेंडेंस जो है वो लगा दी है। और
1: आपका तो सीधा है, मेरा टेढ़ा है, मैं कैसे आऊँ
0: क्या
1: चैट बॉक्स में?

0: कोई बात नहीं, हम टेढ़े को सीधा कर देते हैं.
1: ओके
0: चाहे चलिए खैर. ओके तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ प्रबल मिश्रा जी को जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून प्रबल जी, कैसे हैं आप? और साथ ही में लिख रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू. और प्रीति शुक्ला जी आ चुकी हैं जो कि हमें बहराइच से सुनती हैं, लिख रही हैं दोनों आरजेस को शुभ दोपहरिया. शुभ दोपहरिया आपको भी. नागेश्वर जी लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून.
1: साथ में जो लाई हो तो देखा ही नहीं आपने.
0: ओ रोज
1: गर्मियों के नाम,
0: स्माइली है, आइसक्रीम है, तरबूज है, मिर्ची है और भुट्टा है.
1: भुट्टा है लेकिन वो मिर्ची नहीं है.
0: हाँ,
1: मिर्ची ही है.
0: मिर्ची लग रही है.
1: हमें लग रहा बैंगन है. नहीं नहीं मिर्ची,
0: मिर्ची है.
1: और भी लाल वाली हमने जो मना की थी.
0: हाँ इसीलिए उन्होंने वो आइकॉन में भेजी है कि हमें याद रहे कि हमने मना की थी.
1: ओके
0: गुड आफ्टरनून मैम. नमस्कार नागेश्वर जी लिख रहे हैं. नमस्कार आपको. और लिख रहे हैं इतनी गर्मियों में भी हरी मिर्ची. अभी हमने आपको फायदे बताए ना नागेश्वर जी के, क्या क्या होते हैं उसके. कमल नैन जी लिख रहे हैं शुभ दोपहरिया मैम. शुभ दोपहरिया कमल नैन जी. आशु मिश्रा जी लिख रही हैं गुड आफ्टरनून दोनों आरजेस को. गुड आफ्टरनून आपको भी. गर्मियों में लूज मोशन होना आम बात है. नींबू पानी पीने की खास हिदायत देते हैं डॉक्टर. बिल्कुल बिल्कुल सही नागेश्वर जी.
1: और हम तो कहेंगे कि दही का शरबत पीजिए.
0: दही का शरबत.
1: ओके अच्छा वो जो बढ़िया वाला
0: ओके
1: दही होता है.
0: और इसी के साथ मीनू जी आ चुकी हैं जो कि गोंडा से सुनती हैं. लिख रही हैं गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं आप दोनों? तो बताइए कैसे हैं आप.
1: हम क्या बताते, हम तो जैसे थे बस वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे, बदलना थोड़ी है.
0: हम बहुत अच्छे हैं. आप कैसी हैं मीनू जी?
1: हम और तो इसी भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे.
0: बिल्कुल वैसे ही रहिएगा, कभी मत बदलिएगा. और नागेश सॉरी दक्षा अंसारी जी लिख रही हैं गुड आफ्टरनून डियर मैम. गुड आफ्टरनून आपको भी. और ऐसा मुझे ये अपनी बातों में मतलब घुमा देती हैं कि मैं नाम लिखने दरक्षा जी का पढ़ने वाली थी, मैं नागेश्वर जी का नाम पढ़ रही हूँ. बताइए
1: कोई बात नहीं, आपने कही है दरक्षा ही पढ़ा है, दरकशा नहीं पढ़ा है.
0: नहीं दरकशा तो नहीं पढ़ेंगे.
1: नहीं एक लोग हैं हमारे यहाँ की आरजे जो इन्हें दरकशा बुलाती हैं.
0: हो सकता है,
1: हो नहीं सकता है, एक्चुअली होता है,
0: हो जाता है कई बार.
1: हो जाता है कई बार नहीं, वो वही बुलाती हैं.
0: तो हो सकता है उस नाम के पीछे उनका कोई मतलब वो हो.
1: नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं जस्ट तुमको तुम्हारे साथ खेल रही थी और मैं खेल गई.
0: आई नो वेरी वेल कि आप मेरे साथ खेल रही थी.
1: नहीं बट ये भी सत्य है जो मैंने कहा.
0: हाँ ठीक है, मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप झूठ कहते. हो गया
1: हो गया, अब आगे बढ़ते हैं.
0: Okay, हमारा खेल पूरा हो गया लिसनर्स, अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे क्या बताने वाले थे.
1: हाँ जी, तो आज आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली, वो भी खेल खेल में. चलिए देखते हैं
0: खेल खेल में क्या होगा. खेल खेल में क्या होगा ये भी बता देते हैं. ओके
1: अब मैं खेल खेल में गर्मियों के दिनों में रैशेस हो जाते हैं, आपको नहीं पता.
0: हाँ,
1: है
0: ये तो हो जाते हैं.
1: और क्या क्या हो जाता है?
0: और हो जाती है हमारे पैर के तलवों में जलन बहुत ज्यादा हो जाती है.
1: ओहो तो इसका कोई उपचार?
0: उपचार है लेकिन पहले क्यों होता है ये बताते हैं, फिर उपचार बताते हैं.
1: अच्छा हाँ क्यों होता है भाई, मैंने बताया ना खेल खेल में.
0: खेल खेल में नहीं होता है, हमारी कुछ ऐसी लापरवाही होती है जिनके कारण से होता है.
1: ओके लापरवाही के घाल मेल में. चलिए आप बताइए वरना मैं ऐसे आपको घुमाती
0: हूं. पहली लापरवाही जो होती है वो होती है कि हमारी गर्मी में हमारे पैर की जो नसें होती है ना उनमें खून का दबाव बहुत धीरे हो जाता है. और वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे किसी किसी को आपने देखा होगा ना कि सैंडल पहनने की हैबिट होती है या शूज भी पहनती है तो बहुत टाइट फीते बांधते हैं शूज के. और अगर सैंडल होती है बंद करने वाली तो हम बहुत टाइट खींच के बंद करते हैं, बिल्कुल पैरों को वो नहीं मतलब ईजी नहीं मिलता है पैरों को कहीं ना कहीं. तो इस वजह से हो जाता है. इसलिए हमेशा जब भी आप शूज पहने तो हल्के से और ढीले हों, और अगर आप सैंडल पहने तो हल्का ढीला बस इतना रखिए कि पैरों को थोड़ा सा यू नो फ्री मिले. बहुत टाइट कभी कसाव पैरों पे नहीं होना चाहिए. और दूसरी बात, गर्मियों में जब भी आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं मतलब अपने घर में ही कई बार हम बरामदे में या ऐसी खुली जगह जाते हैं जहाँ पे धूप होती है तो कई लोगों को हैबिट होती है नंगे पैर जाने की.
1: हाँ?
0: या किसी किसी को आदत होती है घर में नंगे पैर चलने की. तो अगर आपको भी ये आदत है तो कोशिश कीजिए कि जहाँ पे धूप बहुत ज्यादा हो वहाँ नंगे पैर न जाएं.
1: क्यों ना जाए, किसी को अगर डांसिंग स्टेप सीखना है तो क्यों ना जाए. कोई अगर किसी को आज तक डांस नहीं आया और वो पार्टी में जाके नाचना चाह रहा हो तो धूप में जाके ऑटोमेटिक इंसान डांस सीख जाता है. ये आप कब समझेंगे आरजे अंशिका जी?
0: जब तक सॉरी जब आप समझाएंगी आरजे आकांक्षा जी. और बहुत अच्छे से हम समझ भी गए. तो किसे डांस सीखना है और कौन डांस क्लास में आना चाहता है?
1: हाँ जी
0: क्या करके बताएं?
1: आइएगा नहीं, आना नहीं है आपको, अपनी छत पे जाना है. हाँ. आपके आंगन में जाना है जहाँ बहुत तेज धूप हो.
0: उसके वो डांस क्लास खुद
1: ओई माँ ओई माँ ये क्या हो गया, इस गाने पे बहुत अच्छा डांस होगा, बता रही मैं, यकीन मानिए. अंशिका जी प्लीज कंटिन्यू.
0: यस यस श्योर. तो लिस्नर ऐसा है कि आप ऐसी चीज पहली बात तो बिल्कुल बता ना चाहिएगा। और दूसरी बात ये कि आई एम सीरियस,
1: सीरियसली हो तो भून भी लू मैं पाओ न भू ना जाए। सॉरी यार मैं निकल जाता है फ्लो
0: में, आई अंडरस्टैंड। तो देखिए इतना हंसी करने का और इतना आपको फनी वे में बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि कभी भी टेरेस पर या बरामदे में नंगे पैर, स्पेशली धूप के जब बहुत ज्यादा पीक पे हो, तो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जो फर्श होते हैं ना वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है,
1: चोटिल हो जाते हैं बेचारे।
0: और उसमें जब आप नंगे पैर चलते हैं तो पैर में जैसे कई बार होता है ना कि जलन, बहुत लोग शिकायत करते हैं कि तलवों में बहुत ज्यादा होती है, उसका मेन कारण वही होता है। जैसे हम कई बार सोचते हैं ना अरे किचन तो इतनी ही दूर है, लाओ दो कदम तीन कदम या थोड़ी दूर है, लाओ चल के चले जाए, नंगे पैर क्या हो जाएगा। लेकिन वो जितना भी आप चले 5 कदम 10 कदम उतने में हो गया उस वो आपके पैरों को वो गर्मी मिल जाती है जिसकी वजह से आपको जलन होती है। तो स्लीपर्स पहन के चलिए। और दूसरी चीज अब आते हैं कि इसको सही कैसे करना है। तो इसको सही करने के लिए सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छी सी मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। करना क्या है कि अपनी फ्रिज से निकालिए एक बढ़िया सी बॉटल जिसमें अच्छी सी बर्फ जमी हो। अच्छी सी बर्फ का मतलब है वो कभी कभी होता है ना बॉटल के ऊपर भी बर्फ हो जाती है,
1: हाँ, उसको ले जाके उसी धूप में पटक देना है, पूरा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद धुआं धुआं होगा, क्योंकि जब आप गर्म तवे पे पानी नहीं, आप जब गर्म तवे पे पानी डालते हैं तो उसमें से भाप बन के निकलता है, तो बस कुछ ऐसा ही होगा और आपका जो फर्श है वो पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, फिर आप आराम से चल सकते हैं और आपके तले में बिल्कुल जलन नहीं होगी। मैंने ऐसा इमेजिन किया, अब आप बता सकती हैं।
0: अरे अरे नहीं नहीं नागेश्वर जी, फर्श की चिंता नहीं है, आपके पैरों की ही चिंता है, बता रहे हैं पैरों के लिए क्या करना है। तो पैरों के लिए करना ये है कि वो आपको बॉटल लीजिए और उस बॉटल को आप फर्श पे, मतलब अपने रूम में आप फर्श पे रख दीजिए।
1: देखा, इन्होंने भी वही किया,
0: रुक जाइए रुक जाइए आकांक्षा जी, पूरा सुन तो लीजिए।
1: हाँ।
0: और क्या करना है आपको कि नीचे रख देना है और उस पे अपने पैर रखिए, और जैसे बॉटल को चलाते हैं ना पैर रख करके, वैसे चला चला के जब आप अपने तलवे को उससे जो ठंडा, जब आप उससे सेकेंगे बर्फ से, तो उससे बहुत आराम हो जाएगा।
1: अच्छा मुझसे एक और बात याद आ गई है,
0: बताइए।
1: क्या मैं इंटरप्ट कर सकती
0: हूं? श्योर श्योर।
1: हाँ, लोग बोलते हैं,
0: नहीं कहूंगी तब भी आप करेंगे, कंटिन्यू।
1: ओके, लोग कहते हैं ना कि मतलब 10 रुपए की नोट थी मेरी चल गई, और हम आज तक रख के उसे कहते हैं बेटा चल चल चल, चलती नहीं है।
0: बहुत दुखद समस्या है। क्या किया जाए?
1: भाई मेरे प्यारे लिसनर, बताइएगा कि 10 रुपए की नोट आखिर में बाकी सबकी चलती, मेरी क्यों नहीं चलती है,
0: बताइए लिसनर्स। क्योंकि मैं तो नहीं बता सकती हूँ, तो आप बता सकते हैं।
1: हाँ, चलिए फिर बर्फ का बॉटल ही आगे चलाते हैं।
0: हाँ नहीं, ये एक एक्सरसाइज होती है एक तरीके की, जब आप बॉटल पे पैर रख करके उसको से चलाएंगे ना, तो उससे बर्फ की जो आपके पैर को मतलब सेक मिलेगी, उससे वो जलन बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि रात को सोने से पहले अपने पैरों को अच्छी तरीके से ठंडे पानी से धुलें। और हम क्या करते हैं कि जब हमें पैर धुलने के लिए कहा जाता है तो हम सिर्फ तलवों पे पानी डालते हैं, लेकिन हमेशा जब भी आप पैर धुलें तो घुटने के नीचे से पूरा पानी डाल करके अच्छे से पैरों को धोना चाहिए। और अगर फिर भी आपकी जलन ठीक नहीं होती है तो आप अपने पैरों में, मतलब पैरों को कुछ देर तक ठंडे पानी में डाल करके भी रख सकते हैं, उससे ठीक हो जाएंगे आपके पैर।
1: ध्यान रखिए,
0: पक्का।
1: क्या लीटर पानी रही बाल्टी में?
0: अरे कुछ 20-25 लीटर होगा तो काफी रहेगा,
1: है ना?
0: हाँ हाँ, आराम से।
1: कितनी देर तक वो ठंडा रहेगा?
0: ठंडा रखने के लिए, हाँ ठंडा रहेगा।
1: पका? नहीं, मुझे लगा ना कि जैसे जमीन में गड्ढा करके फिर उसमें बाल्टी डाल के तब रखेंगे, तब वो काफी देर तक चलेगा। ऐसे ही सब्जी वब्जी रखते हैं ना भाई साहब लोग, बोरी में ढाक वाक के।
0: लिस्टर साहब, हमारे उस पर बिल्कुल मत जाइएगा, आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा। आप बस एक,
1: नहीं आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट।
0: नो नो, यू कांट डू इट। आपको बस इतना करना है कि कोई भी मतलब टब या कुछ भी आप ले लें, उसमें ठंडा पानी भर लें, बस उतने जितने में आपके पैर उसमें अच्छे से डूब जाए, और बाकी गड्ढा नहीं खोदना है, ऐसा।
1: डूबने के बाद इंसान रह कहा जाता है?
0: मैंने पैर डूब जाए कहा, इंसान डूब जाए नहीं कहा। क्या कर रही है आप आज आकांक्षा जी?
1: मजाक कैसा लगा मेरा मजाक?
0: बहुत मस्त लगा आपका मजाक मुझे।
1: चलिए फिलहाल शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर चलते हैं, फिर आके बताएंगे गर्मियों में होने वाले रैशेज जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देते, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या फिर जवान, हर किसी के लिए एक ही समाधान हम लेके आते हैं ब्रेक के बाद।
0: मतलब रैशेज के अलावा मुझे लगता है और भी कुछ परेशान करता है, लिसनर्स को भी पता होगा आई थिंक।
1: हाँ, मेरा मजाक मुझे पता है।
0: नहीं, मैं आपका मजाक मुझे परेशान नहीं करता है, यही तो अच्छी बात है।
1: ओहो, फिर क्या है खबर? खबर खुजली।
0: अब अगर मैं नहीं कहूंगी एनालिसिस कि क्या है तो ये उसके मुझे 1000 ऑप्शन बता देगी, ये अंशिका जी, ये अंशिका जी, इससे अच्छा है चलिए हम आपको गाने सुनाते हैं, आप सुने और
1: आप सुनिए, आप अपना माइंड फ्रेश करिए, तब तक हम थोड़ा सा और दिमाग लेके आते हैं पीछे।
0: बस यू गए और यू आए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा वाला शो सुन सहेली। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बहुत सारी बातें कर रहे थे और बहुत बातों के साथ हमने आपको बहुत सारी और भी चीजें बताई है ना।
4: बता रहे थे हम, बस बताते बताते चले गए थे कुछ लाने।
3: और क्या लेकर आई हैं आप?
4: बहुत प्यारी सी जानकारी,
3: तो बताइए।
4: जी हाँ, बता देते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का मैं वापस से वेलकम करना चाहूंगी, और आज अपने शुभ दोपहर यानी किसी को विश किया।
3: हाँ, ये देखो, ये मतलब ये होता है कि मैं इनके साथ ये भी भूल गई कि मुझे शुभ दोपहर या विश करना था। चलो कोई बात नहीं, हम आते आते नहीं मतलब आते आते हमने विश नहीं किया, लेकिन अभी टाइम होने वाला है जाने का, तो आज हम जाते जाते विश कर देते हैं।
4: ओके।
3: तो आपके बहुत ही पसंदीदा शो सुन सहेली को आप सुन रहे हैं, और सुन सहेली में हमारी जो औपचारिकता है वो हम कहना चाहते हैं कि आप सभी को हमारी तरफ से यानी कि हम दोनों की तरफ से
4: शुभ दोपहरिया। जी हाँ, और अब चलते हैं उस टॉपिक की ओर जो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि गर्मियों में पसीना, धूल, धूप और शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से बच्चे हो, युवा हो या फिर हो बुजुर्ग, सभी को हो जाते हैं रैशेज यानी कि घमौरियां, चकत्ते, ऐसे वाली चीजें, और सही देखभाल से ही इनमें मिल सकता है आराम। इसलिए तो क्या क्या करना है हमें इंतजाम, चलिए बता देते हैं।
3: बताइए।
4: तो करना ये है कि अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है, आपको ऐसा कुछ हुआ है, तो ठंडक बनाए रखना है शरीर में, यानी कि दिन में 2 से 3 दफा कम से कम आपको सामान्य वाटर से, ना कि बर्फ डाल के स्नान करना है यानी कि नहाना है, और बहुत टाइट या सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने हैं, लूज कपड़े पहने गर्मियों में, क्योंकि आपके शरीर को भी सांस की आवश्यकता है। और इसके अलावा सूती और कॉटन ढीले कपड़े पहने ताकि त्वचा सांस ले सके, और पसीना सूखा के रखे। मतलब ये नहीं कि आप उसको, रुमाल है आपके पास में तो उसको आप रगड़ रगड़ के पूछ, मैंने देखा है कि बहुत सारी माएं होती हैं बच्चों का एकदम घिस देती हैं, ऐसा लगता है आज यहीं पे सारा साबुन खत्म कर देना है, और उनको ये नहीं याद होता कि साबुन नहीं कपड़ा है,
3: पूरी ताकत उसी पे लग जाती है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बहुत आराम से।
4: बिल्कुल, चूंकि होता क्या कि जब आपके पसीना होता है तो उसमें से, जैसे आप ये समझिए एक बहुत ही मुलायम सा कपड़ा है कोई, और उसको आपने मतलब अपनी त्वचा ही समझ लीजिए भिगो दिया, उसके बाद में क्या होता है, बाल समझ लीजिए, मैं बाल से समझाऊंगी कि अगर आपने बालों में पानी नहीं लगा तो मुलायम नहीं हुई है उसकी जड़ें, तो उस टाइम पे ज्यादा बहुत ज्यादा बाल आपके नहीं टूटते हैं, और जब गीले बालों में आप कंघा लगाते हो तो बहुत सारे बाल टूटते हैं। तो ऐसे ही आपका त्वचा भी होता है, उस पे आपके रैशेज ज्यादा बढ़ जाएंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपको कटान हुई है उसमें जलन होगा, तो कपड़ा बहुत हल्के सॉफ्ट हाथ से, कॉटन बहुत ही मुलायम, कोशिश करें कि आपका जो भी हैंकरचीफ है मतलब जो आपकी रुमाल है उसको बहुत सॉफ्ट कपड़े वाला ही रखें, और बस हल्का हल्का ऐसे पोंछ लेना है, ये भी नहीं कि एकदम से सुखा ही देना है,
3: नहीं
4: आज हम सुखा के ही मानेंगे। हाँ, उसको नेचुरली छोड़ दीजिए, हवा लगने पर जो सूखेगा वो ज्यादा बेस्ट है।
3: ओके।
4: इसके अलावा क्या होता है कि आपको क्या करना है, नीम के पानी से आप स्नान कर सकते हैं। अगर आपके घर में नीम विम है तो आप जैसे जब नहाना है तो आप उसको उबाल के भी, मतलब चाहे तो ठंडा करके या फिर ऐसे ही नॉर्मल, या फिर नीम वाला साबुन अब तो मार्केट्स में आते हैं तो ऐसे साबुन ले सकते हैं। डेटॉल ज्यादातर लोग यूज करते हैं क्योंकि डॉक्टर ज्यादा प्रूव्ड होता है। तो मतलब अपने अपने हिसाब से लोग नहाते धोते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अगर प्राकृतिक थोड़ा सा एहसास लेना चाहते हैं तो नीम का इस टाइम पे उपयोग कर सकते हैं स्नान के दौरान। इसके अलावा चंदन का लेप ले सकते हैं। चंदन का लेप सोने से पहले लगा लीजिए, पैक या कुछ भी अगर आपके पास में। इससे क्या होगा कि आपकी त्वचा जो है वो थोड़ा सा हेल्दी फील करेगी। गर्मी बहुत बुरी हो रही है, आप सभी को पता है, रात में भी ऐसा हाल हो जाता है फेस का कि मतलब चार दफा आपको उठ के मुंह धुलना ही पड़ता है।
3: बिल्कुल,
4: चाहे आप एसी में हो, कूलर में हो, कहीं भी हो, वो पता ही नहीं चल रहा है।
3: इतना वेदर जो है उसने इतना वो कर रखा है, बिल्कुल
4: टेम्परेचर को इतना मतलब हीट कर रखा है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप एलोवेरा जेल मतलब बहुत हल्का लगाना है। अगर आपको खुजली हो रही है और राहत नहीं मिल रही है तो उसमें आपको राहत मिल जाएगी, थोड़ा सा ठंडा करेगा। तो नेचुरल वाला एलोवेरा जेल हो या फिर आप क्रीम को यूज करते हैं, मॉइस्चराइजर, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत हल्का, क्योंकि गर्मियों में फिर मैं वही बोलूंगी पसीने बहुत होते हैं उसकी वजह से। मतलब मोटा क्रीम तो यूज ही नहीं करना है मैंने देखा है।
3: हाँ,
4: लोग एंटीसेप्टिक के नाते बोरोप्लस बहुत ज्यादा यूज कर लेते, लेकिन बहुत मोटा क्रीम होता है। क्रीम आपकी त्वचा बहुत सॉफ्ट होती है, फेस की अलग, हर एक शरीर के हर एक अंग की त्वचा बहुत अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से आपको क्रीम भी मॉइस्चराइजर भी यूज करना है,
3: बहुत लाइट होना चाहिए।
4: बिल्कुल, और बच्चों की त्वचा के साथ में तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरत के रखना है। इसके अलावा आप ठंडी पट्टी ले सकते हैं, मतलब जैसे आपको जहाँ पे जलन हो रही है वहाँ पे आप 5 से 10 मिनट तक गीला पट्टी रख सकते हैं, और सीधे त्वचा पर पट्टी मतलब बर्फ नहीं लगाना है, उसको पट्टी में करके, कपड़े में करके ही लगाना है। जैसे होता है ना कि हम गर्मी सर्दियों में गर्म पानी से मुंह हाथ धुलते हैं,
3: आप आइस क्यूब ले लीजिए,
4: आइस क्यूब लेते हैं तो वो आइस क्यूब को सीधा नहीं लगाना है,
3: कपड़े में, कपड़े में करके, कोई भी हैंकी हो आपके पास कॉटन की तो उसमें आप लेकर के और अपने फेस पे आप जहाँ भी आपको जलन फील हो रही है वहाँ आप लगाइए आराम से।
4: बिल्कुल, और अगर खाने पीने की बात करें तो गर्मियों में खूब पानी पीना है, खूब नींबू पानी पीना है,
3: और खूब क्या
4: खूब नारियल पानी पीना है, खूब छाछ पीना है, मौसमी फल खाना है, बहुत ज्यादा तला भुना और मसालेदार नहीं खाना है।
3: अगर इतने स्तर में कोई कहेगा कि मसालेदार नहीं खाना है तो याद रह जाएगा कि आरजे आकांक्षा ने बहुत अच्छे से कहा था मसालेदार नहीं खाना है,
4: नहीं खाना है, और साथ ही साथ में चलिए आ जाते हैं वापस से। और बच्चों के लिए खास ध्यान रखना है कि डायपर समय समय पर बदलना है, पाउडर बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, इससे उनके जो रोम छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं। तो बच्चों को धूप में भी ज्यादा समय तक नहीं रखना, क्योंकि बच्चे होते हैं जिद्दी, और आजकल नानी और अपने कहीं भी जा सकते हैं, हाँ नानी मामा ही खासकर ज्यादा बुलाता है, वैसे हो सकता है वो अपने चाचा चाची के यहाँ गए हों, कोई जरूरी नहीं नानी मामा के यहाँ गए हों, तो जहाँ भी गए हों उनको धूप से बचा के रखिए। बगीचे में भी जा रहे तो दोपहर के समय में घर से बाहर मत निकलने दीजिए, और गाँव में तो भाई नलकूप वगैरह होते हैं तो उस पानी से भी उनको थोड़ा सा दूर रखिए, और जहां जाए उनके साथ ही रहिए। और बुजुर्गों के लिए हिदायत है कि उनकी त्वचा पतली होती है, संवेदनशील होती है, इसलिए हल्के साबुन या मॉइस्चराइजर का उपयोग करें। शुगर या फिर अन्य बीमारी हो तो त्वचा संक्रमण जल्दी बढ़ सकता है, तो इसलिए इनका खास ख्याल रखिएगा। और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी चीज है कि जब रैशेज में पस आने लगा हो, सूजन या तेज दर्द हो रहा हो, बुखार आए, पूरे शरीर में तेज बुखार हो गया हो, या पूरे शरीर में रैशेज फैल रहे हो, तो या फिर 2-3 दिन तक आराम ना मिले, तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
3: बिल्कुल, तो इसी बहुत सारी प्यारी प्यारी एडवाइस के साथ, बहुत सारी हमारी हंसी मस्ती धूम धमाल के साथ अब हमारा टाइम हो गया है जाने का।
4: लेकिन जाने से पहले एक और प्यारी सी लाइन, गर्मियों में शरीर को जितना ठंडक बाहर से चाहिए उतनी ही ठंडक भीतर से भी जरूरत है, इसलिए पानी, सादगी और सफाई से सबसे, इन सबसे आप अपने बचाव को बरकरार रख सकते हैं।
3: बिल्कुल लिसनर्स, तो चलिए आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, हमारी मस्ती अच्छी लगी होगी, बातें भी अच्छी लगी होंगी आई होप। तो चलिए आज के लिए दें इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपके अपने पसंदीदा शो सुन सहेली में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अपना फेवरेट एफएम रेडियो ज्ञानसली 89.6 एफएम। और नेक्स्ट शो आपका अपना बहुत ही पसंदीदा कॉलिंग वाला शो कॉलर ट्यून गोंडा, लेकिन किसके साथ सुनेंगे आप, आपकी अपनी आरजे आकांक्षा के साथ। बाय बाय,
4: याद रखना, बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
7: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
8: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
9: इसको तुरंत अल्टर स्किप्स ले चलो।
10: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टर स्किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
11: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
10: विजिट करें अल्टर स्किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
12: अरे सुना?
13: क्या?
12: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
13: वाओ!
12: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
14: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
15: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
14: और जेंट्स के लिए?
15: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
14: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा
0: पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
15: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
13: श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती है आपके अपनी आरजी आकांक्षा आपके फोन इन फरमाइशी कॉलर ट्यून गोंडा के साथ में। जी हाँ, और आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और बात करें अगर तो अगर जिंदगी में बहुत गर्म हालात चल रहे हो ना दोस्तों, तो खुद को बारिश बनने की मतलब खुद को बारिश बनाने की कोशिश कीजिए, धूप नहीं, क्योंकि सुकून देने वाले लोग हमेशा याद रखे जाते हैं। तो आज किसी थके हुए चेहरे को मुस्कान दीजिए, किसी प्यासे को पानी दीजिए और खुद को भी थोड़ा वक्त दीजिए। यही छोटी छोटी बातें हैं जो जिंदगी को बनाती हैं खूबसूरत। वैसे खूबसूरत तो बनाते हैं नगमे, और नगमे आपकी जिंदगी को ऐसे खूबसूरत बनाते हैं, ऐसे खूबसूरत बनाते हैं। कैसे खूबसूरत बनाते हैं? वैसे खूबसूरत बनाते हैं जैसे कि आपके इमोशन होते हैं, ये मूड और इमोशन के हिसाब से आपके चलते हैं, काम करते हो। और जब मूड हो किसी को डेडिकेशन का, किसी से जी हाँ इजहार मोहब्बत का, या फिर कोई ऐसा मूड हो कि थोड़ा सा ठहर जाते हैं और अपने वाले फन में चलते हैं, तो आपको क्या करना होता है? फोन उठाना होता है, फोन मिलाना होता है। फोन मिलाने के लिए नंबर वही होता है आपके स्टूडियो वाला, कॉलिंग नंबर है 6393316429, यानी कि 6393316429। बखूबी आप सभी इसे रूबरू हैं और मेरे पास काफी सारे डिमांड्स भी आ गई हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगी आज के दिन का, आज के शो का ओपनिंग वाला सॉन्ग फ्रॉम माई प्ले लिस्ट। हाँ जी, अपनी पसंद का एक प्यारा सा नगमा, और उसके बाद आएंगे उस ओर जिस ओर आप सभी जी हाँ उसे कहीं ना कहीं झेलम झेल कर रहे हैं, मतलब कि गर्मी, और वो डिमांड किसकी है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये गाना एंजॉय करिए फ्रॉम माई प्ले लिस्ट। और यूं आई आपकी अपनी आज आकांक्षा, बने रहिए, फोन मिलाते रहिए भाई, आपका नगमा आपकी पसंद हमारी पसंद, सेम टू सेम बनाते हैं ना धमाल, मचाते हैं ना धमाल, और दमदार प्लेलिस्ट बनाते हैं आपके नगमों से। फिलहाल ये गाना हमारी प्लेलिस्ट से
16: है। इश्क तो गले से लगा ले।

0: लगातार दो दिन से आपकी अपनी आरजी आकांक्षा दीदार और पता नहीं कौन कौन से नगमे बारिश को डेडिकेट कर रही है, अच्छे से मौसम को डेडिकेट कर रही है और उम्मीद है कि भगवान जी तक हमारा ये पैगाम जरूर पहुंचेगा और कुछ ही दिनों में या कुछ ही वक्त में हालात बद से बेहतर होंगे। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर और ये डिमांड आई हुई है इस मौसम को देखते हुए हमारे अमित कुमार जी की ओर से और उसके बाद में भाई हमारे एक प्यारे से लिसनर हैं जिनका नाम है अजय कुमार जी और काफी दिनों बाद वो हमारे बीच में मौजूद हुए हैं और हमारे बबनान से सुनने वाले हमारे प्यारे लिसनर हैं और उनका नाम है राममोहन जी। तो भाई कुछ हमारे लिसनर बड़े दिनों बाद आए हैं तो इसलिए उनके डेडिकेशन में एक प्यारा सा नगमा आया हुआ है, मतलब उनको डेडिकेट नहीं किया गया लेकिन हम अपनी तरफ से डेडिकेट करेंगे। तो फिलहाल बढ़ते हैं 3 से 4 के सफर में इस वाले गाने की ओर जिसकी डिमांड की गई है अमित कुमार जी की ओर से और सुनते हैं क्या सुनना चाहते हैं ये और क्या बताते हैं कि हाय तौबा किस चीज की मची हुई है आजकल।
1: चलो शुरू करते हैं।

हाय गर्मी उफ तौबा, ये गर्मी क्या है, गर्मी और एक गर्मी भी भाई वैसे ही बीत जाएगी जैसे सर्दियां बीत जाती हैं, बरसात बीत जाते हैं, पतझड़ बीत जाते हैं और बस कुछ ही दिनों की बात है। कोई भी पल, कोई भी दौर आता है तो आपको मजबूत बनाते हैं, तो बस अपने अंदर की मजबूती को निखारी और आगे बढ़ते जाइए लाइफ में, कुछ अच्छा करते जाइए। फिलहाल बढ़ेंगे सल नगमे की ओर, जो कि आई हुई है सुनील कुशवाहा जी की ओर से, और ये डेडिकेशन में जाएगा हमारे दो प्यारे लिसनर्स के, जो कि बड़े दिनों बाद दिखे हैं, और उसी में हमें दिख गई हमारी गुलफशान अंसारी जी भी। वो भी बहुत कम कम आती है, लेकिन जब भी आती है तो बड़े प्यार से आती है। तो चलिए गुलफशान अंसारी जी, अजय गिरी जी और राम भवन जी के लिए ये गाना हम डेडिकेट करते हैं। 3 से 4 के सफर में आप सुन रहे हैं फोनी फरमाइश कार्यक्रम कॉल चुनगुना, और आप भी कॉल मिला सकते हैं 6393316429 पर।

हाँ जी दोस्तों, और कितने भी दूर ना आप किसी से भी कितना भी दूर रह ले, लेकिन अगर दिल का रिश्ता होता है ना तो दूरी दूरी नहीं पता चलती है बल्कि प्रेम और बढ़ता जाता है। फिलहाल यही कहेंगे, इसीलिए कहेंगे कि गर्मी है, गर्मी के बाद बरसात आएगी और उससे आप अपने मोहब्बत तब जता पाएंगे जब वो इतने आपको, जी हाँ, ये गर्मी जितना प्रताड़ित कर रही है उससे बाद जब मिलेंगे तो आपको कितना सुकून मिलेगा वो आप ही जानेंगे, हम भी जानते हैं फिलहाल। लेकिन बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये आई हुई है शहनवाज जी की ओर से जो हमें सुनते हैं अहमदाबाद से, और कल इनका सॉन्ग रह गया था और आज इन्होंने बड़े ही टाइमली कॉल कर लिया। फिलहाल सुनते हैं कि आखिर में ये क्या सुनना चाहते हैं कल से ही।

भाई नागेश्वर जी ने पूछा था हमारे लिए डेडिकेशन में कोई गाना है या नहीं, लेकिन ये गाना आप पे एकदम सूटेड लगा मुझे। मैं थोड़ा सा मजाकिया वे में बोल रही हूँ, दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन हाँ ये आप ही के लिए है, जैसी करनी वैसी भरनी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। और गुलफशान अंसारी जी हमसे कह रही है कि हम तो मायके में थे लेकिन आज ससुराल जा रहे हो। माय गॉड, ये तो बड़ा ही दुखद माहौल होता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लड़कियों के लिए शायद ऐसा ही रिवाज बना हुआ है। और अब्दुल मुजीन जी ने बहुत प्यारी सी लाइन लिखी है, लिखते हैं, मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती। बहुत प्यारी है, सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, मैं जवाब बन जाता अगर तू सवाल होती। सब जानते हैं मैं नशा नहीं करता, सब जानते हैं कि मैं नशा नहीं करता, मगर मैं पी लेता अगर तू शराब होती। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही प्यारी सी रोमांटिक सी लाइन थी। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड आई हुई हमारे पास में राजेश मीना जी की ओर से, जो कि हमें बैंगलोर से सुनते हैं, और ये गाना हम डेडिकेट करेंगे अपनी प्यारी नीना नीना नीना नीना जी को। एंजॉय करिए, क्योंकि इन्होंने हमें कुछ लिखा है, तो उसके रिप्लाई में है।

हो। जी हाँ, यही कहना है हमें हमारी नीना दी से। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। और अगर हम वक्त की बात करें तो भैया 3:22 कब बीत गया पता ही नहीं चला। लगभग थोड़ा बहुत वक्त और है हमारे पास में। चले फिर आगे भी बढ़ते हैं, रफ्तार को बढ़ाते रहते हैं और चैट बॉक्स की ओर भी आएंगे। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, लगातार आपकी कॉल्स भी आ रही है। अगर आप अपने गानों को ट्यून करवाना चाहते हैं बिल्कुल से आप मिला सकते हैं 6393-9164-29 पर। फिलहाल हमारी जो नेक्स्ट डिमांड है वो हमारे अब्दुल मुजीम साहब की है। और उसके बाद में एक प्यारा सा नगमा हम बजाएंगे मोहम्मद शाकिर जी की तरफ से, और उसको हम डेडिकेट करेंगे अपने देव प्रसाद जी को, क्योंकि हम आपकी तरफ से तो सैड सॉन्ग नहीं प्ले करने वाले। आपको और हमारे को, हम दोनों के बीच का एक जो रिश्ता है वो यही वाला है। आप सैड सॉन्ग भेजते रहिए, हम बढ़िया बढ़िया गाना आपको सुनाते रहेंगे। फिलहाल एंजॉय करिए।

हाँ जी, तो अब्दुल मुजीम साहब की डिमांड के बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड आई हुई है हमारे पास में मोहम्मद शाकिर जी की ओर से, और ये गाना हम डेडिकेट करेंगे हमने प्यारे देवी प्रसाद जी को, इंडिया वाले देवी प्रसाद जी को। एंजॉय करिए 3 से 4 से सफर में, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और डिमांड बहुत सारी है, हर दिन की तरह आपका प्यार बढ़ता जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। फिलहाल एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में, और कॉल भी आ ही रही है। थैंक यू।

जी, तो दूर होने के बाद में जाहिर सी बात है एक दूसरे को मांगा ही जाता है कि भाई दीदार हो जाए कैसे भी करके, एक मुलाकात, जस्ट एक मुलाकात, और थोड़ा सा दिल को राहत मिले, सुकून मिले। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और डिमांड किसी और की नहीं है, हमारे प्यारे लिसनर है जिनका नाम है आदिल जी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर हमारे रिजू जी होते तो उनके पसंदीदा सॉन्ग्स में से एक सॉन्ग ये होता। फिलहाल चलिए सुनते हैं 3 से 4 के सफर में ये वाला सॉन्ग, और फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेके। लगातार आपकी कॉल्स आ रही है, और अगर आपको भी कॉल करना है तो कर सकते हैं बेशक से 6393316429 पर, आपके स्टूडियो का नंबर, और चलते हैं इस नगमे की ओर।

रहमान साहब की कंपोजिशन से और राशिद अली साहब की आवाज में बड़ा ही प्यारा सा नगमा है और हमारे रिजु जी होते तो उनका फेवरेट सॉन्ग में से एक होता, मुझे पक्का मालूम है, हमें हमारे श्रोताओं का टेस्ट मालूम है। इसलिए फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर और ये डिमांड हमारे रमेश कुमार जी की, चलिए सुनते हैं ये क्या सुनना चाहते हैं। बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा रोमांटिक सॉन्ग है इश्क मूवी से, अलका याग्निक जी और अनु मल्लिक जी की आवाज में।

और ये गाना मैं अपने मंगू जी को डेडिकेट करूंगी जो कि हमें आती हुई दिख रही है चैट बॉक्स में। और जी हाँ 3:40 पर मैं आप लोग के पैगामात की ओर भी जरूर आऊंगी। और देख रही मैं एक कॉल आ रही, जरा उठा लेती, तब तक आप एंजॉय करिए इस ट्रैक को।

शुक्रिया दोस्तों, बहुत ही प्यारी सी डिमांड है। पता नहीं कहाँ से हमारे प्यारे लिसनर रमेश जी लेके आते हैं इसे, जो हमें महाराष्ट्र से सुनते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इनकी पसंद हमेशा मुझे बहुत अलग सी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। 90s से ही ये सॉन्ग्स सेलेक्ट करके लाते हैं। बड़ी प्यारी डिमांड थी, थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, जो कि है सभी हजी की डिमांड। और आप सुने आपका अपना पसंदीदा शो यानी कि फोन फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा को। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड के साथ।

गाना भी आपने एंजॉय किया सभी हाजी की डिमांड पे। बड़ी ही प्यारी सी डिमांड थी कबीर मूवी से, और मूवी भी बड़ी ही खूबसूरत है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे प्यारे जी हाँ धर्मेंद्र मोहन भारती जी की ओर से, आवाज विकास कॉलोनी गोंडा से। पहले तो मैं सभी का खैर मद्दम करूंगी, आवाज विकास कॉलोनी गोंडा से सुनने वाले सभी लिसनर्स का। आपने फिलहाल बढ़ते इस गाने की ओर, इस गाने के बाद हम आएंगे चैट बॉक्स के पैगाम की ओर, और फिर नेक्स्ट डिमांड जो की आई हुई है डेडिकेशन में वो ट्यून करेंगे, और फिर नेक्स्ट डिमांड जो कि दो लोगों की डिमांड है, और हो सकता है तब तक हमें कोई और नजर आ जाए उसको भी हम चेप दें। फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए, आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ।

आवाज बिकॉज कॉलोनी गोंडा से ये आई हुई डिमांड अभी आपने एंजॉय की है। और अभी हम चलेंगे आप सभी के पैगाम की ओर, जिसमें हमें सबसे पहला मैसेज मिल रहा है सुरेंद्र यादव जी का गौरव चौकी से अपने नीले लिंक के साथ में। फिर हमारे अजय गिरी जी बहुत ही प्यारे लिसनर, बहुत ही पुराने लिसनर, बड़े दिनों बाद दिखे। और उसके बाद एक प्यारा सा मैसेज आया हुआ है, गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आपका? हम बहुत अच्छे हैं। और सभी को इन्होंने गुड आफ्टरनून बोला है, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है विथ टू लवली रेड हार्ट। ओके, और अब्दुल मुजीम साहब है, गुड आफ्टरनून आपको भी। गुलफशान सारी जी सीतापुर से। और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज में है वंशिका जी, हेलो हाय आपको भी वंशिका जी। राम भवन जी हैं बबनान गोंडा से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सुरेंद्र यादव जी। और इसके बाद में है नीना जी यानी कि मरचंगू जी, नमस्कार आपको भी। और धर्मेंद्र मोहन भारती जी आवाज़ विकास कॉलोनी गोंडा से, मीनू जी हैं हमारी गोंडा से। इसके अलावा नेक्स्ट लिसनर की बात करेंगे तो नागेश्वर धाकर जी रतलाम की गलियों से यानी कि हमारे प्यारे बीरबल जी। और उसके बाद में अगर नेक्स्ट मैसेज की ओर मैं आगे बढ़ रही हूँ तो जी हाँ, गुलफशान सारी जी ही हैं और सीतापुर से। इसके अलावा मिश्रा ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी भी आ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और नेक्स्ट मैसेज पे अगर मैं आगे बढ़ती तो दरक्षा अंसारी जी हैं सीतापुर से और आप सभी की चिट चैट। इसके बीच में हमारे सचिन शुक्ला जी भी हमें सुन रहे हैं, हमारे बहुत ही प्यारे पुराने से लिसनर हैं जो कि हमें दिल्ली से सुनते हैं। सचिन शुक्ला जी आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। आज आकांक्षा सन्नो शुक्ला जी हमारे साथ में बनी हुई हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज में हमें हमारे दिख रहे हैं चिंटू जी यानी कि रवि जी फ्रॉम आवाज़ बिकॉज कॉलोनी गोंडा। और नेहा जी हैं बहराइच से। और इसके अलावा आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया है। ओके, रेटिंग आपकी दिख रही है, चिट चैट दिख रहा है। और इसी बीच में आ चुके हैं, पधार चुके हैं हमारे कमल नयन जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। रिंकू जैन जी भी मौजूद हैं अपने लाल वाले मुखार के साथ। मुझे लग रहा है इनको धूप काफ़ी लग गई इसलिए इनका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया टमाटर की तरह। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। गाना आया हुआ है डेडिकेशन में सन्नो शुक्ला जी की ओर से मनीष शर्मा जी के लिए बतौर भेंट, ये नगमा। आइए एंजॉय करते हैं 3 से 4 के सफर में, मात्र 15 मिनट शेष है मेरे पास में, बहुत सारी डिमांड है, चलिए रफ्तार तेज करते हैं।

शुक्रिया श्रोताओं। इस सॉन्ग के बाद में नेक्स्ट सॉन्ग होगा हमारे प्यारे मोहम्मद वारिस जी का, और उसी में हम ऐड करेंगे हमारे सौरभ मौर्य जी को, क्योंकि दोनों को सुनना था गोविंदा का गाना। तो आपके लिए खास करके होगा सौरभ मौर्य जी हमारी पसंद से, क्योंकि हमारी पसंद से मिलता जुलता गाना आज डिमांड किया हुआ है मोहम्मद वारिस जी ने। और उसके बाद में नेक्स्ट जो डिमांड होगी वो होगी हमारे अजीत साहब की, फिर होंगे मेरे सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, अभिनव जी होंगे फिर हमारे नेक्स्ट, जी हाँ गायत्रीपुरम से। फिलहाल ये गाना

डेडिकेशन वाले सॉन्ग के बाद जो कि सन्नू शुक्ला जी की ओर से मनीष शर्मा जी को था, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये डिमांड है मोहम्मद वारिस जी की ओर से, और इसमें हमने ऐड किया था सौरभ मौर्य जी को, और हमने बोला नहीं था कि एक और किसी को हम ऐड करने वाले हैं, हो सकता है तब तक किसी की कॉल आ जाए। और हुआ यही, और हुआ यू कि मोहम्मद अयूब जी का कॉल आया। उन्होंने कहा भैया कल का तो हमारा डिमांड रह गया था, आज हमें कहीं भी ऐड कर दीजिए, तो आपको इसी नगमे में ऐड करेंगे क्योंकि हमारा बहुत फेवरेट सॉन्ग है। और भाई गोविंदा जी के सॉन्ग की बारी आती है तो भाई हम थोड़ा अलग ही वे में होते हैं, तो हटके हटेली हो जाते हैं, तो आपको भी हम हटेलापन सिखाते हैं 3 से 4 के सफर में इस गाने के साथ।

अच्छे मुकेश जी, और उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फिलहाल इस गाने के बाद में बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और वो डिमांड होगी हमारे अजीत साहब की। और वक्त की अगर बात करें तो 3:49 हो गए हैं, मतलब कि केवल 11 मिनट शेष है। इतना मतलब क्यों होता है हमारे साथ में,

हाँ जी, और इस गाने के बाद अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर और कपड़ा प्रैक्टिस से आए हुए हमारे प्यारे लिसनर का भी हम स्वागत करते हैं और बढ़ते हैं इस डिमांड के साथ में। और फिर आएंगे हम सुरेंद्र यादव जी के सॉन्ग को लेकर, फिर होंगे हमारे अभिनव जी, फिर होंगे हमारे राम भवन जी, बबनान

इस नगमे के उपरांत अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे सुरेंद्र यादव जी की डिमांड फ्रॉम गौरा चौकी से सुनने वाले सभी लिसनर के लिए ये प्यारा सा नगमा हमारे सुरेंद्र जी की तरफ से।

हाँ जी, और ये गाना काफी पसंद किया गया है हमारे एक प्यारे लिसनर हैं जिनका नाम है, जो हमें सीतापुर से सुनते हैं भाई, और इनका नाम है प्रेम मौर्या जी। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी ने भी पसंद किया, उसके लिए भी आप सभी का फीडबैक बहुत बहुत शुक्रिया चैट बॉक्स वासियों। और अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में, अभिनव जी की डिमांड के साथ में। गायत्री पुरम से लगातार ये तीसरे दिन इनकी डिमांड सेम सॉन्ग की आज कंप्लीट हो रही है। चलिए सुनते हैं कि आखिर में ये क्या सुनना चाहते हैं, फिर आएंगे हम अपने राम भवन जी की डिमांड के साथ।

शर्मा जी और हमारी रीना शर्मा जी हैं रुड़की उत्तराखंड से। इनका भी मैसेज आया हुआ है हमारे पास में। आपको भी शुभ दोपहर यानी कि मोस्ट वेलकम है आपका। और चलेंगे उस माफीनामे की ओर जो कि बहुत है बड़ा सा आज बना हुआ है, लेकिन उससे पहले इस गाने को एंजॉय करिए।

भाई अभी भी आपकी कॉल्स आ रही है, इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि है हमारे प्यारे लिसनर यानी कि हमारे बबनाल वाले लिसनर की। और चलिए बबनाल वाले लिसनर साहब का हम ये सॉन्ग सुनना चाहेंगे जो कि है राम भवन जी, और फिर आएंगे आज की लास्ट डिमांड को ले करके और आप सभी के माफीनामे की तरफ।

भाई ये लाइन बहुत खास है भाई, जरा फिर सोच कर जवाब दो, मेरी जिंदगी का सवाल है। इतनी गहराई, इतना दर्द और इतना कुछ कहा गया है केवल एक लाइन में, जरा फिर सोच कर जवाब दो। और इसीलिए मैं जवाब देती हूँ कि मुझे माफ करिएगा, माफीनामा जारी फिर से करना जा रही हूँ। और आज जिन जिनके सॉन्ग रह गए वो है हमारे प्यारे आवास विकास कॉलोनी से राजू सलमानी जी और रमेश वर्मा जी, मिस्टर ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी हैं, सृष्टि जी हैं, अन्य मिश्रा जी हैं, अंबेडकर चौराहे से सुरेश कुमार जी हैं, चौक गोंडा से अरमान जी हैं, निशा जी हैं, और इसके अलावा हमारे प्यारे लिसनर हैं कलाम जी। आप सभी के सॉन्ग्स आज रह जाएंगे, माफ़ी चाहूँगी आप सभी से। और रीत लाल जी की डिमांड के साथ में अब मैं आप लोगों से लूँगी विदा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, हंसते खेलते खाते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिएगा, रेडियो गान असली को ट्यून करके रखिएगा और सुनते रहिएगा, जी हाँ यही आपके गोंडा शहर की धड़कन को। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर। और रीत लाल जी का ये नगमा आप सुनिए और मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: अरे सुना?
5: क्या?
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
5: वाओ!
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
6: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब?
6: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

Tata,

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहाँ ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहाँ हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
2: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
1: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें, तथा संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
2: बार बार पानी पिए, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहने, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
1: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले, चक्कर या घबराहट आने पर डॉक्टर को दिखाएं।
2: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
1: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: डिलीशियस
8: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
7: और क्या क्या है खास?
8: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
7: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
9: अरे सुना?
10: क्या?
9: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
10: वाओ!
9: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
11: नाउ लिसनिंग रेडियो कैनस 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपकी होस्ट एंड दोस्त आर्जुनदी मौजूद है आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है आपका कौथिक, और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका शो गोधूली लेकर आता है हर शाम एक ऐसी खास पर्सनैलिटी को, जो होते हैं अपने क्षेत्र में खास, जिनसे जानने को मिलती है बहुत सारी जानकारी जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आती है। तो आज हमारे बीच हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर चेतन पराशर, जो कि हैं ब्लड बैंक प्रभारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोटा। सर, आपका सबसे पहले हम वेलकम करना चाहेंगे।
12: बहुत बहुत शुक्रिया,
11: आपने अपना कीमती वक्त निकाला एंड आप हमारे बीच मौजूद हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। आप हमारे लिसनर्स के साथ आज मौजूद हैं और उनसे आज आप बातचीत करने वाले हैं।
12: नहीं, प्लेजर इज ऑल माइन।
11: तो सबसे पहले सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि भाई हमारे लिसनर आपको नहीं जानते हैं, तो आप एक छोटा सा अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए हमारे लिसनर्स को।
12: मैं डॉक्टर चेतन पराशर हूँ। मेरी जो पढ़ाई और मेरा जो बचपन जो बीता, वो पूरा का पूरा लखनऊ में था। लखनऊ में मेरे पिताजी का निजी आवास है। मैं लखनऊ में CMS थ्रू आउट सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़ा, फिर मैं JSS मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया, फिर मैंने MD किया इन पैथोलॉजी फ्रॉम राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ, और PMS में मैंने ज्वाइन किया था सन 2012 में। उसके बाद फिरोजाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, फिर कोविड के समय में मेरा यहाँ पे स्थानांतरण हुआ आपके कोविड हॉस्पिटल गोंडा में 2020 में, और 2020 से मैं अपनी सारी सर्विसेज यहाँ पे गोंडा में गोंडा क्षेत्रवासियों को दे रहा हूँ, और अभी इस समय प्रभारी रक्त केंद्र गोंडा हूँ, जो कि अब आपके ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज प्रशासकीय राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के नाम से अब प्रचलित है।
11: ओके, थैंक यू सो मच सर। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप लखनऊ में ही आपकी पैदाइश है या फिर आप लखनऊ आए थे कहीं से?
12: मैं मूल निवासी हूँ मथुरा का।

0: जब मेरा जन्म हुआ था तब वो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक क्लर्क के रूप में थे, और वो फिर यहाँ पे उनका स्थानांतरण हुआ लखनऊ में। तब से हम लोग लखनऊ में ही रहे और मैं फिर यहीं पे अपना पढ़ाई लिखाई मैंने अपनी पूरी की। तो मूल निवासी मैं मथुरा का हूँ।
1: ओके सर, आप अपने बचपन की बात करते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि आप इस पोस्ट पर जहाँ आज आप हैं, कि आपने हमेशा से यही एम रखा था कि मैं बड़े होकर MBBS करूंगा और इस क्षेत्र में आएंगे, या फिर 10th के बाद आपके पास ऐसा कुछ, आपने किसी को देखा, आप उनसे इंस्पायर्ड हुए?
0: ये प्रश्न बहुत ही अच्छा आपने पूछा, क्योंकि मेरे घर वाले भी जानते हैं कि मेरी स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा रुचि थी। मैं हमेशा से या तो बैडमिंटन या टेबल टेनिस का खिलाड़ी बनना चाहता था।
1: बात है।
0: और रुचि बहुत थी मेरी बैडमिंटन खेलने में, और मैं टेबल टेनिस में भी बहुत खेला हूँ, कभी स्टेट लेवल नहीं, मैं स्कूल में ही खेलता रहा। फिर 10th में मैंने जब अपना उत्तीर्ण किया ICSE बोर्ड, उसके बाद 12th में ये हुआ कि सब लोग इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स ले रहे थे, तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि उनकी इच्छा थी कि उनका एक पुत्र जो है चिकित्सा में जाए, चिकित्सा क्षेत्र में। तब मैंने अपना बायोलॉजी ली और फिर मैं PCB लेकर 11th-12th किया मैंने। उसके बाद फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, डॉक्टर बन चुका हूँ।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि मेरे साथ होता है, जब मुझे कोई और सब्जेक्ट पसंद हो, घर वाले जब फोर्स करते हैं किसी और चीज को पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा खराब लगता है उस वक्त। आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या?
0: नहीं, मेरा एक लालच था।
1: लालच?
0: हाँ, एक लालच था। सन 2000 की बात है, उस समय नया नया कंप्यूटर आया हुआ था
1: जी।
0: और इंटरनेट भी नया नया आया हुआ था। मेरे घर में कंप्यूटर और मतलब पर्सनल कंप्यूटर PC जिसे बोलते हैं वो नहीं था। मेरा जो बड़ा भाई है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा था।
1: ओके।
0: दो ही लोग हैं हम लोग बड़े भाइयों में, तो उसने मुझसे कहा कि यार एक घर में कंप्यूटर होना चाहिए
1: जी।
0: तो उसने कहा कि पापा से बात करो। पापा ने कहा ठीक है, मैं कंप्यूटर दिला दूंगा, तुम बायोलॉजी ले लो। तुम्हारे सारे दोस्त मैथ्स ले रहे हैं, तुम बायोलॉजी ले लो और मैं तुम्हें कंप्यूटर दिला दूंगा। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा चलो कंप्यूटर तो घर में आ रहा है। तो हमने बायोलॉजी ले ली, उसके बाद अगले दिन कंप्यूटर आ गया। अब कंप्यूटर और बायोलॉजी लेके हमने जो कुछ भी किया वो आपके सामने कि जो है, मेरे बड़े भाई ने भी अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर कर लिया, और मैं फिर अपना जो है, मैंने अपने जितने भी एग्जाम्स थे वो क्लियर करते हुए फिर अपना चिकित्सा क्षेत्र में अपना जो भी काम शुरू किया
1: जी। होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे ही ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि आप ये कर लो, इसके बाद हम आपको ये दिला देंगे।
0: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
1: मुझे भी किया जाता था पहले, एंड उसके चक्कर में हम लोग कर भी लेते हैं कि हम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे आज,
0: बिल्कुल,
1: ये
0: बिल्कुल,
1: कर लेंगे। बट मेरे पेरेंट्स भाई मुकर जाते थे कि कौन सी बात है, अब अगले साल देखेंगे।
0: नहीं ये तो है, मगर मैंने मुकरने नहीं दिया।
1: क्या
0: हम थोड़े डीट थे, मुकरना तो उनको भी, वो चाहते थे मुकरना। उन्होंने कहा भी था कि जाओ बाहर एक कोई साइबर कैफे है, उसमें पूरा महीने का तुम्हारा दे देते हैं, वो महीने पूरा तुम महीने का उसका तुम्हें रेंट दे दिया करेंगे, तो वहीं जाके अपना कंप्यूटर कर लिया करो।
1: जी बिल्कुल। तो भाई जैसा सब कहते हैं कि किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो उसके बचपन से बनना शुरू हो जाती है। उसके बचपन में कोई ना कोई ऐसा होता है जो उसे इंस्पायर्ड करता है, तो आपकी जिंदगी में वो इंसान कौन था जिसने आपको इंस्पायर्ड किया, एंड आपके बचपन में आपका नेचर कैसा था?
0: मैं बचपन में शरारती था, बट आई वॉज डिसिप्लिन्ड ऑल बिकॉज ऑफ माई फादर। वो खेलना कूदना सब अलाउ करते थे, मगर कोई भी उन्होंने कभी बदतमीजी या फिर किसी तरह की कोई मतलब बहुत ही ऊंचे लेवल की कोई अगर बदतमीजी करे तो उनको पसंद नहीं था। हम लोग पढ़ते भी थे, पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ खेलो, मतलब मुझे नहीं मतलब है, तुम अब एग्जाम्स तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, जो चाहे करो, तुम फैसिलिटीज हम सारी देंगे। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे स्वर्गीय विद्याधर पाराशर, वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे।
1: Okay.
0: और उनके जो छोटे भाई थे वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थे।
1: okay.
0: तो जब भी मैं अपने गांव जाता था तो मेरे दादा की एक छोटी सी कोठरिया थी, कोठरी बोलते हैं इसको,
1: जी हाँ, है ना, जो समझ सकते हैं।
0: उस जमाने में कहते हैं कच्चे मकान होते थे, तो कोठरिया में उनके जो है छोटी छोटी दवाइयों की शीशियां रखी रहती थी होम्योपैथ की दवाइयों की, और मैं बिना सोचे समझे उनमें से निकाल निकाल के खाता रहता था,
1: क्योंकि वो बहुत मीठी
0: होती थी। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो मीठी होती थी, और दादा के पास मरीज आते रहते थे गांव के, तो वो उनको वही मीठा मीठा देते रहते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये चलो ये तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो एक दिमाग में था, कहीं सबकॉन्शियस माइंड में था कि हाँ आई थिंक कि डॉक्टर बनने में थोड़ी इज्जत है। हर आदमी जब भी उनके पास आता था तो बाबू जी कैसे हो, चरण स्पर्श, पैर छूना, और दीवान जी नाम था उनका, दीवान जी कैसे हो, ऐसे करके बोलते थे, तो इज्जत बहुत मिलती थी। तो शायद इज्जत के चलते ही मैंने सोचा होगा कि सबकॉन्शियस माइंड में रहा होगा कि डॉक्टर बनते हैं, और इफ यू मैनिफेस्ट समथिंग आई थिंक, तो आजकल तो ये बहुत चल रहा है कि मैनिफेस्ट करो। उस समय शायद मैंने मैनिफेस्ट किया होगा कि मुझे बनना है डॉक्टर, तो शायद बन गया।
1: तो मतलब आपको इंस्पायर्ड करने वाले आपके ग्रैंडफादर थे, क्या बात है। सर आपका बचपन जान के और आपकी इंस्पायरेशन को जान के बहुत

0: अच्छा लगा। तो अब हम आपकी थोड़ा काम की तरफ चलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आप ब्लड बैंक में हैं एंड ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि ब्लड बैंक जैसा ही कोई नाम सुनता है, ब्लड डोनेशन जैसे नाम सुनते हैं तो लोगों के अंदर एक अलग सा खौफ बैठ जाता है कि अपना खून देना कितनी बड़ी बात है ये।
1: जी।
0: कुछ लोग जैसे अपना खून देते हैं तो वो शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं, बट कुछ हैं जिन्हें समझाना पड़ता है कि खून देना कोई खराब चीज नहीं है, एक अच्छी चीज होती है।
1: जी।
0: तो आपको भी ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि आपके पास लोग तो आते हैं लेकिन कोई इंजेक्शन देके भाग जाता है या फिर कोई बस यही कहता है कि नहीं हमें अपना खून नहीं देना?
1: बिल्कुल। अगर आप किसी जैसे दान होता है तो दान, अगर आप किसी को दान करते हैं कुछ तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वापस वही व्यक्ति या फिर किसी आपने जैसे सपोज करिए राह चलते आप इसने आपने किसी को कुछ दान किया
0: जी।
1: तो क्या आप अपने मन में सोचते हैं कि कल को मुझे ये व्यक्ति मिलेगा तो मुझे केले संतरे या सेब ला के देगा?
0: बिल्कुल भी नहीं।
1: दान का मतलब होता है दान दे दिया।
0: जी हाँ।
1: दान दिया मतलब भूल जाओ। मगर हाँ, आज के परिवेश में रक्तदान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रक्त हम बना नहीं रहे हैं।
0: जी।
1: रक्त बनता नहीं है।
0: जी।
1: रक्त बनाने की कोई मशीन नहीं है। एक व्यक्ति अगर रक्त देगा तो हम उसको बनाएंगे, उससे हम उसके कंपोनेंट्स बनाएंगे, प्लेटलेट्स बनेंगे, प्लाज्मा बनेगा, हम उसको संजो के सेफ तरीके से अपने रक्त कोश में, ब्लड बैंक में रखेंगे, उसके बाद किसी को जरूरत होगी तो हम देंगे।
0: जी।
1: रक्तदान के मायने आजकल ये हो गए कि अगर हम रक्तदान कर रहे हैं तो सरकार भी इस तरह की उनकी कोई वो नहीं है कि हाँ, अच्छी बात यही है कि हम लोगों ने रक्तदान करने के लिए, रक्तदान करवाने के लिए बड़ा उसकी कहते हैं, लोगों को इंस्पायर करने के लिए कार्ड्स इशू किए हैं कि अगर आप रक्तदान करते हैं तो आपको 90 डेज के लिए, 3 महीने के लिए आपको एक कार्ड इशू होगा। उस कार्ड के एवज में आप कभी भी रक्त, एक यूनिट रक्त ले सकते हैं। आप एक यूनिट दीजिए, डोनेट करिए, फिर आपको एक कार्ड मिलेगा। कार्ड को आप इस्तेमाल अगले 3 महीने में आप कभी भी कर सकते हैं, अपने लिए या अपने किसी नजदीकी परिजन के लिए। आप उस कार्ड को दिखा के ब्लड बैंक में एक यूनिट प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आप अगले 3 महीने तक रक्त देने के लिए नहीं स्वस्थ होते हैं। आप अगले 3 महीने तक रक्त नहीं दे सकते हैं एक बार रक्त देने के बाद।
0: जी।
1: तो रक्तदान में ये बहुत जरूरी है कि पहली चीज तो मैं जो मानता हूँ, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा मानना यह है कि रक्त दो और भूल जाओ।
0: बिल्कुल।
1: मैंने आज तक कभी भी रक्त देने के बाद मैंने ना तो मैं सोचता हूँ कि हाँ मुझे कोई कार्ड दे, मैं तो कार्ड के लिए भी इच्छुक नहीं होता हूँ। मगर हाँ ये है कि कार्ड मुझे जरूरत पड़ेगी, ईश्वर कभी जरूरत पड़ेगी तो हाँ लोग आएंगे आगे बढ़ के, मैं उसके लिए नहीं, जो मेरी व्यवहार है व्यवहार के भरोसे मैं रहता हूँ कि हाँ मेरे व्यवहार अगर अच्छा होगा तो लोग आएंगे देने के लिए, वरना ईश्वर है वो देखेगा। रक्तदान कर दिया मतलब भूल जाओ। और पब्लिक के लिए ये है कि अगर वो रक्तदान करना मतलब रक्तदान अगर आप नहीं करोगे तो आपके परिजन को रक्त कहाँ से मिलेगा? सीधी सी बात है, हर व्यक्ति अगर यही सोच ले कि मैं रक्तदान नहीं करूँगा,
0: जी
1: मैं रक्तदान करूँगा तो कमजोर पड़ जाऊँ, तो वो देना बंद कर दें, तो मेरे पास हमारे ब्लड बैंक में कुछ रक्त रहेगा ही नहीं। सबकी अगर यही भावना हो जाएगी तो हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, लोगों से बोलना पड़ता है, कभी कभी हाथ पैर भी जोड़ने पड़ते हैं कि आप आइए आगे बढ़ के आइए और रक्तदान करिए, देखिए कितने फायदे होते हैं, उसके फायदे समझाओ। मगर हाँ ये है कि अज्ञानता के कारण, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, ये होता है कि लोग अभी तक उस भ्रम में जी रहे हैं कि अगर मैंने रक्त दे दिया तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा, अगर मैंने रक्त दे दिया तो मैं किसी लायक नहीं रहूंगा।
0: जी।
1: मैं अपने शरीर का जितना भी मैंने खाया पिया है, मैंने जितनी इतनी बॉडी बिल्डिंग करी है, जितना मैंने अपने अंदर शक्ति संजो के रखी हुई है, वो सब चली जाए, वो सब चली छिन जाएगी अगर मैंने रक्त दे दिया तो, जो कि कम्प्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट है।
0: ओके। तो वेल, मुझे लगता है एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया है, पहले एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जैसे आपने मुझसे कहा था भाई कि आपको फायदे बताने पड़ते हैं, तो मैं यहाँ भी आपसे वो फायदे जानना चाहूंगी कि भाई रक्तदान करने से कौन से फायदे होते हैं।
1: बिल्कुल।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: एक बार वापस से स्वागत है आप सभी का आपके अपने वाले शो, इसका नाम है कौतली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरजे उन्नति, एंड मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर चेतन पराशर जी। तो सर, जैसा मैं आपसे बात कर रही थी चैलेंजेस के बारे में, एंड आपने उसमें एक वर्ड कहा कि भाई फायदे होते हैं, हमें फायदे समझाने पड़ते हैं। तो हम ब्लड डोनेट अगर करने जाते हैं तो क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं?
1: सबसे पहला तो हेल्थ बेनिफिट ये है कि जैसे आप आज आजकल देख रहे हो कि हर आदमी जो है अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है और बहुत ज्यादा कॉशियस है।
0: जी बिल्कुल।
1: और आए दिन अखबारों में कार्डियक अरेस्ट की जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण क्या हो सकता है? आपकी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या है? लाइफस्टाइल गंदी, खराब लाइफस्टाइल वो ये है कि आप तला भुना ज्यादा खाते हो, एक्सरसाइज कम करते हो, स्मोक करते हो, अल्कोहल लेते हो, और बहुत सी चीजें होती हैं, स्ट्रेस लेते हो। स्ट्रेस को तो हम कम नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी स्तर पर बता रहा हूँ कि स्ट्रेस तो मैं कम नहीं कर पाऊंगा, मगर अगर आप एक शॉर्टकट देखें, शॉर्टकट में ये होता है कि दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, अपना शरीर में से जो चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल जो बोलते हैं
0: जी।
1: एक कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। दो भागों में कोलेस्ट्रॉल को ले लें, जितना भी फैट हम खाते हैं उस फैट को शरीर जो है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दो चीजें होती हैं। सरल भाषा में कोलेस्ट्रॉल जो है वो दो प्रकार का हो जाता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। हमें गुड कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर में बढ़ाना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? आपके शरीर में जाके आपकी नसों में जम जाता है। नसें मतलब ब्लड वेसल्स में वो जम जाता है, उसकी दीवारों में जम जाता है, वो हार्डन हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। अब अगर वो हार्ट की धमनियों में, वेसल्स में जमने लगेगा आपका कोलेस्ट्रॉल, तो आपके हार्ट में, हार्ट को प्रेशर बहुत फील होगा। मतलब सरल भाषा में बता रहा हूँ, नॉट टू बी टोटली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, कि आपका जो हार्ट है उसको ज़्यादा ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा उसको वर्कआउट करना पड़ेगा पूरे शरीर में खून पहुँचाने के लिए, वो हार्ट आपका स्ट्रेस में आ जाएगा ये मान लीजिए। तो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए या तो दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, मैं आपसे कहूँगी दवाइयाँ खाइए, डॉक्टर से मिलिए, दवाइयाँ खाइए, या एक्सरसाइज करिए, और बुरी अपनी जो आदतें हैं उनको चेंज करिए। एक सरल चीज ये होती है कि आप ब्लड डोनेट कर दीजिए। ब्लड डोनेट करने से क्या होता है कि आपका शरीर का जो, हम जब एक यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं सपोज, तो उसमें आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके साथ साथ प्लाज्मा भी बाहर निकलता है
0: जी।
1: प्लाज्मा भी हम निकालते हैं। आप अपना प्लाज्मा देखो, वो पूरा, अगर किसी शरीर में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, आप कभी ब्लड डोनेट करने के बाद, हम कंपोनेंट सेपरेट करते हैं, मतलब प्लाज्मा सेपरेट करते हैं, प्लेटलेट सेपरेट करते हैं, और आरबीसी रेड ब्लड सेल सेपरेट करते हैं। आप अपना प्लाज्मा देखो कभी, आपको लगता है कि आपने जो है कोलेस्ट्रॉल बहुत शरीर में ज्यादा है, आप देखोगे तो आपका आपका जो प्लाज्मा है वो पूरा लिपिडेमिक होगा। लिपिडेमिक का मतलब होता है कि दूधिया प्लाज्मा
0: जी,
1: फैट से भरपूर। तो आपके शरीर से जब प्लाज्मा निकल रहा है तो कोलेस्ट्रॉल भी निकल जा रहा है, वो गंदा कोलेस्ट्रॉल जो है वो निकल जा रहा है।
0: क्या बात,
1: तो दिस इज अ इजी वे। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है शरीर में, फैट के कारण जो है आपकी, और बीपी भी बढ़ता। जब बीपी, आप बीपी को आपको कम करना है जैसे, तो या तो बीपी की दवा खाओ या फिर मेरे हिसाब से चलो ब्लड डोनेट कर दो, आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा।
0: क्या बात,
1: तो बीपी कंट्रोल करना और आपके शरीर को कोलेस्ट्रॉल निकालना, मेरे हिसाब से आज के परिवेश में, आज की लाइफस्टाइल में दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो कि आप या तो दवा खा के कर सकते हो या फिर नॉर्मली एक्सरसाइज करके भी कर सकते हो, और थर्ड ये बता दिया मैंने आप कि आप जो है ब्लड डोनेट करो, आप बहुत हेल्दी हो जाओ। हर 3 महीने पे डोनेट करते रहो, हर 3 महीने पे आपका कोलेस्ट्रॉल और जो गंदा फैट है वो निकलता रहेगा, आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। बीपी की दवाइयाँ जो खा रहा है वो आप आजमा के देख ले इस चीज़ को, इसका बीपी कंट्रोल में नहीं रहता है वो आजमा के देख ले इस चीज़ को। बीपी, आप जाओ ब्लड डोनेट करो, हम आपका पहले चेकअप करेंगे पूरा, आपकी सारे टेस्ट होंगे, आप ब्लड डोनेट करो, ब्लड डोनेट करने के बाद आपको हल्का फील होगा, ये मेरी गारंटी। आपका बीपी कंट्रोल में आएगा धीरे धीरे। आप रेगुलर यूज, जो रेगुलरली डोनेट करते हैं ब्लड, उनका कभी भी हाइपरटेंशन नहीं देखा गया है, उनमें हाई ब्लड प्रेशर नहीं देखा गया, उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता, एंजाइटी लेवल्स भी कम रहते। तो आपका जो, और तीसरी चीज क्या है कि जैसे आपका शरीर में जो नया रक्त जो है, जो जैसे आपकी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका जो लाइफ स्पैन होता है
0: जी,
1: वो 120 डेज का होता है
0: जी।
1: बनती कहाँ है रेड ब्लड सेल्स? बनते हैं आपके हड्डियों में, लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी दे प्रोड्यूस द आरबीसी ब्लड। आपका ब्लड जो बनता है वो आपकी लॉन्ग बोन्स में बनता है। आप जैसे जैसे ब्लड आप निकालते जाओगे, डोनेट करते जाओगे, आपका शरीर नया बनाता जाएगा, आपके शरीर में जो अमूमन ब्लड होता है वो 5 to 6 liters होता है, 5 to 6 liters। आपने एक बार में 350 ml ब्लड दिया, सपोज करिए 10-11 बार में आपका पूरा 4.5 liters जो ब्लड है आपका शरीर का वो पूरा रिन्यू हो जाएगा। तो अब जब पूरा ब्लड आपका रिन्यू हो गया, अपन से लेकर आप आपका जो ब्लड रहा है वो हो रहा है, इससे अच्छी बात आपसे। तो इजी वे एनर्जाइज योर बॉडी, बिट ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, अब है इजी वे आउट ब्लड देना, मेरे लेट के ब्लड दे दो यार, निकल प्रॉब्लम है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आपके फायदे उनसे कहीं ज्यादा होते हैं, जो
1: उनको आपके शरीर को स्वस्थ कर रहा है आपको। मैं आप लच दे रहा हूँ, देखो भैया आपकी दुनिया में हमें जो है सेल्फ सेंट्रिक ज्यादा है ना, वो आप जो कि मेरा क्या फायदा है भाई, मेरा दा। मैं आपको फायदे बता रहा हूँ कि लालच दे रहा हूँ भैया, आपका शरीर पहले स्वस्थ हो रहा है। और दूसरी चीज, आपका ब्लड जब रहेगा तो हो सकता है कि मानते भैया कहीं थोड़ा इंसान बची हो तो देख के देखो, अच्छा लगता है ना, देखो
0: जी फील होता है, काम किया
1: कुछ आपने, धर्म का काम किया है ना।
0: ओके सर, एक बात बताइए,

0: डोनेशन की बात आती है तो शहरों में और गांव में बहुत फर्क आ जाता है। तो सर आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अवेयरनेस को लेकर या फिर लोगों को ये बताने के लिए कि आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, वो कहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, गांव के क्षेत्र में ज्यादा होता है या फिर शहरों में भी उतना ही है जितना गाँव में चल रहा है इस वक्त?
1: नहीं, मुझे गांव क्षेत्र में जो है काफी कठिनाई लगी कि लोगों को समझाना। जब भी मौका मिला मैंने समझाया, मगर वो खुल के बात कर भी नहीं पाते हैं। गांव के जो लोग हैं वो खुल के बात भी नहीं कर पाते हैं, अपनी परेशानियां भी नहीं बता पाते हैं। लौट के उनको जाना है अपने आसपास के लोगों में ही, वो लोग फिर अगर हम समझा भी देंगे तो वापस जो है वापस से शाम तक उनको दोबारा से भ्रम हो गया कि अरे उनके कहने पर मत जाओ, खून देने से दिक्कत होती है, हम बता रहे तुमको। शहरी क्षेत्र में मैंने देखा है कि जो यूथ है दे आर प्रिटी मच अवेयर, अच्छा खासा अवेयरनेस है उनमें, अज्ञानता के कारण ही है जितना मुझे लग रहा है। जैसे जैसे अज्ञानता दूर होगी, अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग देखते हैं, रील्स बनती हैं कि आओ कुछ नया करें, खून नहीं दोगे तो खून बनेगा कैसे, खून मिलेगा कैसे। लोग शहर में जागरूक हो चुके हैं, छोटी छोटी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, उन सोसाइटीज़ में जाके लोग ब्लड डोनेट करते हैं। गांव क्षेत्र में मैंने देखा है कि अभी छोटे स्तर पे ही सही, मगर हाँ थोड़ा गोंडा में बताऊं तो हाँ गोंडा में भी छोटे छोटे सोसाइटीज़ बन रही हैं और संस्थाएं हैं, ऐसा नहीं। और इस साल देख रहा हूँ पिछले साल के मुकाबले कई संस्थाएं हमने जो है ब्लड डोनेट किया है, गर्मी के सीज़न में भी। गर्मी के सीज़न में अमूमन रक्तदान थोड़ा कम होता है, मगर इस बार रक्तदान अच्छा खासा हुआ हमारे यहाँ। मतलब इतना अच्छा भी नहीं कहूंगा कि मेरे सारे भंडार भर गए, भंडार तो मतलब ब्लड बैंक आपका पूरा भर गया ये तो नहीं कहूंगा, मगर हाँ ये है कि पिछले साल के मुकाबले अवेयरनेस शायद बढ़ी है और लोगों में मानसिकता आई है कि हाँ ब्लड डोनेट करना चाहिए। कभी भी आपातकाल आ जाता है, जैसे कि कभी कोई, धन्यवाद देना चाहूंगा, पिछले साल एक रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, उसमें हालांकि दो ही व्यक्ति जो है हमारे हॉस्पिटल में आए थे जो घायल थे, मगर बहुत लोग आए हमारे रक्त केंद्र में और उन्होंने जो है स्वेच्छा से रक्तदान करने की अपनी इच्छा जताई और कई लोगों ने रक्तदान किया, बढ़ चढ़ के रक्तदान किया और बहुत अच्छा फील हुआ मुझे बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रुप कि लोग आके रक्तदान कर रहे हैं। बट कहने का मतलब सिंपल सा है कि आप आपदा मतलब आपातकाल का या आपदा का इंतजार क्यों कर रहे हैं डोनेट करने के लिए, है ना? आपका जब भंडार भरा रहेगा तो हमें यार किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा
0: जी।
1: रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं, आपका ब्लड ग्रुप आपको शायद पता ना हो, आप आइए देखिए आपका शायद ब्लड ग्रुप रेयर निकले, रेयर मतलब नेगेटिव ब्लड ग्रुप जितने भी हैं वो रेयर में आते हैं। अगर हमको पता चलेगा, हो सकता है कि किसी ऐसा व्यक्ति हो जिसको आगे चल के उसको खून की कमी हो किसी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को, और आपका हमें पता चल जाए, हम आपका नाम रजिस्टर में लिखे रखें, शायद आपको एक मौका मिल जाए उसकी जान बचाने का, क्योंकि रेयर ब्लड ग्रुप जितने भी होते हैं बहुत कम ही मिल पाते हैं और उनको हमको संभाल के रखना पड़ता है।
0: ओके सर, आपने बात की रेयर ब्लड ग्रुप की जिसमें नेगेटिव वाले आते हैं, बट कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक ये बात भी सुनने को आती है कि हमारा ओ पॉजिटिव है और ओ पॉजिटिव ब्लड दे तो सकता है लेकिन वो किसी से एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम अगर अपना ब्लड दे देंगे और कहीं हमें ही

0: ओ पॉजिटिव जरूर होता है हमारे, ओ पॉजिटिव भरपूर मात्रा में मिल जाता है। ओ पॉजिटिव ऐसा नहीं है कि रेयर हो, मेरा ही ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, अगर किसी को लग रहा हो ऐसी कोई शंका है तो आके भैया मुझसे संपर्क कर लेना, मैं अपना दे दूंगा।
1: क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है, हाल फिलहाल मैंने अपना पता करवाया था, मेरा भी ओ पॉजिटिव ही है।
0: कह तो रहा बहुत ही कॉमन है।
1: बट सर जब रेयर ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग सबसे रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है?
0: अभी तक जो मैंने देखा है कि रेयर ब्लड ग्रुप में ओ नेगेटिव आया है, ए नेगेटिव आया है, ये काफी नेगेटिव तो सारे के सारे ही मुझे, अगर आप पूछें तो सारे ही मुझे बहुत ही कम दिखाई दिए हैं कि ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ये सब बहुत ही रेयरस्ट ऑफ द रेयर होते हैं, बहुत ही रेयरली मिल पाते हैं। उनके उनके जो डोनर्स होते हैं उनको भी हम लोग पता लगा के रखते हैं उनका, और जब जरूरत पड़ती है तो उनसे संपर्क भी किया जाता है, मगर हाँ देट इज टोटली वॉलंटरी डोनेशन, वी कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी टू डोनेट।
1: बिल्कुल। ऑल राइट सर, तो आप मुझे अब ये बताइए कि जब आपके कैंप लगते हैं या शिविर आपके लगते हैं तो आप ब्लड बैंक में प्रभारी हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां उस वक्त और ज्यादा बढ़ जाती होंगी, तो उस वक्त आपके काम और आपकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं और आप किस तरह से मैनेज करते हैं चीजों को?
0: रक्त केंद्र गोंडा में, एक्चुअली अब ब्लड बैंक से नाम जो है ब्लड बैंक का ब्लड सेंटर हो चुका है, जितने भी ब्लड बैंक से सबको ब्लड सेंटर के नाम से बुलाया जाता है, तो रक्त केंद्र बोलते हैं
1: जी।
0: आपके रक्त केंद्र गोंडा में मेरे जो सहकर्मी हैं हमारे साथ में डॉक्टर मेडिकल अफसर्स भी हैं, और हम सबका एक ही काम रहता है कि अगर कभी शिविर लगता है तो पहले से एक रूपरेखा तैयार कर ली जाती है एक दिन पहले ही कि अमूमन कितने लोग आने वाले हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, उनके जलपान की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था सरकार देती है, उनके जलपान की व्यवस्था सूक्ष्म जलपान बोलते हैं, मतलब कि हम उनको ओवरलोड नहीं करते हैं किसी को कि आपने ब्लड डोनेट कर दिया है लो खाओ भेलपूड़ी, लो खाओ छोले भटूरे, ये सब नहीं होता है, आपको नॉर्मल चीज दी जाएगी, क्योंकि बिकॉज थोड़ा नौजिया लगता है कि ज्यादा खाने पे आप थोड़ा नौजिया हो जाता है, तो हम पहले एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वी मेक श्योर कि जितने भी लोग डोनेट कर रहे हैं दे आर हेल्दी डोनर्स, उनकी स्क्रीनिंग होती है, बेसिकली उनकी काउंसलिंग होती है, हमारे यहाँ एक काउंसलर है
1: जी
0: जो काउंसिल करता है, तो काउंसलर का काम होता है कि हमारे पास एक कंसेंट फॉर्म होता है, कंसेंट फॉर्म मतलब कि आपने कंसेंट दिया है कि आप मेरा रक्त निकाल सकते हैं, उसको कंसेंट फॉर्म हिंदी में इंग्लिश में दोनों में हो, कंसेंट फॉर्म में लिखा होता है कि क्या आपने पहले रक्त दिया है, रक्त दिया है पहले तो क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई थी, कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ था रक्त देने में, आपने रक्त कब दिया था, कितने साल हो गए, कहीं 3 महीने के भीतर ही रक्त तो नहीं दे दिया है, अभी 3 महीना पूरा हुआ है कि नहीं आपका, क्योंकि हर व्यक्ति एक बार अगर रक्त देता है तो अगले 3 महीने तक रक्त नहीं दे सकता, तो टाइमिंग कि कब उसने डोनेट किया था लास्ट टाइम, खाने पाने में कि कहीं उसको कोई खाना उसको मिला है कि नहीं मिला है, रात में सोया है ढंग से कि नहीं सका है, कोई उसको कोई इंटॉक्सिकेशन तो नहीं है कि कहीं उसने अल्कोहल तो नहीं ले लिया था, उसने कोई मेडिसिन तो नहीं ऐसी खाई हुई है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे लोग जो है एस्पिरिन लेते हैं, एस्पिरिन इज अ प्लेटलेट सेपरेटर, मतलब कि हम एंटी प्लेटलेट मेडिसिन होती है एस्पिरिन, जो कि ज़्यादातर हार्ट के पेशेंट्स को बोल दी जाती है
1: जी,
0: इनको डिसलिपिडीमिया एक बीमारी होती है उनको दी जाती है, तो कोई मेडिसिन ऐसी तो नहीं ली है जो कि हार्मफुल है, जिसमें आप जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो सब कुछ हम पूछ के भली भांति उनसे पूछ लेते हैं, उनका वजन चेक कर लेते हैं, वजन कहीं 45 किलो से कम तो नहीं है, 45 किलो से कम होगा तो हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, इसलिए हम लोग 45 किलो से कम व्यक्ति का नहीं लेते हैं, 45 से 50 किलो तक के व्यक्ति को हम अवॉइड करते हैं, 50 किलो के ऊपर ले लेते हैं, और हीमोग्लोबिन जो उसका हीमोग्लोबिन है वो हमने उसका जो मानक है वो है 12.5 ग्राम प्रति डेसिलीटर है, तो 12.5 HbA हम ले लेते हैं, और उससे ऊपर हो तभी लेते हैं, और बाकी उससे पूछ लेते हैं कि कोई कभी कोई बीमारी तो नहीं है उसको, कोई जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी के पेशेंट को हम कभी भी नहीं लेते हैं उसका ब्लड, टीबी के पेशेंट जो है परमानेंट डिफरल बोलता है, मतलब कि हम उससे कभी ब्लड नहीं लेते हैं, एच आई वी पेशेंट से कभी ब्लड नहीं लेते हैं, हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट से कभी ब्लड नहीं लेते हैं, और इस तरह से कोई कैंसर का पेशेंट है उसको कभी ब्लड नहीं लेंगे, उससे किसी ने इंजेक्शन लगवाया हो, कोई वैक्सीन लगवाई हो, उसका अलग अलग समय है कि जैसे रेबीज की वैक्सीन है तो अगले 1 साल तक आपने रेबीज की वैक्सीनेशन लिया है तो आप अगले 1 साल तक नहीं ले सकते हो, टैटू आपने कराया है तो अगले 6 महीने से 1 साल तक आप अवॉइड करो, तो ये सब उसके जो अलग अलग मानक हैं उनसे पूरी पूछताछ कर ली जाती है, उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है, टेस्ट भी हम लोग करते हैं, और प्लस शिविर में तो हम तुरंत टेस्ट नहीं करते हैं, शिविर में तो हम लोग तुरंत पहले ब्लड निकलवाते हैं, फिर उसके बाद थोरो टेस्टिंग होती है जो कि टेस्टिंग हमारे सेंटर पर होती है, और ये सब जब हम पूछ लेते हैं उसके बाद वो स्वस्थ लगता है, हमको फिट लगता है, मेंटली साउंड लगता है, फिजिकली फिट लगता है, देन उसका फिर बीपी चेक किया जाता है, बीपी उसका अगर नॉर्मल है या जो हमारे मानक हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ऊपर का या नीचे का।

0: जो होता है उसके मानक के अनुसार अगर उसमें आ रहा है वो विद इन दैट नॉर्मल लिमिट्स में अगर वो आ रहा है तो हम तुरंत उससे उसको ओके कर देते हैं, उनसे साइन लेते हैं तो कंसेंट फॉर्म पूरा हो जाता है, फिर वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। फिर हम अश्योर करते हैं कि जो ब्लड डोनेशन हो रहा है वो सेफ एंड साउंड हो रहा है, मतलब अंडर टोटल एसेप्टिक प्रिकॉशंस हो रहा है, कहीं कोई गंदगी नहीं, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, पेशेंट सुकून से है, निकालने वाला सुकून से है, तब ब्लड निकलेगा। ब्लड डोनेशन में मैं एक बात बताना चाहूँगा, सभी जनता जो मेरे सब सुन रहे हैं उनको बताऊँगा, जब ब्लड डोनेट कराओ करने आए आप कभी भी तो जल्दबाजी करने मत आइए, जल्दबाजी अगर है तो आप बिल्कुल मत आओ, आप आराम से सुकून से आओ। ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जो है जितना सुकून से आप आओगे उतने सुकून से वापस जाओगे, ये हड़बड़ी का मामला नहीं है।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: ओके, एंड इसके बाद आप वो कार्ड बनाकर देते हैं।
0: हाँ, कार्ड हम देते हैं, कार्ड में 3 महीने का टाइम रहता है कि आप 3 महीने के भीतर इस कार्ड को भुना सकते हो, इस कार्ड के एवज में आप रक्त ले सकते हो, 1 यूनिट ब्लड ले सकते हो और अपने बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार को दे सकते हो अगर आप चाहो तो। ये नहीं कि आप पूरे मोहल्ले में किसी को बांट दो, नहीं, आपके नजदीकी रिश्तेदार के लिए होता है।
1: ओके सर, वो जो कार्ड आप बनाकर देते हैं वो सिर्फ 3 महीने ही काम करता है, फिर उसको दोबारा से ही कभी यूज किया जा सकता है?
0: नहीं, एक्चुअली इस कार्ड का एक जो रीजन है देने का वो ये है कि मैंने अगर ब्लड दिया आज
1: जी
0: तो अगले 3 महीने तक मैं ब्लड नहीं दे सकता हूँ। कारण है उसका, कारण है, साइंटिफिक रीजन है उसका कि मैंने आज अगर ब्लड दिया है तो जितना मेरा शरीर से खून निकला है, खून में क्या है, आयरन है
1: जी,
0: आयरन है, तत्व है, मिनरल्स हैं, जो भी हैं, वो जितना मेरा आयरन निकला है, क्योंकि ब्लड में आयरन बहुत होता है
1: जी,
0: आपका जितना आयरन निकला है वो आपके नॉर्मल खान पान से देखा गया है कि अगले 3 माह के अंदर उतना ही आयरन जितना आपने दे दिया है उतना ही आयरन आपके शरीर में वापस लौट के आएगा, उसको लगभग 3 महीने लग जाते हैं, 90 डेज लग जाते हैं।
1: ओके,
0: फिर आप 90 डेज बाद यू आर फिट अगेन टू डोनेट ब्लड।
1: ओके,
0: तो हम ये मानते हैं कि अगले 3 महीने तक क्या करोगे अगर जरूरत पड़ गई तो, अगर आप ही को जरूरत पड़ गई, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो आप क्या करोगे। ऐसे में सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि कार्ड उपलब्ध कराएं, कि इस कार्ड को लीजिए, अपने पास रखिए, आपको कभी जरूरत पड़ती है इस विद इन 3 मंथ्स तो आप जाइए ब्लड बैंक में दीजिए और आपका रक्त केंद्र गोंडा आपको देने का वचन देता है कि अगर उपलब्ध है तो हम आपको जरूर जरूर देंगे।
1: ओके, तो अब वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक का, इस ब्रेक के उस पार आते हैं और आपसे वापस से काफी सारी बातें करते हैं ब्लड से ही रिलेटेड। बने रहिए मेरे साथ आपके अपने वाले शो गोदली में।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
5: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
4: सच में, क्या खास है वहाँ?
5: बहुत कुछ है, वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
4: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
5: सब कुछ टॉप क्लास था, फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कम्प्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
4: और फोटोग्राफी वगैरह?
5: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
4: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है, लोकेशन कहाँ है?
5: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
4: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
3: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: जब
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: एक बार वापस से स्वागत है आप सभी का आपके अपने वाले शो, का नाम है गौतली। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरशे उन्नति। एंड मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे गेस्ट डॉक्टर चेतन पराशर जी, जो कि हैं ब्लड बैंक प्रभारी। सर, हम बात कर रहे थे ब्लड डोनेशन की। एंड एक कॉमन सी प्रॉब्लम जो है, जो लोगों के बीच में मिथ्स रहते हैं कि अगर हम अपना ब्लड डोनेट करेंगे तो कमजोरी आ जाएगी, या फिर हो सकता है कि हम आगे किसी भी काम के ना रहे, यानी कि मेल्स के बीच में रहता है कि हमारा स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। और ये सारी मिथ्स मैंने खुद भी कई लोगों से सुने हैं, तो सच में ऐसा होता है या फिर ये सच में सिर्फ एक मिथ्स ही है जो लोगों के बीच में फैली हुई है?
4: देखिए, मिथ्स का क्या, आप वाकिफ हो तो आप सोचो कि जितनी भी मिथ्स थी सब पे, सबको जब नकारा गया तो कैसे नकारा गया, उन पे एक्सपेरिमेंट किया गया
3: जी।
4: एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रूव किया गया कि ये मिथ है। पहले था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है
3: जी,
4: किसी ने उसको मिथ प्रूव किया
3: जी,
4: बताया गया कि वो गोल है
3: जी।
4: तो किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो आप एक्सपेरिमेंट करो ना। मैं कह रहा हूँ कि मिथ जो है वो सिर्फ अज्ञानता की वजह से, उस समय भी अज्ञानता रही होगी, आदमी ने जो है रिसर्च की, पढ़ाई की, एक्सपेरिमेंट्स किए। हाँ, उस समय इतना एडवांस रिसर्च का माहौल नहीं था मिथ्स को, मिथ्स प्रूव करने के लिए, मतलब रॉन्ग प्रूव करने के लिए। तो मैं अब ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को ये लगता है कि खून देने से आपके शरीर में कमजोरी आती है, तो वाई नॉट डू एन एक्सपेरिमेंट। आप खुद सोचो कि अगर यही अगर आप सोचने लगे और आपकी कमजोर होने लगा है, तो आपको चाहिए कि जो लोग खून डोनेट कर चुके हैं उनसे अच्छा उदाहरण, उनसे अच्छा समझाने वाला कौन मिलेगा आपको, आप उनसे पूछो। मैं आपको अभी बोल दूं कि नहीं नहीं गलत है, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, आपकी ये मिथ है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर विश्वास करो, कोई मुझे विश्वास नहीं करेगा। आई थिंक द बेस्ट वे इज टू खुद रियलाइज इट योरसेल्फ, टॉक टू द पीपल जिन्होंने दिया हुआ है, जो जिन लोगों ने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है उनसे पूछिए कि चढ़ाई में कोई दिक्कत होती है कि नहीं होती है। वजह इसके कि मैं अगर बोलूं कि नहीं नहीं कोई, ये सब आपकी वहम है, ये सब भ्रम है, आप, मैं, चलिए मैं बोल देता हूं कि है भ्रम है। आपको लग रहा है कि आपके शरीर में शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, आपको कहते हैं कमजोरी आ जाएगी आपके, है ना, मानसिक स्तर में कमी आ जाएगी, फिजिकल फिटनेस में कमी आ जाएगी, ये सब मिथ है, ये सब वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि ऐसा होता है कि आप जब आप खून दे देते हो तो आप स्वस्थ हो जाते हो। मैंने बोला ना कि आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाता है, आपको दवाइयां कम खानी पड़ती हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट के लिए इतना हानिकारक है, वो कम हो जाता है। जो हार्ट के लिए हानिकारक जो चीज़ है वो कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है हार्ट आपका जो है लंबा चलेगा, लंबा चलेगा मतलब आप लंबा जियोगे, और लंबा जीना ही तो हर व्यक्ति चाहता है कि आप फिट होके लंबा जियो, है ना। और मैं तो ये कहूंगा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। तो आप पहले आके एक बार ब्लड डोनेट करो, ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा आप, मैं खुद डोनेट करता रहता हूँ, मेरे यहाँ मेरे कर्मचारी सारे के सारे ऐसे हैं, एक से बढ़कर एक, कि वो खुद डोनेट करते रहते हैं, मैं सबसे मिलवा दूंगा। आप आइए कभी ब्लड बैंक, आके मिलिए, और यू आर ऑलमोस्ट वेलकम। कि अगर आपको कोई भी आपको लगता है कि क्या ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, क्या खून डोनेट करने से ऐसा हो जाता है, मुझसे आके मिलिए, मैं खुद बताऊंगा। आप चाहे तो ब्लड बैंक में आके, हम ये है कि आपसे मिलवा देंगे ऐसे लोगों को जिन्होंने 70-70 बार डोनेट किया हुआ है, मैंने 50-50 बार डोनेट किया हुआ है।
3: क्या बात,
4: ऐसे ऐसे लोग हैं आपके गोंडा में ही, ऐसे ऐसे लोग हैं, कई लोग हैं जो कहते हैं हर 3 महीने पे डोनेट करते रहते हैं और हेल्दी एंड साउंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल 1% प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, स्वस्थ होंगे वो, और आपसे ज्यादा स्वस्थ होंगे इसकी गारंटी मैं जरूर बोल सकता हूँ।
3: ओके, थैंक यू सो मच सर। तो अगर कोई हमारा प्रोग्राम सुनकर अगर अभी आपके पास आता है अपना ब्लड डोनेट करने, तो उसे आपसे वो कैसे कॉन्टेक्ट करेगा?
4: आप जो है अपने जिला अस्पताल आपका जो है स्टेशन रोड पे आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोंडा, जिसको जिला चिकित्सालय गोंडा बोलते हैं, जो कि अब मेडिकल कॉलेज के अंदर आ गया है। आप वहां पे किसी से भी पूछ लीजिएगा कि ब्लड बैंक, ब्लड सेंटर, रक्त केंद्र, रक्त कोष, ये सब अलग अलग नाम है, किसी से व्यक्ति से पूछ लीजिए कि रक्त कोष कहाँ पे है, ब्लड बैंक कहाँ पे है, वो सीधे आपको राह दिखा देगा। आप वहाँ आइए, आप आके मिलिए, वहाँ पे हमारे काउंसलर, हमारे लैब टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स सब मौजूद हैं, और आप बेझिझक आइए। पहले हम आपकी जो भ्रांतियां हैं, भ्रम है, उनको दूर करेंगे, उसके बाद आपसे डोनेशन की बात करेंगे।
3: ओके, मतलब पहले आप टेस्ट करने वाले
4: हैं?
3: हाँ,
4: नहीं टेस्ट मतलब कि हाँ, जैसे एक अच्छी बात ये भी होती है कि जो व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है उसके टेस्ट भी होते हैं, है ना। जैसे आपने ब्लड डोनेट किया तो आपके ब्लड के सारे टेस्ट भी होंगे, और लोग जो है ब्लड टेस्ट के लिए इधर उधर भागते रहते हैं कि पैसे भी खर्च करते हैं। हम तो कह रहे हैं आप आइए यहाँ पे, पता लगाइए आपका ब्लड, आधे से ज्यादा टेस्ट तो ब्लड के हम खुद ही कर देते हैं,
3: है ना? आयरन के, हीमोग्लोबिन के,
4: आपके CBC कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, उसमें पता लग जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन का स्तर कितना है, आपका प्लेटलेट का स्तर कितना है। फिर हम बाकी TTIs जिसको बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, DTIs, उनको हम लगाते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिफिलिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस B, C, HIV 1 and 2, इन सब की टेस्टिंग होती है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, आपका फ्री में टेस्टिंग हो रही है, आप आइए टेस्ट कराइए, और वो भी गोपनीय रखा जाता है। अगर आप हमको इसकी आज्ञा देंगे कि हम आपको बताएं, तभी हम आपको बताएंगे। और ये सब कॉन्फिडेंशियल रहता है, इट इज टोटली अ कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर। आपको ये आपकी रिपोर्ट्स कहीं पे भी बाहर नहीं जाती हैं, पूरा का पूरा हमारे ब्लड बैंक में ही रहता है, और सिर्फ तो आपको ही कन्वे करते हैं।
3: थैंक यू सो मच सर बताने के लिए कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, क्या फायदे होते हैं। बहुत सारे मिथ्स होते हैं, आज भी कई लोग यही यकीन करते हैं कि हम अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो कमजोरी आ जाएंगी, हम वीक हो जाएंगे, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी और हमारा ब्लड वापस से नहीं बनेगा। बट वहीं पर कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपको अनीमिया जैसी भी अगर कोई बीमारी है, तो अगर आप एक सही तरीके से अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो उसे भी क्योर किया जा सकता है।
4: देखिए, अनीमिया तो ब्लड की कमी को कहते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी को कहते हैं।
3: जैसे कि अगर कोई कहता है कि मेरा 30% आ रहा है हीमोग्लोबिन
4: जी,
3: तो फिर कई लोग खुद को ऐसे में अपने आप को अनीमिया का पेशेंट बोल देते हैं कि हम अनीमिया से ग्रसित हैं, तो हम अपना ब्लड नहीं दे सकते। बट वहीं पर लोग कहते हैं कि आप अपना ब्लड देंगे, अगर आपका 12 से ऊपर है तो आप और भी ज्यादा बेहतर हो जाते हैं।
4: हमारा जो मानक है वो है 12.5 ग्राम। अगर आपका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम है, आप आइए ब्लड डोनेट करिए, कोई रोकेगा नहीं आपको। उससे कम होता है तब हम लोग उसमें डोनेशन नहीं लेते हैं, फिर वो अनीमिया की श्रेणी में आता है। 10 ग्राम से 8 ग्राम तक मॉडरेट अनीमिया होता है, 8 ग्राम से नीचे वाले को हम सीवियर अनीमिया की श्रेणी में बोलते हैं। तो अनीमिया अगर किसी को है तो पहले तो मैं सलाह यही दूंगा कि पहले वो आयरन से जुड़े हुए फल खाए, सब्जियां खाए, दवाइयां लेनी हो दवाइयां ले, अपने स्तर को बढ़ाए, 12.5 से ऊपर कर लो, उसके बाद आप डोनेट करो। अनीमिया ऐसा है कि उसको तो आप फल खा के ही, आपके खान पान में कहीं ना कहीं कमी होती है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया इन इंडिया इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में होता है आयरन डेफिशिएंसी, टू बी वेरी प्रिसाइज। आयरन डेफिशिएंसी मतलब हम आयरन युक्त भोजन नहीं कर रहे हैं। आयरन युक्त भोजन में आपका आता है खजूर होता है, चुकंदर होता है, अनार होता है, और गुड़ होता है
3: जी,
4: और हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ये सब आयरन से युक्त होती हैं। आयरन शरीर में जब जाएगा तभी आपका शरीर हीमोग्लोबिन बनाएगा, खून बनाएगा, और हम इन्हीं सब चीजों से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से हमें खानी है चाउमीन तो हम मतलब अपना अनीमिया तो दूर नहीं कर।
3: सर मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि जब कोई इंसान ब्लड डोनेट करके जाता है तो मेनली आप उसे किन चीजों को अवॉइड करने को बोलते हैं? जैसे कि TV में दिखाया जाता है, कई लोग देखते हैं कि ब्लड डोनेट किया तो तुरंत ही एक ऑरेंज जूस का ग्लास मिल गया कि हमने ऑरेंज जूस पी लिया। क्या रियल लाइफ में वो तुरंत ऑरेंज जूस देते हैं, या फिर आप लोग कुछ चीजें अवॉइड करते हैं कि आपको इस दौरान तो बिल्कुल भी ये चीजें नहीं खानी है?
4: जिस दिन डोनेट करते हैं उस दिन हम उनको, जैसे ही डोनेशन होता है उसके बाद हम ये अवॉइड करते हैं कि वो, जैसे सपोज करिए अभी आपने डोनेट किया
3: जी,
4: हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप झुको, अभी आपको झुकना नहीं है, झुक के जैसे कुछ लोग होते हैं अपने जूते पहनने के लिए झुक जाते हैं, कहते हैं झुको मत अभी, है ना, थोड़ा चक्कर आ जाएगा, अभी लेटे रहो, पैर ऊपर करके लेटे रहो। चक्कर क्या होता है कि जब आपने आपके शरीर से थोड़ा खून निकलता है तो हम चाहते हैं कि वापस खून जो है वो आपके मस्तिष्क में पहुंचे, तो थोड़ा अपने पैरों को उठाएंगे तो सारा जो ब्लड है वो टुवर्ड्स आपके ब्रेन की तरफ फ्लो करेगा, तो चक्कर आने का और डिजीनेस, चक्कर आना, ये सब जो है ये सब नहीं होगा। हम बोलते हैं रिलैक्स करिए, उसके बाद फिर उनको हम एक जूस देते हैं, एक ग्लूकोज बिस्किट देते हैं, एक पैकेट छोटा, खाओ, रिलैक्स करो। 20-25 मिनट्स, 30 मिनट्स तक हम उनको रिलैक्स करने देते हैं, फिर आप जा सकते हो। आप जो है कोई भारी भरकम काम इतना जल्दी मत करना, खाना खाओ शाम को, मतलब जब भी आपका खाने का जो समय है वो खाना खाओ, धूप में ज्यादा मत निकलना, धूप में जा निकलने में तो वैसे ही चक्कर आ रहा है आजकल, इतनी गर्मी थी, अब थोड़ी सही हुई है, तो हम तो अवॉइड करते हैं कि भैया कोई भारी भरकम काम अभी फिलहाल मत करना, और नेक्स्ट डे से अपनी नॉर्मल दिनचर्या स्टार्ट करो और आयरन युक्त भोजन करो।
3: थैंक यू सो मच सर। कोई लास्ट मैसेज?
4: बस मैं लास्ट मैसेज यही देना चाहूंगा कि गोंडा की जनता को कि आप आइए और रक्तकोश में जो है आप आएंगे तो आपका एक खून का रिश्ता बनेगा हमसे।
3: क्या बात है।
4: और इस खून के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए किसी के कहने पे मत आइए, आप जो है पहले जो है एक्सपेरिमेंट करिए। मतलब आपको लग रहा है कि खून देने से खून कम होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है। खून देंगे आप तो आपके शरीर में नया खून बनेगा, नया खून, नए कपड़े चमकदार होते हैं ना, वैसे नया खून जो है वो नया एनर्जी प्रोवाइड करता है आपके शरीर। तो आप आइए, बेझिझक आइए, जब चाहे तब आइए। 24 घंटा आपका, आपके जिले का रक्त केंद्र 24 घंटे खुले रहता है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। हम मानकों के अनुसार ही रक्त लेते हैं और मानकों के अनुसार ही सेफ रक्त प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ किसी तरह का भी कोई भी परेशानी नहीं आती है। और कभी भी आप स्वतंत्र हैं, कभी भी मुझसे संपर्क करने के लिए, मैं आप, मेरा पता वही है, जिला रक्तकोश, जिला गोंडा। थैंक यू।
3: थैंक यू सो मच सर, आपना कीमती वक्त निकाल कर आए हमारे साथ बातचीत करने, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी मिली आपसे,
4: बहुत बहुत शुक्रिया।
3: इसी के साथ अब आपसे इजाजत चाहेंगे हम, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना FM, जे जे विज्ञान असली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। बाय बाय, टेक केयर।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
9: इसको तुरंत अल्टर स्किप्स ले चलो।
10: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टर स्किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
11: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
10: विजिट करें अल्टर स्किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
12: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
13: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
12: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
13: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
12: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
13: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: बता दूं।
1: बिल्कुल सही सवाल किया है। मेरे दिल में बस ये है कि आज गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों है, और हर किसी के मन में यही होता है कि मतलब दिमाग कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है यार कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों हो रही है। फिर बाद में जब भी होता है इस सवाल के पास हम खुद ही खड़े मिलते हैं कि पोल्यूशन भाई हम कर रहे हैं। फिलहाल अभी नौतपा चल रहा है, यानी कि 9 दिन बढ़िया सी गर्मी होने वाली है, तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। यानी कि मेन जब हीट स्ट्रोक ज़्यादा होते हैं, यानी कि हीट वेव ज़्यादा निकलती हैं, तो आप लोग 12 से 5 कोशिश करें घर से बाहर ना निकले, सबसे पहली हिदायत। और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी तासीर वाली चीज़ें खाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल सौंफ का शरबत, इसके साथ साथ आप घर पे पुदीने का शरबत, ठंडाई, ये क्या कहते हैं, छास, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। सत्तू का शरबत तो मैंने कई बार बताया। तो आप लोग अगर अपना थोड़ा सा भी मतलब इस गर्मी से आप खुद को बचाना चाहते हैं तो प्लीज़ आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो फिलहाल अंताक्षरी है, तो क्यों ना अंताक्षरी के मोड को ऑन कर दिया जाए। सो जल्दी से अपने दिमाग में हीट स्ट्रोक, गर्मी, ठंडी, सारे मतलब मोड्स को ऑफ करके आ जाइए 89.6 FM वाले मोड में, क्योंकि ये है गोंडा शहर की धड़कन ज्ञान 89.6 FM। तो बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी हमारे साथ लाइव हो जाइए। आपके साथ आपके आरजे बीना लाइव है, करने के लिए बात कुछ खास, क्योंकि आज है अंताक्षरी आपकी और हमारी वाली। तो मेरे सारे लिसनर्स, खास तौर पे लड़कियां और लड़के, लाइव हो जाएं, क्योंकि आज अंताक्षरी जाएगी एकदम, कहते ना, नदियों पार जाएगी और गर्मी को पार करके हम एक नया, एक कहते हैं ना कि हम न्यूट्रल कंडीशन में चले जाएंगे। तो चलिए, एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम ठंडी, उसके बाद आता है न्यूट्रल टाइम, और वो होता है शाम का टाइम। लेट्स एंजॉय द इवनिंग, आरजे बीना वाली इवनिंग, क्योंकि आप सुन रहे हैं गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला।

ऑफिशियल अंताक्षरी की शुरुआत तो हो चुकी है, पर आज बात कुछ और भी होगी, यानी कि आपसे जानना चाहती हूँ कि आज आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है या फिर आज एनर्जी कम है। मुझे पता है एनर्जी थोड़ी कम होगी क्योंकि मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है और अभी प्रेजेंट टाइम में 40 डिग्री टेम्परेचर है और शाम के 6:20 हो रहे हैं, तो मुझे लगता है इस समय तक मौसम तो थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए, पर अभी भी गर्मी ने अपनी जो कहते हैं ना एनर्जी बना के रखी है। गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच। आज मनु हमारे साथ हैं, गज़ल के उस्ताद। शाम आते ही गज़लें आती हैं और गज़लों के साथ हमारे आरजे मनु आ जाते हैं और गज़लों के साथ, मतलब मुझे लगता है मेरे बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो शाम को गज़लें सुनने से ज़्यादा आरजे मनु के अंदाज़ में कविताएं और जो उनके अल्फाज में, मतलब खुद भी लिखते हैं तो उनकी शायरी और उनकी, मतलब जो उनका मेन कंटेंट है वो सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि गज़लें तो कहीं में मिल जाती है, पर आपके आरजेस के साथ इवनिंग को सेलिब्रेट करना मुझे लगता है ये रेयर है। एक फैमिली की तरह हमें जो इवनिंग हमें मनाने की आदत पड़ी है वो एक फेस्टिवल की तरह है और वो फेस्टिवल जो कि हम रोज़ मनाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आरजे मनु। एंड देखिए आज अगर बात करें तो मई आ चुके हैं हम लोग, 20 मई हो चुकी है और 20 मई आ चुके हैं हम लोग ना। कुछ लोग होंगे जो 20 साल के हो गए होंगे तो उन लोग को बहुत सारी मुबारकें, बहुत सारी शुभकामनाएँ क्योंकि वो 20 मई आ चुके हैं। फिलहाल आप लोग को बता दूं कि आज एक खास दिन भी है, आज एक खास छोटे से क्रिएचर को याद करने का दिन है। मतलब याद क्यों करना, वैसे तो वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्रिएचर माना जाता है जिसे बोलते हैं हनी बी। हाँ, हनी बी जिसे हम लोग मधुमक्खी बोलते हैं। यार पता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि मधुमक्खी जिस दिन ख़त्म होगी उसके कुछ ही सालों में हम लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। अब आप सोचोगे ये छोटी सी मधुमक्खी तो काटती भी नहीं है जल्दी, हम लोग को काट लेती है तो हम लोग तो इसको चप्पल से मार देते हैं, मारते हैं ना। हाँ, मुझे पता है चप्पल से आप लोग मारते होंगे, यूजुअली लोग चप्पल से मार देते हैं या जो भी आसपास दिखता है, इसने मुझको काटा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बट यू नो दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन ये करती है, इसे कह सकते हैं हाईलाइटेड क्रिटिकल रोल है इसका पॉलिनेशन में, और अगर ये पॉलिनेशन नहीं करेगी तो ये गेहूँ धान इन सब की मतलब प्रोडक्शन ही नहीं हो सकती। पॉलिनेशन का मतलब आप समझते होंगे परागीकरण, यानी कि पराग को ले जाके स्टिग्मा तक ले जाना, यानी कि मेल या फीमेल का मिलन कराना, इनडायरेक्टली कह सकते हैं। तो ये अगर ना हो तो समझ लीजिए रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इसे मतलब WHO ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है कि भाई बी के साथ हमें साथ साथ रहना चाहिए, बी टुगेदर फॉर पीपल द प्लैनेट पार्टनरशिप दैट सस्टेन अस ऑल। बी टुगेदर मतलब कि एक साथ हम होके एक साथ बी को बचाते हैं। यहाँ पे कौन सा अलंकार लगेगा जब एक शब्द की आवृत्ति दो बार होती है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, क्या होगा बताइए, सोच के बताइए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर साल मनाते हैं हम लोग बी वर्ल्ड बी डे, और आज भी है वर्ल्ड बी डे, ऐसे करके बोलती है ना बी, मुझे बहुत पसंद है बी बनना। तो बचपन में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता था तो मैं कुछ ना कुछ अलग ही बनती, तो एक बार मैं मधुमक्खी बनी थी, मतलब खूब येलो ब्लैक कलर की ड्रेस और मुंह से आवाज़ निकालती थी थोड़ा इरिटेटिंग है, पर आप ये समझिए कि खाना नहीं मिलेगा, थाली में खाना नहीं आएगा अगर हनी भी नहीं होगी। सो रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है हनी बी की। बहुत सारे हनी हम लोग इसे मतलब मधुमक्खी जो है ना उसमें अगर देखें तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड ये लोग रहते हैं, जैसे चींटियां बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। कई बार बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये देखा है कि चींटियों के घरों में जाके देखा, मतलब सीमेंट डाला चींटी के एक होल में, तो पता चला कि बहुत कॉलोनाइज्ड तरीके से इन लोग का किचन होता है, बाकायदा एक ऐसा जगह होता है जहाँ ये लोग सब लोग इकट्ठा होती हैं, मतलब बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। वैसे हनी बी भी ऐसी होती हैं, बहुत ऑर्गेनाइज काम बटा है भाई, वर्कर वाली जाएंगी, वर्कर जो हनी बी के जो छत्ते होते हैं उसकी ध्यान रखेंगी, मधुमक्खी के छत्ते को बनाएंगी, सोल्जर्स होती हैं, सोल्जर्स मतलब जैसे आप जाएंगे हनी बी का बी चुराने तो वो सोल्जर्स आके आपको डंक मारेंगी, और नर्सेस जो होती हैं वो रानी मक्खी जो होती है यानी कि जो बच्चे पैदा करने वाली होती है उसका ख्याल रखेंगी, ऐसे करके पूरा 5-6 तरह की होती हैं। ड्रोन होता है जो मेल होता है जो अपने स्पर्म बना के देता है, मतलब या कह सकते हैं मेल गैमेट देता है। तो बड़ी बढ़िया सी दुनिया है आसपास हम लोग को एक्सप्लोर करने, मतलब फालतू चीज़ें करने के अलावा अगर हम ये सब ध्यान से सुने और जाने तो हमें पता चलेगा यार दुनिया सिर्फ हमारी ही नहीं है, सिर्फ हम ही नहीं जी रहे, हमारे साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बहुत मस्त तरीके से जी रहे हैं, वो भी बिना कंप्लेन किए,
नेचर को। हम तो हर दूसरे टाइम समझे क्या भगवान बड़ी गर्मी कर दी, क्या भगवान कितनी बारिश कर दी, इतनी ठंडी कर दी आपने, धूप नहीं निकली भाई, कंप्लेन करते रहते। पर ये छोटे छोटे क्रिएचर्स जहाँ बना मतलब कहीं भी छोटी सी जगह मिली वहीं पर रहना शुरू कर दिया। नहीं मिला फूल तो कई किलोमीटर उड़ते चले गए। खाने के लिए कितनी मशक्कत करते हैं हम, फूल काटते हैं, वो ढूंढते हैं ढूंढते हैं ढूंढते हैं, और पॉलिनेशन भी बदले में कराते हैं। सो थैंक्स टू बी, थैंक्स टू बी, मधुमक्खी को थैंक्स बोलना ही चाहिए। तो चलिए आगे बात करते करते मैं आप लोगों को ले चलती हूँ। आज एक खास इंसान के बारे में बताने वाली थी, बताने वाली थी तो मुझे याद आ गया कि हाँ कल ही अभी मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुण्यतिथि थी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कहते हैं ना कि कविताएं हम सभी ने पढ़ी हैं, और ख़ास बात यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे उत्तर प्रदेश के थे। तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब लेखक हैं जिनको हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, किताबों में नाम देखा और बस पन्ना पलट दिया। ये एक बहुत बड़े निबंधकार थे, आलोचक थे, उपन्यासकार थे, और इन्होंने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, इन सभी भाषाओं की मतलब तालीम ली थी। और अगर बात करूँ तो इनका जो जन्म था वो 19 अगस्त 1907 में, और इनकी मृत्यु जो है 79 में हुई। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है वो हमारे ही उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। दुबे का छपरा ओझल बलिया नामक गांव में हुआ था, ठीक है। तो सबसे खास बात इनकी जानते क्या थी, ये ज्योतिष विद्या जानते थे। ज्योतिष विद्या आज की डेट में बड़ी बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, हर दूसरे दिन एस्ट्रो टॉक वाले और ये AI ज्योतिष बन बन के हमारा भविष्य बताते हैं। पर सच्ची बताऊँ एकदम जेन्युइन ज्योतिष विद्या जो होती है ना वो बहुत सारी चीज़ें रियल बताती है। गुड इवनिंग अब्दुल मुजीम जी लिखते हैं कि मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, मैं जवाब बनता अगर तू सवाल होती, सब जानते हैं मैं नशा नहीं करता मगर मैं पी लेता अगर तू शराब होती। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो बताइए अंताक्षरी खेलने के लिए हमारे लड़कों की टीम से तो दिख रहे हैं आरजे मनु, दिख रहे हैं अब्दुल मुजीम जी, दिख रहे हैं, बाकी लड़कियों की टीम से अभी मुझे कोई नहीं दिख रहा। तो उम्मीद है कि आप सभी उठ गए होंगे सो के। लेकिन हाँ चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात हो रही थी, और बता दूँ इनके बारे में कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हाई स्कूल उत्तीर्ण किया, फिर इसके बाद भगवती देवी से इनका विवाह संपन्न हो गया। पहले शादियाँ जल्दी होती थी, और इसके बाद 1929 में इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 में ज्योतिष विषय पर आचार्य की उपाधि प्राप्त की, मतलब पढ़ते जा रहे थे, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। शास्त्री और आचार्य दोनों की परीक्षाओं में उन्हें प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई थी। और द्विवेदी जी का बड़ा व्यक्तित्व में मतलब द्विवेदी जी के जो बड़े व्यक्तित्व है या उनका जो प्रभावशाली चरित्र है उसके पीछे एक मतलब कुछ खास चीज़ें हैं। उनका 1930 में शांति निकेतन जाना, जहाँ पे उन्होंने हिंदी का अध्यापन किया, और वहाँ गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर और आचार्य छिति मोहन सेन से बहुत सारी तालीम ली साहित्य से जुड़ी हुई। और वहाँ पे उन्होंने साहित्य में के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्यभार अपना मतलब ग्रहण किया। 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किए गए। तो ये छोटे मोटे, लेकिन आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है किताबें लिखना, लेकिन उन किताबों के लिखने के बाद जब ये बड़े बड़े सम्मान मिलते हैं ना तो लगता है कि हमने कुछ किया है। इनकी कुछ खास रचनाएँ बताती हूँ।

की आत्मकथा बड़ी अच्छी है, पढ़िएगा आप लोग टाइम मिले तो। चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोता। इसके अलावा इन्होंने संपादन भी किया संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का, संदेश रासक का, और महापुरुषों का स्मरण, ऐसी कई किताबों का इन्होंने संपादन भी किया। और बहुत सारी रचनाएं इन्होंने अनूदित रचनाएं लिखी, जैसे कि प्राचीन भारत की किला विलास, प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर, मेरा बचपन, विश्व परिचय, बहुत सारी चीज़ें। तो ठीक है, इन्होंने ग्रंथावली लिखी थी 11 खंडों की, बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। तो ये तो हो गई बात हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए आसपास, बस हमें क्या करना है, बस स्विच ऑन करना है दिमाग का और जानते रहना है। और उम्मीद है कि हम इस जानने के सिलसिले को रोकने नहीं वाले हैं और आगे भी बात करने वाले हैं बहुत सारी। हाँ, बहुत सारी का मतलब ये है कि आज अंताक्षरी खेलनी है, तो मैं चाहती हूँ कि गानों के साथ साथ मैं आप लोगों से कुछ कविताएं भी सुन लूँ। हाँ, कुछ फेमस कवियों की मतलब शायरी या कविताएं सुन के आपको पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन नाम बताते ही कॉल आना चाहिए, जिसका पहले कॉल आएगा उसी की टीम को पॉइंट मिलेगा। तो इस बार की अंताक्षरी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकिन मज़ेदार, इससे पता चलेगा कौन कितनी ज़्यादा किताबें पढ़ता है। वैसे आरजीबीना तो किताबें पढ़ती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, हाँ क्योंकि समय का अभाव है। लेकिन हाँ, इस समय के अभाव में अगर हम किताबें पढ़ते रहें और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना शुरू करें, ज़्यादा मतलब कि जैसे हम रील देख रहे हैं उसके बजाय हम मतलब ऑप्शन रखें, अभी रील देखने का या किताब पढ़ने का, किताब, इससे क्या होगा आपका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम होगा, हम फालतू की चीज़ें थोड़ा कम देखेंगे, हाँ ज़रूरी जो है वही देखेंगे। तो इस बात पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारी जो रूटीन है वो अच्छी होगी, मज़ेदार होगी, इंटरेस्टिंग होगी, बहुत कुछ सीखते हुए चलेंगे, मज़ा आएगा। तो चलिए आगे बता देती हूँ कि भाई आज देखते देखते मल मास शुरू हो गया, इसको अधिक मास भी बोलते हैं, लोग बहुत सारी पूजा आराधना करते, कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा मंथ दिया जाता है जिसमें आप आराधना कर सकते हैं, और इस मंथ में अगर अच्छे से पूजा की जाए तो भगवान बहुत खुश होते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। फिलहाल आगे चलते हुए मैं थोड़ा सा म्यूज़िक प्ले कर देती हूँ आप लोग के लिए, और इंतज़ार करती हूँ लड़कियों की टीम का जो अभी तक सो रही हैं। जिंदगी में हर किसी को मतलब क्या है, म्यूजिक ही चेंज हो गया मुझे बहुत पसंद है ये गाना, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दो लाइन तो गा ही लेती हूँ।

लेट्स एंजॉय। प्यार मिले या ना मिले, लेकिन आरजे बिना का साथ हमेशा मिलेगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं गैंग्स 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

सो मैंने तो ये गाना एंजॉय कर लिया, लेकिन आप लोग के लिए मैं कुछ अच्छा सा प्ले करने का सोच रही हूँ। और आज मैं प्लेलिस्ट में कुछ ऐसे अंडररेटेड गाने लेके आई हूँ यार, जिन गानों को सुन के मन करेगा कि यार बार बार सुना जाए, एक बार नहीं कई बार सुना जाए।

क्या आपको भी कभी लगा है कि मोहब्बत कई बार हुई लेकिन कायदे से हर बार नहीं हुई? लेकिन अगर कायदे से हो जाए तो तो मोहब्बत का जो अर्थ है यानी कि मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं भी हमेशा से ये सोचती हूँ कि जो चीज़ हो वो तरीके से हो, और उसी तरीके का तो बोलते हैं ना

है। और शाम की जब बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि गोंडा शहर की शाम से बेहतर कहीं की शाम नहीं हो सकती। और यहाँ का मौसम फ़िलहाल सुहाना तो नहीं है, लेकिन हाँ म्यूज़िकल तो ज़रूर है, क्योंकि आरजबीना साथ है तो म्यूज़िक तो लाउड होगा और राधा नाचेगी भी। सो नाचने की बात से याद आया यार, इंडिया के बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं जिनको देख के ना मन एकदम खुश हो जाता है। किस दिन बात करेंगे डांस पे भी, हमारे देश में बहुत सारे अच्छे अच्छे डांस फॉर्म्स हैं। और वैसे आप लोग बताइए आपको कौन सा वाला पसंद है। मुझे तो डांस करना पसंद नहीं है, डांस देखना पसंद है, क्योंकि मुझे डांस आता ही नहीं है। और जब खुद को कुछ आता नहीं है ना, तो हमें वो चीज़ करना थोड़ा कम ही पसंद होता है। वैसे देखिए ये बात तो सही है कि कोई चीज़ हमें आती नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ को हम लोग किसी भी कह सकते हैं कि क्वालिटी को लेके साथ में तो हम आए नहीं थे दुनिया में, और वो सारी की सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर हमने खुद ही तो एक्वायर्ड की है। कहते हैं ना कि साइंस शायद कहती है कि दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक एक्वायर्ड वाले, एक इनहेरिटेड वाले। इनहेरिटेड वाले जैसे कि हमारी मम्मी ने हमें अपने बालों के रंग की खूबसूरती दी, जैसे मम्मी के ब्लैक ही बाल, हमारे भी ब्लैक ही बाल, पापा का गोरा रंग, हमारा गोरा रंग, तो ये सारी चीज़ें इनहेरिटेड वन है। लेकिन पापा को स्विमिंग नहीं आती थी, हमें आ गई, तो ये एक्वायर्ड है। तो हम बहुत सारी चीज़ें एक्वायर करते हैं, और इसी के साथ अगर हमें डांस करने का मौका मिले तो हमें सीख लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और आज गाना जिसने नहीं गाया उसको मौका नहीं मिलेगा दोबारा, क्योंकि अब आपको अगले वेंसडे का इंतज़ार करना पड़ेगा। सो अब्दुल जी आ गए हमारे साथ। हमारे गोंडा का क्या हाल है दीदी? गोंडा का हाल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हीट वेव्स इतनी ज़्यादा सड़क पे निकलती है, जैसे लग रहा है शरीर पूरा जल जाएगा, पर क्या करें, मौसम कोई भी हो सुहाना ही होता है यार। किसी मौसम की बुराई कर देंगे ना वो तो और तिल मिला जाएगा। तो कहते हैं ना किसी को गुस्सा दिलाना हो तो उसके और मतलब गुस्सा दिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको चढ़ा देते हैं। तो गर्मी को चढ़ा देंगे और ज़्यादा, तो और ज़्यादा अभी रुक जाओ, तुमको तो 50 डिग्री पे तलूंगी मैं, तो गर्मी और हमें गला देगी। इतनी अच्छा है मौसम है यार, मुस्कुराओ तब जाके कहीं गर्मी अपना कहेगी अरे इनका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा हूँ मैं, जाने का मुझे जाने दो, थोड़ी बारिश कर दो इन लोग के पास, तो ऐसा कुछ सोचेगी। तो चढ़ने वाले इंसान को चढ़ाना नहीं चाहिए। फिलहाल गर्मी अपने एक्सट्रीम मोड में है, मैं भी अपने एक्सट्रीम मोड में हूँ, क्योंकि मैं जब गाना गाती हूँ तो मुझे गर्मी नहीं लगती, और ये बात सही है यार। अच्छा मैं आप लोग को जैसे प्रेजेंट टाइम में सारे लिसनर मुझसे यही पूछ रहे हैं कि मैम फ़ोन करके कह रहे हैं मैडम जी कोई ऐसा गाना बजाइए गर्मी चली जाए। हम कहे हाँ बहुत सही क्वेश्चन है, वैसे गाना तो बारिश बजा दूँ लेकिन गर्मी दूर नहीं होगी। फिलहाल आपकी गर्मी दूर करने का मेरा एक मतलब छोटा सा नुस्खा है, आप लोग ट्राई करिएगा। मैं अक्सर ये करती हूँ, अब सोच लूँगे क्या करती हैं आरजे बिना, ऐसा तो नहीं है गर्मी में चाय बना के पीती है, चाय तो मैं पीती हूँ वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल इस गर्मी में चाय थोड़ा नुकसान कर सकती है, तो मैंने चाय अवॉइड कर रखी है। बताओ मैं क्या करती हूँ, अपना फेवरेट काम, हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट काम होता है, जैसे कुकिंग वालों को तो मुझे नहीं पता उनको अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन हाँ अपनी फेवरेट डिश बनाते समय उन्हें गर्मी नहीं लगेगी। जैसे किसी की कुछ किताबें लिखने की आदत है फटाक से लिखता जाएगा, किसी की पढ़ने की आदत है वो गर्मी में बैठ के पढ़ता रहेगा। मतलब बचपन में मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगता था, अभी भी लगता है ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ी एंगेजमेंट ज़्यादा रहती है, तो जब हमें टाइम मिलता है फ्री वाला टाइम, मस्त वाला टाइम, तो हम मस्त तरीके से काम करते हैं। तो मतलब गर्मी में भी अगर आप कोई मन वाली चीज़ करेंगे ना अपनी पसंद वाली, आपको सच्ची बता रही हूँ गर्मी नहीं लगेगी, ट्राई करके देख लो। फॉर एग्जाम्पल किसी लड़के का मतलब कहीं चक्कर चल रहा है, उसका पसंद का काम है उसकी गर्लफ्रेंड से बात करना, भाई बात करके देखो ना, मतलब 99% मुझे ऐसे लग रहा है आपको गर्मी नहीं लगने वाली। आप तपती छत पे बिना चप्पल के ऐसे घूमते हुए और मुस्कुराते हुए बात करोगे, तनाव नहीं दिखेगा माथे पे, एक लाइन नहीं दिखनी है, ना खुशी अच्छी ना हंसना मलाल अच्छा, अल्लाह जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। क्या बात है इरशाद इरशाद मुकर्रर यार, क्या एक बार और पढ़ना पड़ेगा। ना खुशी अच्छी ना हंसने का मलाल अच्छा, अल्लाह जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। सही बात है, बिल्कुल पॉइंट टू बी नोटेड, और यही मैं भी कह रही हूँ। और देखो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम खुद ही अपना कोई, वैसे तो हम इंसान बनते हैं कि अरे हम तो भौकाल है हमारा, भाई एसी वेसी से भी अलग चीज़ें होनी चाहिए। देखिए एसी वेसी चलाने से और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, और ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है, और ये ओवर एसी यूजेस ही हैं जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं और गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर रुक नहीं रहा। तो मुझे कुछ अर्ज़ करने का मन कर रहा है, और अर्ज़ में भी गाना अर्ज़ करने का मन कर रहा है गाना आप लोग सोच रहे होंगे ना आरजे बिना आज कौन सा ऐसा गाना सुनाएंगी,
वैसे गाने तो मुझे बहुत सारे आते हैं, लेकिन जब सुनाने का होता है ना दिमाग में कोई अच्छा सा, और जैसा आपने, मैंने अभी तुरंत कहा कि अपनी पसंद का काम करो, गर्मी नहीं लगेगी। मेरे पसंद का काम है गाना गाना, आप लोगों से बातें करना, तो बातें तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, सोचो गाना भी गा लूँ। और अंताक्षरी वाला दिन मैं गाना नहीं गाऊँगी तो ऐसे कैसे शुरुआत होगी अंताक्षरी की? तो पहला वर्ड जो मेरे गाने से एंड होगा वो उसी लेटर से आपको गाना गाना होगा। तो कौन सा गाना मैं गाना चाहती हूँ वैसे? हाँ, थोड़ा पुराना गाना सुनाती हूँ, मज़ा आएगा, ठीक है? और अच्छा गाना है, मतलब सुनेंगे आपको मज़ा आएगा। कैरोके के साथ सुनाती हूँ मैं, थोड़ी कोशिश करूँगी आप लोग अप्रिशिएट करना, ठीक है? बहुत पुराना गाना है पर अच्छा है। इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी रैन। वैसे पुराना गाना नहीं, आप लोग सोचोगे यही गाने जा रही है, तो मेरे साथ चल रहा था तो इसीलिए चलते चलते साथ में हाथ पकड़ लिया इस गाने का मैंने गाना। लेकिन ये भी अच्छा है ना,

तो चलिए पुराना वाला गाना सुनाती हूँ आपको। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि आरजे बिना फिरकी ले रही हैं, सुना रही है नया गाना, कह रही है पुराना गाना सुनाने जा रहे हैं। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा सा गाना है, मुझे बहुत पसंद है ये गाना, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

कैसा लगा? फिलहाल आप लोग को ए से गाना गाना है, और ए से गाने वाले जल्दी से कॉल कर लें, ए से गाना गाना है आपको। मैं गाना कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि गाने का मन कर रहा है ना। ध्यान से सुनिए और ए से आपको सुनाना है।

0: तो मैं गाना सुनाना बंद करती हूँ, कॉल आ चुका है और आवाज़ सुनते हैं किसकी है। हेलो हेलो, शुभ संध्या, कैसी हैं सविता जी? ऐसे गाना सुनाना है और हमारे मतलब लड़कियों की टीम एक्टिव है, ये मुझे पता नहीं था और आपने कॉल करके मुझे बता दिया कि आप जाग रही हैं ना कि सो रही हैं बाकियों की तरह। फिलहाल गाना कौन सा सुनाएंगी ये बताइए, ऐसे गाना सुन
1: कैसे नींद आएगा
0: लेकिन गाना गाने से गर्मी जरूर दूर चली जाएगी। ये बताइए ऐसे गाना कौन सा गाएंगी आप?
1: ऐसे
0: हाँ जी।
1: ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, कहता हूँ मैं जो तुम भी कहो जी, 1 2 का 4
0: 4 2 का 1 मायने
1: मिस लखन मायने।
0: क्या बात है,
1: मेरा नाम है लखन,
0: क्या बात है। थैंक यू सो मच सविता जी, और आपकी आवाज़ सुन के।
1: आपको सुनिए मैम, आपको अग्रिम आपकी जन्मदिन को ढेर सारी शुभकामना
0: अग्रिम शुभकामनाएं आज ही से दे रही हैं आप? बड़ा याददाश्त आप लोग की बहुत ज़्यादा तेज है मेरे मामले में, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए मेरे बर्थडे की मुझे एडवांस मतलब विशेज मिल रही हैं, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। कितनी मोहब्बत करते हैं आप लोग मुझसे, थैंक यू सो मच। और लड़कों आप लोग मोहब्बत से काम नहीं चलने वाला, ना से गाना सुनाना है, ठीक है ना? तो गाना कहाँ चला गया, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हाँ गाना कहाँ चला गया। गाना तो मैं सुना ही रही थी, लेकिन ना से आपको गाना सुनाना है क्योंकि लड़कियों की टीम गा के चली गई है, ठीक है ना? तो मैं आगे भी सुनाती रहती क्योंकि एंटरटेनमेंट रुकना नहीं चाहिए, नहीं गाना नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी हॉबी वाला काम कर रही हूँ और हॉबी वाला अगर काम नहीं करूँगी तो गर्मी लगने लगेगी ना। गुड इवनिंग सुनू शुक्ला, सॉरी क्या नाम लिखते हैं आप लोग, सनू शुक्ला हो सकता है, सनू ही हो। तो सनू शुक्ला जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? और स्वागत है लड़कियों की टीम से एक और मेम्बर हमारे साथ। एंड चलिए अगले स्टैंजा की शुरुआत कर देते। जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, फिलहाल म्यूजिक चेंज कर दिया था मैंने, मुझे तुम याद आए, लड़कों आप लोग को नर्स से गाना है। मीनू गोंडा आगे गुड इवनिंग, कैसी है मीनू जी? चाय के लिए शुक्रिया, चाय का इंतजार आज बिना हमेशा ही करती रहती है और आप लोग की चाय बिंदास रहती है क्योंकि अलग अलग फ्लेवर में होती है चाय, जब अलग अलग फ्लेवर में होती है ना तो वाइब अच्छी बनती है। थैंक यू। और चाय में मेरी तरफ से एक छोटा सा नुस्खा, आजकल थोड़ी सी सौंफ डाल के पिए, चाय नुकसान नहीं करेगी और सौंफ ठंडी भी होती है तो चाय का जो अच्छा फ्लेवर कर देगी ना, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ना कि चाय बनाते समय सौंफ डाल रहे हैं।

0: ये बात सही है कि जब हम किसी अपने को देखते हैं ना तो हमें याद आती है किसी खास की। तो चलिए अगले कॉलर को सुनते हैं, कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग, शुभ संध्या, कैसे हैं जी? आपका नाम?
1: अमित कुमार।
0: ओहो हो, अमित के बिना तो लड़कों की टीम अधूरी है। पिछली बार कहाँ थे जरा बताइए जनाब।
1: मैम सुन रहा था लेकिन मैंने कॉल नहीं किया था।
0: ओह, सोचा कि देखता हूँ मेरी टीम से मेरा साथ कोई देता भी है कि नहीं, कुछ ऐसा। ये बताइए गर्मी
1: ना से सुनाना है?
0: हाँ, ना से, ना से, ना से नल। स्वागत है।
1: नैनों की बात तो नैना जाने है, सपनों के राज जो रहना जाने है, दिल की जो बात तो

0: बस इतना जाने है, तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सात तो जन्म। जी मैं
1: क्या बात है, बहुत अच्छा गाया आपने और पूरा जो मुखड़ा है ना वो मन लगा के निभाया। थैंक यू सो मच अमित। और आगे आपकी टीम को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है,
0: मैम,
1: कहीं
0: आपके वहाँ
1: जाइएगा।
0: गर्मी वर्मी है या नहीं?
1: मेरे वहाँ आप पहले बताइए आप कहाँ हैं।
0: मैम गोंडा से 20 किलोमीटर दूर।
1: नहीं, हमारे आज थोड़ा सा ना जैसे बर्फबारी टाइप की हुई है तो काफ़ी
0: मैम
1: ठंडी लग रही है। सच बता रही हूँ, बड़े बड़े बर्फ़ के गोले
0: ठीक
1: गिरे
0: है
1: हैं।
0: मैम, वहीं पर आना पड़ेगा
1: हाँ,
0: वैसे।
1: मैं तो कहती हूँ आ जाइए आप, बताइएगा स्टूडियो में, सीधे आपके रहने खाने की व्यवस्था कर दूंगी मैं, बस आप आ जाइए क्योंकि यहाँ तो बर्फबारी हो रही है बहुत
0: थैंक
1: तगड़ी
0: यू
1: वाली।
0: मैम।
1: थैंक यू सो मच अमित। सो अमित जी को बर्फबारी वाली, मैंने कहा भाई देखो किसी को फीलिंग अच्छी मिल जाए क्या है भाई, जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी। तो चलिए अगले स्टेंजा की बारी है। देखिए मैं किस्तों में सुना रही हूँ, नैना जाने हैं दिल की बातें, धड़कन जाने हैं और क्या है अखियों की बात, नैना जाने हम दीवाने हो गए आपके, का से गाना है लड़कियों को। सो लड़कियों फटाफट से नंबर डायल करिए, मैं आगे गाना सुनाती हूँ। एक एक स्टैंजा कितना मन लगा के मैं गा रही हूँ ना, ये सही है, पूरा गाना बीच में कट जाए, इससे अच्छा मैं ही गाऊँ, मैं ही बीच में अपनी आवाज़ रोक दूँ, क्या है एनर्जी स्टोरेज।

0: यार मेरा गाना छूट गया बीच में, सांस ले ली मैंने, लेकिन कॉल आ गया। चलो अब छूटा ही रहने दो, इसको थोड़ी देर बाद पूरा करते हैं क्योंकि कॉल आ चुका है और देखते हैं किसकी आवाज़ अगली बार सुनने को मिल रही है लड़कियों की टीम से। हेलो, न से गाना था सविता जी, वापस से आपका स्वागत है। नहीं नहीं, न से नहीं गाना है, क से गाना है, हम दीवाने हो गए आपके। क से
1: कबूतर जा जा जा कबूतर जा, पहली प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे या, कबूतर जा जा कबूतर जा जा।
0: क्या बात है, बिल्कुल कबूतर ऐसे भेजेंगे, इतने प्यार से तो नहीं जाएगा, थोड़ा गुस्से से भेजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सविता जी। कबूतर जा जा जा से गाना है लड़कों की टीम को। फिलहाल मैं बताऊं कि भाई कबूतर भी अपने आप में बहुत दुविधा में हो गया भाई, का तो ये सब कबूतर ही समझ में आता है, क से कोयला भी होता है, क से कपूर भी होता है, भाई मेरा नाम क्यों हरदम सब याद करते थे, हिचकी मार मार के बेचारे कबूतर का बुरा हाल होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हो जाता है कभी कभी। चलिए अगले कॉलर से हम लोग बात करते हैं, गाना गाना है जा से। हेलो
2: हेलो
0: हेलो, नमस्कार,
2: गुड इवनिंग,
0: गुड इवनिंग सुरेश जी, कैसे हैं, स्वागत है आपकी आवाज़ का। जा से गाना सुनाना है आज आपको, कैसे हैं?
2: जैसे
0: जी जी, जा से
2: जा जा जा रे तुझे हम जान गए, कितने पानी में हो पहचान गए, जा जा रे तुझे हम जान गए, कितने पानी में हो पहचान गए, जा जा रे तुझे हम जान गए।
0: क्या बात है, मतलब किसी को इनडायरेक्टली कुछ कहना हो तो इस गाने को सुना के हम कह सकते हैं, क्या बात है सुरेश जी, कितना अच्छे अच्छे गाने आप ढूंढ के लाते हैं, क्या कहने।
2: 18 तारीख को बिना मैंने बहुत मिस किया, लेकिन कोई फोन आपने मेरा उठाया नहीं।
0: आपका कॉल
2: सोमवार को,
0: इसी सोमवार को
2: मुझे ऐसा
0: लग रहा है कि पैरेलल कॉल चल रहे होंगे, इस वजह से आपका कॉल नहीं गया होगा, क्योंकि 45 तक ही कॉल लिए जाते हैं, उसके बाद से क्योंकि फरमाइशी शुरू हो जाती है, इस वजह से कॉल नहीं ले पाऊंगी, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और उम्मीद करूँगी।
2: नहीं,
0: देखिए हर इंसान को एक उम्मीद होती है और उम्मीद जब टूटती है तो थोड़ा सा तो बुरा लगता है, लेकिन हाँ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सुरेश जी, आपकी आवाज़ हमेशा हमारे लिए खास रहेगी। तो चलिए सुरेश जी ने गाना सुना दिया, अब लड़कियों की बारी है और देखते हैं कौन सा गाना हमारी लड़कियों की टीम गाने वाली है। तो भाई लड़कियों की टीम से तो भाई सब लोग एक्टिव हैं, लेकिन लड़कों की टीम से भी मुझे अब पता चल रहा है कि दोनों की टीम जो है ना बराबरी में काम कर रही है, और इस बराबरी की बात अगर मैं करूं तो एक कॉल आ गया है। हेलो हेलो हेलो, मुझे लग रहा है कि लड़कियों की टीम से ही कॉल है लेकिन आवाज़ नहीं जा रही है मेरी। हेलो हेलो, हेलो हेलो, चलिए अगले कॉलर को मौका देते हैं। हेलो
3: हेलो मैम, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, तो आशु जिसके पहले आपका कॉल आ रहा था। सो कैसी हैं, सबसे पहले ये बताइए लखनऊ में गर्मी कैसी पड़ रही है, ऐसी ही?
3: बहुत बहुत ज्यादा, बहुत भयंकर मैम गर्मी है।
0: मुझे तो लगा बर्फबारी आपके यहाँ भी हो रही है।
3: नहीं बर्फबारी नहीं हुई है, गोले पड़ रहे हैं बर्फ के, जहाँ भी गोले पड़ रहे हैं।
0: तो सुरेश जी ने हमें गाना सुनाया जा जा जा रे तुझे पहचान गए, ऐसे गाना सुनाना है आपको।
3: नहीं तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, हम नहीं तोड़ेंगे
0: तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ, बिल्कुल। और आशु जी, हम तो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको छोड़ के भागना है तो भाग जाइए आप।
3: थैंक यू। नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं ले जाएंगे।
0: तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ओके, ग से लड़कियों की टीम ने, मतलब लड़कों की टीम ने गाना गाना है, क्योंकि लड़कियों ने ग पे आप लोग को छोड़ दिया लाके। और चलिए देखते हैं ग से गाना गाने के लिए कौन सा लड़का तैयार है। वैसे ग से भी बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं, और अगर आप लोग गाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। और गानों की बात हुई है और हमारे लिसनर्स भी चैट रूम में दिख रहे हैं, तो सब लोगों से भी थोड़ी सी मुकम्मल कर लेते हैं बातें। गुड इवनिंग अनिल वर्मा जी, सैदापुर से स्वागत है आपका। और मीनू गोंडा से लिखती हैं कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है, कार्तिक पांडे नाम है उसका। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे कार्तिक, आप खूब तरक्की करें, खूब बड़े हो जाएँ, खूब हेल्दी हों। और आपके लिए चलिए गाना बजा देते हैं, और ऐसे मेरा फेवरेट वाला गाना मैं वही प्ले करूँगी। मतलब मेरा बर्थडे भी आ रहा है, तो इसलिए मेरे को और ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना। तो तारे तारे कितने नील गगन में सारे, चलिए सुनते हैं कार्तिक के लिए ये प्यारा सा गाना। और लड़कों को गाना है ग से गाना।

0: तो ये गाना सुनने के बाद अगले कॉलर से बात करते हैं, लगता है कॉल आ चुका है। हेलो
1: हेलो
0: जी, गुड इवनिंग
1: मैम, दुआ का मैम।
0: ओके अमित, वापस से आप ही को निभाने के लिए आना पड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। ग से गाना आपको गाना पड़ेगा।
1: ग
0: जी जी जी ग
1: गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर, अंबर सरिया मुंडिया वे कटिया कलिया ना तोड़, तेरी मानी बोले है मुझे तीखे से बोल।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप गाने याद रखते हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी, क्या बात है, थैंक यू। सो अमित ने आके अपनी टीम को बचा लिया फाइनली, और बाकी लड़के तो भाई हमें लग रहा है सुरेश जी और आज अमित जी अपनी टीम के बोझ को, मतलब वैसे तो दिख तो रहे हैं बहुत सारे लड़के। मनी शर्मा जी है, अच्छा मनी जी मतलब पैसा खर्च करने गोवा चले गए थे क्या, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। और आशु जी भी चैटरूम में दिख रही हैं, सबका सबका स्वागत है भाई। चाय भी आ गई है, चाय पी लेते हैं। तो चाय पीते पीते मैं आपको बता देती हूँ कि फ़िलहाल आपको कौन सा गाना हमारे सुनाया है, हमारे लिसनर अमित ने सुनाया है कि गली में मारे भेरे पास आने को तेरे, कभी परखता नैन मेरे वो कभी परखता दूर, अंबर दरिया मुंडे आवे कचियां कलियां ना तोड़। क्या भाई बहुत सही, अड़ा से गाना सुनाना है लड़की, अड़ा से सुनाओ चलो अड़ा से। भाई मैं सोचूं रहा है क्या है, मैं सोच नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे अड़ा पे थोड़ा डाउट था, मैंने सोचा अड़ा से गाना कौन गा पाएगा, अड़ा भी कोई लेटर होता है, अड़ा से गाना सुनाना है। अंबर सरिया मुंडे आवे कचियां, नहीं यार खाना गाना तो लव पे खत्म हुआ था, मैंने लड़कियों को फाइनली बचा लिया। तेरी माने बोले हैं मुझे तीखे से बोल, अंबर सरिया ल से या फिर य से आप गा सकती हैं। चलो बचा लिया, मैं तो अड़ा सोच रही थी, अड़ा सोच के तो मेरी तो मतलब खुद ही मेरा खुद का बीपी बढ़ गया कि भाई अड़ा से कोई कैसे गाना गाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला कॉल किसका है। हेलो
2: हेलो
0: जी, सविता जी वापस से हमारे साथ हैं, गाना आपको सुनाना है ल से।
2: लाल दुपट्टी वाली तेरा नाम तो बता, अरे काली चोटी वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता रा नाम तो बता तेरा नाम तो बता।
0: क्या बात है, बहुत सही, नाम तो बता। तो लड़कों को गाना है गाना त से, थैंक यू सो मच सविता जी। तो सविता जी ने गाना सुना दिया अपनी टीम के लिए, और टीम वालों को भी बता दूं कि भाई त से गाना गाना है, लड़कियों के हो जाते हैं इसी के साथ 120 पॉइंट्स, और इसके बाद लड़के सिर्फ त से गाएंगे और इसके बाद हम इस राउंड को यहीं ख़त्म कर देंगे। तो त से गाना गाना है लड़कों की टीम को, तो त से तो ठीक है बड़ा आसान है, लेकिन मैं लड़कियों से एक सवाल करना चाहती हूँ, किस किस लड़की के जो मतलब बाल हैं वो काले हैं, इन्होंने भी कहा ना कि लाल दुपट्टे वाली ज़रा नाम तो बता और ऐसे काली चोटी वाली जो भी है, तो किसकी किसकी चोटी काली है फटाफट से हाथ रेज़ करिए, और जो रेज़ नहीं करेगा उसको मैं समझ लूँगी उसकी चोटी सफ़ेद हो गई है, फटाक से आप लोग ज़रा रेज़ करिए हाथ अपना। तो चलिए देखते हैं कौन है अगला कॉलर जिसका इंतज़ार है, एक कॉल आया लेकिन आवाज़ नहीं आई। हेलो हेलो हेलो अमित, अमित जी वापस से आपका स्वागत है, तर से गाना सुनाना है आपको।
1: मुझे देखे मेरी आंखें इसमें मेरी क्या खता है।
0: क्या बात है, इसमें आपकी क्या खता है, मुझे पता है कोई खता नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने गाना सुना दिया, और लड़कों को मैं बता दूं ये राउंड आपका यहीं पे ख़त्म होता है, एंड अभी दोनों ही टीम एकदम बराबरी पे मस्त खेल रहे हैं। चलो थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे कहते हैं ना कि तुम भी बैटिंग करो हम भी बैटिंग करें, तुम भी बैटिंग करें, हम दोनों एक दूसरे को ऑल आउट नहीं करेंगे, ये वाला चल रहा है। मतलब हाँ आशु जी के बाल काले हैं फाइनली, मीनू जी के भी बाल काले हैं, भी सविता जी का नहीं पता चला, और बाकियों का जो ऐसे सुन रही है ना ऐसे ही बताने के लिए तैयार नहीं, तो मैं समझ लेती हूँ आप लोग के बाल सफ़ेद हैं, फिलहाल मेरे भी काले हैं, और मैं भी अभी थोड़ी देर में हाथ फ्रेस कर दूँगी, आप लोग मेरे ही पूछ लेंगे। मैंने ऑरली देखो बता दिया, मेरे बाल सारे काले हैं, एक आध दो सफ़ेद हैं जो कि मैं कभी कभी ना मेहंदी लगा लेती हूँ, वो जो ऑर्गेनिक वाली, अब कहेंगे ऑर्गेनिक वाली कहाँ मिलती है, मेरे घर में पेड़ लगा हुआ दूर, वही पेड़ की पत्तियाँ तोड़ के उसको मैं मिक्सी में पीस के या कभी कभी सिलबट्टे पर भी पीस लेती हूँ, डिपेंड्स, ऑल डिपेंड्स। तो चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और वापस से नेक्स्ट राउंड की ओर रुक करते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए मैं थोड़ा सा साहित्य वाले लोगों को जोड़ना चाहूँगी, वो लोग जो कविताएं किताबें पढ़ते हैं, कवियों को जानते हैं। और मैं भाई देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं बहुत हार्ड एंड टफ कवियों का नाम नहीं लूँगी कि आपने कभी नाम नहीं सुना। तो कुछ ऐसे कवि जिन्होंने आपको बचपन में एंटरटेन किया है, उनकी कविताएं पढ़ के बचपन में आप बहुत मुस्कुराए हैं, तो उन कवियों का नाम मैं बताऊंगी। उस कवि की कविता जो सबसे पहले बता देगा कॉल करके, नेक्स्ट राउंड में ऐसा कुछ नहीं होगा कि लड़कों को पहले बोलना है, लड़कियों को पहले बोलना है। जो भी अपने कवि का नाम सुन के, मतलब जो भी जिस कवि का मैं नाम लूँगी उसका नाम सुन के सबसे पहले उसकी कविताओं की चार लाइनें सुना देगा भाई, उसको सीधे 50 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा लर्निंग बेस राउंड है, अंताक्षरी भी होगी, थोड़ी लर्निंग भी होगी, पता भी चलेगा कि आप किस कवि को ज़्यादा जानते हैं। लेट्स एंजॉय नेक्स्ट सॉन्ग।

क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन सविता जी, मुस्कुराइए, अभी तो आप जवान हैं। अच्छा, बालों का काला होना ये तो आके चीख के गा दिया बगल में आके मेरे जैसे लग रहा है। तो मैं बता रही हूँ कि बालों का काला या सफ़ेद होना ये बिल्कुल नहीं बताता हमारी एज क्या है। बालों का काला या सफ़ेद होना ये ज़रूर बताता है कि हम कितने ज़्यादा हेल्दी हैं मेंटली। हम ज़्यादा थिंक करते हैं, ज़्यादा मेंटल प्रेशर लेते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे बालों का जो रंग है वो मतलब डल हो जाता है, ठीक है, ग्रे हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप हैप्पी रहिए, आपके बाल अपने आप हेल्दी रहेंगे।

इतना प्यारा सा गाना सुन के मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं भी गा लूं, लेकिन गाना मुझे पूरा आता ही था। फिलहाल आप लोग को बता देती हूँ कि मैं कि पहले कवि का नाम है, आप लोग सोच रहे हो किसका नाम दूंगी मैं, जय शंकर प्रसाद। तो जय शंकर प्रसाद की कोई भी चार पंक्तियाँ सुना के आप बन सकते हैं हीरो, यानी कि जीरो से हीरो, यानी कि 120 से जीरो को बढ़ाएंगे और मतलब 5 साथ में जोड़ेंगे और आपके पॉइंट सीधे हो जाएंगे। 5 और 2 कितना होता है भाई, जरा मुझे मैथ थोड़ा कमज़ोर है, 170। तो भाई 170 पॉइंट चाहिए आपको, तो फटाक से हरिशंकर प्रसाद की कोई भी प्रसिद्ध पंक्तियाँ आपको ऑन एयर डायल करके 6393131 सुना देनी है।

0: चलिए पहला कॉल आ चुका है, सुनते हैं कौन है।
1: हेलो
2: मैम, गुड इवनिंग। हेलो मैम,
0: गुड इवनिंग। और आवाज़ जानी पहचानी, और मैं गेस करने की कोशिश करती हूँ, और मुझे लग रहा है कि प्रीति जी है।
2: जी जी मैम, प्रसाद जी के बारे में पूछी है, जयशंकर प्रसाद।
0: नहीं, उनके बारे में मैं जान के क्या ही करूँगी, कविता सुना
2: दीजिए। उनकी कविता
0: जी,
2: उनकी कविता,
0: उनकी कोई भी प्रसिद्ध कविता की चार पंक्तियाँ आपको बस सुनानी।
2: अच्छा जी मैम। बीती विभारी जागरी, बीती दिभावरी जागरी, अंबर पनघट पे डुबो रही तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल कुल सा बोल रहा, अंचल सा मन डोल रहा।
0: क्या बात है। और इसी के साथ 50 पॉइंट आपकी तरफ हो रहा। क्या बात है।
2: थैंक मैम, थैंक।
0: मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कवित्री अगर होगी तो वो कहीं ना कहीं और बहुत सारे कवियों को या कवित्रियों को पढ़ती होगी, और वो काम।
2: मैं तो फॉलो कर रही हूँ माँ देवी सुभद्रा का, जो है ना, ये भी है, पंत है, प्रसाद भी है।
0: महादेवी जी और सुभद्रा जी का व्यक्तित्व तो बहुत प्रभाव, अगर हम जितना उनको जानेंगे वो कम ही होगा। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनके व्यक्तित्व से, उनकी खुद की आप उनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार ऐसा जीवन होना चाहिए।
2: लेकिन जिनका ज्यादा समझ में हमें नहीं आता है हमें।
0: हाँ, ये बात तो सही आपने कही। तो प्रीति जी ने अपने पसंदीदा के कवियों का मतलब कवित्रियों का भी नाम ले लिया। तो जैसे कि भाई कवित्री की बात हुई है, और मैं कुछ मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ फेमस इंडियन जो हिंदी पोइटर्स हैं उनके बारे में तो आपको बताऊंगी नहीं, लेकिन हाँ नाम दूंगी तो मुझे लगता है कि आप लोग उनकी कविताएँ ज़रूर सुनाएंगे। फ़िलहाल आप लोगों को बताने में खुशी होगी कि बहुत सारी ऐसी कवित्रियाँ हुई हैं जिनका नाम हमने सुना तो है, लेकिन उनकी कविताओं को पढ़ते समय हम भूल जाते हैं कि इनको भी याद रखना है। तो चलिए अगली कवित्री की ओर रुख करते हुए मैं अगले नाम आप लोग को दे देती हूँ। तो दूर नहीं जाते हैं, नाम दे देते हैं आपको, अमृता प्रीतम का ही। तो अमृता प्रीतम की कोई चार पंक्तियाँ आपको सुनानी है। बहुत फेमस कवित्री रही हैं, हर किसी ने इनको पढ़ा होगा, जाना होगा, और महादेवी वर्मा को भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अमृता प्रीतम की कविता आप कोई भी चार सुनाएं, और उम्मीद करूँगी कि सबको याद भी होगा। तो चलिए आप लोग की कविताएं सुनने का समय हो चुका है, अगले कॉलर का इंतज़ार कर रही हूँ। अमृता प्रीतम की कोई भी चार पंक्तियाँ सुना के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और गाना कंटिन्यू करती हूँ जो चल रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशन, लड़कियों की टीम आगे चल रही है।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो सृष्टि, आपको अमृता प्रीतम की कोई चार पंक्तियां सुनानी है। अमृता प्रीतम जी की। तो लग रहा है कि सृष्टि को नाम उन्होंने ध्यान से नहीं सुना, लेकिन चलिए सुनते हैं गाना। लड़कों की टीम थोड़ा एक्टिव हो जाएगी।

0: तो अगला गाना हम लोग थोड़ी देर में सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अपने कॉलर से बात कर लेते हैं, देखते हैं किसकी आवाज़ है। हेलो,
1: शुभ संध्या बीना जी।
0: शुभ शुभ संध्या, कैसे हैं आप? और फाइनली लड़कों की टीम से एक और दावेदार, सुनानी है पंक्तियाँ चार अमृता प्रीतम जी की।
1: मैम, अमृता प्रीतम जी की एक कविता है, मुलाकात।
0: ओह क्या बात है।
1: मुझे पल भर के लिए आसमान को मिलना था, पर घबराई हुई खड़ी थी कि बादलों की भीड़ में मैं कैसे गुजरूंगी। कई बादल चाह काले थे, खुदा जाने कब के और किन संस्कारों के। कई बादल गरजते दिखते, जैसे वे नसीब होते हैं रागीरों के। कई बादल घूमते चक्कर खाते खंडहरों के, फूल से उठते खतरों जैसे। कई बादल उठते और गिरते थे, कुछ पूर्वजों की पटी पत्रियों जैसे। कई बादल गिरते और घूरते दिखते कि सारा आसमान उनकी मुट्ठी में हो। और जो कोई भी इस राह पर आए, वह जर खरीद गुलाम की तरह आए। मैं नहीं जानती थी कि क्या और किसे कहूँ कि काया के अंदर एक आसमान होता है और उसकी मोहब्बत का तकाजा वह कायनाती आसमान का दीदार मांगता है।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और आपने, मुझे लग रहा है कि इस कविता के माध्यम से हमें एक बेहतरीन कविता तक पहुंचा दिया है। वैसे मैंने पढ़ी है अमृता जी की कविताएं, ये वाली नहीं पढ़ी, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बादलों का विश्लेषण बचपन में हम सभी ने किया है, लेकिन कविता के रूप में शायद अमृता जी ने पिरोया। क्या बात है
1: जी मैम,
0: क्योंकि बादलों में तो हमें भी बहुत सारी चीजें दिखती थी, कभी पेड़ तो कभी गाड़ी कभी कुछ। थैंक यू सो मच। तो अनूप जी ने बता दिया, और अब बारी है आप लोगों के साथ अगले कवि की ओर रुख करने की, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का जो उत्तर होगा वो बड़ा ही उम्दा होगा। तो अगले जो कवि हैं उनका नाम मैं आप लोग को दे देती हूँ। कवि का नाम है हरिओम पवार। हरिओम पवार की कोई भी कविता आप सुना सकते हैं जिसकी चार पंक्तियाँ आपको याद हो, और इसी के साथ अपनी टीम को पॉइंट दिला सकते हैं। तो फिलहाल देखिए कॉल भी आ रहा है, देखते हैं किसका कॉल है। हेलो,
2: हेलो मैम, हेलो मैम,
0: अगेन गुड इवनिंग प्रीति जी। और आपको अभी हरिओम पवार की कविता सुनानी है।
2: अमृता प्रीतम जी, किसने सुनाई मैम?
0: हाँ, लड़कों की टीम से आ गया आंसर। अच्छा, और पॉइंट
2: कौन सा बता रही मैं?
0: हरिओम पवार।
2: हरिओम पवार,
0: अपने दिमाग के गूगल को दौड़ाने जा रही है लग रहा है।
2: मैम बहुत टफ बता दी आप तो।
0: अरे तो धीरे धीरे, कहते हैं ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम बढ़ेंगे ना। तो चलिए आप सोच के फिर कॉल करिए जल्दी से, और इंतजार रहेगा। तो प्रीति जी ने तो बताया नहीं, अब ये लड़कियों की टीम और लड़कों की टीम जल्दी से सुने और सोचे और बताए कि हरिओम पवार की कौन सी पंक्ति आपको याद है। देखिए कॉल आ गया फिर से। हेलो,
1: हेलो,
0: ओ अनूप जी वापसी आपकी। तो हरिओम पवार के साथ आपकी वापसी हुई है, क्या सुनाएंगे?
1: मैम, हरिओम पवार जी की एक कविता है, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, चाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाहत नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ। लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। डॉक्टर हरिओम पवार।

बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझने को मिलेंगी जो आपको अभी तक नहीं समझ में आई। फिलहाल बात करूंगी अगले कवि की, नाम है मिर्ज़ा गालिब, और चलिए सुनते हैं मिर्ज़ा गालिब का कौन सा आप बंद या छंद या फिर उनकी गज़ल पढ़ने वाले, इंतज़ार करते हैं और एक गाना आपके नाम करते हैं।

चाहत से ज्यादा समझा है तुझको मोहब्बत से ज्यादा, ये मैं जानता हूं या दिल जानता।

0: मैं चाहूंगी आप लोग थोड़ा ईमानदारी से सुनाए, नहीं तो गूगल कर करके सुनाने का कोई वो नहीं है, बेईमानी मानूंगी मैं, फिलहाल मैं देख भी तो नहीं सकती। चलो अगला कॉल आ गया, सुनते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो मैम, किसके दिए हैं?
0: मिर्जा गालिब।
1: हजारों ख्वाहिशें ऐसी की हर ख्वाहिशों पे दम निकले, बहुत निकले मिले अरमान, बहुत निकले मिले अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम को सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या खूब पढ़ा आपने। और सच्ची बताऊं, मिर्जा गालिब की जितनी भी हम लिखनी पड़ेंगे ना, हम डूबते चले जाएंगे। इतना मार्मिक लिखते हैं, एकदम मजेदार लिखते हैं कि क्या बताऊं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो प्रीति जी ने आगे मौके पे चौका लगा दिया और अपनी टीम को फाइनली बचा दिया। और मैं एक बहुत पुराना सा और लेकिन बहुत प्यारा सा गाना आप लोग को सुना रही थी, वो कैसे मैं सुनाना बंद कर दूँ, लेकिन आप लोग को कवि का नाम भी तो देना है। तो ये कवि का नाम सुन के मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी अच्छी सी मेहनत करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ने वाला है आपको। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि आप लोग एकदम मतलब आपका दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और आप सोचते ही रह जाएं और पता ही ना चले कि आपको कौन सी कविता सुनानी है। तो चलिए देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। तो चलिए, अगले कवि का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, चलिए सोचिए और सुनिए और ये गाना सुनते जाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं ज्ञान 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, म्यूज़िक जो बजता जाए।

0: आप लोग की सहूलियत के लिए बता दूं कि ये आपका लास्ट कभी होगा, इसके बाद नेक्स्ट राउंड यानी कि गेस्ट राउंड होगा जिसमें आपको म्यूजिक सुनाया जाएगा, जो सबसे पहले गेस्ट करेगा उसकी टीम को पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये लास्ट कभी है और आप सोच समझ के चार पंक्तियां सुनाइएगा रविंद्रनाथ टैगोर की।
1: मेरी जान, मेरा सब कुछ तो अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले, तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।
0: हेलो,
2: रविंद्रनाथ टैगोर
0: जी? रविंद्रनाथ टैगोर।
2: जहाँ गीतांजलि की पंक्तियाँ में, जहाँ मन में भय ना हो और सिर ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो, जहाँ दुनिया को संकीर्ण घरेलू दीवारों से टुकड़ों में ना बांटा गया हो।

0: जहाँ शब्द सच्चाई की गहराई से निकलते हों, जहाँ अथक प्रयास अपनी भुजाओं को की पूर्णता की ओर फैलाते हों। ये नयन गीतांजलि की पंक्तियाँ हैं।
1: क्या बात है, और गीतांजलि में जितने भी गीत हैं वो सारे ही बेहतरीन हैं। और थैंक यू सो मच अपनी टीम का बराबर सपोर्ट करने के लिए। और मुझे लगता है अगर आपका सपोर्ट ना मिलता तो टीम कहीं डगमगा जाती, वैसे आपकी टीम स्ट्रांग हो गई है। और थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। तो भाई लड़कों और लड़कियों को बता दूं कि आप लोग का ये राउंड अभी यहीं ख़त्म होता है। और इस गाने को सुनने के बाद, यानी कि तेरा मिलना पल दो पल का मेरी जान ले ना जाए, सोनू निगम का बहुत ही प्रसिद्ध गाना, बहुत फेमस हुए थे इस गाने से वो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक एल्बम सॉन्ग है, टी सीरीज से रिलीज़ हुआ था और बहुत बेस्ट गाना माना गया है। और इसी गाने से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। एल्बम आई थी जान, और जान से ये गाने निकले थे। दो तीन गाने इसमें और हैं जो बहुत ही और बेहतरीन हैं, और लिरिक्स है फैज़ अनवर की और म्यूज़िक दिया है निखिल विनय ने। तो चलिए आगे बात करेंगे, लेकिन लेकिन लेकिन आप लोग को बता देती हूँ, नेक्स्ट राउंड में आपको म्यूज़िक सुनाया जाएगा। ये गाना भी ख़त्म होने गया, तो म्यूज़िक गेस करने के लिए आप लोग तैयार रहेगा। एक म्यूज़िक गेस करने के आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे। जो ज़्यादा गेस करेगा, जिसकी टीम ज़्यादा गेस करेगी उसकी टीम को ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और वही टीम विनर होगी।

बहुत पुराना सा लेकिन सच्ची बताऊं बहुत हिट सा गाना रहा है ये जान एल्बम का। तो फिलहाल हमारे साथ है अनिल शास्त्री जी, शुभ संध्या, कैसे हैं आप? और आप मुझे लगता है कि गाने गेस्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं मेरी सारी टीम मेंबर्स। तो पहला गाना जो मैं आप लोग को सुनाना चाहती हूँ, तो चलिए सुन के बताइए ये कौन सा गाना है। और फिलहाल अभी म्यूज़िक प्ले नहीं हुआ है, वो BGM है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। आई होप इस गाने को आप लोग गेस करेंगे ध्यान से, थोड़ा सा अपने जो कहते हैं ना कि सोचने समझने की क्षमता को थोड़ा एक्टिव कर दीजिए, थोड़ा सा

गेस करिए म्यूजिक कौन सा है।

0: तो लग रहा है किसी ने गेस कर लिया आवाज सुनते। हेलो।
1: मैम
0: ये कौन सा गाना है? नहीं, गलत आंसर। तो चलिए अगले कॉलर को भी मौका देते हैं। कौन है हमारे साथ? हेलो
2: हेलो
0: हेलो हेलो हेलो। सुनील जी का फोन आया लेकिन कट गया। चलिए देखते हैं कौन गेस कर पाता है। मैं म्यूजिक फिर से प्ले कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए।

0: कॉल फिर से आ गई है, आवाज सुनते हैं किसकी। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हाँ हेलो
0: जी सविता जी, गाना गैस किया आपने?
1: हाँ, ये तो चेन्नई एक्सप्रेस का है गाने का, बोले बन के तितली में उड़ी।
0: मैं नहीं उड़ी, तितली बन के दिल उड़ा। आप खुद ही उड़ जाएंगे तितली बन के, तो आपके मतलब उनके पास कौन रहेगा। दिल को उड़ाइए बस। थैंक यू सो मच, बहुत सही गैस किया, बिल्कुल सही गैस किया, नो डाउट। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया भाई। लड़कियां बढ़िया खेल रही हैं, मज़ा आ रहा है। और इसी के साथ लड़कियों की टीम के हो जाते हैं 320 points, 50 points की बात हुई थी। और अगला गाना गेस करने के लिए आप लोग हो जाइए तैयार, मैं दूंगी थोड़ा सा आप लोग को डिफ़िकल्ट गाना, डिफ़िकल्ट नहीं दूंगी, पुराना ही दूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि नए पुराने गाने दोनों ही रहें, जिससे जो पुराने गाने सुनने वाले हैं वो ये रिग्रेट ना करें कि मुझे मौका नहीं मिला। तो चलिए देखते हैं ओल्ड सॉन्ग कौन सा मैं आपको देने वाली हूँ। दिमाग में तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन कुछ ऐसे गाने हैं जिनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। लेट्स लिसन। तो जल्दी से अपने दिल की धड़कनों को बिल्कुल कायम रखिए और आई होप आप लोग गेस कर लेंगे बिना किसी मुश्किल के। चलिए ये रहा आप लोग के लिए पहला म्यूजिक, आई होप आप लोग गेस कर पाएंगे।

0: काफी आसान सा था। और इसी के साथ अगला कॉल भी आ गया, चलिए सुनते हैं आवाज किसकी है। हेलो हेलो हेलो हेलो।
1: जी मैम,
0: ओके अमित जी, कौन सा गाना है बताइए।
1: जिंदगी प्यार का गीत है।
0: इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, am I right?
1: जी।
0: तो बिल्कुल सही आपने गेस किया है। और इसी के साथ चलिए आपकी टीम को पॉइंट्स भी दे देते हैं। और पॉइंट्स हैं कुछ इस प्रकार। और मुझे इस बात को अनाउंस करते हुए खुशी हो रही है कि लड़कों की टीम ने अच्छा खेला, एंड नॉट बैड, आपने प्रयास अच्छा किया। पर मैं चाहती थी कि आप लोग थोड़ा और अच्छा प्रयास करते तो शायद बात और अच्छी बनती। तो फिलहाल लड़कों की टीम के 220 पॉइंट्स हैं और लड़कियों की टीम के 270 पॉइंट और 320 पॉइंट्स। और इसी के साथ लड़कियों की टीम विजय हो जाती है। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन गर्ल्स टीम, इस बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। एंड इसी के साथ मुझे लगता है कि ये कहते हैं ना कि जीत का जो कहते हैं ना जश्न मनाने का समय हो चुका है, क्योंकि 7:45 हो चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही जीतते रहेंगे और हर बार मुझे प्राउड फील कराते जाएंगे। और सच्ची मज़ा आ गया आज थोड़ा सा चेंज था, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बेहतर इवनिंग कोई नहीं हो सकती जिसमें हम लोग एनर्जी भी बना के रखें और खेलें भी और एक दूसरे को थोड़ा बहुत टीस भी करें। सो मुझे लगता है कि आज की शाम को यहीं पर विराम कर देते हैं और इसी के साथ इस एक ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। मेरे हिसाब से तो आप सभी ने मैदान को फतेह किया, लेकिन लड़कियों की टीम को स्पेशल थैंक्स। इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सारी लड़कियां एक्टिव रहीं लास्ट तक। हाँ, कई बार क्या होता है हमारे कॉल रिसीव नहीं होते, क्योंकि आप लोग को पता है कि 45 के बाद हम कॉल लेते नहीं हैं क्योंकि आपका फरमाइशी का टाइम हो जाता है। और उससे पहले जो कॉल्स आते हैं वो एक साथ बहुत सारे कॉल आते हैं जो हम कनेक्ट नहीं कर पाते। सो थैंक यू सो मच शशि, थैंक यू सो मच अनिल जी, आशु, मीनू, सभी का बहुत बहुत थैंक्स ज्वाइन करने के लिए। चलिए इसी के साथ ऐसे ही लड़कियां मैदान फतेह करती रहेंगी, लेकिन भाई ज़िंदगी से हाथ नहीं धोना है क्योंकि आजकल न्यूज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हैं। तो भाई आसपास जो भी देखिए डाउरी ले रहे हैं या दे रहे हैं, जो भी आपके घर में ऐसी समस्याएं या किसी के भी आसपास कोई समस्याएं वाली फैमिली दिख रही है, तो हमें थोड़ी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हम सभी एकजुट होकर किसी चीज़ पर काम करेंगे तभी रिज़ल्ट अच्छे होंगे, नहीं तो ऐसी न्यूज़ हमें परेशान करती रहेंगी। सो स्टे सेफ, लड़कियों को बचाना है और डाउरी को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। तो आप लोग सुन रहे थे ज्ञान सिटी 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, आरजुबीना के साथ अंताक्षरी म्यूजिकल थी। लेकिन मुझे पता है कि दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन लड़कियों की विजय हुई, तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू माई गर्ल्स टीम।
2: बना उनकी

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। किसी ने क्या खूब कहा है, और अंततः तुम थक कर कठोर बन जाओगे। इस गाने को सुन के बस कुछ याद आया है कहना चाहूंगी, और अंततः तुम कठोर बन जाओगे। वो जो मोम सा दिल लिए फिरते हो ना, उसे मिट्टी में दफन कराओगे। ना किसी की बेरुखी तड़पाएगी, ना किसी का साथ सुकून देगा। तुम इतने खामोश हो जाओगे कि शोर भी सुनने को तरसेगा। दुनिया तो कहेगी कि बदल गए हो तुम, मगर तुम मुस्कुरा कर निकल जाओगे, क्योंकि अंततः तुम थक कर कठोर बन जाओगे। कैसे हैं आप सब, क्या है हालचाल, और क्या है आज की शाम में बहुत खास खास खास बहुत प्यारी प्यारी बात जरूर बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए। उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए, और ओह माय गॉड लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, जज्बात आपके, गीत आपके, नाम आपका, और ये आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर महफिल। अनिल वर्मा जी सैदापुर से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, मीनू गोंडा से, विष्णु प्रमिला जी आपका भी स्वागत है, मालवे नगर से राजेश सिंह जी, विजयपाल यादव जी ललहुआ लखीमपुर खीरी से, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, अनिल शास्त्री गोरखपुर से आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून्ड और एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। लेकिन दोस्तों, आते ही मैंने सुना गाना बज रहा है कि कर हर मैदान फतेह, तो पता नहीं क्यों आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल का मूड स्विंग इतना ज्यादा होता है कि तुरंत मैं मोटिवेट हो गई, और जब मोटिवेट हो गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा आप लोगों को भी मोटिवेट किया जाए। सो मैंने ये चंद लाइनें आप सभी की खिदमत में पेश कर दी। हर दिन मूड एक जैसा नहीं होना चाहिए ना, रोज ऐसे एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए, रोज ऐसे दुखी दुखी भी नहीं होना चाहिए, रोज एकदम सुकून में भी नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए जिंदगी में। जैसे हम दाल फ्राई करते हैं ना, ऐसे ही किसी ना किसी इमोशन का तड़का चेंज होते रहना चाहिए, तभी जिंदगी में मजा आता है। मुझे तो ऐसा लगता है जिंदगी रोज ऐसे ही नॉर्मल चलती रहेगी, ना कोई उतार आएगा ना कोई चढ़ाव आएगा, बिना उतार चढ़ाव के मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जिंदगी में कुछ खास मजा आता है। क्यों, आप लोग को क्या लगता है चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना मेरे दिल की धड़कनों को जगाया ना कीजिए। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर, जो की है सैदापुर से। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम मुदालक शर्मा, मनकापुर से आपका स्वागत है, और एंजॉय करेंगे ऐसे ही पसंदीदा गीतों को आपके अपने रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, आपकी खूबसूरत से महफिल फरमाइशी में। स्टे ट्यून्ड।

सो दोस्तों, मेरे दिल की धड़कनों को जगाया ना कीजिए। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। और आशु जी का कहना है, अरे वाह वाह क्या बात है अनिल जी। सो अनिल वर्मा जी की फरमाइश थी ये सैदापुर से। अगली फरमाइश है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। सो एंजॉय करते हैं लता जी की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, सौतन मूवी का, सिर्फ और सिर्फ आशु जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम प्रबल मिश्रा फ्रॉम गोंडा, शशि सिंह जी फ्रॉम गोंडा, और कम मो। स्टे ट्यून्ड।

जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। हमने एंजॉय किया है लता जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, आशु जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से। सो अगली फरमाइश हमारे पास में है विष्णु प्रमिला की, और उनको सुनना है गाना हजार राहें मुड़के देखी। सो एंजॉय करेंगे फिर से ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, थोड़ी सी बेवफाई मूवी का लता जी और किशोर कुमार जी की आवाज में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

लता जी और किशोर कुमार जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की गोंडा से, और उनको सुनना है गाना बहुत जताते हो चाह हमसे। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर हिट सदाबहार नगमा, ओह माय गॉड वाला गाना, ओ एम जी वाला गाना, हर दिल में बसने वाला गाना, हर दिल के तानों को छेड़ने वाला गाना, सिर्फ और सिर्फ मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम सौरभ मौर्य, स्टे ट्यून्ड। I love this song. I think we love this song. No?

करते हो चाह हमसे, करोगे कैसे निबाह हमसे, ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल। ये दिल है ना, इसके आगे सब कमजोर पड़ जाते हैं, सब फीके पड़ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, लोग अपना आपा खो देते हैं ना, जहाँ बात दिल की आती है। ये सब कहने की बातें होती हैं कि दिल से काम नहीं लेना चाहिए, दिमाग से लेना चाहिए, लेकिन चाहे 0.1% ही लोग हर एक काम में दिल से ज़रूरत लेते ही लेते हैं, दिल से सोचते ही सोचते हैं, कहे चाहे जो कोई, क्यों, सही कहा ना मैंने। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, बिना किसी देरी के अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, उनको सुनना है रफ़ी जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। तो फिर से बढ़ेंगे हमारे एवर ग्रीन क्लासिक हिट सॉन्ग्स के तरफ, ओल्ड इज गोल्ड वाले सॉन्ग्स की तरफ। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। आप लोग को नहीं लग रहा कि आजकल मालवे नगर से राजेश सिंह जी की प्लेलिस्ट बहुत सैड सैड सी चल रही है? क्या है आजकल आपका मूड ही ऐसा चल रहा है? सब खैरियत है ना राजेश सिंह जी? चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा।

सो हमने एंजॉय किया है मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों बिना किसी देरी के, और अगली फरमाइश हमारे पास में है उदालक शर्मा की मनकापुर से, और उदालक शर्मा को मनकापुर से सुनना है गाना तुम तो धोखेबाज हो और वादा करके भूल जाते हो। सो एंजॉय करेंगे कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में ये सुपर डुपर हिट सदाबहार नगमा, हर मियां बीवी के तकरार में आने वाला गाना सिर्फ और सिर्फ उदालक शर्मा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो। और ये फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी उदालक शर्मा जी की तरफ से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ बिना बिना बिना बिना किसी देरी के, लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले अब्दुल मुजीम मनकापुर से आपका स्वागत है। रिंकू जैन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत से नगमे की, जिसको सुन के सबका दिल पिघलने पिघलने पिघलने वाला है। सो विजय पथ का ये गाना एंजॉय करेंगे हम राकेश वर्मा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

ये आपका इंतजार था, हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम दीपांशी तिवारी एंड

0: सो लता जी की आवाज में शशि सिंह जी की फरमाइश पर हमने एंजॉय किया है संजोग मूवी का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, माँ बेटे के रिश्ते और प्यार का नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ बिना बिना बिना किसी देरी के, और अगली फरमाइश हमारे पास में है तड़कते भड़कते से गाने की, ओ माई गॉड। हम एंजॉय करते हैं कम्मो की फरमाइश पर गाना कुमार सानू कविता जी की आवाज में जुड़वा मूवी का, दुनिया में आए हो तो लब कर लो और थोड़ा सज लो थोड़ा थोड़ा मर लो, चाहे थोड़ा मरो चाहे बहुत मरो, चाहे थोड़ा जियो चाहे बहुत सारा जियो, लेकिन लव जरूर कर लो यार, मैं तो यही कहूंगी। स्टे ट्यून्ड।
1: कभी वाई कभी यस कभी नो, कभी

0: मर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: दुनिया में आए हो तो लव कर लो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
2: सो कुमार सानू कविता जी का कहना है कि थोड़ा थोड़ा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो, लेकिन दुनिया में आए हो तो जरूर लव कर लो। और लव करने के लिए नागेश्वर धाकड़ भी आ चुके हैं हमारे चैट बॉक्स में। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश दोस्तों, बिना बिना बिना किसी देरी के। और ये सीरियल वाला चस्का क्या लग गया है मुझको दोस्तों, मैं बार बार तीन बार बोलती हूँ बिना बिना बिना किसी देरी के। मैं सोचती हूँ कि अगली बार तो पक्का नहीं बोलूँगी, लेकिन एकदम टिमटिमाते हुए फिर से मैं बक देती हूँ, फिर बोलती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ गलत कर दिया, लेकिन अब क्या ही कर सकती हूँ। सो इंजॉय कर लेते हैं प्रबल मिश्रा की फरमाइश, उनको सुनना है गाना तू आ जाना। सो इंजॉय करते हैं प्रबल मिश्रा की फरमाइश पर ये वाला गाना, और प्रबल मिश्रा हैं गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

तो आ जाना हमने एंजॉय किया है ये गाना प्रबल मिश्रा की फरमाइश पे जो की है गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि अगली फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारे आकाशवाणी के न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे सीधे 9 बजे आपके अपने हमारे अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, आपकी रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM पर। सो एंजॉय करते हैं सुरेंद्र यादव की फरमाइश जो की है गौरा चौकी से, और सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में गाना रंग मूवी का हम तुम पिक्चर देख रहे। सो चलिए हम सब मिलकर पिक्चर देखते हैं और पिक्चर देखने के बाद में वापस आते हैं आपके अपने हमारे अपने फरमाइशी प्रोग्राम में। देश दुनिया की खबरों को सुनते रहिएगा, लेकिन दोस्तों पेट पूजा का भी वक्त हो चुका है, तो पेट पूजा भी करके आइएगा, आराम से विश्राम करते हुए फरमाइशी गीतों का आनंद लेंगे और जज्बातों का भी आनंद लेंगे और एक दूसरे से साझा भी करेंगे अपने अपने जज्बात। स्टे ट्यून्ड।

0: भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा, और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

उदित नारायण जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है राजा हिंदुस्तानी का ये गाना, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और अभी हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा सदा बहार नगमा सिर्फ और सिर्फ सौरभ मौर्य की फरमाइश पर। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम धर्मेंद्र मोहन आवाज विकास गोंडा से आपका स्वागत है, मनीष शर्मा आपका भी स्वागत है, स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है, हम रोएंगे इतना हमें मालूम नहीं था इस गाने की, और इस ब्रोकन हार्ट वाले गाने की फरमाइश हम लोग के पास में आई हुई है रिंकू जैन की तरफ से। सो रिंकू जैन की फरमाइश पर एंजॉय करते हैं ये दर्द भरा नगमा। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मोहित मालवीय नगर गोंडा से आपका स्वागत है, स्टे ट्यून्ड।

मालूम नहीं था बह जाएगा चेहरा, हमें मालूम नहीं था। वाओ, ओह माय गॉड, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। रिंकू जैन की फरमाइश पर और इसी फरमाइशी गीत को सुनकर हमारे लिसनर ने कुछ पेश किया है। इनका कहना है कि हर शख्स पे तू प्यार लुटाए, कोई बाकी भी ना छूटे। हर शख्स पे तू प्यार लुटाए, कोई बाकी भी ना छूटे। तू जमाने भर से दिल लगाए और तेरा साथी भी ना छूटे। तू सोचती है मुझ पर इल्जाम लगाकर तू रिश्ता खत्म कर लेगी। तू सोचती है मुझ पर इल्जाम लगाकर तू रिश्ता खत्म कर लेगी, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे आए। हाय, बहुत खूब। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है अब्दुल मुजीम की। अब्दुल मुजीम को मनकापुर से सुनना है गाना नफरत की दुनिया को छोड़कर। मोहम्मद रफी जी की आवाज में ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा एंजॉय करते हैं अब्दुल मुजीम जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

अब्दुल मुजीम की फरमाइश पर हमने इंजॉय किया है ये मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, बिना बिना बिना बिना बिना बिना किसी देरी के। मैंने सोचा तीन बार नहीं बोलूंगी, अब अगर बोल दिया मुँह से निकल ही गया है तो पांच छह बार बोल देती हूँ कम से कम, खुद का कहा तो मान जाया करूँ ना दोस्तों। सो बढ़ते हैं अब अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, और धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना डिस्को भांगड़ा। तो एंजॉय करते हैं, प्यार का धुन सुनाता हूँ, नागिन डांस दिखाता हूँ। हाँ हाँ, सो नागिन डांस वाला गाना एंजॉय करते हैं सबकी सब। आ जाइए लाल घाघरे में, जो लाल घाघरे में नहीं आना चाहता है वो एक सफेद रुमाल के साथ में आ सकता है, बीन का काम रुमाल बहुत आसानी से करता है नृत्य करते टाइम। सही कहा ना मैंने? सो एंजॉय करते हैं धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर ये वाला गाना।

डिस्को भांगड़ा हमने एंजॉय किया है मोहम्मद अजीज जी की आवाज में। गंगा जमुना सरस्वती का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, एकदम बंगड़ा पाने वाला नगमा, सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर जो की है। आवाज विकास गोंडा से बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से रोमांटिक से नगमे की, कयामत से कयामत तक मूवी के गाने का फरमाइश हमारे पास में आया हुआ है दोस्तों सुरेश कुमार जी की तरफ से जो कि है चौक गोंडा से। सो एंजॉय करते हैं ऐ मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार सुन सदाएं दे रही हैं मंजिल प्यार की। आहा

प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं पे खुला है कोई रास्ता और वहीं पे घिरी है दीवार। उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में कयामत से कयामत तक का ये गाना हमने एंजॉय किया है। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मनीष शर्मा की खुरासा गोंडा से। मनीष शर्मा को खुरासा गोंडा से सुनना है गाना तुझे भुला दिया। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा मनीष शर्मा की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम कृष्ण कुमार मिश्रा, रिपोर्टर कृष्ण कुमार मिश्रा, आपका स्वागत है। स्टे ट्यून्ड। ओह आई लव दिस सॉन्ग मनी।

दोस्तों, स्कूल टाइम में ये सारे गाने इतना ज्यादा सुनते थे हम लोग, सुनते भी थे और साथ में सारे के सारे दोस्त लोग मिलके गाते भी थे। मजा आ गया, हमने एंजॉय किया मनीष शर्मा की फरमाइश पर ये वाला गाना। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। एंड दोस्तों, अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की, और नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना ये नखरा लड़की का तौबा, ये नखरा लड़की का वाह वाह, ये नखरा लड़की का। तो लड़कियों में अगर नखरे नहीं रहेंगे तो क्या लड़के नखरे करेंगे? और जो लड़के नखरे करते हैं आप सभी तो जानते ही हैं कायदे से कि हम सभी उनको क्या कहते हैं। सो एंजॉय करते हैं सुहाग मूवी का ये गाना और लेती हूँ इसी के साथ में अलविदा। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना, सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल, लॉट से सिंपल के साथ में। So guys, have a very very very great night. Take care of yourself and family as well. Someone special ka dhyan rakhna bilkul mat bhulna. Aaju baju waliyon par dhyan dena hai, katai nahi bhulne ka hai. Uff, garmi. Aur apni RJ Simple, not so simple ko miss karne ka koi sawal nahi banta. Kyunki main kal fir milungi, tab tak ke liye tata. Bye bye, love you all. Thank you so much for your love and support. Bahut sara pyar aapki RJ Simple, not so simple ki taraf se aap sabhi ke liye. Aur aap sabhi ki taraf se बेइंतहा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, बहुत सारा प्यार करते रहो, बांटते रहो, बटोरते रहो, क्योंकि ना प्यार लेने में कोई हर्ज है, ना प्यार देने में कोई हर्ज है। और अक्षय कुमार का तो कहना ही है कि गुल बत्ती कमरे की हो जाए तो प्यार दो, दो प्यार लो, लो बत्ती गुल हो चाहे ना हो, लेकिन प्यार देने और लेने का बिजनेस जिंदगी भर चलता रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सुकून भी कुछ होता है ना। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।

हाले दिल उनसे मेरा मुझको ही कहने दीजिए, हाले दिल उनसे मेरा मुझको ही कहने दीजिए, आप जाने क्या कहेंगे आप रहने दीजिए, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आँखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में।

0: जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है बहारे गज़ल, और आज का दिन है बहुत खास। जी हाँ, आज है बुधवार, तो आज के दिन हमारे श्रोता होते हैं हमारे वक्ता। और जी हाँ, इतना कहने से पहले ही काल हमारे पास आ चुकी है, और देखते हैं भाई हमारे पास सबसे पहले कौन उपस्थित हुआ है। हेलो,
1: हाँ नमस्कार सर।
0: अरे गोरखपुर से दादा प्रणाम।
1: अरे खुश रहिए, कैसे हैं सर?
0: आशीर्वाद आपका दादा, आशीर्वाद। क्या शुरुआत हुई है आज, हमने मतलब गोरखपुर से शुरू किया है
1: भाई। आपका आदेश था जो गाने का
0: हमने। अरे आप मतलब हमें शर्मसार न करें, हम
1: नहीं,
0: कभी आदेश नहीं दे सकते। हम आपसे निवेदन निवेदन था,
1: मेरे हजूर का गाना जी,
0: जी जी जी निवेदन था, निवेदन था। आदेश कह करके तो आप हमको शर्मिंदा।
1: अरे मैं गाना गाऊंगा तो मैं निवेदन करूंगा, आप नहीं करेंगे।
0: अरे नहीं, आपने मेरी बात का मान रखा, इसके लिए तो हम भाई आपके हृदय तल से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने छोटे की इतनी बड़ी इज्जत रखी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको
0: जी।
1: बातों में मैं आपको नहीं जीत पाऊंगा।
0: नहीं नहीं, हम हमेशा जो है वो अपने बड़ों के सामने नतमस्तक।
1: मैंने कहा बातों में और अपने छोटों से कहां बड़ा जीत पाता है।
0: हाँ मतलब हम छोटे हमेशा रहेंगे और आपके सामने बच्चे बच्चे ही रहेंगे।
1: मनु जी मैं वही कह रहा हूँ कि छोटों से कहां बड़ा जीत पाता है
0: जी। अरे नहीं साहब, आपकी जीत में हमारी खुशी है।
1: अरे आपकी मैं वही कह रहा हूँ, तो अगर मैं कहें इजाजत दे तो मैं गाना
0: जी जी निसंदेह
1: समझाऊंगी तो उसके क्षमा प्रार्थी रहूंगा।
0: अरे अरे दादा बस
1: ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ
0: जी।
1: पलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले मुझे इतने से।

किसी को चैन मिले मुझको बेकली दे दे, गम उठाने के लिए मैं

मैं तो जी जाऊंगा, सांस के लैंप तेरा नाम लिए जाऊंगा, तुम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की

0: धन्यवाद सर।
1: दादा दादा दादा दादा क्या गीत सुना था मैंने आपके लिए,
0: मतलब प्रयास किया तो आप
1: ये मतलब अरे मतलब ये समझिए ये रफी साहब का ये गीत मेरे हृदय के बहुत करीब, और
0: अच्छा
1: मैं जानता था कि इसको दादा बहुत शानदार, और मैं नहीं कह रहा हूँ भाई ये तो चलिए आज बहुत दिन के बाद मतलब दर्शन हुआ शिल्पी जी का, उन्होंने तुरंत आपको 100 में से 100 नंबर दे दिए, और आपके मित्र श्री तेज नारायण शुक्ल जी का कहना है वाह क्या बात है मित्र शानदार आगाज।
0: चलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये हमारी बहुत आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नहीं दादा मतलब मैंने जब आपसे विनती की थी कि ये गीत हम आपके मुझे सुनना चाहेंगे तो फिर मुझे ये उम्मीद थी
0: आप स्टार्ट करते हैं गजलों से
1: जी,
0: तो मैं गुलाम अली ने एक छोटा सा शेर के बाद एक गजल गाया है
1: जी,
0: तो मैं सिर्फ शेर सुनाऊंगा ज्यादा गाऊंगा नहीं
1: जी,
0: तो अगर आप
1: अरे दे, बिल्कुल तो अरे हम आपसे हमेशा निवेदन कर सकते हैं।
0: नहीं नहीं तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा पहले गाता था अभी थोड़ा देख रहा हूँ कि गा पाऊंगा नहीं पाऊंगा।
1: ये तो नहीं ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवाज़ की मुझे बहुत अच्छी लगती है गजल।
0: नहीं ये तो मैं ये भी गाता था लेकिन सुनाऊंगा, लेकिन अभी मैं सुनाऊंगा अपनी आवाज पे।
1: हाँ क्या बात है क्या बात है।
0: तो ये गुलाम अली जी ने बड़ा प्यारा गाया है
1: बहुत
0: गजल है, तो मैं खाली इसका शेर सुनाऊंगा सर।
1: जी जी दादा।
0: अपनी आवाज के लर्जिश पे तो

0: तो चेहरे भी बदल जाते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू।
1: अरे अरे दादा, अच्छा इसके आगे की पंक्ति क्या है, हमको नहीं याद आ रही है।
0: चुपके चुपके रात दिन, यही है स्टार्टिंग।
1: क्या बात है दादा, क्या बात है, बताइए।
0: थैंक यू कि आपने मुझे परमिशन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अरे दादा, हमारी मतलब हमारी
0: और मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी जुड़े और बाकी लोग भी कुछ अपना अपना शेयर करें सर।
1: जी हाँ, मतलब सबसे पहले तो अपनी बहन जी से ही कह दीजिए आपकी, मतलब वो तो पता नहीं कहाँ एकदम से कई बुधवार से सुन ही नहीं पा रहे हैं।
0: किनको?
1: अरे भाई, जिन्होंने आपको 100 में से 100 नंबर दिए हैं, हमारी बहन जी श्री शिल्पी बनर्जी जी।
0: आज शिल्पी आज गाएगी भाई?
1: हाँ गाएगी, और आपने आदेश दे दिया है इसलिए हमने बता दिया कि पहले दादा का आदेश।
0: नहीं भाई, अगर हमारी शिल्पी बात सुन रही है तो भाई बढ़िया गाना सुना दो आप भी।
1: हाँ भाई, तो
0: ठीक है सर।
1: ठीक है दादा, प्रणाम। और वो कहाँ है, मतलब आपका सुख कहाँ है
0: जी?
1: आपका सुख मतलब आसी पास है?
0: सुख मतलब?
1: मतलब सुख, आपके जीवन की प्रसन्नता, आपके जीवन का हैप्पीनेस।
0: अरे सुख तो मेरे पास ही रहेगा, दुख भी मेरे पास ही रहेगा।
1: नहीं मतलब हम आदरणीय भाभी जी की बात कर रहे हैं। और
0: तो क्या सुख से बात करा दूं क्या?
1: जी जी, हम उनसे वो हम दो लाइन सुनना चाहेंगे। ए मेरे दिल।
0: अरे भाई, हाँ हाँ जी, हमारे मोबाइल से सुन लीजिए।
1: जी जी,
2: हेलो।
1: हाँ सविता जी, चरण स्पर्श आपको।
2: हेलो।
1: हाँ चरण स्पर्श करते हैं आपको।
2: अरे खुश रहिए, खुश रहिए।
1: कैसी हैं?
2: कैसे हैं?
1: आपका आशीर्वाद।
2: मैं भी पूछ रही कैसे।
1: जी जी, आपका
2: बस आप लोग कैसे हैं, और तो याद है वो।
1: हाँ, और ये बुधवार के दिन की तो प्रतीक्षा हो जाती है कि मतलब एक से एक आवाज हमको सुनने को मिलेगी।
2: हाँ नहीं, हम लोग भी प्रतीक्षा करते हैं, और एकदम याद से ही जल्दी अपना काम निपटा के अब बैठ जाते हैं रेडियो के सामने।
1: क्या बात है, क्या बात है। चलिए, इसलिए कहता है जहनों में दीवार न हो तो मिलना कोई दुश्वार नहीं है, तू भी कुछ ऐसी दूर नहीं है, मैं भी समंदर पार नहीं हूँ। तो वास्तव में अगर जहन में दीवार नहीं है तो फासले बहुत कम लगते हैं, लगता है गोरखपुर एकदम बगल में ही है।
2: हाँ, अब हम लोग इतने मेंटली इससे जुड़ गए हैं इस प्रोग्राम से कि अक्सर रात वाला प्रोग्राम तो फुर्सत में रहते हैं, तो रात के 11:30-12 बजे तक वाला कार्यक्रम,
1: क्या बात,
2: गाने का और इसका कहानियां भी सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और बुधवार शनिवार को तो बहुत इंतजार रहता है, वैसे तो आपका जो प्रोग्राम है 9:30 से 10:30 का, वो तो इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं। हम लोग अपना टीवी वगैरह छोड़ दिए।
1: नहीं नहीं, ये सब आपके जो है वो भाई साहब के पैदों में रहकर कुछ सीखा है।
2: और नहीं नहीं, अपना भी हुनर होता है, आप में बहुत हुनर है, और जितने लोग आते हैं बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं।
1: जी जी, उन अच्छा सबने कहीं ना कहीं सीखा होगा।
2: हाँ हाँ जी, ये बात तो है
1: जी। तो हम कुछ नया सुनेंगे या वही है, मेरे दिले नादा तू गम से न घबराना।
2: आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: नहीं नहीं, जो आप सुना दे, मतलब वो आपके मुंह से बहुत अच्छा लगा था मुझको पहली बार।
2: अच्छा अच्छा ठीक है, उसको भी सुना देंगे। आज तो मैं सोची थी अभिमान का एक गाना है।
1: हाँ, हाँ, बिल्कुल, तेरी बिंदिया दे,
2: वो सुना देती हूँ
1: जी।
2: हाँ ठीक है, शुरू करें?
1: जी जी, अरे निसंदेह।
2: अब तो है तुम्हें हर खुशी अपनी,

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है। और आपसे एक निवेदन करूं, अगली बार जब बुधवार को आप गाइएगा तो अनुराधा पौडवाल का कोई भी गीत उठा लीजिएगा। यकीन मानिए, आपकी आवाज और अनुराधा पौडवाल का जो पिच है और जो गाने की लय है वो काफी हद तक मिलती जुलती है। यकीन न हो तो ट्राई करके देखिएगा। मतलब एकदम वो एकदम सीधा गाती हैं, सरल गाती हैं, बहुत ऊंचा उतार चढ़ाव नहीं होता, लेकिन बहुत प्यारी आवाज में गाती हैं।
0: उनका जो भजन वगैरह है तो मैं उसको गाती हूँ जरूर।
1: नहीं, उन्होंने लाल दुबट्टा मलमल का में भी बहुत सारे गीत गाए हैं, बहुत गीत गाए हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: अनुराधा पौडवाल जी के। और आप हमारे कहने पर जो है अगले बुधवार को अनुराधा पौडवाल जी का कोई भी गीत गाइएगा। मुझे लगता है कि श्रोता ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपको सुन रहे हैं या अनुराधा पौडवाल जी को सुन रहे हैं। मतलब यकीन करिए, आपके ऊपर अनुराधा पौडवाल की आवाज बहुत अच्छी लगेगी। जो
0: जी,
1: ये वही आवाज तो अच्छी लगती है और उसमें तो आप डिट्टो उतरेंगे।
0: जी,
1: आप के का बहुत बहुत आभार और प्रणाम आपको चरण स्पर्श। जी हेलो,
2: हेलो
1: हेलो, अरे चरण चरण स्पर्श चरण स्पर्श चरण स्पर्श।
2: अरे सर, मतलब कैसे हैं आप? इतना भी बड़ा मत बना दीजिए मुझे।
1: मतलब हम ये जानना चाहते हैं, मतलब हमसे ऐसी हमसे कम भूल हुई जो ये सजा हमको मिली?
2: नहीं, कोई भूल नहीं है सर। सिचुएशन ऐसी थी कि मैं सुन नहीं पा रही थी।
1: अच्छा।
2: आज मैं सुनी, दादा का गाना सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: हाँ,
2: मतलब और फिर दादा का आदेश भी था और आपका भी जो है कहीं ना कहीं से वो था, तो मैंने कहा कि, और आज इच्छा भी थी सुनाने की।
1: अच्छा, मतलब इन दोनों इच्छा नहीं हुई सुनाने की?
2: नहीं नहीं सर, सिचुएशन नहीं था कि मैं अवेलेबल हो पाऊँ।
1: चलिए कोई बात नहीं, हम ये मानते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।
2: जी,
1: तो कुछ परिस्थितियाँ बिल्कुल,
2: वही दादा ने बोला ना, आपके आगे कहाँ कोई बोल पाएगा।
1: अरे नहीं, अरे दादा से ही सीखा है हमने, दादा से ही सीखा।
2: जी, जी,
1: आप लोगों से ही सीखा है, आप लोगों से ही सीखते हैं।
2: आज मैं आपको लता जी का सुनाती हूँ, ऐ दिले नादा।
1: अरे हम टचुट, मतलब जो कही है, मैं कसम खा लूं, मैं आपसे ये कहने वाला था कि अगली बार
2: नहीं, एक्चुअली आपने दिले नादा बोला, बस मुझे यही गाना याद आया कि मैं ऐ दिले, आपने कहीं इन शब्दों का प्रयोग किया है दिले नादा कुछ।
1: ये सविता जी ने पहली बार जब सुनाया था हमको, तो ये पहली अच्छा। पहली बार ऐ मेरे दिले नादा ही सुनाया था। और मैं अच्छा, आपसे अच्छा। अभी कहने वाला था कि अगले बुधवार को हम आपसे चाहेंगे कि ऐ मेरे दिले नादा आप सुनाइए। मतलब 1% झूठ नहीं है इसमें, और आपने वही गाना बोल दिया।
2: हो सकता है भाई, मन को पढ़ लिया टेलीपैथी हो।
1: मतलब आप, अरे आप नर्स नहीं, आपको MBBS होना चाहिए। जी, तो हम शुरू करते हैं। जी
2: ओके सर।

0: जो क्या है। थैंक यू सर।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई। और अच्छा, आपने कभी महसूस किया है कि इस गीत के बजने से पहले जो ज़ाइलोफ़ोन बजता है वो बहुत प्यारा लगता है ना?
0: जी जी जी,
1: मतलब ये मेरा अपना मानना है कि
0: जान है इस गाने की, जान है सर वो
1: ना, वो ज़ाइलोफ़ोन जो बजता है आहा, लगता है एकदम कलेजा निकाल ले जाएगा। और आपकी आवाज, अब मुझे पता होता तो पहले म्यूजिक सेट कर दिए होते इस पर और उसके बाद जब आप गाती आहा, अरे क्या छुआ है आपने भाई, कितना उतार चढ़ाव है।
0: हाँ, बहुत,
1: और ये उतार चढ़ाव
0: वो तो आपने बोला, बस तुरंत मैंने कहा लो एक स्टेंजा ही सही, लेकिन गाते हैं यही।
1: वास्तव में बहुत प्यारा गीत है ये, मतलब लता जी का ये गीत सबसे कठिनतम गीतों में से एक गीत मैं मानता हूँ। और जो म्यूजिक
0: एक और बातें बोलिए।
1: अरे अरे बिल्कुल, मतलब आज तो आपकी शान।
0: नहीं भाई, भरपाई तो करनी पड़ेगी ना।
1: हाँ, वो करनी पड़ेगी, हम करवा लेंगे।

बार के तुम्हें के तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए।

ये मंजिले है कौन सी, न वो समझ सके न किसी का प्यारी लेके तुम नया जहां बसाओगे किसी

0: हमको याद आओगे, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। थैंक यू।
1: क्या बात है, इस गीत को यही रुकना था क्या? एक आध स्टेंज और होना चाहिए, मतलब
0: तीनों पैरा गा दिए थे।
1: तीनों स्टेंज आपने गाया, और आप यकीन मानिए कल मैं शैलेंद्र जी पर चर्चा कर रहा था और ये गीत मैंने कल बजाया था।
0: अगर आपने
1: अच्छा। हाँ, आज आपने सुना दिया, मतलब क्या बात है। और दादा ने आपको आशीर्वाद दे दिया, भाई वाह शिल्पी जी क्या गाया तुमने, बहुत ही अच्छा। और सविता जी ने बताया बहुत बेहतरीन शिल्पी जी, और श्री तेजनारायण शुक्ल ने कहा है शिल्पी जी खूब ढेर सारा आशीर्वाद आपको।
0: अरे सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: क्या बात है भाई, और आपके मतलब हाफ वन कहाँ है? यही है,
0: हाफ वन यही है। हाँ? नहीं है, हाथ जोड़ रहे हैं
1: जी,
0: हाथ जोड़ रहे हैं।
1: अच्छा, तो हम खाली प्रणाम करना चाहेंगे उनसे।
2: हेलो
1: हेलो,
2: नमस्कार, और कैसे हैं आप?
1: जी नमस्कार, अभी तो मैं उनसे बात कर रहा था, ये फोन, अच्छा ये फोन कैसे लगे। हेलो प्रणाम।
2: हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है?
1: जी जी, इसलिए तो हम आप बात दूसरे से कर रहे थे, आपकी आवाज प्रणाम करते हैं आपको और आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे।
2: जी मैं रविंद्र सिंह कोतवाली के सामने से।
1: जी जी रविंद्र सिंह जी प्रणाम, कैसे हैं आप? वो एक्चुअली फोन दूसरे से बात हो रही थी, अचानक ये फोन कनेक्ट हो गया तो समझ नहीं पाए हम।
2: नहीं नहीं नहीं, आप रविंद्र सिंह से बात हो रही है कोतवाली के सामने से।
1: जी जी जी,
2: क्या नाम रेडियो?
1: जी जी बिल्कुल, ये रेडियो गणसलेट 9.6 FM और कोंडा शहर की धड़कन है।
2: आज तो धड़कन कमाल मचा रहा है।
1: जी बस आप लोग का आशीर्वाद।
2: मैं एक कवि है, अभी नए हैं, नए क्या पुराने हैं, जीवित हैं, कहा करते हैं विष्णु सक्सेना जी।
1: जी जी जी,
2: उन्हीं की कुछ लाइन में कहूंगा।
1: उनकी एक पंक्ति बहुत अच्छी है, थाल पूजा का लेकर चले आइए मंदिरों की।
2: आप भी सुनते हैं तो फिर क्या कहूँ फिर।
1: अरे कुछ नहीं कहिए। हमारी बहन जी आ चुकी है गीता जी, प्रणाम जी, कुछ भी आप कहिए।
2: हेलो
1: जी, हाँ आप कुछ भी कहेंगे तो अच्छा ही लगेगा।
2: बस उनका शुरुआत का लाइन, जब वो माइक पकड़ते हैं तो जो स्टार्ट करते हैं वही मैं कहूंगा।
1: जी जी जी,
2: तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इस पहले कि कोई और बहाले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको।
1: क्या बात है।
2: और एक लाइन है
1: जी,
2: जो आज कर गई घायल वो हवा कौन सी है, जो दर्द दिल करे सही वो दवा कौन सी है, तुमने इस दिल को गिरफ्तार आज कर तो लिया, अचरा ये तो बता दो कि दवा कौन सी है।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
2: वैसे वो लिखते बढ़िया है, गाते भी बढ़िया है,
1: गाते
2: कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उतना सही नहीं हो रहा है।
1: नहीं बहुत सही हो रहा है, बहुत सही हो रहा है, हमने तो सुना है उनको।
2: सोचता था कि तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, इसको दूसरा लाइन में कर देते, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगी। ऐसे का एक लाइन
1: जी,
2: था
1: जी,
2: लेकिन
1: जी,
2: उतना सही नहीं हो रहा है,
1: किसे पता था तुम ऐसे बदल जाओगी।
2: और एक लाइन जो आप गाना गा रहे थे उनका थाल पूजा के लेकर, वही मैं गाना चाहता हूँ आप
1: जी।
2: थाल पूजा का लेकर चले आइए, मन शेरों के बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा कल कल चले आइए, दिल के धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा, बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। आगे सुनिए। डगमगाते डगों से नन्ना पो डगर, डगमगाते डगों से नन्ना पो डगर, देखिए बहुत नाजुक जिगर है मेरा, थाल पूजा कल कर चले आई। एक लाइन उसी में है, झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए, घर के कमलों में जो नाग फनिया लगी, फेंकिए रात रानी लगा दीजिए, जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता। सुनिएगा, बहुत बढ़िया लाइन लगा मुझे ये, जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता, रात काली है लंबा
1: सफर,
2: सफर है मेरा, थाल पूजा कले कर चले आइए, जो भी कहना है कहे दीजिए बेहिचक, उंगलियों से नयों उंगलियां मोड़िए, तुम हो कोमल सुकोमल तुम्हारा हृदय, पत्थरों को नयों कांच से तोड़िए। लाइन उनकी अच्छी अच्छी थी
1: जी जी जी, और उनकी चार पंक्तियां मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं, आपने गाया तो मुझको याद आ गया।
2: हाँ हाँ बताइए।
1: उन्होंने कहा था कि रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा,
2: मजा आ गया,
1: रेत पर

0: नहीं
1: तुमने
0: पत्थर का दिल हमको
1: हमको कहे तो दिया। वाह वाह,
0: पत्थरों पर लिखोगी मिटेगा नहीं।
1: वाह वाह वाह, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। मजा गया।
0: आपसे प्रभावित होकर के हम चार पंक्तियाँ उनकी, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, तो गुनगुनाते हैं।
1: नहीं, उनकी लाइनें मैं गुनगुना रहा हूँ
0: जी। और मैंने भी
1: जो उन्होंने लिखा है
0: जी, मैंने भी वही कहा, और ये पंक्ति मुझको बहुत अच्छी लगती है।
1: नहीं, बहुत सही लाइन है, पत्थरों पे लिखोगे मिटेगा नहीं।
0: जी जी जी,
1: लेकिन आजकल के जमाने में सच्चाई कहाँ लोग कहते हैं। देखिए, सच कुछ और होता है, दिखता कुछ और है। सच्चाई पूरी तरह से जनता को भी नहीं दिखाया जाता है।
0: अरे चलिए, खैर वो तो दूसरी बातें हैं, लेकिन हम तो कवि और शायरों की बात करेंगे। हम अपने आप में अच्छे दिखने की कोशिश करें और अच्छे हो, बाकी
1: बस ईश्वर आपका साथ देगा।
0: जी जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात।
1: सच प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं।
0: पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता।
1: तो हाँ, बस,
0: और आपसे मिलकर ये लगा कि सच जीत जाएगा।
1: सूरज उगेगा तो पूरा दिशा से उगेगा
0: जी,
1: और उसकी रोशनी जरूर फैलेगी।
0: बिल्कुल फैलेगी, बिल्कुल फैलेगी।
1: बस ये कि सच का दामन इंसान को धैर्य के साथ पकड़ के आगे चलना चाहिए।
0: निसंदेह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और प्रणाम आपको।
1: नहीं नहीं, आपको प्रणाम।
0: नहीं, आप आशीर्वाद दीजिए, आप बड़े।
1: मैं आपका 11 रेडियो FM जिसके माध्यम से कई लोग जुड़ पाते हैं और अपनी बात कहने का मौका उन्हें मिलता है, यही सबसे बड़ी बात है। नमस्कार।
0: जी भाई, हमारे साथ भाई बहुत देर से, हमको पहले जो मैसेज किया नागेश्वर धाकड़ जी हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग मानू जी। जी हाँ, गुड इवनिंग, शुभ संध्या आपको भी। दीपांशी तिवारी जी, देखिए भाई इतने देर से, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? जी हाँ, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं। और नागेश्वर जी कहते हैं कि मैं तो भूल ही गया था भाई। और जी हाँ, सुपूजा जी, भाई आपने फ़ोन नंबर मांगा था, और देखिए मैंने नंबर लिख दिया है 6393-3164-29। आप चाहें तो उस पर कॉल कर सकते हैं। धर्मेंद्र मोहन जी उपस्थित हैं। मनुष्य जी, गुड इवनिंग, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। बाहर एक गजल में इच्छा पूर्ति हो हमारी। जी हाँ, बिल्कुल आपकी इच्छा पूर्ति होगी। और सर जी, जो गीत सुना रही हैं, इनकी आवाज़ में सरस्वती जी बनाए रखे, बहुत अच्छा स्वर है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीतेजा शुक्ल ने लिखा है, मुकाबला बराबरी का है, बेहतरीन, क्या बात है। शिल्पी जी की भी तारीफ हो चुकी है। और फिर खुद से शर्मिंदा हूँ, परेशान भी हूँ, बदलती फितरत से खुद की हैरान भी हूँ। क्या बात है भाई, और क्या बात है। और भाई अब तो भाई श्री तेजा शुक्ला जी से भी हम देखते हैं कौन हमारे साथ।
2: हेलो
0: हेलो,
2: हाँ मनु सर, नमस्ते
0: जी। नमस्कार,
2: मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ।
0: जी जी जी जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: जी आपकी दुआ है, ऊपर वाले का करम है बस।
0: और अपनी बेहतरीन सी आवाज में, बोल्ड वाली आवाज में आज आप क्या सुनाने वाले हैं?
2: क्या सर?
0: मतलब अपनी बोल्ड वाली आवाज में आप क्या सुनाने वाले हैं?
2: हम क्या सुना दें सर?
0: जी
2: जो आप कहिए वो हम सुना दें।
0: आया आया टरिया पे कोई चोर। अब आप ही ने कहा था जो बोलिए वो सुना दे, तो हमने कहा यही कह देते हैं। नहीं, जो आपको आता हो सुनाइए, मतलब हमारे चाहने से थोड़े होता है।
2: हम सुना रहे हैं सर
0: जी,

0: सर इजाजत है?
1: 100% हेलो
0: मेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल जाए कुछ याद रहा, जाने वफा तुझको क्या दे, दिल कह रहा है दुआ दे। जी सर बस।
1: अरे मतलब दुआ के अलावा और कुछ नहीं देंगे आप? जी हाँ, देखिए भाई ये मुमताज अंसारी जी, जाने वफा तुझको क्या दे, उसके बाद लगता है कि जो भारत के होने वाले भविष्य हैं अर्थात जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लड़ाई करने लगे, और मतलब अच्छा होता है, मतलब बचपन की लड़ाइयाँ बड़ी अच्छी होती हैं, अब तो खैर कोई करता ही नहीं, मतलब हम लोग नहीं कर पाते, छोटे बच्चे लड़ते हैं तो अच्छा लगता है। जी तो जाने वफा तुझको क्या दें, दिल कह रहा है दुआ दें, और पंक्ति अच्छी लगी हमको भाई, खुद से शर्मिंदा हूँ परेशान भी हूँ, बदलती फितरत से खुद की हैरान भी हूँ। क्या बात है भाई, एक पंक्ति में वास्तव में अगर हम इस पस मंज़र को देखें, इन मौजूआत को देखें, तो ऐसा लगता है कि हाँ। और भाई गीता जी बहुत दिन के बाद आई हैं, तो बहन जी से निवेदन करेंगे कि बहुत दिन हो गए आपकी आवाज़ को सुने हुए, तो अगर संभव हो तो कुछ जी जी दो चार पंक्तियां, और देखते हैं भाई हमारे साथ अगले कौन सोता है। हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी नमस्कार।
2: नमस्ते सर।
3: नमस्ते सर।
1: जी आपकी आवाज़ कई बार नमस्ते कर रही है, फर्स्ट इसको करीब ले आइए।
2: हेलो
1: जी प्रणाम।
2: और सर
1: जी? और ठीक है, आप बताइए आपका शुभ नाम।
2: मेरा नाम काव्या यादव है, जानकी नगर से कॉल की हूँ।
1: जी आपका नाम काव्या यादव है, आपने जानकी नगर से कॉल किया, इतनी जानकारी हमको मिल गई। अब इसके बाद हमको ये बता करना है कि आप क्या सुनाने वाले हैं।
2: जी मैं तो भक्ति गाना सुनाऊंगी।
1: जी सुना दीजिए।
2: ठीक है सर सुनाए।
1: जी जी निसंदेह सुनाइए।
2: ना भूलूं मैं तुझको है दाता दयालु, ना भूलूं

0: तुमको मैं पालूं। हेलो
1: जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ
0: जी, बस इतना ही था।
1: चलिए भाई, आपने भगवान का नाम लिया, भगवान आपको कामयाबी की बुलंदियों पर पहुँचाए, ये ईश्वर से आपके लिए शुभकामना है।
0: ठीक है सर, नमस्ते सर।
1: जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी हाँ भाई, तो ये हमारी काव्या जी थी और उन्होंने जो है वो भगवान का बहुत ही प्यारा सा भजन सुनाया। और जी मतलब ईश्वर से जुड़े रहना भी अपने आप में भाई बहुत बड़ी बात होती है। जी अब चलते हैं भाई, देखते हैं हमारे अगले श्रोता कौन है जो बन चुके हैं वक्ता। हेलो है,

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो
1: हेलो,
0: जी नमस्कार। जी नमस्कार। अरे
1: जी, नेहा बोल रहे हैं।
0: अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
1: जी ठीक है, आप ठीक है?
0: मतलब आप गोंडा में ही हैं?
1: जी, हम गोंडा में ही और अपने गुरुजी के साथ हैं।
0: क्या बात है, मतलब अपने गुरुजी के साथ हैं, क्या बात है भाई। उस्ताद के साथ हैं तो आज आपका महत्व और बढ़ गया होगा। मतलब गुरुजी वही, मतलब नीना जी ना?
1: जी, नीना जी।
0: हाँ तो गुरु जी क्यों, उनको आपको गुरुआइन जी कहना चाहिए।
1: जी
0: गुरुआइन जी, गुरु माता कह दीजिए।
1: जी,
0: ये गुरु माता के पास है।
1: जी
0: जी, चलिए आप दोनों एक साथ हैं, ये बहुत अच्छा लगा। मतलब सोने पर सुहागा, शायद इसीलिए कहावत बनी थी कि आप दोनों एक साथ होंगी तब ये कहा जाएगा।
1: जी
0: तो क्या सुनने वाले हैं हम?
1: ये नीना जी का ही एक बार इन्होंने सुनाया था, रात कली एक ख्वाब में आई।
0: हाँ क्या बात है, क्या
1: आज हम लोग साथ में सुनाएंगे।
0: जी जी, ये बहुत शानदार होगा।
1: हेलो
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: नमस्कार सर। वालेकुम अस्सलाम। और सर?
0: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसी हैं आप?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की दुआ है।
0: जी मतलब इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, हम ही को नहीं बुलाया आपने, गोंडा में रहते हुए बताइए। मतलब हम बहुत ज्यादा नहीं खाते हैं, थोड़ा ही खाते हैं।
1: जी सर, आप कभी भी आइए।
0: जी हाँ कभी भी, हम एकदम यहाँ से प्रोग्राम के छूटेंगे और तुरंत चले आएंगे।
1: जी जी इंशाल्लाह।
0: जी तो आप दोनों मिलकर आज गाने वाली हैं?
1: जी आपका ज्यादा नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत।
0: जी आप उनके गुरु हैं?
1: ये फालतू बोलता करती है।
0: अध्यापक के शिष्य अगर फालतू बोलने लगे तो उसका मतलब अध्यापक ने ठीक ढंग से नहीं पढ़ाया। चलिए शुरू करते हैं।
1: रात कली

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है, क्या बात है, लेकिन इस गाने में एक मिस्टेक है। हेलो
0: जी,
1: इस गाने में एक गलती है।
0: जी क्या गलती होगी सर?
1: ये गलती ये है कि रात कली एक ख्वाब में आई हो जबकि यहाँ पर दो कलियाँ हैं। जी हाँ, मतलब आप दोनों लोग मिलकर गा रही थी तो हम सोचे थे कि दो कलियाँ होता तो कितना अच्छा होता। बहुत शानदार गाया भाई, बहुत प्यारा, आप दोनों ने मिलकर गाया, बहुत शानदार गाया, बहुत प्यारा
0: जी, संदेह
1: मतलब हृदय को छू लेने वाला। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे हो, ऐसी ही खूबसूरत आवाज बरकरार रहे आप दोनों की।
0: जी आमीन,
1: सुम्मा आमीन।
0: जी
1: खुदा हाफिज। जी हाँ भाई, तो क्या बात है भाई, एस एस एस यानी शिव शरण शुक्ला, किस नाम से पुकारूं आपको भाई, ट्रिपल एस जो भी आपका नाम हो, गुड इवनिंग, आपको भी शुभ संध्या। और ये NAIT मतलब हमने कोई नेट कहाँ से खरीद लिया।

0: हेलो हेलो हेलो।
1: संध्या मनु जी,
0: अरे अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व स्पर्श।
1: अरे अरे, आशीर्वाद सर, आशीर्वाद।
0: जी
1: और असल में फोन मैं लगा रहा था
0: जी
1: तो विलम्ब से लगा है, अब तो मेरे ख्याल से आपका समय पूरा हो चुका है।
0: नहीं, हमारा, अब आप ऐसा कह देंगे कि हमारा समय पूरा हो गया है, तुम्हारे घर वालों को अच्छा नहीं। ये आप कहिए कि आपका समय भी और ज्यादा बढ़े, आशीर्वाद दीजिए।
1: आप शब्दों के खिलाड़ी हैं आप।
0: नहीं, अरे शब्दों के खिलाड़ी नहीं, आप कवि हैं, हम आपसे कहाँ कुछ कह पाएंगे। बस ये कहिए, कार्यक्रम के समाप्त होने का समय, लेकिन आपकी बात है तो हम कार्यक्रम को थोड़ा और विलम्ब से करेंगे।
1: बस अब ऐसा है कि समझ लीजिए एक तरीके से आपका मैं कार्यक्रम शुरू से सुन रहा हूँ,
0: जी
1: तो लग डिनर हो चुका है
0: जी।
1: तो अब गरिष्ठ चीजें नहीं परोसी जा सकती हैं, तो बहुत हल्की हल्की कुछ चीजें हैं
0: जी,
1: वो मैं आपके सामने रखता हूँ, बहुत हल्की और बहुत आसानी से समझ में आने वाली।
0: जी और सुपाच्य।
1: अब हम जो सुनाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इसको जेहन में रखिएगा कि जैसे हम लोगों के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हीं में कुछ लोगों की बातें हैं, जरा मतलब ये दो चार लाइनें हैं, मैं सुनाना चाहता हूँ आपको।
0: जी
1: जी तो शुरू करूँ?
0: जी जी निसंदेह।
1: आप बड़े हैं,
0: आप बड़े,
1: आप बड़े हैं तो बड़े रहिए।
0: हाँ?
1: आप बड़े हैं तो बड़े रहिए, अपने बड़प्पन में यूं ही पड़े रहिए।
0: क्या बात है,
1: गुजरते वक्त ने हमें यूं छोटा कर दिया,
0: क्या
1: आपकी निगाह में सिक्का खोटा कर दिया। कभी हमसे भी तबीयत से मिलिए हुजूर।
0: क्या बात है, कभी हमसे
1: आप आपके काम लायक मसाला मिलेगा जरूर। धन्यवाद। और सुनिएगा
0: जी,
1: कि हम अपनी सरहदों से नहीं निकल पाते हैं तब हम आपको और छोटे नजर आते हैं। हम अपनी सरहदों से नहीं निकल पाते हैं तब हम आपको और छोटे नजर आते हैं। खैर, वक्त की अपनी पाबंदियां हैं पर इसमें भी कुछ खुद की कमियां हैं। इन कमियों ने कुछ और नहीं किया, इन कमियों ने कुछ और नहीं किया, बस बस हर रिश्ते का मुकाम तय कर दिया।
0: क्या बात है,
1: तो मुकाम तय कर दिया और हमें हमें यथार्थ के धरातल पर खड़ा कर दिया। बहुत सारे लोग हम लोगों के बीच में ऐसे होते हैं, तो बहुत हल्की कविता है ये, एक ऐसे ही छोटी सी और बहुत आसान सी, कि मतलब ये भी ऐसे ही इर्द गिर्द लोग रहते हैं, तो अगर मैं सुना रहा हूँ तो हो सकता है कोई आपके निगाह में आए
0: जी।
1: बहुत सारे लोग होते हैं, तो फिर शुरू करता हूँ कि बात को बात रहने दें, बात रहने दें, जी का जंजाल न बनाइए।
0: क्या बात है,
1: बात को बात रहने दें, जी का जंजाल न बनाइए, खुद सुकून से नहीं, दूसरों को सुकून से खाने दें, खुद भी सुकून से खाइए।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: क्या आप बात? हर बात का मतलब खुद ही निकाल लेते हैं, खुद ही जोड़ लेते हैं, खुद ही घटा लेते हैं, और फिर सामने वाले को फिर बनाते हैं एक समीकरण, फिर बनाते हैं एक समीकरण और सामने वाले को वही पढ़ा देते हैं।
0: क्या बात है।
1: जी जी जी धन्यवाद। अब इसका सबब तो ये हुआ कि आप एक तकल्लुक पसंद इंसान हैं। और खुद से ही हैरान हैं, परेशान हैं। आप महानुभाव हैं तो हमें एक बात बताइए, आप महानुभाव हैं तो हमें एक बात बताएं। मित्रता आपसे है तो उम्र के इस दौर में बेतकल्लुफ होने अब हम कहाँ जाएं।
0: क्या बात है
1: जी, धन्यवाद। बस ये छोटी छोटी हैं तो कई, लेकिन बस अब समय भी ज्यादा हो चुका है इसलिए मैं आपका समय नहीं लूंगा।
0: छड़काएं आप बहुत शानदार लिखते हैं, बहुत शानदार छड़काएं।
1: सब आप लोगों का वो है, ये तो बहुत हल्का है, मैंने सोचा कि आसानी से थोड़ा मतलब समझ में आने वाला है तो।
0: नहीं, वो बात आपने जो बात बताई वो मुझको समझ में आया कि हम बातों बातों में जहाँ बात बिगड़ जाती है फिर फिर बनाओ भी तो वो बात कहाँ आती है।
1: अरे
0: तो मतलब तो बात आपने बहुत अच्छी कही, और मतलब ये बात बहुत प्यारी बात है।
1: ये बस समझ लीजिए, बस ऐसे ही हमारे आपके सर्किल में रहने वाले लोग हैं,
0: लोग हैं
1: तो ये उन्हीं लोगों के ऊपर बस।
0: और बहुत शानदार आईना दिखाया आपने। कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण होता है, और आपने सिद्ध कर दिया।
1: अरे आप लोगों की कृपा है
0: जी। अच्छा, चरण स्पर्श,
1: बहुत बहुत आशीर्वाद जी। शुभरात्रि।
0: शुभरात्रि जी। हाँ, और अब हमको दीजिए अनुमति, घड़ी की सुइयां बता दी है कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभरात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर इसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी ठीक 9:30 बजे बहारे गज़ल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो का 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
2: पीयूष और शालिनी को 4 महीने हो गए थे। इससे पहले उनका किसी दूसरे पड़ोसी से ठीक से परिचय भी नहीं हो पाया था। जान पहचान बढ़ाने के लिए दोनों ने ये आमंत्रण स्वीकार कर लिया।

प्यार भरी कहानियों के साथ मेरी आज की कहानी है खामोशी की धुन। अब तक आपने सुना पीयूष और शालिनी अपार्टमेंट के कॉरिडोर में खड़े होकर बहस कर रहे थे। उनकी आवाज सुनकर उनके पड़ोसी प्रकाश जी बाहर आ गए और उन्हें अपने घर पर शाम को कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया। अब आगे तय समय पर दोनों मिस्टर प्रकाश के घर पहुंच गए थे। बेल बजाने पर एक 40-42 साल की महिला ने दरवाजा खोला। जी वो मिस्टर प्रकाश, आइए आइए, अंदर आइए आप दोनों। माया जी आप इन लोगों को बैठाइए, मैं अभी आता हूं, अंदर से प्रकाश जी की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर में वो खुद आ गए थे, हाथों में कॉफी की ट्रे लिए हुए। गुड इवनिंग पीयूष, गुड इवनिंग शालिनी, गुड इवनिंग प्रकाश जी, पीयूष और शालिनी का सम्मिलित स्वर आया। भाई मीनू जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो आराम कर रही हैं। उठते ही आप दोनों से परिचय करा दूंगा। पीयूष और शालिनी दोनों को ये बात अटपटी लगी कि मेहमान को घर बुलाकर गृह स्वामिनी स्वयं गायब थी। अभी दोनों कॉफी पी ही रहे थे कि हंसी की एक तेज आवाज ने दोनों का ध्यान सामने वाले कमरे की तरफ कर दिया। ये कैसी आवाज है? शालिनी अपना कौतूहल दबा नहीं पाई। मीनू की आवाज है, मीनू ने अपनी आवाज रिकॉर्ड करके उसे ही अलार्म बना रखा है। पहली बार तो मैं भी यह सुनकर चौंक पड़ा था, प्रकाश जी बोले। ओह काफी हंसमुख है मीनू जी शायद, पीयूष बोला। प्रकाश जी बोले, मीनू जैसा कोई हो ही नहीं सकता। उसकी हंसी बहुत तेज थी, वो जब हंसती तो आस पड़ोस वाले भी जान जाते। मैं अक्सर सोचा करता, जरा भी तमीज नहीं है इस औरत को। कहने को तो डबल एमए है, कॉलेज में लेक्चरर है, पर बुद्धि ढेले भर के बराबर नहीं। बातूनी तो इतनी कि मैं भी कभी कभी खींच उठता था। हमारी शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन इन 12 सालों में मैंने कभी भी उसे दुखी या उदास नहीं देखा था। बच्चे ना हो पाने का मुझे कोई खास दुख नहीं था, परंतु माँ बन पाने की चाह अधूरी रह जाने के बाद भी मीनू की आंखों में दर्द की एक रेखा भी मैंने कभी नहीं देखी थी। जैसे दुखी होना उसे आता ही नहीं था। हर रात उसके पास बातों का पिटारा होता था। प्रकाश बातें करते हैं ना, सो गए क्या? वो कहती थी, नहीं सुन रहा हूं, तुम बोलो, अपना चेहरा तो मेरी तरफ करो, वो कहती। जाने कितनी बातें थीं उसके पास जो खत्म ही नहीं होती थीं। वो बोलती रहती और मैं न जाने कब सो जाता। कभी ठीक से सुना ही नहीं कि आखिर वो कहती क्या थी। आपकी शादी अरेंज थी? शालिनी ने पूछ ही लिया। जी नहीं, बकायदा प्रेम किया था हमने, वो भी फिल्मी वाला। छुप छुप कर मिलना, रोमांस फरमाना, माता पिता के तुगलकी फरमान का सामना करना, फिर अंत में जैसे हिंदी फिल्मों में सब ठीक हो जाता है ना, उसी तरह हमारे माता पिता भी मान गए।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है खामोशी की धुन। अब तक आपने सुना आसपास से बेपरवाह पीयूष और शालिनी एक दूसरे से तेज आवाज में कुछ बहस कर रहे थे। तभी उनके पड़ोसी ने आकर टोका और शाम को उनको अपने घर कॉफी पर आमंत्रित किया। शाम को जब वो दोनों उनके घर पहुंचे तो उनकी पत्नी की तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए वो बाहर उन लोगों से मिलने नहीं आई। उनके पड़ोसी प्रकाश जी उन्हें अपनी पत्नी के बातूनी रवैये और चंचल व्यवहार के बारे में बता रहे थे। अब आगे वो शादी के पहले की बातों का जिक्र करते हुए बोले, लेकिन उन दिनों मुझे मीनू का इतना बोलना कभी नहीं खला। उसकी इन्हीं अदाओं पर तो प्यार आता था। वो कहते हैं ना कि प्यार से अपना दिल जिसे कहते थे वो तेरा दिल अब दाग नजर आता है। शादी के 10 सालों बाद तो अपना महबूब भी सयाद नजर आता है। लेकिन मीनू की तरफ से कभी कोई बदलाव मैंने महसूस किया ही नहीं। जितनी अच्छी तरह से वो मुझे समझती थी उस तरह तो मैं खुद को कभी नहीं समझ सका। कब मुझे चाय चाहिए होगी, कब मेरा पकौड़े खाने का दिल कर रहा होगा, कब मैं बॉस से झगड़ के आया हूँ, कब मैं उदास हूँ, ये सब वो मेरे बिना कहे समझ जाती थी। क्योंकि शायद हर स्त्री के अंदर कहीं ना कहीं एक माँ छुपी होती है। हर पार्टी की जान हुआ करती थी मीनू। कोई भी मुझे आमंत्रित करता तो उसके पहले उसका अनुरोध होता, भाई अकेले मत आना, भाभी को जरूर लेकर आना। मीनू का कहीं भी जाकर उसी परिवार का हो जाना मुझे बहुत परेशान करता था। मैं उसे अक्सर कहता था, तुम गेस्ट से कब होस्ट बन जाती हो पता ही नहीं चलता। सबसे इतना घुल मिल जाती थी। खाना अच्छा बनाती हैं वो, शालिनी के इस सवाल पर मुस्कुरा दिए थे प्रकाश जी। जी नहीं, मीनू को तो खाना बनाना आता ही नहीं था। हाँ, मगर उसे खाना खिलाना आता था। इतने प्यार और इतने सलीके से वो खाना सर्व करती थी कि 2 रोटी खाने वाला 5 खा जाता। मेरे दोस्त अक्सर कहते थे कि भाभी जी को दिल जीतना आता है। मेरा जवाब होता, तेरी भाभी को बातें बनाना जो आता है। कभी कभी तो मुझे लगता कि मैंने एक औरत से नहीं टेप रिकॉर्डर से शादी कर ली हो, प्रकाश जी कह रहे थे। पर प्रकाश जी, आप बार बार था का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? मीनू जी तो, शालिनी ने पूछा। इससे पहले कि प्रकाश जी कुछ कहते माया आ गई थी। साहब मैं चलती हूँ, खाना बना दिया है और मैडम के कपड़े भी बदल दिए हैं। माया जी एक मिनट रुकिए, आपकी तनख्वाह निकाल कर रखी है, अभी लेकर आता हूँ। प्रकाश जी के अंदर जाते ही पीयूष ने माया से पूछ लिया था, ये मीनू जी का क्या चक्कर है, बार बार था बोल रहे थे, जबकि उनकी पत्नी तो अभी जिंदा हैं। माया बोली, मैडम होकर भी नहीं है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है खामोशी की धुन। अब तक आपने सुना पीयूष और शालिनी कॉरिडोर में तेज आवाज में बातें कर रहे थे, तभी उनके पड़ोसी उनके पास आ गए और शाम को उन्हें अपने घर पे कॉफी के लिए इनवाइट किया। शाम को जब वो दोनों उनके घर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी की तबीयत कुछ नासाज है, इसलिए वो उनसे बाहर तक मिलने नहीं आ सकती, कमरे में ही आराम कर रही हैं। जब वो किसी काम से अंदर गए तो पीयूष और शालिनी ने उस घर में काम करने वाली माया जी से उनके बारे में पूछना चाहा। माया ने बताया कि साहब की मैडम तो होकर भी नहीं है। अब आगे माया बता रही थी, आज से करीब 4 साल पहले मैडम को पैरालिसिस का अटैक हुआ था। मैडम कोमा में चली गई थी। 2-2.5 साल तक तो साहब ने अकेले ही मैडम को संभाला, फिर दोस्तों के समझाने पर 1.5 साल पहले मुझे काम पर रखा। पर कमाल की बात तो ये है कि पता नहीं कैसे साहब को बिना मैडम के बोले ही पता चल जाता है कि कब उन्हें बाथरूम जाना है, कब टीवी देखना है, कब भूख लगी है, कब कहानी सुननी है। साहब तो मैडम को तैयार भी खुद ही करते हैं। वो तो आज आप लोग आ गए थे इसलिए मैंने कर दिया। टीवी, बाथरूम, इसका मतलब काफी सुधार आ गया है उनकी हालत में, पीयूष ने बोला। माया बोली, तब से अब तक बस इतना सुधार आया है कि मैडम कोमा से तो बाहर आ गई हैं, लेकिन क्या, पीयूष बोला। लेकिन मेरे टेप रिकॉर्डर का म्यूट बटन दब गया है पीयूष जी, मेरी मीनू की आवाज चली गई और साथ ही पेट के नीचे का हिस्सा भी निर्जीव हो गया है। प्रकाश जी आ गए थे। कुछ देर तक सभी चुपचाप बैठे रहे। माया के जाने के बाद शालिनी ने बात की शुरुआत की। माफ कीजिएगा प्रकाश जी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, पीयूष बोला, पर अचानक ये हुआ कैसे? प्रकाश जी बताने लगे, उस रात मैं ऑफिस से लेट घर पहुंचा था। मीनू के छात्र छात्राओं की भीड़ घर पर ही थी। वो उनके साथ बैठी हुई रसायन शास्त्र के किसी अध्याय पर चर्चा कर रही थी। जब तक मैं हाथ मुंह धोकर आया घर खाली हो चुका था। मुझे देखकर हंसते हुए बोली, डिनर करोगे या करके आए हो? जला भुना तो मैं था ही, उसके इतना कहते ही चिल्ला पड़ा, मेरे पास तुम्हारी तरह इतने चाहने वाले तो हैं नहीं जो साथ में डिनर ऑफर करें। मुझे लगा था अब तो पक्का लड़ेगी मुझसे, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की एक लकीर तक नहीं उभरी और वो वैसे ही हंसते हुए बोली, हाँ भाई तुम्हारी ये बात भी सही है, कड़वा करेला ऊपर से नीम चढ़ा, खाने की हिम्मत तो सिर्फ मुझ में ही है। अच्छा तो मैं करेला हूं, मैंने कहा था। हाँ और तुम्हें तो पता ही होगा कि मुझे करेला कितना पसंद है, ना चाहते हुए भी हम दोनों साथ में हंस पड़े थे। फिर मैंने कहा, चलो मैडम डिनर कर लेते हैं। तो वो बोली, तुम कर लो मैं तो कर चुकी। मैंने कहा, कैसी बीवी हो तुम, दुनिया भर की औरतें अपने पति का खाने पर इंतजार करती हैं, उनके आने पर साथ में खाना खाती हैं, और तुम? तो वो बोली, करती होंगी पर मीनू उनके जैसी नहीं है। वैसे भी एक पुण्य आत्मा ने कहा है कि खाने के लिए भूख का इंतजार करना चाहिए, पति का नहीं, वो बोली। मैंने कहा, अच्छा कौन सी पुण्य आत्मा, जरा मैं भी तो सुनूं। तो उसने जवाब दिया, वही
जिनके पति होने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। फिर हम दोनों एक साथ बहुत देर तक हंसते रहे थे।

0: बना के मुझको सारी रात जगाती है, पत्नी मुझे सताती है, मेरी पत्नी मुझे सताती है।
1: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है खामोशी की धुन। अब तक आपने सुना पीयूष और शालिनी अपने अपार्टमेंट के कॉरिडोर में खड़े होकर तेज आवाज में बात कर रहे थे, तभी उनके पड़ोसी प्रकाश जी वहां आ गए और उन्होंने उन दोनों को शाम को अपने घर कॉफी पे इनवाइट किया। शाम को जब वो दोनों उनके घर गए तो पता चला कि उनकी पत्नी 4 साल से बीमार हैं। पहले कोमा में थीं और अब उनकी आवाज चली गई है। प्रकाश जी उन दोनों को बता रहे थे कि ये सब कैसे हुआ। अब आगे, उस रात बिस्तर पर लेटकर जब मैं मोबाइल चला रहा था, वो मेरे पास आई और कहने लगी, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बातें अपने दोस्तों के साथ। तो वो बोली, दूर बैठे दोस्तों से बातें कर सकते हो, पास बैठी पत्नी से नहीं। मैंने कहा, क्या बात करूं तुमसे, कौन सी बात बची है करने को? दिन भर तो बोल बोल कर दिमाग खराब कर देती हो। इसने ये कहा, उसने ये किया, कितना स्टॉक है तुम्हारे पास बातों का जो कभी खत्म ही नहीं होता। वो बोली, हाँ करती हूं मैं, पर तुम ही बताओ कितनी बार अपना फोन साइड में रखकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी बातें सुनते हो। उसकी इन्हीं बातों पर प्यार आ जाता था मुझे। फिर मैंने उसको अपने पास बुलाकर कहा, तो बताओ फिर कौन कौन सी बात करनी है। वो बोली, कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ। मैंने उसको चिढ़ाते हुए कहा, कमाल है, तुम किसी और की सुन भी सकती हो। वो बोली, प्रकाश अच्छा बताओ। उसके बाद पता नहीं मीनू मुझे क्या क्या बताती रही। आज याद करता हूं तो कुछ भी याद नहीं आता, क्योंकि मैंने कुछ सुना ही नहीं था। मैं तो मोबाइल पर कुछ देखने में व्यस्त हो गया था। पता नहीं कब तक बोलती रही थी वो। अचानक एक चीख से मेरा ध्यान मीनू की तरफ गया। अरविंद, क्या हुआ मीनू, ऐसे क्यों चीखी तुम? कब सीखोगी तमीज? हड़बड़ाहट में मेरे हाथों से मोबाइल छूट गया था। एक ही घर में अजनबी बन गए हैं हम दोनों। तुम कहते हो मैं इतना बोलती हूँ, क्या तुम सुन पाते हो मुझे? क्या तुम तक पहुंचती है मेरी आवाज? उसने थोड़ा नाराज होते हुए कहा था। मुझे बहुत तेज गुस्सा लगा था, क्या सुनूं? अपने घर में शांति के लिए तरस गया हूँ, तुम्हारी दिन भर की फालतू बकवास से थक गया हूं मैं, थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं हो सकती तुम? उसने कहा, पर जिंदगी उतनी भी बड़ी नहीं है जितनी तुम्हें लगती है प्रकाश। आज तुम्हें मेरी आवाज बुरी लग रही है, कल कहीं खामोशी न चुभने लगे। इसके बाद मीनू सो गई, नींद में ही स्ट्रोक आया था उसे, और मेरी जिंदगी में खामोशी भर गया।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सोब फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानश्री 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: नदीम की वो धुनी, श्रवण का वो साज, आज भी दिलों पर करता है गहरा राज। आशिकी की सादगी हो या साजन का प्यार, इनकी संगीत से महक उठता है सारा संसार।
2: सुरों के सफर में बसी है इनकी रूहानी याद, हर धड़कन सुनती है इनकी मीठी सी फरियाद। बीबी जी, इन नगमों में छिपी है एक अनकही कहानी, जो बना देती है आपकी और हमारी मोहब्बत को रूहानी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर के चल रहे हैं आपको एक ऐसे सफर में, जिसमें रोमांटिक के साथ साथ बहुत सारी फीलिंग्स को शेयर करने वाले गीतों को जिन्होंने गाया है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, जो कि किसी पहचान के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। नदीम श्रवण जी, जी हाँ, 90 के दशक के संगीत को एक लहर में पैदा करने वाले इंसान। ये दो वो हस्तियां हैं जिन्होंने मोहब्बत को एक नया रूप, एक नई राह में किस तरीके से मोड़ा, आज हम आपको बताएंगे। चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश।
1: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
2: तो आज रात के सफर में हम लेके चलेंगे बहुत ही प्यारे से गानों के साथ में, जो कि है नदीम श्रवण की बहुत ही प्यारी सी एक प्लेलिस्ट। आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा एक गाना।

कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाले के यहाँ बन के आती हैं, या यूं कहते हैं कि नाम वहीं लिख दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें मिलने के लिए सिर्फ धरती पर एक मुकाम चाहिए होता है, एक पहचान चाहिए होती है, या यूं कह लें कि सिर्फ और सिर्फ एक हल्की सी हिंट चाहिए होती है जब दो जोड़ियां एक साथ बनती हैं। ऐसी ही जोड़ी की शुरुआत बहुत ही दिलचस्प जो आप सभी के सामने आज है, नदीम श्रवण। नदीम सैफी और श्रवण राठौर की पहली मुलाकात 1943 में एक कॉलेज फंक्शन में हुई थी। इसी दौरान जब एक कॉलेज फंक्शन था, इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, या यूं कहें कि ये जोड़ी एक दूसरे को ढूंढ रही थी। फंक्शन के दौरान श्रवण वहां गाने गाने आए थे और उन्होंने देखा कि नदीम वहां ड्रम बजा रहे थे। उनके बाद एक दोस्त ने उनसे ये साझा किया। हरीश बोरप्पा ने उन्हें एक दूसरे से मिलवाया और ये सुझाव दिया कि अगर उन्हें एक साथ मिलकर संगीत दिया जाए तो फिर क्या ही बात हो। फिर क्या था, इन दोनों ने अपना सफर 1977 में एक भोजपुरी फिल्म दंगल से शुरू किया, जिसका गाना काशी हिले पटना हिले काफी मशहूर हुआ था। आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि इन दोनों जोड़ियों ने मिलकर गाया है।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नदीम और श्रवण जी ने अपने करियर में सैकड़ों गाने गाए हैं, सैकड़ों फिल्मों के लिए उन्होंने संगीत दिया है। उनका बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि साजन फिल्म से है, मेरा दिल भी कितना पागल है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। लेकिन इस मूवी के गानों के पीछे की एक कहानी है, जो कि चलिए आज आपको बताते हैं कि कहानी क्या है। साजन मूवी का गाना देखा है पहली बार, ये गाना शूटिंग होने के बाद आखिरी समय में जोड़ा गया था फिल्म में। नदीम श्रवण और गीतकार समीर एक दिन एक होटल में खाना खा रहे थे, तभी नदीम जी ने मजे मजे में डाइनिंग टेबल पर ताल बजाई और समीर ने लाइनें लिखी। धुन इतनी पसंद आई कि अगले दिन ही ऊटी में सलमान खान और माधुरी दीक्षित के साथ इस गाने को शूट कर लिया गया। तो डाइनिंग टेबल पर मजे मजे में ये जो गाना बना ना, ये इतना सुपरहिट हुआ कि क्या ही कहना। तो कहते हैं ना कि कुछ गाने ऐसे ही होते हैं और उनके पीछे की कहानी तो और भी खूबसूरत होती है। तो आइए चलिए सुनते हैं यही बहुत ही प्यारा सा गीत।

आशिकी, कुछ फिल्में, अगर हम ये कहें कि कुछ फिल्मों की शुरुआत कुछ एल्बम से बनी, अब आप सोच रहे होंगे कि एल्बम से कैसे फिल्म बन सकती है। शुरुआत में ये गाने किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक स्वतंत्र म्यूजिक एल्बम के लिए रिकॉर्ड किए गए गाने थे। जब निर्देशक महेश भट्ट ने ये धुनें सुनी तो वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गानों के इर्द गिर्द पूरी आशिकी फिल्म ही कहानी बुन दी थी। इसीलिए कहा जाता है कि जो बुना होता है पहले से ही, जो सोचा हुआ होता है पहले से ही, वो कभी नहीं होता है, क्योंकि होता वही है जो अचानक से और हमसे कराया जाता है। अपने 17 साल के संघर्ष के दिनों में यह जोड़ी बेकार नहीं बैठी। वे हर सिचुएशन जैसे प्यार, जुदाई, पार्टी के लिए पहले से ही धुनें बना कर रखते थे। इसीलिए तो उन्हें म्यूजिक बैंक का जादू कहा जाता था। उनके पास सैकड़ों धुनों का एक बहुत बड़ा संग्रह होता था जिसे म्यूजिक बैंक कहा जाता था। वे हमेशा से उस म्यूजिक बैंक में कई धुनों को, कई ऐसी चीजों को रखते थे जैसे वो फटाफट उस पे गानों की लहरों को उसमें बिठा सकें, जिसकी वजह से वे साल में 15 से 20 फिल्मों का सुपरहिट संगीत आसानी से दे पाते थे। आइए ऐसे ही दो ऐसे जादूगर से हम फिर से मिलेंगे, रूबरू होंगे उनके कुछ प्यारे से नगमों के साथ में।

नदीम श्रवण, जैसा कि आप सभी को पता है, एक ही बहुत ही बड़ा नाम। पर कहते हैं ना कि नाम जितना बड़ा हो संघर्ष भी उतना ही बड़ा होता है। कुछ ऐसा ही संघर्ष इनका भी रहा। शुरुआती दिनों में इन्होंने 1500 रुपये प्रति महीने पर भी काम किया और इन्हें बड़ी सफलता मिली फिल्म आशिकी से। फिल्म आशिकी जिसका कि म्यूजिक एल्बम बॉलीवुड के इतिहास में अब तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम माना जाता है, जिसमें लगभग दो करोड़ कैसेट बिकी थी और वहीं से इन्हें सफलता मिली। तो आइए चलिए सुनते हैं कुछ प्यारे से गीत।

नदीम शिवन की रचनाओं में अगर बात की जाए कुछ खास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की, तो वो बेहद पसंद करते थे बांसुरी, सितार और शहनाई। बहुत ज़्यादा खूबसूरती से उसका प्रयोग करते थे और अपनी पहचान को भी आगे बढ़ाने के लिए हर एक गाने में, हर एक लिरिक्स में उन्होंने बांसुरी, सितार और शहनाई को आगे रखते थे। जी हाँ दोस्तों, फोन पर बनी धड़कन और राज की धुनें, अगर आप सोच रहे होंगे कि फोन पर कैसे बन सकती हैं, गुलशन कुमार केस के बाद जब नदीम लंदन चले गए थे, उन्होंने वहीं से फोन और कैसेट के जरिए कुछ रिकॉर्डेड की हुई धुनें उन्हें सुनाई थी, श्रवण जी को भेजा था। श्रवण ने मुंबई में उन धुनों पर बहुत ज्यादा काम किया और इस तरह धड़कन और राज जैसी आज भी दिलों पर राज करने वाली संगीत तैयार हुई, म्यूजिक हम सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं कुछ उसी बहुत ही प्यारी सी फिल्मों में से आज के सफर में, आज के रात के सफर में कुछ नगमे।

नदीम श्रवण, इनकी जोड़ी जितनी ही नामी और पसंद की जाती है, उतना ही इन दोनों का स्वभाव जो है ना, वो बिल्कुल एक दूसरे से जुदा है। अगर हम बात करें श्रवण जी की, तो उनका स्वभाव नदीम जी से बिल्कुल उल्टा है। वो शांत और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं और नदीम जी थोड़ा मॉडर्न धुनों के टच में रहते हैं। श्रवण जहां भारतीय संगीत को बहुत पसंद करते हैं, वहीं नदीम कुछ मॉडर्न धुनों को पसंद करते हैं। यही वजह थी कि इन दोनों का बैलेंस जो है वो बहुत ही शानदार रहा। कहते हैं ना कि जब दो लोग एकदम अलग अलग स्वभाव के होते हैं, तो फिर उनका कुछ, जब वो दोनों एक साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो वो कुछ अलग ही मज़ा होता है। मैं आपको बताऊं कि नदीम जी का रॉयल लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता रहा है। वे हमेशा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अक्सर रेशमी कपड़े और महंगी घड़ी पहनकर आते थे। वे खुद को किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं समझते थे। उनका मानना था कि संगीतकार भी पर्दे के पीछे नहीं, बल्कि हमेशा स्टार की तरह ही दिखना चाहिए। उनका ये रॉयल लाइफस्टाइल लोगों में बहुत ही लोकप्रिय था। तो आइए, चलिए सुनते हैं इसी जोड़ी का एक बहुत ही प्यारा संगीत।

90 के दशक में कुमार सानू की सफलता के पीछे इस जोड़ी का बहुत बड़ा हाथ था। नदीम श्रवण ने ही किशोर कुमार के जाने के बाद कुमार सानू की आवाज को पहचाना और उन्हें आशिकी में मौका दिया। सोनू आज भी मानते हैं कि उनकी शोहरत की बुनियाद नदीम श्रवण जी ने ही रखी थी। नदीम श्रवण की सफलता का एक बहुत बड़ा राज संगीतकार समीर थे। इन तीनों के बीच ऐसा तालमेल था कि अक्सर समीर पर या नदीम की गाड़ी में ही गानों के मुखड़े तैयार किए जाते थे। समीर ने उनके साथ लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और इसीलिए उनकी जोड़ी को तिगड़ी नाम से जाना जाता था। 90 के दशक के अंत में जब एआर रहमान का टेक्नो संगीत हावी हो रहा था, तब नदीम श्रवण ने खुलेआम कहा था कि असली मेलोडो आज भी वही दे रही हैं। उन्होंने धड़कन और राज जैसी फिल्मों के जरिए ये साबित किया था कि भारतीय दर्शक अभी भी रूहानी और सादा संगीत ही ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज्यादा सच वाली बात है कि हर एक गानों में रूहानियत और सादे संगीत के साथ साथ उनकी मासूमियत भी झलकती थी। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत कुछ उन्हीं की याद में।

0: नदीम की साजिश और श्रवण का वो जादू कर देता है आज भी हमारी भावनाओं को बेकाबू। हर सुरों में बसा है जैसे खुशबुओं का बसेरा, इनकी गीतों में ही महकता है हर शाम सवेरा।
1: सुरों का ये कारवां अब यहीं ठहरता है, मगर इनका संगीत सीधा दिल में उतरता है। बीबी जी जैसे इनके सुरों का कभी अंत तो होगा नहीं हमारी बातों का, लेकिन ये सिलसिला अभी आज कम होता है। हम फिर से मिलेंगे आपको एक नए सफर में, जी हाँ, एक नए संगीतकार के साथ में, लेकिन आज का सफर हम यहीं पर करते हैं खत्म। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: अब लेते हैं आपसे विदा, नए सफर के लिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।